0: और उस रोज हम लोगों को छोड़ देंगे कि समंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुता हों और सूर फूंका जाएगा और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार न थे। तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है ये ख्याल रखते हैं कि मुझ छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लें? हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने आमाल में सबसे ज्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी सई और जहद राह रात से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार कर दिया और उसके हुजूर पेशी का यकीन ना किया, इसलिए उनके सारे आमाल जाया हो गए। कयामत के रोज हम उन्हें कोई वजन ना देंगे। उनकी जजा जहन्नम है उस कुफर के बदले जो उन्होंने किया और उस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनकी मेजबानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने को उनका जी न चाहेगा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो खत्म हो जाए मगर मेरे रब की बातें खत्म न हो, बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई हम और ले आए तो वो भी किफायत न करे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मैं तो एक इंसान हूं तुम ही जैसा, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी और को शरीक न करे। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुतला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: राय और मशवरे की बारी बरसने लगती है। इरबत सबक व कुल्लन यनअत लक दुआ।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज की जिंदगी में स्ट्रेस दबाव बहुत आम हो चुका है और काम का प्रेशर बहुत है, माली मसाइल हैं, खानदानी तनाव है, मगर क्या हम और आप जानते हैं कि ये स्ट्रेस सिर्फ हमारे दिमाग पर नहीं बल्कि दिल, हार्मोन्स और कुव्वते मुदाफ़त पर भी असर डालता है। तो ये जानते हैं कि इस दबाव से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक टीचर का जिक्र आपसे करना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, काम का बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर था और उसमें फिर नींद जो है वो भी ठीक नहीं थी, चिड़चिड़ापन हो गया, सर में दर्द जो है वो भी होता था। तो फिर देखा ये गया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम, अपना आप जो है काम के हवाले कर दिया है। तो फिर जो शुरू किया उन्होंने कि सुबह 10 मिनट के लिए मेडिटेशन को शुरू किया, रात को देखा कि उनकी नींद जो है वो पूरी ज़रूर हो, खुद को तरजीह दी, तो चंद हफ्तों के बाद वाज़े फ़र्क जो है वो सामने आ गया। तो इसमें जो स्ट्रेस है उसकी हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, नींद में कमी हो जाती है, नींद कम आती है, गुस्सा बहुत आता है, आप अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात आप जिस्मानी दर्द भी महसूस करते हैं। हार्वर्ड जो स्टडी है एक, उसमें ये देखा गया कि वो अफराद जो 15 मिनट कोई भी जो मुराकबा है वो करते हैं तो वो बेहतर नतीजे सामने आते हैं। तो इससे जो दिमाग में जो खुशी के हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो इसके लिए फिर करना है हमें ये है कि रोज़ हम 5-10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हैं वो करें, ख़ासतौर पर जो डीप ब्रीथ है वो आप लें, नींद पूरी करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, मुस्बत रखें और जो सोशल मीडिया है उससे थोड़ा सा वक्फा कर लें तो बेहतर होगा। तो कभी हमने सोचा तो क्या हम सिर्फ 10 मिनट भी अपने लिए निकालते हैं या नहीं, और फिर ये कि हमारे या आपके दबाव कम करने का तरीका क्या है, दुआ है, मौसीकी है या वॉक है। दबाव हमेशा ख़त्म नहीं होता मगर हम उसका रद्द अमल बदल सकते हैं। जिसने खुद को संभालना सीख लिया उसने ज़िंदगी जीत ली। सुकून बाहर नहीं अंदर है। आप गहरी सांस लीजिए, सोच को पॉजिटिव रखिए, दिल मुतमिन हो तो यही असल ज़हनी सेहत है। अपनी जहन को आराम दीजिए ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। हेल्थ फॉर ऑल,
3: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107 दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक चौधरी साहब रहा करते थे। वो एक अमीर और मोहतरम शख्स थे। इनके पास काफी जमीन और जायदाद थी। इनकी हवेली भी काफी बड़ी थी और इनके पास कई मुलाजिम और कामकाज करने वाले लोग भी रहा करते थे। चौधरी साहब का अपना एक अलग ही मुकाम था और लोग उनकी इज्जत किया करते थे। लेकिन चंद लोगों की तरह चौधरी भी अपनी जिंदगी में कुछ मुश्किलात का सामना कर रहा था। चौधरी के साथ उसकी हवेली में एक दोस्त भी रहा करता था। दोस्त एक पुरानी फैमिली से ताल्लुक रखता था और इसीलिए उसे इस हवेली में रहने का हक था। ये दोनों, यानी चौधरी और उसका दोस्त, दो ऐसे लोग थे जिनका एक बहुत बड़ा मसला था कि वो बहुत सुस्त लोग थे। ये लोग ना सिर्फ वक्त को जाया करते थे बल्कि हर काम को कल पर टाल दिया करते थे। एक दिन चौधरी अपनी हवेली में पकोड़े खाने के बाद अखबार से बने हुए एक लिफाफे में मसरूफ था। उसने अखबार में एक ऐसी खबर पढ़ी जो उसे काफी हैरान कर गई। खबर में लिखा था कि महकमा ज़राअत ने एक ऐसे बीज का इजाफा किया है जो धोने से ज्यादा फसल दे सकता है। ये बीज ऐसी तकनीकी पहचान पर मुबनी है जिससे गंदम की फसल कम रकबे में ज्यादा पैदावार दे सकती है। इस खबर को देखकर चौधरी का दिल बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अगर ये बीज वाकई इतना फायदेमंद है तो इसे तो अपनी जमीन पर इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी में मजीद दौलत कमा सकता है। चौधरी ने सोचा कि इस बीज का इस्तेमाल करके उन्हें ज्यादा फायदा होगा। फिर उसने अपने सब मुलाजिमों को इकट्ठा करके इस बीज के बारे में सलाह मशवरा शुरू कर दिया। उसने सबसे कहा, ये जो हमारे पास खबर आई है, इस बीज को इस्तेमाल करके हम अपनी फसल को काफी बेहतर बना सकते हैं। हम सबको मिलकर काम करना होगा और ज़राअत के मामलात में नई तरक्कियों को अपनाना होगा। चौधरी का ये रुझान सबको अच्छा लगा और फिर उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। मुलाजिम ने सोचा कि ये बीज लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ नए तरीकों को अपनाना और जमीन पर काम करना उनके लिए एक नया तजुर्बा होगा। सलाह मशवरों की बहुत सी नसीहतें हुई और एक साल का वक्त गुजर गया जब तक सब ने ये फैसला नहीं किया कि उन्हें ये बीज इस्तेमाल करना है। फसल बोने का मौसम करीब आ गया और चौधरी ने अपने दोस्त को शहर भेजा ताकि वो बीज लाकर दे सके। दोस्त को शहर भेजते हुए चौधरी साहब बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बीज की वजह से उनका किसान का काम बदल जाएगा और उनको ज्यादा फायदा होगा। चौधरी साहब का दोस्त लारी पर सफर करके शहर पहुंच गया। सफर लंबा था और थकावट से भरा हुआ था। शहर पहुंचकर उनके दोस्त ने ये फैसला किया कि कुछ दिन अपने किसी अजीज के घर रुककर आराम करेगा ताकि सफर की थकावट दूर हो जाए। वो शहर में अपने कई दोस्तों और अजीजों के घर गया। हर जगह रुक रुक कर वो कुछ दिन के लिए आराम करता और अपना वक्त गुजारता रहता। उनके दोस्त और अजीजों का कहना था, चलो भाई, हमारे साथ कुछ दिन आराम कर लो। ये बीज वाकई अच्छा है या नहीं, हम सब मिलकर देख लेंगे। ऐसे ही एक साल गुजर गया। दोस्त हर जगह रुक रुक कर अपना वक्त गुजारता रहा और उसने बीज खरीदने के लिए कोई असली कोशिश नहीं की। इस दौरान वो हर जगह बत्तियां शत्तियां देखता रहा और अपनी जिंदगी के मजे लेता रहा। उसे ये फैसला करना बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो शहर के बाजार से बीज खरीदे और वापस गांव जाए। हर दफा जब उसने ये सोचा तो भाई उसने कुछ ना कुछ बहाना बना लिया और अपना वक्त गुजार दिया। आखिरकार जब दूसरी फसल बोने का वक्त आया तो चौधरी साहब को दोस्त की याद आई। चौधरी साहब ने अपने किसी नौकर को शहर भेजा ताकि वो उनके दोस्त को ढूंढ कर ले आए। चौधरी को लगा कि रिवायत से हटकर इस दफा फसल बोने में कोई देर नहीं होनी चाहिए थी। वो ज्यादा जल्दी में था और उसको लग रहा था कि अगर ये बीज फौरी लाकर ना बोया गया तो उसका मुनाफा कम हो जाएगा। चौधरी साहब के नौकर ने शहर में काफी मुश्किलात उठाई।
اور ان کے دوست کو تلاش کر کے اس کا پیغام پہنچایا۔ چودھری صاحب کا دوست جو شہر میں کافی ٹائم گزار چکا تھا اور سفر کے مزے لے رہا تھا، جب اس کو پیغام ملا تو اس نے بیج کی بوری اٹھائی اور واپس گاؤں کا سفر شروع کیا۔ دوست جب گاؤں پہنچا تو بارش کی وجہ سے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا، ہوا بھی تیز چل رہی تھی اور رستہ بہت سلپری ہو گیا تھا۔ وہ حویلی کے گیٹ سے اندر جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بوری سمیت وہیں پر دھڑم سے گر گیا۔ دوست کی مصیبت دیکھ کر چودھری نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن دوست نے کیچڑ میں لتپت ہاتھوں کو کھڑا کر کے کہا، بس رہنے دیں چودھری صاحب، آپ کی جلد بازیوں نے ہمیں مار ڈالا۔ چودھری نے سوچا کہ یہ اس کی لیزینیس کا نتیجہ تھا۔ اپنے دوست کی بات سن کر انہیں ایسا لگا کہ ان کی جلد بازی کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا۔ ہائے، جلد بازی شیطان کا کام ہوتی ہے، چودھری صاحب نے اپنے دل میں اپنے آپ سے کہا۔ اس سب کے بعد چودھری نے اپنی زندگی میں صبر اور سوچ سمجھ کر کام کرنے کی سوچی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ سبق دیا کہ کسی بھی کام میں ہنستے ہنستے اور جلد بازی کرنا خود اپنے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تو دوستوں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جلد بازی ہر کام کا سب سے بڑا دشمن ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے کاموں کو صبر اور سوچ سمجھ کر کرتے ہیں تو آپ ہر مشکل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है, इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है? किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है? इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समात कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू दिस सेगमेंट कॉल्ड इकोनॉमिक टर्म। दोस्तों, आज की जो इकोनॉमिक टर्म है उसे मैं कहती हूँ

बुलाए मेहमान। जब कभी आपकी सैलरी स्लिप आप देखते हैं और सोचते हैं कि ये पैसा किस इनविजिबल आदमी को जा रहा है, तो जवाब होता है भाई साहब टैक्स रेट। जी हाँ, टैक्स रेट वो मेहमान है जो हर महीने आते हैं, बिना चाय नाश्ते के जाते हैं, लेकिन रोकड़ा लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के सेगमेंट में बात करने वाली हूँ मैं इकोनॉमिक टर्म टैक्स रेट की। टैक्स रेट क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से कि आपकी हमारी लाइफ को जो है वो मुतासिर करता है, इस सारे सवालों के जवाब आज इस सेगमेंट में आपको मिलने वाले हैं। तो बेसिकली टैक्स रेट है क्या? टैक्स रेट असल में वो परसेंटेज होती है जो गवर्नमेंट आपकी इनकम, खर्चे या प्रॉपर्टी पर लगाती है ताकि मुल्क चल सके।

प्रॉपर्टी टैक्स आपके घर पर, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज के मुनाफे पर। अब इसको समझते हैं कि कैसे काम करता है। अगर टैक्स रेट 10% है और आपकी इनकम है रुपीज 100,000, तो आपका टैक्स रेट होगा रुपीज 10,000। समझे? यानी आप काम कर रहे हैं लेकिन सरकार भी आपके साथ मिलकर काम कर रही है, मतलब पैसे लेने का, टैक्स का। उसको भी तो आगे काम करना है गवर्नमेंट को, समझे भाई? ये बेसिकली बहुत जरूरी भी है। टैक्स रेट क्यों जरूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट को जो है वो मुल्क चलाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो टैक्स आपसे लेते हैं। वहीं पर बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज जो हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो, पुलिस वगैरह, तो इन सब के लिए भी पैसा चाहिए, तो ये भी टैक्स से ही निकलता है। वहीं कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैलेंस को मेंटेन भी करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। ये देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत अमीर अमीरी हो रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, तो एक गुड बैलेंस होना चाहिए। यानी रिच से बहुत ज्यादा टैक्स लेकर पुअर को रिलीफ देना, ये भी गवर्नमेंट करती है। यानी अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप रोड, हॉस्पिटल और भी जो फैसिलिटीज हैं उसका इस्तेमाल करने का हक भी नहीं रखते हैं। ऐसे ही बोल रही हूँ। वैसे टैक्स रेट बेसिकली किस तरह से काम करता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है रुपीज 20,000, ठीक है, मंथली 20,000 है और टैक्स रेट है 10%, तो आपका मंथली टैक्स बना रुपीज 2,000। समझ में आया? मतलब सरकार ने आपसे 2,000 ले लिए, 18 ही आपके हाथ लगे। वहीं अगर सेल्स टैक्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक शूज खरीदे, ठीक है, और वो शूज थे 500 रुपए के, वैट है 5%, तो आपका बिल बनेगा 525 रुपीज का। जो 25 रुपए जो आपको लग रहे हैं वो यही है, मेरा मतलब है सेल्स टैक्स है भाई, सरकार को देना पड़ता है, कम शॉपिंग करो। वही अगर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो एक कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट कमाया 1,000,000 का, ठीक है, और टैक्स रेट है 15%, तो वो गवर्नमेंट को कितना देगी? तो गवर्नमेंट को देंगे भाई 1,500,000। मतलब कंपनी की मेहनत सरकार की भी तो किसी काम की होनी चाहिए। वैसे जो टैक्स रेट है इसका असर आम आदमी की लाइफ पर डायरेक्टली पड़ता है। जी हाँ, आप सोचते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो 20,000 है बट आपको मिलती 18 ही है। वहीं पर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो 10-15 जो आपके रुपए एक्स्ट्रा कटते हैं, जो आपको पता चलता है कि वो शॉपिंग आपने जो भी मान लो 300 की 315 है, 320 आ रहे हैं, तो वो भी भाई साहब इसी का कमाल है। वहीं कई बार बिजनेस ओनर्स की लाइफ पर भी डायरेक्ट असर करता ही है। वैसे टैक्स रेट की अगर मैं बात करूँ तो टैक्स रेट जो है उसके कुछ टाइप्स भी हैं, मतलब तीन तरह के टैक्स रेट जो है वो काम करते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी ज्यादा कमाओ ज्यादा टैक्स दो। रिच लोगों पर ये रेट ज्यादा लगता है, हम लोग तो कहीं ज्यादा कमाते हैं। वहीं दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स, सब पर सेम रेट, चाहे इनकम कम हो या फिर ज्यादा। इसके बाद जो तीसरा है वो है फ्लैट टैक्स, एक ही रेट सब पर, सिंपल और फेयर। वैसे अगर आप देखें ग्लोबल कंपैरिजन करें तो भी आपको समझ में आएगा कि यूएस में जो सिस्टम है टैक्स का वो काफी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा है, उसके लिए बकायदा आपको अकाउंटेंट्स को हायर करना पड़ता है। वहीं अगर गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो कतर में तो टैक्स ऐसा सच है नहीं, लेकिन और जो कंट्रीज हैं वहां पर जो इनकम जो है लोगों की कम है, लेकिन और दूसरी तरह के वैट वगैरह तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन और दूसरी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लगाए जाते हैं। वहीं कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर टैक्स बहुत ज्यादा है बट वहां पर कुछ फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री कर दी गई हैं, जैसे एजुकेशन है या फिर हेल्थ केयर है, तो इस तरह से भी कुछ कंट्रीज ने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। वैसे अब इस टर्म को कंक्लूड करते वक्त मैं यही कहूंगी आपसे कि टैक्स रेट एक रियलिटी है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपकी इकोनॉमिक हार्ट बीट बढ़ ही जाती है जब आपको दिखता है कि ओह इतने तो पैसे कट गए। लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट का रास्ता हमारे हाथों से ही निकलता है जब हम टैक्स पे करते हैं। तो सोचिए कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं जो आप अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए अपने

0: कि जो लोग चोरी करने की सोचते हैं ना वो बिल्कुल भी ना करें, आराम से इत्मीनान से पूरा टैक्स जो है वो भरा करें जहाँ जितना देना है, और कभी कभी टैक्स अगर आपको ज्यादा लगे तो भाई एक कप चाय पी लिया कीजिए, फिर जो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने को मिलेंगे ना उससे आपको सुकून ये मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए ही तो दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसके बदले आपका जो स्ट्रेस है वो दूर हुआ। तो बस आज के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे उम्मीद है कि टैक्स रेट को मैं आपको समझाने में कामयाब रही हूँ। बेसिकली आपको मैं बता पाई हूँ कि टैक्स रेट जो है वो रेट या वो पैसा या वो टैक्स होता है या वो परसेंटेज होती है जो गवर्नमेंट आपकी इनकम, आपके खर्चे, आपकी प्रॉपर्टी पर लगाती है ताकि वो मुल्क को चला सके और सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नए सेगमेंट में एक और नए टर्म के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर, दिल से देसी।
3: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइंस का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
5: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी.
2: It's Kaz on the beat.

0: हाँ जी दोस्तों, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और आज है वेंसडे का दिन, अगस्त 12. तो ज़बरदस्ती मॉर्निंग का आगाज हो चुका है मेरे साथ और आपके साथ, और हम और आप मिलके 3 घंटे यहाँ पर अपनी मॉर्निंग को एकदम सेट करने वाले हैं. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छे नोट पे हुई होगी, और इंशाल्लाह जो पूरा दिन है वो भी बहुत ही क्लासिक एकदम एक्सेलेंट जाएगा, ये हमारी दुआ है. वैसे अभी ना जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि हमारे जो ना ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग में जिनकी शिफ्ट होती आ जाते हैं, स्पेशली अगर सिक्योरिटी की बात की जाए. तो आज जिस तरह से मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, हालांकि रोज़ ही ऐसा होता था, बट आज मुझे पर्टिकुलरली मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ में आया कि जितना स्माइल के साथ ऑल द वे अपने काउंटर से हट के एक बंदा आया, उसने मुझे सलाम किया, उसने मुझे ग्रीट किया, मुझे शायद सलाम नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो ये दिखा रहा है कि वो कितना अच्छा शख्स है. तो पता है होता क्या है, कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को शायद एक्नॉलेज ही नहीं करते, या हम छोटी छोटी चीज़ों पे उस तरह से गौर नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में छोटी छोटी चीज़ें, किसी को सलाम कर देना, किसी के सामने थोड़ा सा हम्बल होके बो कर लेना, या किसी को मुस्कुरा के देखना, ये छोटी छोटी आदतें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाती हैं. एंड आई एम श्योर जिसके साथ आप ऐसा बिहेव कर रहे हो उनकी लाइफ में भी एक बहुत ही अच्छा चेंज ना सही, उनकी लाइफ को एक बहुत अच्छी शुरुआत मिल जाती है. तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर हमें जो है एक तो तवज्जो देनी चाहिए, दूसरा उन चीज़ों को एक्नॉलेज करना चाहिए, और तीसरा उन चीज़ों को इन्जॉय करना चाहिए. हम बड़े बड़े मोमेंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं, ऐसे भाग रहे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमें कितनी खुशी दे जाती हैं, है ना. तो बस आज एक छोटी सी चीज़ जो आप कर सकते हैं किसी के साथ, द मोमेंट यू एंटर योर ऑफिस, या फिर ऑफिस से जब घर आए तो, या फिर इन बिटवीन कुछ करने के लिए सोच सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए. कोई ऐसा शख्स जो बहुत ही ज़्यादा रूड है एंड यू नो उसका आपके साथ उस तरह से अच्छा वाला इंटरेक्शन नहीं होता, या वो आपको ये कहें कि उस तरह से स्माइल देता नहीं है, या आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, तो आज आप इनिशिएट कीजिए, जाइए एक अच्छा सा स्माइल के साथ उसको ग्रीट कीजिए, एंड मेक श्योर कि वो जो है वो आपको करे ना करे, बट आप उसे एटलीस्ट कम से कम ये वाला प्रोसेस है ना, एटलीस्ट 5 दिन तक जारी रखेंगे. प्लीज़ मेक श्योर कि 5 दिन तक आप इस एक्टिविटी को जारी रखेंगे उस शख्स के साथ जो बिल्कुल भी आपसे अच्छे से बात नहीं करता. हो सकता है ऑफिस में हो सकता है कोई आपका और कोई एक्स वाई जी हो सकता है, फ्रेंड्स तो मैं नहीं कहूँगी, फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे नहीं होंगे, या किसी से हो गई आपकी इस तरह की कोई अनबन, तो प्लीज़ डू दैट और देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा. ये दूसरे को अच्छा लगे ना लगे, खुद को बहुत अच्छा लगता है. तो चलो भाई, आज की मॉर्निंग की शुरुआत तो बहुत अच्छे नोट पे हो चुकी है. फिलहाल यहाँ पे एक मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी, जब वापस आएंगे तो और भी अच्छी और दिलचस्प बातें आपके साथ शेयर करेंगे. बट बिफोर दैट आप हमारे नंबर्स जो है वो लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर इज 666-222-107, वहीं पर कॉल करने के लिए नंबर है 4434377.
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: Alright guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे welcome, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं Summer Mornings. मैं हूँ नाजिया आपके साथ. और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की. तो आज मौसम कैसा रहने वाला है? वैसे तो ज़्यादातर धूप ही और धूप रहेगी, गर्मी रहेगी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस, वहीं मिनिमम टेम्परेचर इज 34 डिग्री सेल्सियस. अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो इट्स 71%, जो कि ठीक ठाक ज़्यादा ही है. वहीं पर यूवी इंडेक्स है 8, वो भी थोड़ा ज़्यादा ही है. अच्छा, इसके साथ सनराइज 5:05 पे हुआ और सनसेट है 6:11 पे. हल्की हवा चलने के इम्कान है, लेकिन हाँ, बारिश का कोई चांस ऐसा है नहीं. तो बस आप अगर बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है आपको, एज यू नो दैट कि आपको सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है. अपने वाटर इनटेक्स का जो है गुड काउंट रखिए. अगर कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं तो कोशिश कीजिए कि दोपहर के जो आवर्स हैं उनमें आप अवॉइड ही करें. वहीं पर बच्चों को और बुज़ुर्गों का भी आपको ख़ास ख्याल रखना है. तो ये था मौसम का हालचाल. और अब आज का जो दिन है, आई मीन टू से 12th of August, उसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेंसेस हैं उस तरफ भी आ जाते हैं. और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है. जी हाँ, ये दिन जो है वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यंग जो लोग हैं उनके टैलेंट, उनके अचीवमेंट्स और सोसाइटी में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे ये सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है. सो कहीं ना कहीं आज का दिन हमें और आपको ये याद दिलाता है कि जो यूथ है या जो नौजवान है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि वो आज की ताकत भी है. तो इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, सोशल चेंज हो, इन सब में यूथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो बस आज का दिन इन्हीं के नाम, आई मीन टू से आज इंटरनेशनल यूथ डे. और हम उन तमाम यूथ को, नौजवानों को सल्यूट करते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी पॉजिटिव सोच से दुनिया को बेहतर बना रहे हैं. एंड कई बार हम उन्हें जेन ज़ी कहते हैं. तो बिल्कुल, किस तरह से उनकी सोच है और किस तरह की अच्छी सोच जो है वो एक अच्छी तब्दीली लेकर आ रही है. सो यस, एंड इसके बाद है आज मिडल चाइल्ड डे. अच्छा, आपका शुमार कहाँ होता है? आप फर्स्ट चाइल्ड है, यू द लास्ट चाइल्ड, और यू द मिडल चाइल्ड? फिलहाल आज का दिन ये भी है, ये भी दिन मनाया जाता है. ये बहुत ही हल्का फुल्का सा दिन है और दिलचस्प सा भी है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हर घर में बच्चों के लिए यू नो बड़े हैं तो उसके अलग एडवांटेजेस होते हैं कि भाई तुम घर के बड़े हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है. लेकिन जो बेचारा बीच में होता है ना, जो मिडल चाइल्ड, वो सबसे ज़्यादा ऐसे कहो कि उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती. आई डोंट नो, जस्ट रेक्टिफाई मी अगर ऐसा नहीं है, ऐसा है कि नहीं है. छोटे को तो बहुत पैम्पर किया जाता है, बड़े पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटेंशन रहता है. वहीं जो बीच में होते हैं ना, जो बच्चे, उनके पास जो है वो सिर्फ उनको भाई बहन दौड़ाते रहते हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, अरे तुम ये करके आओ, तुम वो करके आओ. तो इस तरह से आज उनके लिए स्पेशल डे है, उनको डेडिकेट किया जाता है जो मिडल चाइल्ड हैं. मतलब वो किस तरह से अपनी फैमिली का, अपने भाई बहनों का ख्याल रखते हैं, तो आज उनके नाम है ये दिन. तो ये भी काफ़ी थॉटफुल सा डे लगा, थोड़ा दिलचस्प भी है. तो बस आज यही दो ख़ास दिन है और बाकी तो कुछ अभी मतलब कोई ऐसा जो बहुत ख़ास दिन है नहीं. तो बस ये दो चीज़ें जो थी मैंने कहा चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ. और इसके साथ एक क्विक सी इम्पॉर्टेंट अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. तो यहाँ पर ये जो अपडेट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से. तो कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बेसिकली अवाम को डीप फेक्स और एआई जनरेटेड फेक कंटेंट से होशियार रहने की वार्निंग दी है. आपको बताएं कि एमओआई का कहना है कि आजकल ना एआई की मदद से ऐसे फेक वीडियोस, ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग्स और ऐसे वीडियो कॉल्स बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं. और ये टेक्नोलॉजी आप जान ही रहे हैं कितनी तेज़ी से जो है इवॉल्व कर रही है. तो बस इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया पर या फिर ऑनलाइन कोई वीडियो है, ऑडियो है या मैसेज है देख रहे हैं, तो फौरन से उस पर आपको यकीन नहीं करना है और ना ही उसे शेयर कीजिए. यह एमओआई का कहना है कि आप ऐसे ही कोई वीडियो, कोई थोड़े जहाँ कोई आपको लगता है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो कोशिश करें कि आप उसको ऐसे ही शेयर ना करें अनलेस एंड अनटिल आप उसे पूरी तरह से वेरीफाई करें. जब आप वेरीफाई कर लें और आपको लगे कि ऑथेंटिक है, तभी आप उसको आगे शेयर कीजिए. कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो ऑनलाइन दिखे या सुनाई दे ज़रूरी नहीं है कि वो असल हो. वेरीफाई कीजिए फिर ट्रस्ट कीजिए. ठीक है, तो चलिए बस ये कुछ अपडेट्स और कुछ मौसम का हाल, कुछ ऑब्जर्वेंसेस. अब आऊँगी कुछ और छोटी और दिलचस्प बातें आपके साथ शेयर करूँगी एंड ऑफ कोर्स आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर भी बात होगी. बट बिफोर दैट आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ जुड़ना है. नंबर है 666-22107 या फिर आप मुझे कॉल कीजिए. नंबर है 443-443-77.
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
2: اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
3: دوستوں, گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے, اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کوئی بھی سامان, خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز, پلاسٹک, کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں. روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے. اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے, کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے. مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں. سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل, وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوئشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوئشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگوئشر ایکسیسیبل ہو, اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو. یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں, آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے, کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

0: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबान।

0: हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: दोस्तों बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना न सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क झटका या यूजुअल स्मेल तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेज की हिफाजत आपके हाथों में है इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश।

0: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।
0: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी

0: सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
4: माहिरीन की राय पर।
3: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
4: हेल्थ गाइड,
3: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
4: इलाज और एहतियात तक।
3: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
4: दिल से देसी।
3: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
5: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीद। सुनिए हदीद टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट,
6: हदीद टू हैबिट।
5: दिल से सुनिए जिंदगी।

Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ। 6:33 ऑन द क्लॉक एंड यस, कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पर कुछ लोगों ने भेजे हैं, तो चलिए उनके साथ जुड़ जाते हैं। और सबसे प्यारा और सबसे अच्छा मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिला है वो है इनका नाम है मीत, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग नाजिया मैम एंड टू ऑल द वंडरफुल लिसनर्स। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई मॉर्निंग जिम सेशन, नाइस, एंड आई वॉन्ट टू पास दिस एनर्जी ऑन टू यू। आई हर्ड योर यस्टरडेज प्रोग्राम एंड यू मैंशन दैट जॉइनिंग द जिम फील्स डिफिकल्ट, येस, एंड यू वंडर्ड इफ यू कुड रियली डू। Yeah, let me remind you that discipline doesn't come all at once, it grows step by step. And you already show discipline every single day by being consistent on radio, bringing positivity to so many lives. So that same strength is within you for fitness too. थैंक यू जी। आगे कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, इवन 10 मिनट्स, वन मशीन और अ सिंपल वॉक, लर्न ग्रेजुअली, एक्सप्लोर एंड यू कैन इवन फॉलो YouTube workout videos for the guidance. Very well said. And you can do it. Oh, thank you, thank you. I just hope. The gym isn't about perfection, it's about progress. And remember, you're not alone. We all are cheering for you, just as you cheer for us every single morning. How sweet. This is such a lovely message. I just can't thank you enough for this. Bahut hi pyara message hai. Bahut bahut shukriya. मैं मुझे नहीं पता मैं मोटिवेट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, बट आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड आई विल जस्ट गेट बैक एंड आई विल लेट यू नो कि मैंने स्टार्ट किया कि नहीं स्टार्ट किया। बट हाँ, एक चीज़ कहूँगी, मैंने ये तो शुरू किया है कि मैं वॉक कर रही हूँ। अब लेट्स सी, वॉक से मैं जिम तक एंट्री ले पाती हूँ या नहीं ले पाती हूँ, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट हाँ, कुछ तो, जैसे आपने कहा ना, कुछ छोटा तो स्टार्ट करना ही चाहिए, वो मैंने कर दिया है। एंड ऑफकोर्स आप ही लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, सो लेट्स सी मैं कितनी कंसिस्टेंट रहती हूँ, ये इंपॉर्टेंट, कितनी कमिटेड रहती हूँ, ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर तौफीक जी का है मैसेज, सलाम कहते हैं अल वक्रा से हमें सुनते हुए, वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, यहाँ अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारी टीम को, सभी को, कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड अ फैंटास्टिक डे अहेड, वी विश यू ऑल्सो फैंटास्टिक डे अहेड एंड इट्स हैप्पी लाइब्रेरियंस डे। थैंक यू सो मच यूसुफ शमीम जी कि आप कुछ एक अलग ज़रूर लेकर आते हैं फॉर मी एंड फॉर एवरीवन। तो आज ये दिन भी है, वाओ, तब तो फिर हम सबको आज ये अहद करना चाहिए, हमें बुक पढ़ना चाहिए। ओके, इसके साथ है कामरान जी का मैसेज, गुड मॉर्निंग कहते हैं, अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलखोर से सुन रहे हैं, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। एंड ER इनका नाम में है, एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपकी मैम, बहुत सारी तारीफ है मेरी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ है आगे गुड मॉर्निंग का मैसेज मोहम्मद आलम जी का, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। एंड गुड मॉर्निंग कहते हैं मुझे कौन, इनका नाम भी हम चेक कर लेते हैं, राशिद जी हमारे साथ जुड़ गए, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको। एंड थैंक यू हुसैन जी हमारे साथ जुड़ते हुए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए। तो चलिए, ये प्यारे प्यारे मैसेजेस तो हमें यहाँ पर, सलाम कहते हैं नाजिया मैम, एंड इनका भी मैसेज मैं ले लेती हूँ, सरफराज आलम जी हैं, ओके थैंक यू, आपको सुन रहे हैं शाहानिया से, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आप सबकी मॉर्निंग जो है वो अच्छे नोट पे शुरू हुई होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, और ये दिन आपका जो है बेहतर से बेहतरीन जाएगा, इसके लिए भी ढेरों दुआएं आप सबको। तो चलिए अब आ जाते हैं आज के अपने मुद्दे की तरफ। तो आज का जो मुद्दा है ना, वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ कल से, कल से इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि अच्छा, सॉरी सरफराज जी, शाहानिया नहीं, सनैया से हमें सुन रहे हैं, आई एम सो सॉरी, अब मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। ओके, तो आज का जो मेरा मुद्दा है ना, उसकी शुरुआत जैसे मैंने कहा ना, कल से हुई। कल जब मैं चाय पी रही थी तो मेरा जो डिस्कशन हो रहा था, तो उस डिस्कशन में एक सवाल आया, और शायद उस सवाल पे आके हम दोनों रुक गए, हम थोड़े से टकराए भी, फिर हमें समझ में नहीं आया कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। बात शायद ऐसी है, मैं कह सकती हूँ, जिसका ताल्लुक हम सब की ज़िंदगी से है, और कहीं ना कहीं हम सब इस चीज़ के साथ आसानी से रिलेट करते हैं। देखिए, हमारी ज़िंदगी है ना, हमारी ज़िंदगी में कितनी ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बड़े जोश के साथ, बड़े एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं। जैसे नया साल आया, कोई रेजोल्यूशन हमने बनाया, उसकी हमने शुरुआत कर दी, ठीक है,
लेकिन छोड़ दिया बीच में, और क्या, और क्या है। वैसे मैंने सोचा कि मैं जो हूँ अब डेफिनेटली अरबिक सीखूँगी, लेकिन शुरुआत की, कुछ क्लासेस भी किए, फिर वो बीच में रह गया। या हो सकता है कि किसी और ने सोचा हो कि कोई नया ऑनलाइन कोर्स कर लेता हूँ, या फिर कोई वेट लॉस का प्लान बनाना, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर कोई किताब, यू नो, रीडिंग हैबिट जो है उसको बेहतर करना। तो ये सारे ऐसे प्लान्स होते हैं जिनकी शुरुआत तो हम बड़े जोश से करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि ये चीज़ें हमारे साथ या तो बहुत लॉन्ग टर्म चल नहीं पाती या छूट जाती हैं। शुरू के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बहुत अच्छे लगते हैं, हमारा मोटिवेशन भी बड़ा हाई होता है, एनर्जी भी बड़ी हाई होती है, और हमें लगता है कि हम इसे कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे धीरे रूटीन हमारा, हमारी बिजी लाइफ, हमारे लाइफ के चैलेंजेस हमारे उस मोटिवेशन को थोड़ा थोड़ा कम करने लगते हैं, और फिर एक दिन हम खुद ही से पूछ लेते हैं, क्या मुझे इसको जारी रखना चाहिए या इसे छोड़ देने में ज़्यादा भलाई है। और शायद हमारे पास जवाब भी खुद ब खुद मिल जाता है हमें कि हाँ, इसे छोड़ देने में भलाई है। तो बस आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी मैं पूछूं कि आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है वर्ड कमिटमेंट, कि मैं कमिटेड हूँ जो चीज़ मैंने शुरू की है उसे फिनिश करूँ, या जो मैंने कमिटमेंट की तो फिर मैं किसी और की भी नहीं सुनूँ, अपनी भी नहीं सुनूँ, किसी की भी नहीं सुनूँ। या फिर आपकी ज़िंदगी में आराम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी लाइफ की फ्रीडम, इस तरह से ले लेते हैं। चलिए दो वर्ड्स आपके लिए मैं पिक कर लेती हूँ जिसमें आपको बताना आसान होगा आपके लिए लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। इज़ इट लाइक अ कमिटमेंट या फिर आपकी अपनी खुद की फ्रीडम, कि मुझे जो करना है मैं करूँगा, जब नहीं करना है नहीं करूँगा, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये वाली अप्रोच है, या ये वाली क्वाइट कमिटेड, अब मैंने शुरू कर लिया, नहीं मुझे तो करना ही करना है, अब मैं वापस नहीं आ सकता, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता, अब मैं पीछे हट नहीं सकता, क्या इस लेवल का कमिटमेंट है। और अगर किसी चीज़ में आपने इस लेवल का कमिटमेंट दिखाया है तो वो वाला किस्सा, वो इंसिडेंट डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है, क्या आपके लिए कमिटमेंट इम्पॉर्टेंस रखता है, या फिर आपके लिए आपकी फ्रीडम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कामयाबी के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, इज़ इट अ कमिटमेंट या फिर फ्रीडम, आज का बहुत ही दिलचस्प सा सवाल है। मैंने तो अपनी छोटी सी स्टोरी से इसकी शुरुआत की कि छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में ही हमारा कमिटमेंट जो है वो नज़र आता है। बड़ी चीज़ें तो शायद बहुत बड़ी होती हैं, उसमें तो हम, वी आर बाउंड टू बी कमिटेड विद नो चॉइसेस लेफ्ट फॉर अस, बट देन अगर इंसान को पहचानना है, उसको एक्चुअल में जानना है, तो वो जो छोटे छोटे कमिटमेंट्स हैं ना उसकी लाइफ की

0: वो बताते हैं कि ये शख्स है कैसा. वो कमिटमेंट आपके डेडिकेशन को दिखाता है, वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं आपकी सिंसियरिटी को दिखाता है, वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं आपको आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं ये दिखाता है. तो आज मुझे ज़रूर बताइए कि आप खुद को ऑनेस्टली कहाँ रखना चाहेंगे, कमिटमेंट या फिर फ्रीडम. आपके मुताबिक ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत किसकी है और क्यों है. Okay, so this is a very interesting question. It's about commitment and freedom. आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत किसकी है और क्यों है, आप मुझे बताइए. डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 443-443-77, या फिर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, देन द नंबर इज 666-22-107. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज ऑलरेडी आ चुका है और इनका नाम भी हम देख लेते हैं, शाहिद. ओके, गुड मॉर्निंग कहते हैं, सभी लिसनर्स को गुड मॉर्निंग कहा है. एंड कहते हैं, मैडम मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में जो है वो कमिटमेंट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता. मैं ड्राइविंग करने से बहुत ज़्यादा डरता था या घबराता था, एंड मैंने तय कर लिया कि मुझे करना ही है. और मैं बताऊं कि कई बार मैं फेल भी हुआ, बट डिस्पाइट ऑफ दैट इन्होंने जो है अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ा, एंड दैट्स हाउ आज इनके पास कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है. सो वाओ, दैट्स रियली नाइस, और बहुत ही अच्छा आपने बताया. तो लाइफ में, आपकी लाइफ में कमिटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे आप खुद को परेशानी में भी डालें, चाहे अपने आप को डे बाई डे चैलेंज, अगर चैलेंज मिल रहे हैं तो उन चैलेंजेस का भी आप सामना कर रहे हैं, बट दे यू आर लाइक कमिटेड. आपने सोच लिया तो ठान लिया तो ठान ही लिया. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी लाइफ में नहीं रखी ना कि नहीं अब नहीं हो रहा तो छोड़ो हटाओ. कौन इतना अपने ऊपर लोड ले, प्रेशर ले. यूजुअली ऐसे ही होता है, लोग जो चीज़ें खुद की ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं ना, वहाँ पर बड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं और छोड़ भी देते हैं कि अरे छोड़ो, अभी हम इतना क्यों थकें, क्यों परेशान हों. इट गोज़ विथ मी. जैसे मैंने कहा कि मैंने सोचा था मैं अरबिक जो हूँ वो लैंग्वेज सीख लूँगी. मैंने क्लासेस भी ज्वाइन किए, कुछ महीने मैंने थोड़ी सिंसियरिटी दिखाई, आई वॉज लाइक रियली कमिटेड. लेकिन क्या हुआ, फिर मुझे लगा नहीं, मेरा जो है वो रेस्ट टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है या मेरे पे थोड़ा सा ज़्यादा लोड बढ़ रहा है, एंड दैट्स हाउ आई लेफ्ट. तो वो काम जो मैंने शुरू किया वहीं छोड़ दिया. तो ये मेरा कमिटमेंट नहीं था, इट्स समवेयर ऑर द अदर कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को यू नो फ्री रखना है. सो मैं थोड़ा सा उस तरफ चली गई. क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि कोई काम आपने स्टार्ट किया बहुत जोश के साथ, एंड इट्स लाइक क्वाइट मैंडेटरी ऑल्सो फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, बट देन यू एंड अप बाय यू नो डूइंग और क्विटिंग फ्रॉम दैट. बाहर आप आ गए, आप क्विट कर गए, आपने नहीं उसे कम्प्लीट किया, दे यू हैव रिग्रेट्स ऑल्सो. आपको अफसोस भी हुआ कि हाँ ये काम मैं कर लेता तो आज कितना अच्छा होता. जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने ये जो कोर्स 2-2.5 साल पहले ज्वाइन किया था, अगर आज मैं सीख चुकी होती तो कितनी अच्छी बात होती. अब नहीं, उसको क्विट कर दिया, छोड़ दिया बीच में. तो ये तो मेरे साथ हुआ. आपके साथ क्या हुआ मुझे बताइएगा 666-22-107 पर, या फिर आप मुझे कॉल कीजिएगा 443-443-77 पर.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ.
0: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है. आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें. तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
2: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है. हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं. याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है. फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से

0: राइट गाइस, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ 6:48 ऑन द क्लॉक. और आज का हमारा जो सवाल है बहुत ही दिलचस्प, बड़ा गहरा सवाल है. आज हम आपसे पूछ ही रहे हैं कि कमिटमेंट या फिर फ्रीडम, जिंदगी में ज़्यादा अहमियत किसकी है और क्यों है? आपकी लाइफ में इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा अहमियत किसकी है और क्यों है? देखिए, अगर पहली नज़र में देखा जाए दोनों वर्ड्स को, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, मतलब बहुत ही अलग हैं. कमिटमेंट का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी चीज़ के साथ जो है वो कमिटेड रहना, वफादारी करना, जिम्मेदारी हो और लगातार आप उसके साथ जुड़े रहें. जबकि फ्रीडम की मैं बात करूं तो फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से फैसले करें, अपने लिए रास्ते खुद जो है वो पिक करें और अपनी जिंदगी को अपने सोच के मुताबिक जिएं, है ना? ये आपकी फ्रीडम है. लेकिन असल बात ये है कि जिंदगी में कामयाबी और खुशी अक्सर इन दोनों के दरमियान जो बैलेंस है उसे ही ढूंढने का नाम है. हम हमेशा इन दोनों के बीच एक जो बैलेंस हमें चाहिए उसे लाइफ लॉन्ग ढूंढते रहते हैं और कई बार कामयाब हो जाते हैं. जो लोग ढूंढ पाते हैं, समझ पाते हैं, वो तो कामयाब हो जाते हैं, और जो लोग नहीं ढूंढ पाते वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं. उन्हें थोड़ा टाइम तो लगता ही लगता है कि मैं इधर जाऊँ कि मैं उधर जाऊँ, मैं किधर जाऊँ. मैं चलिए फ़िलहाल आपके मैसेजेस की तरफ जाती हूँ. यहाँ पर एक मैसेज है और बहुत ही अच्छा खासा लंबा चौड़ा मोहम्मद बशारत जी का मैसेज है. कमिटमेंट और फ्रीडम दोनों का अपना रोल है. कमिटमेंट किसी इंसान रिश्ते जिम्मेदारी के साथ वफादारी एंड कंसिस्टेंसी, ट्रू. जबकि फ्रीडम है आपकी मर्जी है, आपकी स्पेस है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी आज़ादी है. हेल्दी रिलेशनशिप में कमिटमेंट प्लस फ्रीडम दोनों चाहिए. नाइस. कमिटमेंट के बगैर रिलेशनशिप अनस्टेबल हो सकता है और फ्रीडम के बगैर इंसान घुटन महसूस कर सकता है. यानी कमिटमेंट हो लेकिन अननेसेसरी कंट्रोल ना हो, फ्रीडम हो लेकिन कमिटमेंट और रिस्पेक्ट के अंदर. क्या बात है, आपने तो बहुत ही सॉलिड तरीके से इतना खूबसूरत ज़बरदस्त सा मैसेज दिया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. नाइस, इतना प्यारा मैसेज आ गया कि मुझे फटाक से यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ा. अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे शहजादा जी हैं और कहते हैं हमें कॉल कर लीजिए. अभी हम आपको कॉल करते हैं, ज़रूर करते हैं. फ्रीडम ओनली एंड नो कमिटमेंट, टेंशन नहीं लेने का. यहाँ पे मेरा नाम नाजिया है, ठीक है? आपने शायद नाम यहाँ पे गलत लिखा है, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपना नाम क्लियर कर दूँ आपको. मेरा नाम नाजिया है, ठीक है? ओके, सो यहाँ बात हो रही है कमिटमेंट या फिर फ्रीडम की. आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों है? एक कॉलर मेरे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हमारे साथ हैं जावेद बाजवा जी. अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: माशाल्लाह, आपने तो पूरा नाम ले लिया
0: आज. मैंने पूरा नाम लिया. आपने कहा ना कि और भी है जावेद नाम.

0: आप तो नहीं कह सकते, आप हर टॉपिक में कितना अच्छा तो बोलते हैं, और वो भी सबसे पहले आकर बोलना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि बाद में तो चलिए थोड़ा सा टॉपिक क्लियर होने लगता है, लोग अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करना और बोल पाना, उसमें भी इतना अच्छा बोल पाना, हैट्स ऑफ। आसान नहीं है
1: बेसिकली नाज़िया जी, मैं ज्यादा मतलब बोलने का, मैं कोई स्पीकर वगैरह तो हूँ नहीं, जिस तरह माशाल्लाह शहजादा सलीम, रईस भाई, नफीस साहब और अज्जू और गावा जी, माशाल्लाह ये जो बोलते हैं ना, आप यकीन करें मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि बड़ा शॉर्ट दो तीन लाइनों में ही अपना मैसेज दे दूँ, बस इतना ही दे।
0: लेकिन आपका मैसेज बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत इम्पैक्टफुल होता है, तो ये तो है।
1: तो बात यह है कि मेरी राय में, क्योंकि और भी कॉलर इंतजार कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो मेरी राय के मुताबिक एक कमिटमेंट ज्यादा अहम या फ्रीडम, ठीक है, मेरी राय के मुताबिक कमिटमेंट ज्यादा अहम है, लेकिन फ्रीडम के बगैर कमिटमेंट एक बोझ बन जाती है।
0: ये बात तो आपने बहुत पते की गई।
1: फ्रीडम, अगर आप अगर आप फ्रीडम का इंतखाब करते हैं ना, तो वो आपको आजादी राय देती है, जिंदगी में आजादी की राय देती है। लेकिन अगर आप कमिटमेंट करते हैं, आप इस इंतखाब पर कायम रहने की ताकत रखते हैं, कमिटमेंट इसको कहते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जो कमिटमेंट है उसमें भी आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। नाइस।
1: दूसरों को सुनना चाहता हूँ, लेकिन लास्ट बात ये मैं करूंगा, लेकिन सिर्फ अगर फ्रीडम हो नाज़िया जी, सिर्फ अगर फ्रीडम हो तो इंसान हर वक्त रास्ता बदल सकता है। सिर्फ कमिटमेंट हो तो कभी कभी इंसान बहुत बड़े गलत फैसले और बड़ी बुरी चीजों पर फंसता भी हो और बुरी चीजों के साथ चिमट भी जाता है कमिटमेंट के बिना पर।
0: अच्छा, ये बात भी है, सही।
1: डेफिनेटली देखिए, आपने अगर किसी के साथ कमिटमेंट कर दी, उसके बाद में क्या नुकसानात या क्या असरात होंगे, तो उसको वो तो बाद में निकलती है, लेकिन आजादी राय जिसको हम फ्रीडम कहते हैं, वो आपको इस चीज की पावर देती है कि पहले आप, लेकिन कमिटमेंट भी बहुत अहम है, क्योंकि जब आप किसी इंसान को अपनी जुबान दे देते हैं, अपने लफ्जों को, मैं ऐसे दुनिया में, मैंने जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जो कहते थे कि बेटा जिंदगी में किसी के लफ्जों को जमीन पे लगने मत देना, जिस पे आपने हामी भरी है उसके लफ्जों को जमीन पे गिरने मत देना। ये बहुत बड़ी बड़ी गहरी बात है, ये क्या उन्होंने कहा था,
0: बहुत ही अच्छी,
1: इसको संभाल के रखिएगा। तो बस इतना ही।
0: अच्छा जावेद जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद से कोई कमिटमेंट की अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कि मेरी थोड़ी सी, मैं ये स्किल्स सीख लूं, मेरे लिए बेहतर होगा, और फिर आप उसे कर नहीं पाए, वो टूट गई कमिटमेंट आपके?
1: अच्छा, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जिस तरह माशाल्लाह मुझे लगता है कि आप जिम में एडमिशन नहीं बल्कि अपना जिम खोलेंगे अब। याद रखिएगा कि जो बंदा नहीं पहुंच पाता ना, जिनको हम कहते हैं ना कि यार ये बंदा थोड़ा सुस्त है, काहिल है, दुनिया में नाम पैदा करता है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको, और आपको बहुत से एग्जांपल्स मिलेंगे दुनिया में जिनको घर वाले नकारा समझते थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम कमाया दुनिया में।
0: हाँ ये तो है, जितने बड़े इन्वेंशन हुए हैं वो यहीं से हुए हैं, वो पढ़े रहते थे, एक चीज पे लगे रहते थे, यू नो।
1: तो रही बात किसी भी चीज को जोश से शुरू करने के लिए, उसके अंदर पहले आपकी एक विल पावर होनी चाहिए, आपकी अपनी जात के साथ एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं इसको, लेकिन हर बंदे को पता है कि मेरे लिमिटेशंस क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ।
0: सही, बिल्कुल।
1: हाँ, तो रही बात माशाल्लाह आपका वो अरबिक वाला, हालांकि मैं अरबिक स्कूल में नहीं पढ़ा बिल्कुल, लेकिन
0: अच्छा।
1: मैं माहौल से, लोगों से, मतलब लोगों में बैठ के मैंने गलत लफ्ज जो बोलता था मैं पूछता था, वो मेरा आज एक्सेंट ऐसा है अरबिक का कि मैं अगर फोन पे या नॉर्मल अच्छा। बात करूँ तो कोई नहीं पहचान सकता कि ये यहाँ का है या मतलब ये एशियन है, मेरा लग जाता है।
0: अरे वाह, नाइस। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था ये भी टैलेंट है आप में।
1: हाँ, यानी कि मैं अरबिक में, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, अतकलम अरबी बिततमिया फिल्मिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।

0: क्या बात है भाई.
1: उसके साथ जो दूसरी चीज मैंने सीखी थी, जब मतलब स्कूल के जमाने में डिबेट करते थे, तकारीर करते थे, तो फिर वो हम बेसिकली, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं माशाल्लाह, जैसे आप तो हाई फाई इंग्लिश बोलती है ना, पता लगता है कि मतलब माशाल्लाह, कहने की जरूरत नहीं है.
0: ऐसा कुछ उस,
1: नहीं, बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ है. तो उसको मैंने लेने के लिए फिर मैंने टीवी और रेडियो को सुनना शुरू किया, तो वो इंग्लिश का एक्सेंट मैंने वो लिया, उसको मैंने अडॉप्ट किया. ये भी एक मेहनत है,
0: बहुत मेहनत,
1: ये मेहनत है जिसको मैंने हासिल किया.
0: बहुत मेहनत है, बहुत.
1: तो नॉर्मल मतलब अगर ऑन एयर मैं क्या करूं, लेकिन अगर मतलब कोई मुझसे पूछता है तो व्हाट अबाउट दिस मॉर्निंग, आई एम 100% क्या है दिस मॉर्निंग, मैं मतलब इस तरीके से बात करता हूं.
0: ओ वाह, आपका तो एक्सेंट बहुत ही कमाल का है. लेकिन मुझे ये बड़ा हैरत हुई जान के, आपने कहा कि मैंने कोई क्लास नहीं लिया अरबिक के, बट मैंने इधर उधर पूछ के सुन के सीखी, ये कह रहे हैं आप?
1: मैं एग्जैक्टली मैं आज तक अरबिक स्कूल में ना मैंने अरबिक मतलब जो कुरान पाक हम पढ़ते हैं, इस्लामियात, बाकी मैंने आज तक अरबिक स्कूल में मैं नहीं गया. मैं
0: कमाल है फिर तो, वाकई आप बहुत टैलेंटेड है कि आप पूछ के इतना अच्छा सीख गए. मैं तो इतने टाइम से सबके साथ काम कर रही हूं, मैं नहीं सीख पाई हूं.
1: उसके साथ अगर मैं फ्रेंच में बात करता हूं तो आपको वही एक्सेंट मिलेगा, अगर मैं फिलिपिनो की खड़ी बात करता हूं तो आपको वही एक्सेंट मिलेगा. एंड यू कैन डू इट, ये आपके अख्तियार में है.
0: कितनी आपको ज़बानें आती हैं, कितनी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं?
1: मतलब अपनी ये उर्दू को छोड़ के और जो पंजाबी जो हमारी जुबान है उसको छोड़ के तो मैं तकरीबन 6 जुबानें बोल लेता हूं. मैं
0: तो ये दो एक्चुअली 8 है, आपको आती हैं 8 जुबानें?
1: दो तो अपनी होगी ना, वो तो घर की है ना, वो तो दाल हुई ना.
0: अरे फिर भी उसे भी तो काउंट तो करेंगे हम, तो इस तरह से बहुत ज़बानें हमको आती हैं. अरे वाह माशाल्लाह, ये तो हमें पता ही नहीं था आपका, ये तो बड़ा ही एक्सेप्शनल टैलेंट निकला, ये तो हिडन टैलेंट था जो आज खुला. Nice.
1: कुछ नहीं होता, बस कुछ भी नहीं है वो. आपने, मैंने कहा ना जब आपका म्यूजिक चलता है ना दिल से देसी वाला, तो उसके पीछे वो तूफान जो हमें हिला के रखता है वो बड़ा हमें कवर करना पड़ता है. वो आज वो राज आपने गुलवा ही लिया मुझसे, वरना मैं ना देता.
0: नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग बस, ये तो जनरली है, आपस में बात करते हैं अपनी लाइफ में जो चीजें हुई हैं उन्हीं को मुद्दा बना के एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे को. हमारी कोशिश रहती है, हम सब
1: कॉलर इंतजार करते होंगे. मेरी तरफ से सबको बहुत सलाम वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच. मेरी पहली कॉल लगे अल्हम्दुलिल्लाह,
0: और मैं आपसे बहुत इंप्रेस हुई हूँ. और आज जब मुझे पता चला आपको इतनी लैंग्वेजेस आती है, इतना गुड कमांड है आपका लैंग्वेजेस पे, वैसे ही मैं आपसे काफी इंप्रेस थी आपके अच्छे नेचर को देखकर, बट नाउ आई एम लाइक हाईली इंप्रेस्ड. माशाल्लाह माशाल्लाह, तो प्लीज इजाफा करते रहिए, अब 8 लैंग्वेजेस आती हैं, जस्ट गो फॉर 10 इंशाल्लाह. एक घंटा हमारा यहाँ पर निकल चुका है, तो एक छोटा सा जो मैंडेटरी ब्रेक होता है वो तो मुझे लेना ही लेना है. वापस आऊंगी तो बात जारी रहेगी कमिटमेंट और फ्रीडम की. आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर.

0: सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ और इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:02।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: So it's like commitment या फिर freedom, आपके लिए ज्यादा important क्या है? मेरे साथ एक caller यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। Hello, good morning.
2: Good morning, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, very good morning। कैसे हैं रेसिया?
2: और हमारे तमाम भाइयों को और खासकर जावेद साहब अभी कभी गए हैं, वो भी हमारा सलाम लेते हुए हैं। साला हम लोगों का दुआ सलाम सुबह सुबह पहले हो जाता है, माशाल्लाह।
0: ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे तौफीक जी का मुझे मैसेज याद है, वो सबके नंबर्स मांगते रहे हैं, आप लोगों के नंबर्स क्या उनको फॉरवर्ड कर देने चाहिए?
2: तौफीक साहब से मेरा बात शुरू हो चुका है।
0: अच्छा, आपकी बातचीत स्टार्ट हो गई।
2: जावेद साहब के जरिए उन्होंने ले लिया था नंबर, तो मतलब हम लोगों की बातचीत दुआ सलाम होते रहता है।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। तौफीक भाई के पीछे पड़ जाइए कि एक हमारे लिए, हम सबके लिए एक जो है आप गेट टुगेदर अरेंज करें।
2: नहीं, बेचारे परेशान हैं, वो मेरे से भी नंबर और लोगों के मांग रहे थे, तो मैंने कहा यार अब आपको वहीं से मिल जाएगा, रेडियो से ही सारे लोगों का नंबर तो मेरे पास
0: नहीं। वो हमसे मांगते हैं, बट हमें लगता है कि जब तक किसी की परमिशन हम ले नहीं तो कैसे भेजें। अब पता नहीं कोई कहते आपने क्यों फॉरवर्ड कर दिया, आपने कैसे कर दिया हमसे पूछे बगैर, तो लोग मुझे थोड़ा सा परमिशन दें, देन आई कैन शेयर।
2: नहीं बंदा जी, बिल्कुल वो भी सही है, क्योंकि जावेद साहब खुद बता रहे थे कि मैंने कुछ बंदे से, एक आध बंदे से बात किया, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी मैं सुन के, मतलब मैंने फिर स्किप कर दिया कि यार नहीं बंदा, मतलब इतना तो जो नहीं देना चाहता बात करने के लिए, तो फिर उसमें मजा नहीं है। जो बंदा थोड़ा सा खाली खाली जो अपना, मतलब हम रेडियो पे बात करें और फिर वो अलग फिर अपना, मतलब तो उतना मजा नहीं है बंदे को, उतने तक उसी पे नेचर का रहे बंदा, उसी पे उसको छोड़ देना चाहिए। ज्यादा उसको ये करके परेशान करके फिर वो शायद दोस्ती के बदला फिर वो आदमी मतलब थोड़ा सा गलत थॉट में चला जाता है, वो अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, बल्कि उसको ख्याल में छोड़ दो। वो खुशी से जब कबूल करे तो फिर उसके साथ में रहो, ज्यादा कुछ ये नहीं करना चाहता तो फिर बल्कि छोड़ दो उसके हालत पे, हो सकता है वो कल उसको समझ में आए। बस क्या है, जिंदगी का हिस्सा है ये सब, दुआ सलाम बातचीत ये सब जिंदगी का हिस्सा, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ जाएगा,
0: ये तो सच है।
2: हाँ, हम एक दूसरे से मिले जुले, यही हम लोग का फैमिली है, इतना इतना दूर हम लोग रहते हैं घर का और उसका,
0: हाँ जी,
2: मतलब बिल्कुल हमको जुड़ के रहना चाहिए, दुआ सलाम। और क्या कौन का क्या लेके जा रहा है,
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा रईस, आप मुझे आप बताइए कि आपको क्या लगता है लाइफ में आपकी क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इज इट कमिटमेंट और फ्रीडम?
2: देखो हर चीज का एक दाय।
0: अच्छा,
2: कर दूं कि मैं जाके सात से और वहाँ पे एक घर बसा के आऊंगा तो, और मैंने कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो ये सब चीजें मतलब अपनी अपनी औकात और अपने हिसाब से देख के कमिटमेंट भी मतलब करना चाहिए, बंदे को फैसला भी उसी हिसाब से लेना चाहिए जो बंदा मतलब उसकी हैसियत रखता हो। हाँ, सोच बनाना कि फ्यूचर में मैं ऐसा, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दिया उस वहां तक मैं पहुंचा तो इंशाल्लाह मैं ये चीज करूंगा, ये तो ये जरूरी है आदमी को। तो इसमें मतलब कभी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार फिर मैं उस लायक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, नहीं, अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए बंदे को, और फिर मुखलिस होके बंदे को मतलब ये भी सोचते रहने कि मतलब अगर मुझे अल्लाह ने इस लायक बनाया तो इंशाल्लाह मैं ये चीज कर गुजरूंगा, हाँ कोशिश करूंगा। और अपने आपको मतलब जो दायरा है हमारे दीन का और दुनिया का जो मतलब ये है, उस हिसाब से दायरे में रह के मतलब गलत उस पे ना जाए, मेरे हिसाब से जो एक दायरा उस दायरे के अंदर रह के अपने आप को मुक्त बन के रखे तो अल्लाह ताला उम्मीद है कि आपके उसको, कभी कभी ऐसा जो होता है बंदा मतलब बिल्कुल नहीं सोचा रहता जिसके ऊपर आपने मतलब बल्कि इसके ऊपर बात भी किया और ऐसा सामने आ जाता सिचुएशन की बिल्कुल बड़ी आसानी से वो अल्लाह ताला किसी गैर से भी मतलब उसका जरिया बना देता है और वो हमारा कमिटमेंट भी पूरा हो जाता है और मतलब हम उसमें कामयाब भी हो जाते हैं।
0: हाँ, तो आपके तो दोनों चीजें होनी चाहिए, कमिटेड आप रहिए एंड द सेम टाइम इतनी लिबर्टी आपके पास हो कि अगर आपको यू टर्न लेना है आपके अपने बेहतरी के लिए तो आपके पास उतनी स्पेस रहे।
2: बिल्कुल, इतना ज्यादा आप डूब भी ना हो कि यार एकदम उसमें मतलब ये डूब ना जाए कि मतलब नहीं यार मैंने सोचा था मैं करने के लिए इसको को, या मैं क्यों नहीं हुआ रहा, क्यों नहीं हुआ, हो सकता तुम्हारे लिए वो बेहतर हो, तुम्हारे लिए अगर रुकावट कोई बना जरिया बना तो रुक जाओ, बल्कि हाँ उसको थोड़ा सा और इसके ऊपर सर्च करके देखो।

0: क्योंकि मैं खुद भी बहुत से अपने आप को मैं कमिटमेंट किया कि मैं ये करूंगा और फ्यूचर में वो मेरा मेरे उसमें वो सिचुएशन नहीं आने के लिए, फिर मैंने यूटर्न ले लिया वहां से कि नहीं यार छोड़ो जाने दो, मतलब मैं खुद का अपना मैं मार्केट में मैंने अपना खुद का घर बना के पूरा दुकान बना के पूरा ये करके हालात कुछ ऐसे आए कि मैं खुद मतलब उसको रेंट पे दे दिया, लेकिन मैं खुद मतलब वहाँ पे उसमें देखा कि यहाँ पे जो हम लोगों का एक मतलब है अपना जो घर का फाइनेंशियल जरूरत है उस हिसाब से हमें मतलब वहाँ पे पहुँचते ही जैसे एक बना बनाया मिल जाता है हमारे को किसी से मतलब है घर के लोग मतलब बना और हम एक बार नया स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मतलब टाइम चाहिए, बैंक सपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको मतलब है फिर वो मुतासिर कर देगा आपको, फिर आप शायद मतलब कश्मकश में पड़ गया, कोई भी चीज फौरी तौर पे नहीं होता है उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है
1: डेडिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं उस काम को करने के लिए। सो बिल्कुल बहुत सही,
0: मतलब उस बंदे को उसी हिसाब से फैसला लेना चाहिए कि नहीं, अब मान लो हर बंदा सोचता कि यार मैं अरब जाता हूँ अरब में जाके मतलब कमाऊंगा उसके बाद में आके अपना खुद का ये करूंगा, पर बंदे का प्लानिंग होता है अपना वो एक सोच बना के रखता है मतलब फैसला भी कह घर पे भी बल्कि ये कह देता कि इंशाल्लाह के ये करूंगा, लेकिन कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि बंदे को यू टर्न लेना पड़ता है, नहीं हो पाता है उसको मतलब फैसला, और अगर जो जज्बात में फैसला लिया तो फिर वो जज्बात से शायद है कि उसको कभी कामयाबी करता है और ज्यादातर मुतासिर होकर बंदे फिर मतलब उसको नुकसान का जरिया बन जाता है।
1: राइट सही, बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह रईस जी, बहुत शुक्रिया कि आप आए, आप हमारे साथ जुड़ते हैं माशाल्लाह और बहुत अच्छे
0: एक वो बन गया हम लोगों का मतलब शेड्यूल बन गया कि अगर ये नहीं मतलब बात करते हैं और सुन रहा हूँ कि आप लोग भागने वाले हैं उदला बदली भाई ये किसकी नजर बन जाती है यार,
1: यही तो है, अरे ये सारी नजर लगा के बैठते हैं सर्वर भाई, सारा इन्हीं का हाथ रहता है इधर उधर कराने।
0: एक हम लोग माइंड सेट करके रखते हैं कि मतलब आएंगे उस प्रोग्राम में सुबह के टाइम हमें जुड़ना है इस तरीके से, अब फिर वो नीचे ऊपर हो जाता है तो फिर थोड़ा सा
1: वही
0: सुबह के टाइम कुछ और मूड माइंड फ्रेश हो के और बात करने का कुछ अलग मतलब ये होता है।
1: हाँ ये तो है,
0: कुछ उतला बदली होने वाला है।
1: हाँ, अभी जो है मैं बस आपके साथ इसी मंथ में हूँ, मतलब अगस्त तक है और फिर सितंबर से चेंजेस हैं और मॉर्निंग जो है सितंबर में कबीर भाई के पास जा रही है तो फिर वो आपके साथ होंगे। नहीं लेकिन आपको जुड़ना है ना, मेरे साथ भी जुड़ना है, मैं और सर्वर भाई हम दोनों हैं आफ्टरनून्स में
0: डेढ़ बजे, मतलब आपका महवेश का मतलब वो जोड़ी मतलब
1: हम सुनी नहीं से इत्तेफाक से मैं और महवेश भी ये कह रहे थे कि हम दोनों ने एक शायद दो दिन तब काम किया और फिर अब शायद दो दिन एग्जैक्टली चार दिन हम और महवेश साथ में रहे होंगे इस शो में, बाकी वो छुट्टी पे पहले मैं फिर वो, तो हमें साथ में मतलब शो करने का मौका ही नहीं मिला, पर चलिए एनीवेज इंशाल्लाह आगे फिर शायद चेंजेस आए तो यू नेवर नो।
0: कितने बजे आपका मतलब कुछ आईडिया मिला कितने?
1: हाँ हाँ मेरा शो जो होगा वो है 1:30 बजे से।
0: अच्छा, 1:30 बजे तक तो तकरीबन हम एक्टिव रहते हैं, इतना मसला नहीं है ये, लेकिन सुबह इसके टाइम पे कुछ आप मतलब अलग जैसे असल में ड्यूटी।
1: हाँ ये तो है, मॉर्निंग में एक अलग ही वाइब होती है, बट 1:30 बजे तक आपको सोना नहीं है, कम से कम एक्टिव रहना है, ठीक है?
0: हम
1: लोगों ने काकी को ऐसा लपेट के भगाया है कि आने ना पाए काकी वापस।
0: नहीं बड़ा अच्छा मजाक का थोड़ा सा जो सपाट हो जाता था, बड़ा अच्छा कॉमेडी हो जाता था उसमें,
1: आपको अच्छा लगता था, हम लोगों को मुझे बहुत बुरा लगता था काके के साथ, अब एक काका भी है मेरे साथ, मेरे पता सर्वर भाई, अब फिर मैं उनके साथ अजीब सी पोजीशन में हूँ, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, चलिए है जो होगा वही होगा है। थैंक यू जी, आप लोग का साथ जो है इस पे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, आप लोग कमिटेड रहिएगा, ठीक है? आप जो है वो कमिटेड रहिए, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे रईस जी हमारे साथ जुड़े, इतने अच्छे से पूछा उन्होंने और मैंने भी आपको बताया कि यस आप लोगों को कमिटेड रहना है,

0: चाहे मैं मॉर्निंग्स में आऊँ या फिर आफ्टरनून में, प्लीज हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हाँ जी।
0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी?
1: गुड मॉर्निंग मैडम जी, जिस फ्रीडम के साथ हम लोग आपके शो में कॉल करते हैं ना, और उसके बाद आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द शो, एक्सीलेंट।
0: क्या बात है, चलिए मुझे खुशी है कि आपने दोनों चीजों का इस्तेमाल कर दिया और बता भी दिया, कमिटमेंट क्या है और फ्रीडम क्या है। नाइस नाइस, तो दोनों ही चीजों की इम्पोर्टेंस है अब अपनी जगह। अब आप मुझे बताइए, आप एक पिक कैसे कर पाएंगे?
1: मैडम पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे को जावेद भाई का नंबर सेंड कर दीजिए, उनको लग रहा है शायद मैं कॉल नहीं कर रहा उनको, मेरे पास अभी तक नंबर नहीं आया उनका।
0: अच्छा, मैं उनसे पूछ भी लेती हूँ, हालांकि मेरा ख्याल है वो आपको मना नहीं करें, बट कोई तो बोल रहा था आप सब लोग जुड़े हुए हैं, अभी शायद रईस ही बोल रहे थे ना।
1: नहीं, मेरा मैसेज शायद ऊपर रैंडमली ऊपर नीचे हो जाता है, मैंने कल भी किया था, शायद नहीं देखा आपने।
0: अच्छा चलिए, हम आपका मैसेज भी अभी देखते हैं और मैं पूछ भी लेती हूँ, अगर वो कहेंगे कि हमें भेज दीजिए तो हम आपको नंबर सेंड कर देंगे। ठीक है,
1: ओके मैम,
0: ठीक है। आप बताइए,
1: अभी आप बताइए जी।
0: हाँ, अभी आज का जो हमारा सवाल है वो है कमिटमेंट या फिर फ्रीडम, आपके हिसाब से कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों?
1: मेरे हिसाब से मैडम कमिटमेंट ज्यादा जरूरी है जी।
0: कमिटमेंट, ओके।
1: और क्योंकि आजकल मैडम जमाना ऐसा है, अगर आप सोच लीजिए, आप अपने किसी फैमिली मेंबर को भी फ्रीडम देते हो ना, तो वो फ्रीडम मैडम इतनी ज्यादा हो जाती है ना, बाद में फिर आप खुद पछताते हो।
0: अच्छा, ओके, मतलब फ्रीडम का गलत फायदा कोई उठाता है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग?
1: जी जी बिल्कुल मैडम, जो फ्रीडम भी है वो भी मैडम एक लिमिट तक ही देनी चाहिए।
0: फ्रीडम जो है एक लिमिट तक होनी चाहिए, अदरवाइज लोग उसका जो है वो मिसयूज करने लग जाते हैं, गलत तरीके से उसका जो है वो फायदा उठाते हैं। सो राइट, हां ये पॉइंट भी है, ये है बड़ा वैलिड है।
1: आप जी, आप गाड़ी लेके हाईवे पे जा रहे हो मैडम, ठीक है, सपोज आप 80 से ऊपर चले गए तो आपको पता है ना उसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली कैमरा आपकी गाड़ी को कैप्चर करेगा।
0: सही।
1: तो रोड पे अगर कैमरा ही नहीं होगा तो मेरा भी मन करता है ना मैं 120 से ऊपर गाड़ी लेके जाऊं, क्योंकि एक थ्रिल आता है ना बंदे के दिमाग में जब बंदा फ्री होता है।
0: तो कुछ है रोड जहां 120 तक आप जा सकते हैं?
1: यस, आफ्टर 120
0: वहां पे इतना थ्रिल मत लीजिए, इतना काफी। 120 तक तो आप जा ही सकते हैं, फिर नहीं। लेकिन आपने सही कहा, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की फ्रीडम को ख़त्म कर दें या आप दूसरों की जो है वो रिस्पेक्ट ख़त्म कर दें ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम। ये बहुत अच्छा आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रखा कि कुछ लोग जो है वो फ्रीडम का गलत मतलब लेते हैं और उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, जो नुकसानदेह है उनके लिए भी, आसपास के लोगों के लिए भी, एंड देन सोसाइटी के लिए भी। तो इतनी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, देयर हैज़ टू बी फ्रीडम विद सर्टेन लिमिटेशंस, है ना, ये आप कह रहे हैं
1: जी। एक्चुअली मैडम ये एक ऐसा टॉपिक है ना फ्रीडम के ऊपर, एक बहुत लंबी बहस हो सकती है, जहां तक मेरा मानना है ना नाजिया जी।
0: ये तो है,
1: गुलाम बंदा कभी भी नहीं हो सकता आज के समय में, गुलाम जो होती है वो बंदे की सोच हो सकती है मैडम।
0: आज के टाइम में तो एग्जैक्टली
1: जी, आज के टाइम में।
0: लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे देखिए और बताऊंगी, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, रोज आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है, ये आपका कमिटमेंट है कि आप ऑफिस जाते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप अपनी पूरी कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कमिटमेंट का हिस्सा हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आप सिर्फ कमिटमेंट के नाम पे ऐसी जॉब में फंसे हुए हैं जहां आपको रोज स्ट्रेस है, रोज फ्रस्ट्रेशन है, तो फिर फ्रीडम का रोल जो है वो आपको नहीं लगता सामने आएगा? फ्रीडम आपको कम से कम इतनी, उसका ये हक आपको देता है कि आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज जो है वो तलाश करें और इस जॉब से क्विट करें।
1: मैडम फिर तो वो साथ साथ में होगी ना दोनों चीजें, ऑब्वियस है, फिर तो बंदा फ्रीडम होके दूसरी जॉब पे जाएगा ना।
0: तो यहाँ कहते हैं आप कुछ सिनेरियोस में फ्रीडम जो है वो होनी चाहिए, वो भी हमारे लिए जरूरी है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग।
1: नहीं मैडम, फ्रीडम तो होनी चाहिए हर किसी को, होनी चाहिए जो उनके हक हैं उसके लिए मैडम, हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए, मगर फ्रीडम का
0: गलत इस्तेमाल ना हो।
1: दूसरा है ना, अगर आप ज्यादा फ्रीडम दे देंगे बंदे को फिर आपको पता ही है मैडम।
0: अगला आदमी जो है सही
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। परफेक्ट फ्रीडम भी होनी चाहिए बट कमिटमेंट जो है वो पहले आता है, आप कमिटेड हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अगर आप कमिटेड ही नहीं, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं सोच रही हूँ अगर आप अपनी पहली जॉब के साथ कमिटेड नहीं है, वहाँ स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेशन में, तो यू नेवर नो कि जब दूसरी जॉब आप ज्वाइन करें वहाँ भी आपकी यही सिचुएशन हो, तीसरे में भी यही हो, है ना, है ना?
1: जी, जी,
0: तो
1: जी,
0: आपके अंदर कमिटमेंट नाम की चीज ही नहीं है, तो फिर आप तो परेशान हमेशा रहेंगे फ्रीडम के नाम पे, कितना चेंज करेंगे, कितनी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो दैट्स राइट, नाइस, एक्चुअली आपने सही कहा, बहुत ही अच्छी बात, जबरदस्त गावा जी। हमेशा ही आपकी जो बात होती है काफी प्रैक्टिकल होती है, क्लोज टू रियलिटी होती है, और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी चीज आप लेकर आते हैं जो हम सब आसानी से समझ भी पाते हैं और हमें लगता है कि हम रिलेट भी कर रहे हैं। So,
1: सर्वर भाई से बात हुई थी कल।
0: अच्छा अच्छा,
1: देखिए बात हुई अच्छी खासी, हाल चाल पूछा। हाँ, जब मिठाई की बात आई मैंने कहा भी आपके अलीगढ़ की यूपी की मिठाई बहुत फेमस है, वो थोड़ा लेके आना मेरे लिए।
0: हाँ,
1: तो उन्होंने बर्थडे वाला इमोजी भेज दिया मेरे को, देखो
0: देखा?
1: मैंने कहा भाई मैं मिठाई की बात कर रहा हूँ, मिठाई बहुत फेमस है, उसके ऊपर हार्ट भेज दिया उन्होंने, कोई रिप्लाई नहीं मैडम, देख लो।
0: देखा आपने, यही मैं आपको कह रही हूँ, सिर्फ पानी पिलाते हैं, वो भी बहुत बड़ा दिल करते होंगे तो एक गिलास दे देंगे।
1: हाँ, पानी भी गिलास में, ये नहीं भी
0: बॉटल वाला, अरे सवाल ही नहीं उठता। ग्लास भी अगर आपको ठीक ठाक साइज का मिल जाए, मतलब मीडियम, तो आप बहुत शुक्र करिए, छोटा सा देते हो। कहते आप अपनी बॉटल क्यों नहीं लेके आती, लो बताओ तुम आपके घर ही क्यों आए, सीधी बात है। सब कुछ हम ना लेकर ही आए, तो वो ऐसे ही है, वो कभी भी कुछ भी नहीं खिलाएंगे। ये मैं आपको लिख के ना किसी पेपर पर साइन करके दूंगी,
1: बाकी धन्यवाद हो नाजिया जी आप ही।
0: मैं ही बर्दाश्त कर रही हूँ
1: जी, बिल्कुल मैडम,
0: ये तो सच है, ये तो सच है। बट चलिए, थैंक यू सो मच कि आप जुड़े और बहुत अच्छा आपने जो है अपनी राय हमारे इस टॉपिक पे रखी। थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिए।
1: टेक केयर मैडम, और नंबर सेंड कर देंगे,
0: मैं भेजती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, सो दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है कमिटमेंट की, बात चल रही है फ्रीडम की। आप जो है वो आपके हिसाब से जिंदगी में किसकी ज्यादा अहमियत है और क्यों है, ये आपको मुझे बताना है। एक और कॉलर इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन है हमारे साथ?
2: मैं काशिफ।
0: ओ हाय, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मुझे बताइए सो पाए आप?
2: हाँ बिल्कुल, मैं आज सोया हूँ।
0: वाह क्या बात है भाई, मुबारक हो, मबरूक मबरूक, ये तो चलिए बहुत अच्छा हुआ कि आपने कहा था कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, कब से प्लान करता रहता हूँ, नहीं हो पाता, पर चलिए फाइनली
2: मैंने किया, काम पड़ा था लेकिन चलो उसको एक डेढ़ घंटे में निपटा के
0: मैं सो,
2: उसके बाद 8:30 तक सो गया।
0: वेरी नाइस, ये हुई, ये है आपका असली कमिटमेंट, अब मैंने कमिट कर लिया सोना ही है आज, तो मुझे सोना है। नाइस, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप फाइनली ठीक से अपनी नींद पूरी कर पाए, दैट्स रियली नाइस। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं पूछ रही हूँ कि कमिटमेंट या फिर फ्रीडम आपके हिसाब से जिंदगी में किसकी ज्यादा अहमियत है और क्यों?
2: मेरे हिसाब से ज्यादा कम अहमियत तो नहीं है, दोनों की अहमियत अलग अलग हिसाब से है। आप किसी के साथ कमिटमेंट भी कर सकते हैं, आप फ्रीडम भी दे सकते हैं, लेकिन वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी एक बंदे के साथ कुछ लेन देन करते हैं तो आप उसके साथ एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि भाई मैं ये दे रहा हूँ ये चीज, और परफॉर्म इसी डेट इसी टाइम में मेरे को चाहिए। ठीक है,
0: सही।
2: तो वो कमिटमेंट इंसान के हिसाब से, अब एक बंदा ऐसा जिसके साथ आप कह सकते हैं कि ये मैं तुझे दे रहा हूँ, चल तेरा दिल करे तब मुझे दे देना,
0: ये फ्रीडम।
2: अब इसमें कुछ इंसान तो ऐसे आ जाते हैं कि जिनको आप फ्रीडम दे दो कि भाई जब तेरा दिल करे दे देना, तो फिर वो दिल करता ही नहीं कभी उनका। फिर ऐसे इंसान के साथ आपको कमिटमेंट करनी पड़ती है कि भाई मैंने लेने इस डेट को ही लेने। फिर कुछ इंसान होते हैं जिनका आपको पता होता है कि यार इसके साथ मैं फ्रीडम कर सकता हूँ, दे सकता हूँ इसको मैं फ्रीडम, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ। ये नहीं है कि आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाए कि भाई फ्रीडम तो बस फ्रीडम ही फ्रीडम, कमिटमेंट तो बस वही, नहीं। मेरे हिसाब से दोनों का अलग अलग वक्त के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ता है।

0: बिल्कुल सही. डिफरेंट सिनेरियोस और डिफरेंट सिचुएशंस में दोनों की अपनी
1: सिचुएशन के हिसाब से उनको कंट्रोल करना है ना. ये नहीं है कि एक ही चीज को आप पकड़ के बैठ जाएं कि बस ये मेरा फैसला है, यही यही नहीं, ये नहीं है. इसमें आप दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास फ्रीडम भी है, आपके पास कमिटमेंट भी है, दोनों का आप पूरा पूरा यूज कर रहे हैं.
0: राइट,
1: आपके पास यू टर्न का ऑप्शन भी है.
0: यू टर्न का ऑप्शन है और ये ऑप्शन, ये विंडो हमेशा ओपन रहनी चाहिए.
1: हाँ, ये विंडो हमेशा ओपन रहनी चाहिए. क्योंकि ये विंडो क्लोज हो गई ना तो फिर ये पक्की ही बंद रहती है, फिर ये खुलने का नाम ही नहीं लेती.
0: ये सही कहा. और फिर हम भी जो है ना लो हो जाते हैं, लो फील करते हैं, वो मोटिवेशन का लेवल भी हमारा कम हो जाता है. भले ही से हम कमिटेड ही रहे बट एट द बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि हमारे पास है लिबर्टी, फ्रीडम है, हम जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे.
1: कमिटमेंट में हम लोग थोड़ा खुद फंस जाते हैं ना.
0: Right.
1: अगर सामने वाले के साथ हो गया तो भाई कमिटमेंट किया हुआ है, अब टाइम से पहले अगर वो चीज हो रही है तो हम नहीं कर सकते भाई. टाइम से पहले हमने नहीं ले सकते, उससे नहीं कर सकते, क्योंकि कमिटमेंट हमने गलत की हुई है. लेकिन अगर फ्रीडम है तो अगर टाइम से पहले हो गई तो भी सही है, और अगर टाइम के बाद भी चली गई तो भी बंदा कर सकता है. कोई भी मुश्किल नहीं आती उसमें.
0: बहुत सही.
1: मेरे हिसाब से दोनों का वक्त के हिसाब से.
0: बहुत जबरदस्त जवाब. थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह कि आप जो है वो हमारे साथ जुड़े. एंड प्लीज आगे भी हमारे साथ कनेक्ट होते रहिए, बहुत ही अच्छी आप बात करते हैं. और कल भी आप, आज भी कमिटेड रहिएगा, टाइमली सोइएगा और कल भी बताइएगा मुझे.
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह. थैंक यू वंस अगेन, हैव अ फैंटास्टिक डे, अपना ख्याल रखिए, बाय.
1: वालेकुम
0: अस्सलाम. तो यहाँ पर जो है वो कमिटमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा वोट मिल चुका है. मैं ये कहूँगी कि फ्रीडम सब कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है, बट हाँ कमिटमेंट वो तो नेक्स्ट लेवल का होना ही होना चाहिए. चलिए, अगर आपको कुछ लगता है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, सोच के रखिए, वापस आएंगे तो इस टॉपिक को जारी रखेंगे. आज का टॉपिक इज़ अबाउट कमिटमेंट एंड फ्रीडम. लाइफ में आपकी किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत आपको लगती है एंड क्यों? अभी के लिए बहुत ही धाकड़ अंदाज में पहला सॉन्ग जो है वो जा रहा है इस शो का. एंजॉय कीजिए, स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। वेलकम बैक गाइस, सुबोध शर्मा की आवाज में वे जुनून आपने सुना अवारापन 2 से, अब बहुत ही कमाल धमाल का ट्रैक एंड रिमाइंड्स मी

0: कि अवारापन वॉज अ म्यूजिकल थ्रिलर एंड यहाँ इस बार भी अवारापन 2 का म्यूजिक साउंड्स अमेजिंग. बहुत ही प्यारा सा ट्रैक और मैं सबसे ज्यादा मेज पता है किस चीज को देखकर हुई, मैंने देखा इसका ड्यूरेशन 6 मिनट एंड मोर देन 6 मिनट. क्योंकि अभी के दौर में आप देख रहे हैं गाने बिल्कुल छोटे छोटे क्रिस्प ऐसे आ रहे होते हैं, बट यहाँ पर ये गाना थोड़ा सा लेंदी था तो मैंने कहा ओहो अभी वापस से ट्रेंड आ गया क्या, थोड़े लंबे गाने जो है वो हमें सुनाई देंगे. चलिए खैर अभी बात हमारा जो मेन मुद्दा है वो है फ्रीडम एंड कमिटमेंट एंड टुवर्ड्स इट एक कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो.
1: हेलो गुड मॉर्निंग.
0: अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आज आप?
1: Yeah, very good. All good, all good, great. So what's your take on today's topic? Commitment or freedom? Free, not the other real freedom, complete responsibility, I believe. Hmm, that means a committed freedom. Yeah, exactly. See, the freedom, the freedom means having the ability to choose. You have, for example, you went to buffet, okay?
0: Hmm.
1: You have to, there is biryani, rice, pasta, noodles, so many varieties there.
0: Yeah.
1: But you can choose whatever you want. That is your freedom.
0: Hmm.
1: But once you choose biryani, and you have to complete that biryani. That is your commitment. Hmm. Clear?
0: Yeah, kya baat hai. आज तो बेहतरीन एग्जाम्पल आपने बिरयानी के साथ ही हमें कमिटेड और लिबर्टी दोनों सिखा, फ्रीडम दोनों बातें सिखा दी. नाइस, बहुत सही.
1: दैट्स इट, द रियल फ्रीडम कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी. यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू चूज, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट टू बिलीव एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बिकम, लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, व्हाटएवर यू नो. बट वंस यू चूज एंड वंस यू कमिट,
0: When you have to be responsible. Yeah, that is your true freedom. So just imagine, you will become a good engineer. That is your commitment. But choosing the field, electrical, mechanical, instrumentation, chemical, that is your freedom.
1: Right, the freedom, perfect, perfect. So but you have to discipline and commitment, so you have to thoda discipline karke aapko learn karne ka uske sath aap effort karne ka, because once you commit that one, you cannot come back or you cannot refuse. So initially there was your freedom
0: कि आप क्या कौन सी फील्ड लेना चाहते हैं एंड देन यू हैव टू बी कमिटेड उसे कंप्लीट करने के लिए. नाइस. And there's like no U-turn. इस सिचुएशन में तो बहुत सारे सिनेरियोस में U-turn पॉसिबल होता है, बट कुछ ऐसे सिनेरियोस हैं जहाँ पे U-turn पॉसिबल नहीं होता. तो दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड. सही, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया. इट्स वेरी यू नो टू द पॉइंट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड राइट विद एग्जाम्पल. सो थैंक यू सो मच अज्जू, थैंक यू. हमेशा ही बहुत अच्छा आप बोलते हैं, आपको लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया या दिया होगा आई एम श्योर. तो नहीं तो आज तो मैं आपको दूंगी कि बहुत अच्छा आपने बोला. नाइस एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे. अपना ख्याल रखिए. ओके जी, बाय, लव यू, बाय. तो बहुत अच्छे से देखिए यहाँ पर हमारे लिसनर है, उन्होंने आपको और हमें समझा दिया कि देखो ये है कमिटमेंट, ये है आपकी फ्रीडम. अब कहाँ आपको यू टर्न लेना है, कुछ जगहों पे तो ले सकते हैं, बहुत से ऐसे सीन्स हैं जहाँ से आप यू टर्न ले ही नहीं सकते हैं. तो चलिए एक और कॉलर से यहाँ पर जुड़ते हैं और उनकी क्या राय है वो जान लेते हैं. हेलो. ओ वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज तो बहुत टाइम के बाद आपसे बात हो रही है. हाँ
2: जी जी, इट्स बीन कपल ऑफ डेज आई गेस.
0: या आप बिजी रहे
2: या आई होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट.
0: ऐसे तो मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ, बाकी तो आप बताएं. बाकी तो बाकी लिसनर्स ही बता सकते हैं, मैं तो क्या बताऊं. चलिए थैंक यू सो मच. आज हम बात कर रहे हैं कमिटमेंट और फ्रीडम की. आपके हिसाब से लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों?
2: दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मतलब दोनों को ही आपको लेकर चलना होता है कि आपका भी कहीं पर आपको कमिटेड रहना होता है, बट कहीं पर आपको यू स्टिल नीड फ्रीडम, है ना. तो

0: ये एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों के बीच की, कमिटमेंट और फ्रीडम के बीच.
1: बहुत सही.
0: तो देखिए कमिटमेंट के अंदर से आप सपोज करिए कमिटमेंट के तौर पर बात करें अगर आप, तो आप कमिटमेंट जब करते हैं सपोज यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नया आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, तो कमिटमेंट क्या होता है, वो आपका थोड़े टाइम के लिए फ्रीडम जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है. इट एक्सपैंड योर फ्यूचर कैपेबिलिटी.
1: तो
0: वो चीज आपने कोई चीज किसी चीज के लिए कमिट करा रहे, ठीक है, मैं जो हूँ वो मिसाल के तौर पे कोई गेम सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ या कोई लर्निंग है कोई वो सीखना चाहता हूँ. अब आप उसको सीखने के लिए यू शुड बी कमिटेड. अब उसके अंदर अगर आप फ्रीडम ढूंढने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी.
1: सही. बहुत ही सही.
0: इसी तरीके से अगर कोई आपने गलत कमिटमेंट कर दिया तो वो जो है वो आपकी जो आपको जो पर्सपेक्टिव है उसको छोटा कर देगा. तो मेरे ख्याल से सवाल जो है वो ये हो कि भाई इसमें कमिटमेंट और फ्रीडम की बजाय ये हो कि भाई वो कौन सी कमिटमेंट्स हैं जो कि विच आर वर्थ गिविंग अप फॉर फ्रीडम. उससे जो है आपको जो है वो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से आप खुद को जस्टिफाई कर पाएंगे कोई भी काम करते हुए, में कमिट करते हुए खुद को, या उस काम को ना करके यू स्टिल आर बीइंग फ्री.
1: और देखा जाए तो कमिटमेंट करने के लिए भी तो फ्रीडम चाहिए. अब इतने आप फ्री हैं कि आप इस चीज को कमिट कर पा रहे हैं, ये भी तो आपकी फ्रीडम ही का हिस्सा है. नाइस, बिल्कुल सही कहा.
0: Exactly. ये भी चीज है कि इसमें ये देखना पड़ता है कि जैसे आप अपने आप से सिर्फ तीन सवाल पूछिएगा सिर्फ, है ना, मतलब कोई भी इंसान लाइक इंक्लूडिंग मी, कि क्या ये मैंने फ्रीली चूज करा ये कोई चीज, ठीक है. अच्छा, अब आपने कर लिया उसको, अब आप काम कर रहे हैं उस पर, यू आर कमिटेड. फिर कुछ टाइम के बाद फिर ये सवाल पूछिएगा उससे कि क्या मैं आज भी इस चीज को ही चूज करता. अब आप उसमें कमिटेड हैं. But now next question is like, will you still choose this today?
1: Right.
0: और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये जो मेरा कमिटमेंट है ये मेरी फ्यूचर लाइफ को एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है.
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल. ये सबसे बड़ा
0: आपको खुद ये किसी को बताना नहीं पड़ेगा, आपको खुद जवाब मिल जाएंगे इन सबके. असल में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम मतलब बहुत सी इस पे साइकोलॉजी की काफी सारी थ्योरीज हैं, आई एम श्योर. जब हम प्रॉब्लम ये होती है जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसको जब हम कुछ टाइम कर लेते हैं तो फिर हमारा जो दिमाग है वो कन्फर्मेशन बाइस में चला जाता है, यानी कि वो फिर उस डिसीजन को गलत मानना नहीं चाहता जल्दी. और इसलिए जो है हम उस फ्रीडम को जो है वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं.
1: सही. अच्छा, एक और सिनेरियो भी है शिमोन. जैसे मान लीजिए आप बहुत कमिटेड हैं फॉर लाइक कि एक्स वाई जेड, चलो ऐसे ले लेते हैं कि आप अपना वेट जो है वो कम करना है, उसको शेड करना है, एंड फॉर दैट यू आर लाइक क्वाइट कमिटेड. आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज अपनी सेट की, रूटीन सेट किया, डाइट आप जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, जिम जा रहे हैं, एंड ऑल दैट जो कुछ भी हो सकता है, आप बहुत कमिटेड दिख रहे हैं. बट आपने महसूस किया कि जब मैं जिम जाता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो कॉफ़ी पे हैंग आउट करते हैं, इंजॉय करते हैं, और मैं वो मिस कर रहा हूँ. फिर आपने देखा कि जहाँ लोग जो हैं आउटिंग के नाम पे बहुत अच्छा फूड इंजॉय कर रहे हैं, मैं अपने कोने में एक सैलड लेकर बैठा हूँ और मैं वो इंजॉय नहीं कर पा रहा, वो कंपनी भी इंजॉय नहीं कर पा रहा, वो अच्छा खाना भी नहीं इंजॉय. दे यू फील कि लाइक अब मुझे इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि नो, आई एम गोना टेक अ यू टर्न, और मैं अब इस चीज़ पर उतना कमिटेड नहीं रहूँगा. जबकि आपको पता है कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे अचीव होंगे, वो एकदम नहीं होंगे, 3-4 महीने में होंगे, बट बहुत एक्सीलेंट होंगे, बट फिर भी आप उतने कमिटेड रह पाएंगे बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज सैक्रिफाइसेस.
0: ये हमारे एक, मैं ही बता रहा था कि एक हमारे एक बड़े हैं, उन्होंने एक बार एक बात कही थी और बहुत अच्छी मुझे लगी थी. तो वो ये थी कि ये मैं इस पे बात कर रहा हूँ जो आपने कहा यू टर्न लेने के ताल्लुक से, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा जनरल या सक्सेसफुल जनरल फौज में वो नहीं होता जो कि भाई एक बार चल पड़ा तो चल गया, अब आगे ही जाना है. बल्कि बड़ा जनरल वो होता है, कामयाब जनरल वो होता है जो कि अगर जिसने कोई डिसीजन लिया आगे बढ़ा, लेकिन

0: आगे जाके उसने देखा कि अब यहाँ पर जो है वो मेरी फौज को नुकसान हो सकता है. देन ही कम्स बैक एंड रीएड्रेसेस द होल सिचुएशन एंड देन अगेन टेक्स अ डिसीजन. तो ये फौज के ताल्लुक से इसलिए बात कही जा रही है क्योंकि वो हमारा एक प्रेजुडिस है कि भाई वो जो कह दिया भाई अब यही हो, है ना, ऐसा वाला होता है.
1: अच्छा एक चीज और है शिमोन, जब हमारे डिसीजंस का ताल्लुक बहुत सारे लोगों से मास के साथ होता है तो हम फिर भी एक दो तीन थॉट्स रखते हैं कि वापस आ सकते हैं. अगर हमारा डिसीजन का ताल्लुक सिर्फ हमसे है, इट्स वेरी पर्सनल.
0: अब जैसे आपने जिन वाली बात कही, जैसे कि मैंने पहले कहा ना आपको कि जो कमिटमेंट है ना वो आपके शुरू की कुछ फ्रीडम आपसे जब्त कर लेगा वो, ठीक है, बट इट विल बी गुड फॉर योर फ्यूचर.
1: यस,
0: तो इस केस में क्या है कि आप जब आप जिम जाना आपने शुरू करा, यू हैड सम गोल्स टू गो टू द जिम, ठीक है, तो उस टाइम आपकी तीन चार छह महीने साल भर वो हो सकता है वो आपकी वो फ्रीडम जो है वो ना रहे. आप दूसरे लोग जो है वो बाहर आउटिंग कर रहे हैं, अच्छे मसालेदार खाना खा रहे हैं, बट यू आर स्टिकिंग विद द सैलड, ठीक है, तो आपकी कम आपकी यहाँ पर फ्रीडम कम हो गई. फ्रीडम टू चूज व्हाट यू कैन ईट, नॉट कि आप जा नहीं सकते बाहर, बट फ्रीडम टू चूज इन बिटवीन वेरियस ऑप्शन. आपको फ्रीडम है लेकिन उसमें चूज करना है आपको, तो यू आर चूजिंग दिस एज अ हेल्दियर ऑप्शन बिकॉज यू हैव अ गोल टू रिड्यूस वेट, लुक थिनर, लुक थीनर, आई मीन वॉट एवर इट इज, ठीक है. तो लेकिन ये फ्यूचर जो है ये आपके लिए अच्छा है, तो यही चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप जिस टाइम कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको ये देखना होगा. अच्छा अब आपने छह महीने करा, जैसे मैंने कहा ना कि लाइक यू अगेन रीअसेस, अब आपने छह महीने जिम करा, अब आप छह महीने में जो है वो दो दिन जा रहे हैं, चार दिन नहीं जा पा रहे हैं, तीन दिन कर रहे हैं, दो दिन नहीं कर रहे हैं, एक दिन खा रहे हैं, चार दिन नहीं खा रहे हैं, देन यू नीड टू रीअसेस कि विल आई स्टिल चूज गोइंग टू जिम टुडे,
1: am I really committed,
0: तो आप ये
1: भी होना चाहिए.
0: ऐसा नहीं है कि जिन दो लोग नहीं जाते हैं वो कुछ गलत करते हैं या कुछ, इट इज समथिंग दैट यू नो नॉट एवरीबॉडी फिट्स इनटू एवरीथिंग.
1: सही,
0: किसी को जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज से ज्यादा अच्छा लगता है, मैं नहीं जा सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी.
1: हाँ नहीं सही बात है, नहीं एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग. मतलब ये तो हमने एग्जांपल ले लिया क्योंकि जिम मेरे सर पे सवार है तो इसलिए मेरे मुंह से जिम निकला. बट हाँ कोई भी चीज़, कोई और भी चीज़, जैसे आपकी इनकम कोई ले लीजिए, आप अपनी सैलरी कोई ले लीजिए, हमारे पास पूरी लिबर्टी है कि हमारी सैलरी हम जहाँ चाहें उड़ाएं, खूब सारी शॉपिंग करें, बट देन हम कमिटेड हैं कि हमें जो है अपने फ्यूचर का भी ख्याल रखना है, और भी चीज़ें हमें देखनी है, एंड सो फॉर दैट हम बहुत इम्पल्सिव बाइंग या शॉपिंग ना करें. तो दिस आर कमिटमेंट,
0: और इसी का फर्क जो है वो आपको आगे आके पता चल जाएगा. व्हेन यू आर मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस यू नीड टू बी कमिटेड, यू हैव टू बी कमिटेड, बिकॉज विदाउट कमिटमेंट इन फाइनेंशियल डिसीजंस आप जो है वो ग्रोथ, मैं ग्रोथ मतलब ऐसे ह्यूमन या ऐसे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपना फाइनेंसिस ग्रो नहीं कर सकते हैं. ना तो आपको आपको पता है कि भी सैलरी आनी है तो मुझे इस महीने जो है 100 रुपए आने हैं, 100 रुपए मेरी सैलरी है, 100 रुपए आने हैं, तो यू नो दैट यू आर कमिटेड फॉर 50 रुपीज फॉर इन्वेस्टमेंट. अगर आप कमिटेड ही नहीं होंगे तो आपके पास जो है वो महीने के आखिर में 10 रुपए भी नहीं बचेंगे.
1: बिल्कुल सही कहा आपने.
0: और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों एग्जांपल्स हैं, जहां पर उनकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट दे आर डूइंग वेरी वेल. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम बहुत है बट दे आर हैंड टू माउथ. तो यही चीज है असल, बस कि आपको जो है इसी के बीच में कभी आप कमिटमेंट भी देखना होगा, फिर जब आपने कमिट कर लिया तो फिर यू शुड बी यू नो क्या इज इट वर्थ इट.
1: सही,
0: ये कंसिस्टेंसी, आपका कंसिस्टेंसी, पर्पस, मोटिवेशन, डायरेक्शन, ये सब चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट है.
1: राइट, बहुत ही अच्छा कॉल, जबरदस्त शिमोन, हमेशा की तरह आप आज काफ़ी दिनों बाद जुड़े, बट बहुत ही अच्छे थॉट के साथ एक बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, समझाते हुए हमारी ऑडियंस को, लिसनर्स को. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया.
0: ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड
1: सेम हियर.
0: एक समथिंग इफ आई कैन, इवन दो आई डोंट ऐड एनीथिंग, बट इफ एट ऑल.
1: Yeah, it's really worth it. Thank you so much. Really, thank
0: pleasure,
1: you.
0: Pleasure. Have a good day.
1: You too. Have a fantastic day. Take care. Bye.

0: क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो खुद को मोटिवेटेड उतना नहीं रख पाते. शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो हम अपने आप को मोटिवेटेड रख पाते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं 6-8 महीने, तब खुद को मोटिवेटेड रखना बड़ा मुश्किल होता है. हम कहते हैं कि जो कमिटमेंट है वो बहुत ही टेम्प्रेरी सेक्रीफाइस मांगता है, लेकिन फ्रीडम उसका एक अल्टीमेट रिवॉर्ड है. ये बात भी है और ये बिल्कुल सच भी है. लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी दोस्तों, इसकी दूसरी साइड भी है. कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो इतने कमिटेड हैं, या ये कह सकते हैं कि कमिटमेंट के नाम पर वो हर चीज़ से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कोई रिश्ता है, और उन्हें वो रिश्ता खुशी भी नहीं दे रहा है, और उस रिश्ते से आसानी से बाहर निकल सकते हैं, बट अब कमिटेड हैं तो परेशान हैं. या चलो कोई और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करके बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट आप अब कमिटमेंट के नाम पर चल रहे हैं. एक ऐसा प्लान है जो सिर्फ आपकी वक्त को, आपकी एनर्जी को ज़ाया कर रहा है, लेकिन आप कमिटमेंट के नाम पर चल रहे. तो यहाँ हमें फ्रीडम याद आती है, या यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि फ्रीडम भी है हमारे पास. ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जो है वो सब्र जब्त बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए अपना रास्ता जो है वो क्लियर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, उसका भी नाम है, और उसके लिए आगे बढ़ जाना चाहिए. इट्स नॉट दैट कि नहीं, हम अब तो कमिटेड, अब क्या ही कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते. क्योंकि बहुत बहुत लोग हैं जो बेचारे कमिटमेंट के नाम पर उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, वो अपनी ग्रोथ को भी स्टैग्नेट करते चले जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, और बेहतर चीज़ें और बेहतर ऑप्शंस भी जो हैं वो नहीं देख रहे हैं अपने लिए. तो ये कमिटमेंट, यहाँ पे फ्रीडम ज़रूरी हो जाती है. चलिए एक कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं आप? खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. कैसी जा रही है आपकी सुबह?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है. और 107 के साथ तो और भी बढ़िया जाती है.
0: ओके, दैट्स नाइस, गुड.
1: मतलब डे बाय डे आप तो मतलब एकदम खतरनाक वाली टॉपिक उठा कर लेकर आ रहे हो.
0: अच्छा,
1: मतलब सबको नींद से जगा दे रहे हो कि जागो मोहन प्यारे.
0: और सुबह सुबह तो हमें उठना ही चाहिए. जब मेरी नींद खराब हो रही है, मैं उठ के आ रही हूँ, तो आप कैसे सो सकते हैं?
1: हाँ, ये सही.
0: नहीं, ये गलत बात है. ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे सोचना भी चाहिए, ऐसे मुंह से निकल.
1: नहीं, ऐसे करना भी चाहिए. देखिए, इंसान को कभी कभी ना थोड़ा बहुत अच्छा हंसमुख भी होना चाहिए. आप हंसमुख में कह रहे हो, वो बात सही है.
0: तो आप मुझे बताइए, आपकी लाइफ में कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, या फिर आप जो है अपनी फ्रीडम से प्यार करते हैं? यू लव दैट.
1: यार मैंने कल ही बताया आपको,
0: मैं तो
1: फ्रीडम वाला आदमी हूँ. मुझे ये कमिटमेंट के चक्करों में ना ही डालो तो अच्छा है. कमिटमेंट मेरा एक ही है, मेरी बीवी बच्चे, बस बाकी कुछ नहीं. मेरे माँ बाप थे जब तक मैं बैचलर था, वही तो बता रहा हूँ, जब तक बैचलर था मेरे माँ बाप थे. अब शादी हो गया, बीवी बच्चे, अब मेरे वालिद है, वालदा तो नहीं है, तो वालिद के जो है टेक केयर कर लेते हैं. बाकी जो है छोटे मोटे कमिटमेंट जो भी हमसे हो पाते हैं हम कर देते हैं. क्योंकि कमिटमेंट का सीन कैसा है पता है आपको, कि इंसान अपने आप पे जो है मुझे लगता है कि बांध लेता है एक चीज से, और वो इतना होल्ड कर लेता है कि उसके हाथ भी दर्द होते हैं. वो मतलब ज्यादातर के उसको पकड़ पकड़ के, आपने जैसे कहा ना कि कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी बहुत वो होती है, और कहीं ना कहीं एक उब जाता है, उसके मिजाज में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. जो रिलेशनशिप जो मेंटेन कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सारी चीजें इधर की उधर हो जाती हैं. तो मेरा ये मानना है कि जैसा चल रहा है गो विद द फ्लो, बस अपनी कोशिश करते रहो, गिरते रहो उठते रहो, गिरते रहो उठते रहो, जिंदगी पटकेगी, फिर उठो, फिर चलो, फिर गिरो, फिर उठो, फिर चलो. ऐसे ही जैसा बचपन में हम चलना सीखते हैं ना, गिरते उठते हैं, गिरते उठते हैं, तो उसी तरीके से जिंदगी भी हमें जब भी गिराएगी, फिर उठो, फिर कमर कसो, फिर आगे बढ़ो. तो इसी का नाम जिंदगी है.
0: ये भी आपका कमिटमेंट है कि गिर के
1: उठूंगा, बनाना अच्छी चीज है. मगर मेरा ये एक सबको एक मशवरा है भाई, ईएमआई से जितना दूर रहते
0: होता. ये तो आपने सही कहा.
1: ये जो है ना, ये एक सुनहरा जाल होता है, इतना प्यारा और इतना खूबसूरत कि भाई वो हम घर बनाना है उसके लिए ईएमआई ले लिए, वो करना है इसके लिए ईएमआई ले लिए. भाई अब बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े नवाब जो है दुनिया से क्या लेकर गए? आपको जितनी जरूरत है उतना अपना इस्तेमाल कर लो, बाकी लोगों में बांट दो, और पलट के इतना आएगा कि पूछो मत.
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक दोगे तो दस देंगे, पता तो हो गई ना सभी को,
0: सही बात है। और ये होता
1: तो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे हम, जितना हमको मिल रहा है हम उतना रख लेंगे, बाकी दूसरों की तरफ जो हमारे रिस्क में से भी दूसरों का रिस्क का हक बनता है, पता है आपको।

0: ये हम भूल ही जाते हैं। हमेशा हम हमारे हक की बात करते हैं, लेकिन हमारे रिस्क में से भी दूसरों का रिस्क निकलता है वो भूल जाते हैं। हमें ही चाहिए सब कुछ, इंसान जो है मतलबी है ना, हमें ही चाहिए, मेरे पास ही रहना चाहिए सब कुछ, ऐसे वैसे एक्सपायर ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, और जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे आखिर में जो है सबसे हसीन धोखा जिंदगी देती।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो बेहतर है कि अपनी आखिरत को सेट कर लो, गोल बना लो, उसके बाद में आपके जो भी कमिटमेंट है, जो आपकी जरूरियात है जिंदगी के, हाँ जो जरूरियात है आपके, जिससे कि आपको माइंडेटरी है, जैसा कि आप बेसिकली देखा जाए तो रोटी कपड़ा मकान और जो है इमरजेंसी फंड्स होते हैं, तो कैलकुलेटिवली अपनी चीजों को करते हुए और कुछ सेविंग इमरजेंसी फंड्स रख ले, कुछ सेविंग्स रख ले, और क्या कहते हैं अपने ज्यादातर के कुछ भी चीजों के पीछे भागे नहीं कि मुझे अमीर बनना है, जो आपका है वो आपकी तरफ आएगा ही, आप कोशिश करो पर दिल मत लगा लो, तो उसके बाद में जो तकलीफें होती है वो बहुत झेली नहीं जाती हैं। तो भाई जन जितने भी लोग सुन रहे हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आफियत से रखे, सलामत रखे। परदेसी हैं हम, हमें पता है कि अहमियत एक एक रुपए की क्या होती है, वक्त की अहमियत क्या होती है, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि दुनिया तो जैसे तैसे बन जाएगी, निभ जाएगी, बस अपनी आखिरत पे फोकस रखो, अल्लाह से मोहब्बत रखो, अल्लाह से कमिटमेंट बना कर रखो। देखिए जो इंसान जो अल्लाह से कमिटमेंट बना लेता है, यानी नमाजें पढ़ता है और जो है अच्छे काम करता है, अल्लाह की बताई हुई चीजों पर चलता है, तो उसके सारे काम अल्लाह अपने जिम्मे ले लेते हैं, और सारी कमिटमेंट जो भी आपने है वो रखी है बना के अपनी जिंदगी में, सब अल्लाह रख देते पूरे, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने क्या किया, हम अपनी खुदी से वो खुद की खुशी में इस कदर निकले कि खुद की खुशी से खुद खुशी करने निकले, बोले ऐसी बात हो जाती है फिर तो बेहतर होगा।
1: वापस ही बोली, क्या बोला आपने?
0: हाँ यार, ये वापस नहीं होता है, वो अल्फाज निकल जाते हैं तो निकल जाए।
1: अरे मैंने सोचा मैं लिख लूं,
0: खुशी में खुद की खुशी में खुद ऐसे निकले कि खुद की खुशी के लिए खुद खुशी करने निकले।
1: वाह क्या लाइन बोली है, ये अभी आपने बनाई या पहले से सुन रखी थी?
0: ये निकल गई है मैडम, ऐसा किसी का बनाया हुआ नहीं है ना कहीं से कुछ है, बस वो फ्लो में निकल गया है। ये भी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, देख लो आप।
1: वाकई वाकई
0: सारी चीजें हम उधार लेकर आए हैं जिंदगी में, और बड़े डंके बड़े चोट बताते फिरते हैं, क्या ही बोले। आखिरत की फिक्र रखें भाईजान, खबर की फिक्र रखें, हमारी खबर बड़ा खतरनाक इम्तिहान है, अल्लाह पाक जो है बचा कर रखे, तो ये चीजें हमारी फिक्र होगी तो दुनिया कैसे ना कैसे बन जाएगी, अल्लाह ने वादा करके भेजा है ना।
1: सही।
0: हमारी कमिटमेंट, अच्छा पहले में तो ये बता रही कि हमारा दिल क्यों नहीं लगता है दुनिया में, हम क्यों सेटिस्फाई नहीं होते हर चीज से, एक सवाल है।
1: लालच और ग्रीड और हमारा बेहतर कि हमें और बेहतर मिल जाए, दूसरों को देखते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, सुकून नहीं है इसलिए मुतमईन नहीं हो पाते।
0: देखिए मेरा ये मानना है, और ये चीज आपको जितनी चीजें, आपको बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सोना मिल जाए, जवाहरात मिल जाए, आपको जो है सब कुछ मिल जाए, फिर भी आपका दिल बेचैन रहेगा, क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया के लिए बनाए गए ही नहीं है। जो चीज जहाँ की बनाई होती है ना, वो उसके सुकून वहीं पर होता है। अब जैसा कि हम परदेश में रहते हैं, हमारे घर जाएंगे हम,
1: सुकून होता है, अल्लाह के करीब होते हैं।
0: नहीं, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं वही तो बताना, जैसा हम परदेश में रहते हैं, अब हमें सुकून मिलता है जब हम छुट्टी पे जाते हैं तो खुशी होती है, क्यों? हमारा मुल्क वो है, हम वहाँ पर पैदा हुए हैं, तो हमें खुशी एक अलग होती है। अब हमारे अब्बा पैदा हुए हैं जन्नत में, अब्बा आदम, सही है ना? अब अब्बा आदम पैदा जन्नत में हुए, वो दुनिया में आए, टेम्पररी था सारी चीजें। अब हम जब दुनिया से जाएंगे, जब जन्नत में पहुंचेंगे तो भाई वहीं पर सुकून मिलेगा, क्योंकि हम वहीं के बनाए हुए हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला क्या किया कि अच्छे काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, बुरे काम करोगे तो जहन्नम मिलेगी। अल्लाह किसी को जहन्नम में नहीं डालना चाहता, इंसान अपने से अपने फ्री विल की चक्कर में, जैसा कि आपने कहा ना फ्रीडम और कमिटमेंट, फ्रीडम की चक्कर में, फ्रीडम के नाम पर भी जो है ना हम बहुत कुछ कर जाते हैं जो कि हमको नहीं करना होता है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा रिश्ता अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ कैसा मजबूत है। सारे रिश्ते निभे जाएंगे, सारी कमिटमेंट्स हो जाएंगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया लाइफ को। हाँ मैं रिश्तों को बहुत सीरियस लिया हूँ, अपनी फैमिली हो गई, अपने दोस्त साहिबाब हो गए, मुझसे जो भी जुड़ा मुझके साथ जो है बहुत सीरियस रहा हूँ और उसको बहुत अच्छे से निभाता हूँ, क्योंकि निभाना बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। जो इंसान रिश्ते निभाता है वो सारी चीजें निभाता है, पता है आपको?

0: बिल्कुल सही बात है।
1: जो इंसान रिश्ते निभाने की सलाहियत रखता है, रिश्ता एक दो पल का नहीं होता है, ये एक कमिटमेंट होता है, एक कंसिस्टेंसी होती है। और मैं तो चला था कारवां पे, लोग मिलते चले गए, कारवां बनता चला गया, आखिर में जब मैं देखा तो धूल का बड़ा गुबार था और मैं अकेला खड़ा था। जिंदगी इतनी है तो ज्यादा लोड मत लो, अपनी जिंदगी में अच्छे रहो, अपने से जितना अच्छा काम कर सकते हो करते रहो, खाओ पियो खुश रहो, मेरा सबको यही मैसेज है और मैं भी इसी चीज पे अमल करने की कोशिश करूंगा।
0: नाइस। एक सवाल आखिरी आपसे,
1: परेशान ना करें।
0: हाँ, आखिरी सवाल आपसे आज करूंगे, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था?
1: हाँ यार, मतलब एकदम फुल एनर्जी वाली दिख रही है क्या?
0: नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आज आप इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने की, वैसे तो हमेशा ही करते हैं, आज भी बहुत अच्छी की, मैंने कहा आज आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल ब्रेकफास्ट किया समथिंग, बट हाँ जो भी बातें आपने कही बहुत अच्छी कही, जबरदस्त, थैंक यू सो मच।
1: मेरी कोशिश ये होती है कि पहली चीज मैं सबको ये चीज बता देना चाहता हूँ जो भी सुन रहे हैं, और मैं 107 का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने कि हम एक एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट अपनी दिल की बात कह सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि होता ही है कि कभी कभी इंसान के पास में बहुत सारी बातें हो रहती है मगर वो शेयर नहीं कर पाता। तो थैंक्स टू 107 एंड थैंक्स टू नाजिया मैडम और बाकी सब लिसनर जो भी हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, कोई भी चीज होती है, एक इंसान एक 5-10 मिनट में क्या ही अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएगा या फिर क्या ही उस टॉपिक के ऊपर में जो है बात कर पाएगा। तो कोई भी इंसान को किसी भी चीज से अगर कोई चीज का बुरा लगता है तो आप कोई भी चीज उस तरीके से ना लें, क्योंकि हम 5-10 मिनट में जज नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से जो है, जब तक आप बुक पढ़ेंगे नहीं, उसके कवर को देख के जज मत कीजिए, वो वाली बात हो जाती है।
0: बहुत सारी चीजें आज आपने सब बता डाली है। हाँ, क्या
1: नहीं नहीं, मैं तो बस ये कर रहा हूँ, और मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए नहीं, मेरे पास भरी पड़ी नॉलेज है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास में जो इल्म अल्लाह ने दिया है इसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे जो चीज पता है मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, एक तो नीक मिल जाती है और मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाती है। बस यही मेरा डिस्क्लेमर था।
0: चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए,
1: आप भी,
0: अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check. Right guys, welcome back. Time for the time check. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:07।
0: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी, एक बार वापस आप सबको कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ। और यहाँ पे कुछ मैसेजेस थे, जैसे उसामा बिन शफीक जी का मैसेज है और कहते हैं आई थिंक फ्रीडम इज हैविंग द स्टीयरिंग व्हील, कमिटमेंट इज चूजिंग अ डेस्टिनेशन एंड कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स इट, द आइडियल थिंग इज कमिटेड फ्रीडम। वेरी नाइस, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी। रईस जी आपने जो कहा ठीक है, शहजादा जी मैं करती हूँ।

पे आपको कॉल करती हूँ. सलाम कहते हैं यहाँ पर अब्दुल करीम जी हमारे साथ. वालेकुम अस्सलाम. एंड कुछ डिलीट किया है अहमद जी हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ ये इन्होंने तो कुछ डिलीट किया है. एंड इसके अलावा यहाँ पे कादर अब्दुल हादी जी हैं और कहते हैं कमिटमेंट इज़ द एंड ऑफ द रोड वेयर एज फ्रीडम इज़ वॉलेटाइल. हर कोई अपने हिसाब से सही सही बता रहा है. और यहाँ पर इमरान जी का मैसेज है, कहते हैं हेलो नाजिया मैम सलाम, और आपको पहली बार मैसेज कर रहा हूँ, थैंक यू जी. और मेरा नाम इमरान है और मैम मुझे लगता है कि कमिटमेंट और फ्रीडम दोनों बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी इंसान कमिटमेंट कर ले और उसे फ्रीडम ना दी जाए तो मंजिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन फ्रीडम की लिमिट्स होनी चाहिए और कमिटमेंट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रीडम में फ्री हो जाते हैं और कुछ लोग कमिटमेंट के चक्कर में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते. मैम मुझे शायद मैसेज में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ड्यूटी पर हूँ इसलिए सिर्फ मैसेज कर रहा हूँ. बट थैंक यू सो मच इमरान राही जी, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों में गुड बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है हमेशा ही. और जैसे हमने कुछ सिनेरियोज और कुछ सीन्स, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर दोनों चीज़ों का इक्वली होना इम्पॉर्टेंट है, वहीं पर कुछ चीज़ें अगर आपके ऊपर बोझ हो रही हैं फॉर द सेक ऑफ कमिटमेंट, आप उससे बाहर निकल के आइए. आपकी एनर्जी खराब ज़ाया हो रही है, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, फॉर द सेक ऑफ कमिटमेंट आपको बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकल कर आइए. क्योंकि कुछ चीज़ों को छोड़ देना या निकल आना या क्विट कर लेना हार नहीं होती, वो आपकी ग्रोथ होती है. और मैं ये कहती हूँ कि कमिटमेंट और फ्रीडम को समझना ये है कि ये दोनों हमारे साथ चलें. कमिटमेंट के बगैर वाकई इंसान किसी भी गोल तक, किसी भी ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच सकता, उसे नहीं अचीव कर सकता. वहीं पर फ्रीडम के बगैर इंसान अपनी खुशी, अपनी असल पहचान वो कैसे, वो खो देगा अगर उसको फ्रीडम ही ना मिले. जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो कितने कमिटमेंट के साथ बच्चों को कितनी शिद्दत के साथ पढ़ाती है, लेकिन अगर उसके पास ये फ्रीडम ना हो कि किस तरह का टीचिंग मेथड उसे चूज करना है, तो क्या वो उस तरह के रिजल्ट्स दे पाएगी? कभी भी नहीं. वहीं पर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, किस शिद्दत से, किस कमिटमेंट के साथ हम सबकी परवरिश करते हैं, लेकिन फ्रीडम भी हमें देते हैं कि हम अपने आप को एक अच्छा बेहतर इंसान बनाएं. तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं. समझदारी ये है कि हम कमिटमेंट और फ्रीडम को, दोनों को समझदारी से अपनी लाइफ में पिक करें. और ये हम सब के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कमिटमेंट के बगैर, जैसे आप लोग भी कह रहे हो, मैं भी कह रही हूँ कि वाकई कोई भी गोल, कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते. हम जो हैं वो कमिटेड रहें फ्रीडम के साथ. फ्रीडम हमें जो है वो कमिटमेंट की इजाज़त देता है, फिर कमिटमेंट के साथ हम जो है वो फ्रीली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकें. लेकिन हाँ, कमिटमेंट को पीछे छोड़ना ये सही नहीं होगा और साथ में फ्रीडम का भी गुड ख्याल रखना. तो देयर हैज़ टू बी लाइक अ गुड बैलेंस, जो आपने भी कहा और मैंने भी कहा. और फाइनली मैं यही कहूँगी कि कमिटमेंट जो है वो हमें और आपको, जैसे इन्होंने कहा, हमारे एक लिसनर थे, इनका मैसेज उसामा जी का कहना था, और बिल्कुल सही बात है कि कमिटमेंट कहीं ना कहीं हमें और आपको हमारी मंजिल तक पहुंचाती है. और फ्रीडम हमें वो जो सही मंजिल तक पहुंचना है ना, उसे पिक करने का और रास्ता चूज करने का इख्तियार देती है. तो अगर सिर्फ सिर्फ जिंदगी में फ्रीडम की बात की जाए तो शायद वो रिजल्ट्स ना मिले. फ्रीडम में कमिटमेंट हो, कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंसी हो और फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप मैच्योर कहलाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और शायद आप जहाँ तक जाना चाहते हैं, जिस डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहते हैं, जो भी गोल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, जो भी एम है आपका, वो आप आसानी से कर पाते हैं. तो चलिए, बस वैसे तो कहने को बहुत कुछ है बट मुझे नहीं लगता कि मैं आज इसको बहुत ज़्यादा एक्सीड करने वाली हूँ. यहाँ पर इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे क्योंकि हाँ, अब हमें गेम भी खेलना होता है, पता है आपको. तो बस अब से थोड़ी देर बाद वो गेम का आगाज़ कर देंगे. और आज भी मैंने सोचा है कि भाई वो मैं कुछ गाने ही बीच से आपको सुनाऊंगी. और मज़ा आया मुझे कल, कुछ लोग अच्छे से बता पा रहे थे, कुछ लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा था, बट फिर भी आज मैं थोड़े और ईजी रखती हूँ. ठीक है, लेट्स सी, मेरी ईजी आपको ईजी लगते हैं कि नहीं, बट आई एम रियली कमिटेड टूवर्ड्स इट. लेट्स सी. फिलहाल के लिए जावेद अली की आवाज़ में बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक, एंजॉय कीजिए एंड स्टे हुक्ड टू FM 107. दिल से देसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं Summer Mornings. मैं हूँ नासिया आपके साथ 8:27 on the clock. और कब बोला था मुझे शहजादा जी ने? एकदम पहला मैसेज देखो तो शायद 6:46 पे और मैं 8:27 पे कनेक्ट कर पाई हूँ. आई एम सो सॉरी. ये मेरा बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जो कमिटमेंट है वो नज़र आ रहा है कि कितनी देर बाद मैं आपको ले पाई. बट हाँ, उसके पहले एक्सक्यूज़ तो ये है कि भाई बैक टू बैक कॉल्स आ रही थी एंड सो फॉर दैट मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाई. बट फाइनली कनेक्ट कर पाई हूँ. सो गुड मॉर्निंग एंड सलाम एंड आई एम सॉरी.

0: सॉरी कि आपको मैंने लेट कनेक्ट किया।
1: वालेकुम सलाम, देर आए दुरुस्त आए,
0: पर आए तो है ना, ये बड़ी बात आए तो सही फाइनली।
1: तो ये होप था, ये उम्मीद थी कि लौट के तो आएंगे भले थोड़े देर से।
0: क्या बात है, नहीं यही आपका और हमारा जो है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट है 107 की टीम का कि देर सवेर हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते ही जुड़ते हैं और ये होना चाहिए। अब फ्रीडम आपने मुझे दी कि आगे पीछे आप कर लीजिए टाइम, चलिए।
1: हाँ क्योंकि नहीं हमको पता है ना जो आप स्टूडियो में जिस आप वो जो फॉर्मेट आपके पास होते हैं सारी चीजों के
0: वो हमें फॉलो करना पड़ता है,
1: गाने सुनाने होते कुछ न्यूज देनी होती है फिर मैसेजेस पढ़ने होते हैं तो पता है कितनी बड़ी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है
0: बहुत अच्छा वाला नाश्ता किया है ना।
1: जी जी जी और एक्चुअली अभी देखो आप लोग का जो प्रोग्राम सुनने में आ रहा है चेंज हो रहा है कि आप 130 में जाओगे लेकिन जितने रिस्पॉन्स ये कॉलर है ना जितने रिस्पॉन्स है ना तो जो नाजिया मैम है मैमेश मैम है और सामिया तैयब थे और मुतैना सफदर थे तो ये ना पूरा एक है ना वक्त देते हैं एक कम्प्लीट है ना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं तो ये उसमें सलूक है और इजहार मोहब्बत है और काफी कुछ है कि लिसनर्स के मतलब है ना कमेंट्स इतने कॉल्स को है ना इतना मतलब करीब से ले और जाने तो ये बहुत हर एक में ये सब क्वालिटी नहीं है ना तो लिसनर अपसेट इसीलिए हो जाता है कि आप चले जा रहे हो आप कभी आओगे सुबह नहीं रहोगे तो इसीलिए थोड़ा सा अपसेट हो जाता है दूसरे आएंगे।
0: मुझे भी लग रहा है शहजादा जी कि मैं भी सेट हो ही गए थे मॉर्निंग्स में और मेरी बड़ी अच्छी मॉर्निंग जा रही थी आप लोगों के साथ बट चलिए वही है कि चेंज जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और आना भी चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल ये चीज है हर एक मोमेंट पे हर एक वक्त पे हर एक इंसान को ना प्रिपेयर रहना चाहिए फेस करने के लिए नो डाउट है सो वेरी वेल डन और क्या कोई टेंशन नहीं है।
0: मुझे पता है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे आफ्टरनून्स में भी इंशाल्लाह है ना।
1: yes, yes,
0: ये
1: yes,
0: बात तो शहजादा जी मेरे पास मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके साथ अपने गेम का जो है वो आगाज करूं इफ यू से यस अगर आप इजाजत दें और कहते हैं हाँ।
1: हाँ। लेकिन मैं अपना एक चीज बोलूंगा मतलब रिक्वेस्ट थी कि अभी तो गाने में तो ठीक ही है कि आप बीच के लाइन सुनाने वाले हो सही है ना
0: हाँ।
1: तो कुछ गाने ना ऐसा मतलब कॉकटेल जूस के जैसा लेके आ जाना कभी 80s 70s 90s ऐसे
0: अच्छा पुराने तो, ले आऊं अच्छा ठीक है चलो चलो सही बोला आज तो चलिए अब जो मेरे पास जो मैंने कर लिया एडिट वही अब तो जाएंगे बट हाँ कल ऐसा कर लेंगे ठीक है हाँ 70s 80s के पुराने गाने रखते हैं नाइस मजा आएगा। हाँ तो कल फिर हम स्पेशली कॉल करेंगे जावेद जी को और उनको लेंगे भी आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे थैंक यू कल मैं फिर वाकई 70s 80s के भी गाने रखूंगी ठीक है। आज तो 90s से थोड़ा सा ऊपर आप कह सकते हैं 2000 के हैं ये सॉन्ग्स बट हिट हैं सारे तो आई होप आप पहचान पाए शायद इंशाल्लाह
1: चलिए कोशिश करते हैं।
0: हाँ ये बात है कोशिश करते हैं तो चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करती हूँ और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
1: ओले ओले
0: बिल्कुल

0: उली उली एक गाना तो पहचाना, और जो फर्स्ट कॉलर्स होते हैं उनके लिए हमेशा टफ होता है, और आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप आते हैं, फर्स्ट कॉल आप लेते हैं और कनेक्ट होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप वाकई चैंपियन है, ये मैं कहूंगी दिल से, रियली।
1: और ये सारा क्रेडिट है ना फीमेल आरजे को ही जाता है।
0: अरे यू आर काइंड टू से दिस, हमें क्या चाहता है, इसमें आपका ही टैलेंट है, आपकी वो है हिम्मत है माशाल्लाह। बट बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह शहजादा जी, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लिसनर्स हमारे साथ हैं। थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज, बाय, अल्लाह हाफिज। देखो ये वाकई बड़ी बात है कि कोई जो है वो पहला चैलेंज आकर ले, ये आसान नहीं होता, क्योंकि पहला थोड़ा सा टफ होता है, समझ में नहीं आता, बाद में तो शायद मैं थोड़े से रिपीट भी कर देती हूँ तो थोड़ा सॉर्टेड हो जाते हैं, अब क्लियर हो जाते हैं माइंड में कि अच्छा ये। बट हाँ, फर्स्ट जो कॉलर है जो है वो चैम्पियन वाकई अल्टीमेट है। तो फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट कॉलर हमारे अल्टीमेट चैम्पियन शहजादा जी बन चुके हैं, और अब मैं देखना चाहती हूँ कि कोई और हमारे साथ जुड़ गया है, तो इनसे पहले बात करते हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं आप
2: जी? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत है नाजिया जी?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजहर जी है ना?
2: अल्लाह का शुक्र है।
0: मुझे भी पढ़नी चाहिए, मैंने पहचान लिया बस। मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप, कैसी जा रही है सुबह आपकी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ताला जिंदगी बख्श रहे, अल्लाह की बारगाह में हर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मनाते हुए जिंदगी जीना है।
0: बहुत सही कहा माशाल्लाह।
2: आप खैरियत से?
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक, सब खैरियत। अब आप आए हैं तो मैं जाने तो नहीं दूंगी आपको, इसका
2: मतलब बिल्कुल गेट खेलने के लिए।
0: अच्छा, अरे जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड्स से।
2: इसके अलावा भी क्या है ये जो फर्स्ट टाइम, मतलब ये नहीं, रेडियो में हम लोग जब सुनते ना तो वो सुन के जवाब देने के लिए आसान हो जाता, ये फोन में जब कॉल करके जब सुनते ना तो थोड़ा टफ हो जाता,
0: टफ होता है। हाँ, क्योंकि एक लाइव प्रेशर आ जाता है कहीं ना कहीं, बैक ऑफ द माइंड वो है, बस उसी की तैयारी है कि लाइफ में कभी इस तरह के प्रेशर्स आपको या इस तरह की चीजें आपको इनकाउंटर करने को मिलती हैं तो आप कैसे परफॉर्म करोगे, तो बस ये हमारी आपकी प्रिपरेशन है।
2: और एक जी, और एक बात क्या है नजर जी, जब मतलब जब इंसान जो है ना कोई चीज के लिए एक्सपेक्ट करता ना तो उन्हें एक चीज की ख्वाहिश रखता है कि अरे मतलब कैसा भी करके जीतना, यानी वो कॉन्फिडेंस के अंदर उन्हें थोड़ी हिम्मत जो है ना लास्ट में हार जाना पड़ता है उसको, तो वो हिम्मत करके आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ, हिम्मत करके आगे बढ़ना ही जीत है, बाकी जीत तो बहुत सेकेंडरी है,
2: वही है
0: वही जीत,
2: वो तो असल जीत
0: वही है, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: हजारों ऑडियंस के सामने बीच में स्टेडियम के बीच में ठहर के सिक्स मारना वो बहुत बड़ी बात है, आउट भी हो गए तो सिक्स मारे से उतना जो है ना किरदार बोल सकते हैं उसको।
0: हाँ, लेकिन खेलने ही ना आए, बैटिंग ही ना करें तो फिर शायद हो सकता है हम सिक्स मार सकते थे बट हमने ट्राई नहीं किया, तो ट्राई जो कर रहा है ना वो कभी ना कभी तो सिक्स मारेगा, ये तो सच है बिल्कुल। चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करती हूँ, आपको 30 सेकंड्स यहाँ मिलेंगे, कोई गाना समझ में ना है तो जल्दी से आप मुझे बोल दीजिए पास, ठीक है, तो आपको इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट आपको, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।

0: तूने कोई
1: जादू नहीं किया।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही बताया, तूने कोई जादू नहीं किया। सबने 3 का स्कोर कर लिया, क्या बात है। अब मुझे रात दिन तुम्हारे सिवा तूने कोई जादू नहीं किया, 3 गाने आपने पहचाने हैं। वाओ नाइस, और मुझे लग रहा था ये टफ है, काफी टफ थे तुम्हारे सिवा स्पेशली, और ये मैंने कोई जादू नहीं किया, बट क्या बात है आपने पहचान लिया। सर जी आपकी तो बहुत अच्छी नॉलेज है।
1: ये आपकी जो है ना, ये आपका हिम्मत है, आप हमारी हिम्मत दिए, हम हिम्मत से आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, 3 में पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह।
0: बहुत अच्छी आपकी हिम्मत है, अल्लाह ताला इसी तरह से आप जो है हिम्मत करते रहे, कामयाब होते रहे, ढेरों दुआएं आपके लिए।
1: आमीन। लेकिन भाई तो 3 करा, वो भाई 1 करे, लेकिन इसके बाद भी आने वाले लिसनर्स भी, कॉलर्स भी इंशाल्लाह मेरे से आगे करेंगे, अल्लाह ताला।

0: तो यही दुआ है कि हर किसी को अल्लाह आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह
1: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ख्याल रखिए।
0: काफी दिन के बाद गेम खेला मैं अल्हम्दुलिल्लाह।
1: हां आप काफी टाइम के बाद, बल्कि आप बहुत टाइम के बाद जुड़े, इतने टाइम के बाद।
0: जी जी
1: चलिए
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।
1: अभी तक का अगर सिनेरियो देखा जाए तो दोनों विनर्स, मतलब दोनों ही के दोनों विनर्स हैं, अच्छा खासा स्कोर किया है, लेकिन हाईएस्ट अभी चल रहा है 3। लेट्स सी 3 से ज्यादा कोई और कर पाता है कि नहीं। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं आप यूसुफ जी? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: वही वो मैं एक मैसेज कह रहा कि ये सेम थीम का फजील खिला रहे हैं।
1: अच्छा, ये भी खिला रहे हैं?
2: सेम सेम, ये डेली होता है, डेली होता है, मतलब कॉल पे नहीं है, व्हाट्सएप पे है बस।
1: तो बस हम कॉल पे आ गए, ये हमारा फर्क। कुछ अलग होना
2: चाहिए।
1: अरे मैं तो खुद इतनी थक गई हूँ, कभी क्रिकेटर्स के, कभी फुटबॉलर्स के, कभी ऐसी आवाज, कभी वैसी आवाज। लोग कहते ये मत चलाइए, वो कहते ये मत खिलाइए, फिर किसी ने सजेस्ट किया नहीं नहीं आप सॉन्ग्स ही रखिए, बॉलीवुड रखिए। मैंने कहा चलिए ऐसे कर लेते, मैं तो आप लोग के हिसाब से चली, मैं क्या बताऊँ, चेंज करते करते करते मैं खुद तो एकदम परेशान सी आ गई हूँ कि क्या करूँ।
2: मैंने एक थीम एक वीक के लिए रखे ना, अच्छा रहता जैसे कि
1: मैं तो यही चाह रही हूँ
2: कंटिन्यू एक थीम एक वीक करें, फिर नेक्स्ट वीक इसी तरह से दूसरे भी करते हैं ना।
1: मेरे पास ना तीन मैसेज थे, हाँ वो फर्क तो हो जाता है, तीन मैसेज थे बैक टू बैक, नहीं मैम क्रिकेटर मत रखिए और फुटबॉलर्स वगैरह मत रखिए, आप ना वही रखिए। तो मुझे लगा अच्छा मेजोरिटी यही चाह रही है, तो चलो फिर गाने की तरफ आ जाती हूँ मैं। तो बस अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपस में मिल गए, मैं किधर जाऊँ, जो आप डिसाइड किया मैं उधर जाऊँ।
2: एक ही दिन में वही थीम दो बार हो जाएगी तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए वो अच्छा, ये भी अच्छा ही है, ये थीम भी अच्छी है, लेकिन दो बार हो जाएगा ना डेली। फजील वो रिक्वेस्ट हमें खिलाते हैं ऐसे, बीच में से गाना सुनाते हैं और
1: तो बीच में सुना रहे हैं। मैंने कहा चलो कुछ लोग म्यूजिक सुना रहे तो मैं बीच में आ जाऊं, पता चला बीच में भी सुना रहे। अब मैं लास्ट में चली जाती हूं, बिल्कुल लास्ट में सुनाऊंगी आपको। चलिए खुशी है कि फजील जो है वो एटलीस्ट मैसेज पे ले रहे हैं और यहाँ पर जो है वो लाइव कॉल पे हो रहा है, तो बस यही थोड़ा सा फर्क है। अल्लाह थैंक गॉड, नहीं तो ये भी मुझे बंद करना पड़ता, कुछ और सोचना पड़ता। चलिए खैर आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं और 30 seconds है। कोई सॉन्ग नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बोलिएगा जल्दी से कि नेक्स्ट, तो मैं पास कर दूंगी वो सॉन्ग, ठीक है?
2: जी जरूर, जी जरूर।
1: ऑल द वेरी बेस्ट, और पहला सॉन्ग आपके लिए विद योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
2: रहना है तेरे दिल में,
1: बिल्कुल सही।

0: जी याद नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब मुझे रात दिन
1: बिल्कुल सही सही
2: मचलती बहार में दिल कहता है
0: याद नहीं सर।
1: यहाँ पे टाइम भी आपका अप होते हुए सो अब मुझे रात दिन
0: दो आपने बचाने हैं।
1: चलो कोई नहीं बट आपने कुछ कोशिश
0: गाने तो पूरी गाने हैं मतलब जहन में फर्स्ट लाइन याद आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कॉल पे है ना और टाइम भी पास
1: रहता है प्रेशर रहता है मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल यही बात है गाने हिट ही मैंने पिक किए बट होता ये कि वो एकदम से आप कनेक्ट नहीं कर पाते जैसे अब शहजादा जी ने बोला कि आप 70s के और 80s के लिए आइए तो मैंने कहा चलो कल वो कर लेते मैं तो आपके हिसाब से ही चल रही हूँ चलिए बट बहुत अच्छी कोशिश की थैंक यू सो मच यूसुफ जी थैंक यू फॉर योर कॉल
0: ख्याल रखिएगा
1: वालेकुम अस्सलाम बाय ऑलराइट और अभी तक का हाईएस्ट इज स्टिल 3 अभी देखना है 3 से ज्यादा कोई यहाँ कर पाता है स्कोर की नहीं एक और कॉलर मेरे साथ हेलो
3: गुड मॉर्निंग मैडम
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग
3: कैसे हो आप
1: मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं
3: बढ़िया
1: बढ़िया क्या मैं आपसे नाम राज है क्या चलिए आपकी हंसी से मैं पहचान गई हाँ

0: ये तो राज है हमारे साथ. तो मुझे लगता है आज आप जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे. आपकी हंसी में कॉन्फिडेंस है. लेट्स सी. चलिए 30 seconds हैं आपके पास, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बोलिएगा पास, तो मैं जल्दी से पास कर दूंगी. ठीक है, चलो जी. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
1: कोई जादू नहीं
0: सही.

0: बिल्कुल सही वो अजनबी जाना पहचाना सपनों में उसका वेरी गुड बिल्कुल सही भरे
1: भरे
0: क्या बात है कौन सा क्या बात है क्या बात है अमेजिंग अमेजिंग बिल्कुल हैट्स ऑफ आपके लिए छह एकदम मैंने चलाया और छह के छह आपने एकदम सही बताए हैं रियली प्राउड ऑफ यू बहुत अच्छा खेला आपने क्या बात है आपने तो सारे के सारे गाने पहचान लिए सुपर आपका कोई फेवरेट है इसमें से
2: टीचर जब ऐसा टफ क्वेश्चन देता है तो फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है
0: तो प्रैक्टिस आपने बहुत ही अच्छी की और कितना अच्छा परफॉर्म किया हालांकि मैंने पेपर टफ सेट किया था बट आपकी परफॉर्मेंस रियली आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा स्कोर किया सिक्स इज लाइक अमेजिंग अभी अब आपके पास टाइम खत्म हो गया वरना शायद टाइम और होता तो और आगे भी पहचान सकते थे आप वेरी नाइस वेरी इंप्रेसिव थैंक यू सो मच राज बहुत अच्छा खेला आपने वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत मजा आया आपके साथ खेल कर अपना ख्याल रखिएगा आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है इसमें से तो मैं आपके लिए प्ले
2: इसमें जो चलाया उसमें मेरी जिंदगी में
0: मेरी जिंदगी में अजनबी ओके आई विल प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू ठीक है चलो ओके यू टू टेक केयर बाय अल्लाह हाफिज तो यहाँ पर देखिए अभी तक का जो हाल चाल है वो कुछ इस तरह से है कि राज इज एट सिक्स और आपको जो है ट्राई करना है करना ये है कि कम से कम कोशिश करें कि 6 से ज़्यादा का आप स्कोर करें और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे आप ज़रूर कर पाएंगे तो ट्राई करना है बस ट्राई करने के लिए कॉल करना है कॉल करने के लिए नंबर है 4436437 या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इफ़ इन केस आप यू नो कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे मैसेज कीजिए मैसेज करने के लिए नंबर है 666-22107 इज द नंबर तो एक बंदा कोई और मेरे साथ यहाँ जुड़ रहा है चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं लेट्स सी हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रमेश जी हैं क्या
3: जी समीर जी पहचान लिया आपने
0: जी ओके कैसे हैं आप और कहाँ थे इतने दिनों से
3: बस ऐसे ही सरफराज भाई के साथ घूम रहे थे तो
0: अच्छा
3: हमने कहा लाइए एक बार मिलाते हैं
0: बहुत अच्छा किया आपने तो आपको गेम तो क्लियर है बीच से गाना मैं प्ले कर रही हूँ आपको गाना पहचानना है
3: जी ठीक है चलिए
0: ठीक है
3: जी
0: कुछ कह रहे हैं क्या पीछे से सरफराज जी
3: हाँ सरफराज जी हैं
0: कुछ तो कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कैसे हैं आप मेरा तो हाल चाल ठीक है आप बताइए आप इतने टाइम से जुड़ ही नहीं पा रहे
3: बस अब ड्राइविंग करने फोन नहीं पा रहा हूँ अच्छा
0: आने मैंने सही कर दिया फिर आपने मुझे जैसे ही टोका मैंने बिल्कुल सही यहाँ से अच्छा तो सुबह से आपकी ड्राइविंग चल रही है और अभी मौसम का बाहर क्या हाल चाल है ठीक है थोड़ा कि है अच्छी खासी तगड़ी वाली धूप
3: नहीं कल से तो थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कल से
0: बेटर है चलो ये अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह उतनी गर्मी उतनी वाली नहीं है ना
3: नहीं उतनी वाली नहीं कल परसों से तो आज तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक
0: हाँ नाइस चलिए सही
3: समीर भाई गेम खेलते
0: हैं हाँ इनके साथ गेम खेलते हैं और ऑल द बेस्ट आप इन्हें बोलिए मैं भी बोलती हूँ
3: ठीक है ऑल द बेस्ट
0: चलिए जी और आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब

0: यहाँ पे टाइम भी अप होता हुआ, बट कोई नहीं, आपने सबसे टफ वाला पहचाना है जब दिल मिले. कोई अभी तक पहचान नहीं पाया था इस गाने को. इसके लिए मैं आपको हैट्स ऑफ बोलूंगी. ये गाना आपका फेवरेट है
1: जी.
0: कैसे पहचाना? यादें मूवी का. हाँ, बहुत अच्छी बात. इस बात के आपको 2 marks मिलते हैं. पता है ये गाना वाकई टफ है और कोई भी नहीं पहचान पाया था, बट आपने पहली बार ऐसा हुआ कि पहचान लिया. सो फॉर दैट आपको 2 मिलता है. 1 score नहीं 2 सीधा. बट थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा कि आपने ट्राई किया, आप आए हैं, जुड़े, और नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई कीजिएगा कल भी. ठीक है? पक्का,
1: बिल्कुल. आपकी बात करके बहुत अच्छा लगा.
0: मुझे भी. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पर जो गेम का सिलसिला है वो जारी रहेगा, बट बिफोर दैट जैसे राज जी ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि उन्होंने अभी तक का हाईएस्ट स्कोर किया और ये गाना मुझे भी अच्छा लग रहा था, और जितने गाने सारे के सारे अच्छे लग रहे हैं, तो बस मैंने सोचा आप लोग से ही पूछ लूँ. मतलब क्या कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना. अब मैं तो खुद अपनी चॉइस यहाँ पे डाल नहीं सकती थी, तो बस आपने कहा, मैंने कहा चलिए हो जाए.

दोस्तों इतना खूबसूरत सा ट्रैक, बट अब जो है कुछ लोग चाहते हैं कि उनसे हमारी बात हो जाए, गेम हम खेलें, बट हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम कह रहा है भाई निकल लो। तो चलिए बस अब आपसे इजाजत लूंगी इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल वापस आपकी मेरी मुलाकात होगी ठीक 6 बजे। अंसारी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुबीन बुखारी जी आपका मैसेज देके बहुत अच्छा लगा और बहुत टाइम के बाद। एंड राजू जी थैंक यू सो मच। फिलहाल आपसे इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, बदर बिलाल कतर फुटबॉल के मशहूर फॉरवर्ड्स में से एक हैं। उन्होंने 1977 में सिर्फ 15 साल की उम्र में असद की यूथ टीम ज्वाइन की और बाद में सीनियर टीम के अहम खिलाड़ी बन गए। 1979-80 सीजन में वो मंसूर मुफ्ता के साथ लीग के जॉइंट टॉप स्कोरर रहे हैं। 1982 के अमर कप फाइनल में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में आकर बदर बिलाल ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। 1991 तक असद क्लब के साथ उन्होंने 23 ऑफिशियल टाइटल्स जीते, जिनमें 1988-1989 एशियन क्लब चैंपियनशिप यानी आज के दौर में AFC चैंपियंस लीग जिसे कहते हैं सबसे नुमाया है। इस टूर्नामेंट में बदर बिलाल ने कई अहम गोल स्कोर किए और असद क्लब को एशिया का चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, 1981 में ऑस्ट्रेलिया में फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप मुनक्द हुई थी और कतर रनर्स अप टीम रही, और इस रनर्स अप बनने के पीछे स्टार खिलाड़ी बदर बिलाल का एक अहम रोल रहा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका गोल तारीख का हिस्सा बन गया और वो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गोल करने वाले पहले अरब और एशियन फुटबॉलर बने। ये तारीखी वाक्य आज भी लोग याद करते हैं। फुटबॉल एक्सपर्ट जब भी कतर फुटबॉल को लेकर बात करते हैं, बदर बिलाल इस परफॉर्मेंस को हमेशा जिक्र में लाते हैं। उन्होंने ब्राजील और पोलैंड के खिलाफ भी अहम गोल स्कोर किए और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। बदर बिलाल ने कतर की सीनियर टीम के लिए 1982 और 1986 के गल्फ कप्स में भी नुमाइंदगी की। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
0: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107।
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हमेशा

0: अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें। अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें। ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें। कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और रोड पर हर वक्त एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो जदीद दौर में तेजी से आम होता जा रहा है, और वो है बर्नआउट। अब बर्नआउट सिर्फ थकावट का नाम नहीं है, बल्कि जिस्मानी, जहनी और जज्बाती थकन की एक ऐसी कैफियत है जो तवील अरसे तक मुसलसल दबाव, ज्यादा काम और मुनासिब आराम ना मिलने के नतीजे में पैदा होती है। बाज़ लोग समझते हैं कि बर्नआउट सिर्फ मुलाजमत पेशा अफराद को होता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और निगहदाश्त करने वालों और हर उम्र के फर्द को मुतासिर कर सकता है। बर्नआउट की चंद अलामात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हर वक्त थकावट महसूस करना, काम या रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उनमें दिलचस्पी कम होना, तवज्जो और याददाश्त में कमी हो जाना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा जो है वो ज्यादा आना, नींद के मसाइल का सामना करना, सरदर्द या फिर जिस्मानी दर्द जो है वो महसूस हो।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद। मेरी पहचान पहचान सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। देखिए, मेरी पहचान ये वो शो है जहाँ पर हमारी अपनी पहचान को हम ढूंढते हैं, जानते हैं अपनी अहमियत और अपने हर एक पल के लिए ना प्राउड फील करते हैं। पर आज दोहा की इस बेहद खूबसूरत, वो कहते हैं ना गर्मी के दिन, गर्मियों के दिनों में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। और आपने कभी सोचा है कि हम अपने घरों में जब रहते हैं, चाहे वो बड़े बड़े विलाज हो, फ्लैट्स हो, कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि सांस लेने की जगह कम पड़ रही है? कभी सोचा ऐसा? देखिए जनाब, ये कोई चैलेंज या इस तरह का एस्केप रूम का गेम नहीं है, ये हमारी अपनी लाइफ है और हमें कोशिश करनी है कि उन कमरों से हमें अपने आप को ना बाहर निकालना है। मतलब ये नहीं कि जो ये कमरे ब्रिक्स या सीमेंट के बने हैं इनमें से बाहर निकालना है, हमें एक्चुअली उस पुरानी सोच, सदियों से चली आ रही एक्सपेक्टेशन से अपने आप को बाहर निकालना है जिसे हम खामोशी से जीते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हर उस खवातीन की, हर उस औरत की, या यूं कहें उनके दिल की धड़कनों की, जो हमेशा सुबह उठती तो है लेकिन डबल लाइफ जीती है, यानी कि एक दोहरी जिंदगी। और आज हम बात करेंगे उस बहू की जो परफेक्ट होने की कोशिश में खुद को कहीं पीछे छोड़ आई है। तो ब्यूटीफुल लेडीज, एक बहुत ही नाजुक सा, वो कहते हैं ना, परफॉर्मेंस चल रहा है या उसकी तरह है ये। जरा तसव्वुर कीजिए,

एक तरफ वो मॉडर्न वुमेन है जिसे पूरा दोहा जानता है, यूं कहें जिस भी मुल्क से आप हैं, जिस भी शहर से आप हैं, लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका नाम है। लेकिन आप अभी हमारे कतर की किसी खूबसूरत लोकेशन में ऊंचे ग्लास ऑफिस में बैठी हैं और आप वहां एक टीम को लीड भी कर रही हैं, बड़े बड़े फैसले ले रही हैं, हर किसी को चीजें समझा रही हैं, काफी इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन जब आप किसी अच्छे से कैफे में, या यूं कहें मुशर्रफ के किसी अच्छे से कैफे में कॉफी पी रही होती हैं अपने किसी खास दोस्त के साथ, तो आपकी बातों में एक वजन होता है। हाँ, आप चाहे पॉलिटिक्स पर बात करें, करियर पर बात करें, अपनी पसंद नापसंद पर बात करें, हर चीज बड़ी कमाल की होती है। वहां आपकी अपनी एक पहचान है, एक नाम है, एक रुतबा है और वहां आप हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई बदलती है और आपकी गाड़ी अपने घर की तरफ निकलती है, माहौल बदलने लगता है। जैसे ही आप अपने घर में, अपने चाहे बड़े फ्लैट में या बड़े विला में कदम रखती हैं, जरूरी नहीं कि आप दोहा में हो, शायद आपका फोन रिंग करता है इंडिया या पाकिस्तान से या किसी भी जगह से। एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल की घंटी बजती है और अचानक एक झटके में मास्क बदल जाता है। द मोमेंट यू स्टेप इन, आप वो वेस्ट बे की बॉस नहीं रहती, आप अचानक सिर्फ एक बहू बन जाती हैं। वो बहू जिसे हर परंपरा, हर ट्रेडिशन को संभालना है, जिसे हर रिचुअल की बारीकी पता होनी चाहिए। आप वो इंसान बन जाती हैं जो फैमिली के हर मोड़ को ऑब्जर्व करेगी और एक इमोशनल स्पॉन्ज बन जाएगी। अगर घर में कोई गुस्सा है तो गलती आपकी है, अगर बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा है तो परवरिश आपकी है, अगर खाना जरा सा ऊपर नीचे हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। और सबसे बड़ी उम्मीद कि आप कभी शिकायत नहीं करेंगी। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी द वन हु नेवर एवर कंप्लेन्स। चाहे आपके ससुराल वाले अगले कमरे में हो या हजारों मील दूर हो, सिर्फ 6 इंच के मोबाइल स्क्रीन से आपकी जिंदगी को स्कैन कर रहे हो, वो परफेक्ट दिखने का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर कभी कभी दम घोट देता है। अब भाई देखो, आप सिर्फ अपना घर तो नहीं संभाल रही, आप अपने आप को मैनेज कर रही हैं, आप काम भी कर रही हैं, और अगर काम नहीं भी कर रही है तो भी आपके पास इतनी सारी चीजें लाइंड अप है कि उनका ख्याल आप ही को रखना है। एंड यू आर मैनेजिंग इसके साथ साथ लेगेसी ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत जो अक्सर आपके लिए जगह ही नहीं छोड़ती, और हम इसे अक्सर नॉर्मल कहकर टाल देते हैं, है ना। हम कहते हैं सबके साथ तो होता है, पर क्या वाकई ये नॉर्मल है? विश कतर यानी कि वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर हेल्थ की रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, वो साफ तौर पर कहती है कि फैमिली स्ट्रेस और मल्टी जनरेशनल एक्सपेक्टेशंस औरतों की मेंटल हेल्थ और उनकी मैटर्नल वेलबींग पर कितना गहरा और बुरा असर डालती है। देखो, सिद्रा मेडिसिन में जो विमेंस मेंटल हेल्थ सर्विस है, वहां रोज ऐसे केसेस आते हैं जहां औरतें सिर्फ इस प्रेशर की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। ग्लोबल एक्सपर्ट्स और स्पेशली फेमस डॉक्टर शिफाली, उनका कहना है, जो द कॉन्शियस पेरेंट की ऑथर है, वो हमेशा कहती है कि जब तक हम ये कल्चरल पैटर्न्स नहीं तोड़ेंगे, हम अपने बच्चों को भी वही घुटन, वही सफोकेशन तोहफे में देंगे। हमें ये सिलसिला तोड़ना होगा ताकि हम खुद को ना खो दें, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहेंगी तो आपकी पहचान का क्या होगा। आज हम ना कोई सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि हम उन रास्तों की तलाश करेंगे जो हमें इस जगह से, इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बहू के रोल को निभाते हुए भी अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी को जिंदा रख सकती हैं। सवाल गहरा है, क्या परफेक्ट बनना जरूरी है या खुश रहना? जुड़े रहिए हमारे साथ FM 107 पर, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं आज की सोच के ऊपर, काफी गहरी और काफी इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन। एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ। मेरी पहचान है शो का नाम। और अब हम बात करेंगे आज की सोच की, लेकिन उससे पहले आपसे मैं पूछूंगी एक सवाल। वो कौन सी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है, शायद कोई ट्रेडिशन है या कोई किचन का रूल है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल आउटडेटेड है, पर आप उसे सिर्फ इसीलिए निभा रही हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे या फिर रिश्ते खराब हो जाएंगे। बताएं कौन सी वो चीज है। हो सकता है कि कुछ फनी भी हो सकता है कुछ सीरियस भी हो, लेकिन जब आप ये सब शेयर करेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमें एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिलेगा और एक दूसरे की बातें सुनकर हौसला भी मिलेगा। ठीक है, तो जरूर शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। और सवाल ये है कि वो कौन सी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है या कोई ट्रेडिशन है या कोई किचन का रूल है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल आउटडेटेड है, पर आप उसे सिर्फ इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे या फिर रिश्ते खराब हो जाएंगे। डू शेयर विद मी ऑन 6622107 पर। और अभी वेलकम बैक है आप सभी का मेरी पहचान पर। अगर आपने अभी अभी हमारा रेडियो ऑन किया है तो मैं बता दूं कि मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक परफेक्ट बहू के प्रेशर की, जो चाहे हम कितने भी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, हम कितने भी अच्छे मुकाम पर हो अपने करियर के, लेकिन

घर लौटते हैं या घर पर होते हैं तो डॉटर इन लॉ के बीच कहीं फंस जाते हैं, या यूं कहें कहीं फंस चुके हैं। हमने बात की उस सफोकेशन की जो तब महसूस होती है जब आपकी अपनी आवाज घर की दीवारों में कहीं खो जाती है। अब वक्त है आज के सबसे गहरे हिस्से का, जिसे हम कहते हैं आज की सोच। आज की सोच इज्जत और सम्मान यानी ऑनर एंड रिस्पेक्ट के बारे में है। हमें बचपन से हमेशा से इनफैक्ट एक ही बात सिखाई गई है कि सब्र, पेशेंस एक औरत का सबसे बड़ा गहना है। हमें सिखाया गया है कि सब्र का मतलब है खामोशी, चुप रहना, सह लेना। पर आज मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए रुकें और मेरी बात ध्यान से सुने। इज्जत जो है ना, वो दो तरफा रास्ता है, ये कोई वन वे सैक्रिफाइस नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने पलट कर जवाब नहीं दिया या अपनी तकलीफ नहीं बताई तो हम बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर याद रखिए, आप अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट उनकी बातों को मानते हुए भी कर सकते हैं, बिना अपनी पर्सनैलिटी को मिटाए। आपकी इंटीग्रिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात पर हाँ कहें। सफरिंग इन साइलेंस ये एक पैटर्न बन चुका है हमारे लिए, जिसे हम तोड़ना ही नहीं चाहते। ये एक एक्ट ऑफ करेज होगा अगर हम इसे तोड़ेंगे, और ये एक एक्ट ऑफ इंटीग्रिटी होगा जब हम अपने लिए जिएंगे। सोचिए, आप ये खामोशी क्यों कर रही हैं, क्यों रख रही हैं? शायद इसलिए ताकि घर का माहौल ना खराब हो, या ताकि लोग क्या कहेंगे वाला डर सच ना हो जाए। उफ, पर जरा सोचिए उन बच्चों के बारे में जो आपको देख रहे हैं। जब आप बिना कुछ कहे सब सहती हैं, तो आप अपनी अगली जनरेशन को क्या सीख दे रही हैं? आप उन्हें सिखा रही हैं कि एक औरत इंसान नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज यानी एक समझौता है। एक हेल्दी फैमिली को एक हॉलो या अंदर से टूट चुकी बहू नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो वाइब्रेंट हो, जो रेस्टेड हो, जो रियल हो। लोग क्या कहेंगे के चक्कर में खुद की खुशियों को ना कुर्बान मत कीजिए, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप परफेक्ट होंगे, और तब भी कहेंगे जब आप नहीं होंगे। तो क्यों ना वो किया जाए जो आपके दिल को सुकून पहुंचाए। तो चले अब इसी बात को हम अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपसे एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा हुआ है कि वो ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन है, वो ऐसा कौन सा ट्रेडिशन है या किचन का रूल है जो आपको लगता है कि आउटडेटेड है, और मतलब ये आप इसीलिए पूरा कर रही हैं, निभा रही हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि डर से, या रिश्ते ना खराब हो जाएंगे डर से ये चीज चले आ रही है। तो इसका आप हमें जवाब दे सकती हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। और अभी कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम वंस अगेन बहुत-बहुत इस्तकबाल है आप सभी का तहे दिल से मैं हूं अमिता आपके साथ मेरी पहचान है शो का नाम और अब बारी है उस सवाल के जवाब की जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि वो कौन सी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है या ऐसे कोई ट्रेडिशन है जो किचन का रोल हो जो आपको लगता है कि आउटडेटेड है बट आप उसे पूरा करते जा रही हैं निभाते जा रही हैं बस जस्ट टू मेक कि रिलेशंस सही रहें या फिर लोग क्या कहेंगे वो वाले डर से तो हमें कुछ मैसेजेस आए हैं सबा का मैसेज है अलखोर से वो कहती हैं कि अमिता मेरे लिए तो ना वो मॉर्निंग टी वाला जो रूल है ना वो बिल्कुल आउटडेटेड लगता है चाहे मैं रात को बेबी के साथ कितनी ही देर से सोई हूँ मुझे सुबह उठना ही है किचन में 6 बजे जाना ही है सबके लिए फ्रेश चाय बनानी ही है नहीं तो ना जाने घर वाले क्या कहेंगे पड़ोसी क्या कहेंगे कि मतलब बहू तो लेट राइजर है ओफो सच में सबा ये तो बात आपकी सुन के ना मुझे लगता है कि लोगों को बदलने की जरूरत है लेकिन उससे पहले हमें ये स्टेप लेने की जरूरत है कि मुझे नहीं उठना 6 बजे जिसको चाय बनानी है खुद बना के पी ले और अगर नहीं तो फिर वेट करें मैं बच्चे के साथ हूँ थोड़ा वक्त तो लगता है भाई आराम तो हमें भी चाहिए है कि नहीं अब जोया का मैसेज है वो कहती है कि देखो अमिता मैं ना काफी अच्छी प्रोफेशनल हूँ मैं मैनेजर हूँ और अपनी टीम को लीड करती हूँ लेकिन जैसे अपने घर जाती हूँ ना तो मुझे वो हैवी दुपट्टा बिल्कुल सर पे रखना पड़ता है चलो ठीक है वो सब भी ठीक है बट जब किचन में इतनी गर्मी लगती है और पूरे सर पे रखे दुपट्टे के साथ खाना बनाना पड़ता है तब मुझे लगता है कि हाय कहाँ फंस गई क्योंकि उस टाइम के लिए कोई मुझे रिलैक्सेशन नहीं देता जो मेरे ख्याल से ना जब किचन में होगी आप किचन क्वीन हो यू कैन जस्ट ट्राई आप दुपट्टा साइड में रखो कोई नहीं आ रहा बेहतरीन खाना बनाओ एंड देन यू गो आउट क्योंकि आप ना अगर अपने ऊपर ये जुल्म करोगी तो गर्मी में परेशान हो ही जाओगी एंड जाहिर सी बात है हमारे कतर की गर्मी हम सभी जानते हैं है कि नहीं अब यहाँ पर मारिया का मुझे मैसेज आया है वो कहती है कि मेरा सबसे बड़ा इशू वीडियो कॉल्स है उफ जब पाकिस्तान से मेरी सास का कॉल आता है तो मुझे सारी चीजें तुरंत छोड़कर एकदम परफेक्ट बाल ठीक करना दुपट्टा लेना चेहरे पर ऐसी स्माइल रखना मतलब चेहरा थका हुआ भी रहना नहीं चाहिए तुरंत थोड़ा मेकअप करना ये सब करके मुझे बात करनी होती है उफ मारिया ये बात तो मैं समझती हूँ ये आसान चीज नहीं है ये मेरे ख्याल से हर घर की कहानी है बट आई थिंक आप ही हैं जो इस रूल को बदल सकती हैं सो ट्राई दैट आउट फरा का मुझे

मैसेज है कि हमारे घर का एक रूल है कि बहू सबसे एंड में खाएगी. उफ, सबको गर्मा गर्म रोटी खिलाकर तब जाकर वो बैठेगी. और फिर अब जाहिर सी बात है, जब खुद ही थक जाते हैं उस टाइम पे फिर कहाँ खा सकते हैं. फिर मैं ठंडा ही खाना खा लेती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं खाना गर्म करूँ. देखिए फरा, ये जो आपकी बात आपने शेयर की, एग्जैक्टली मेरी मम के साथ भी होता था. ठीक है, मतलब आपसे झूठ क्या कहना, आप हमारे लिसनर्स हैं और हमारे दिल की बातें आप तक पहुंचती हैं और आपके दिल की बातें हम तक पहुंचती हैं. पर ये रोल मैंने ही चेंज किया जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी और स्कूल में पहुंच गई थी. और जब वो कहते हैं ना कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाती है और आपको ये होता है कि आपकी बात आप कह सकते हैं, तो मैंने फैमिलीज में ये कहना शुरू किया कि भाई आप लोग खा चुके हो, अब जरा मम्मी की हेल्प करो, जाके गर्मा गर्म रोटी बनाओ, क्योंकि मुझे तो रोटी उस टाइम बनानी नहीं आती थी. एंड मैं उस टाइम पर इतनी जोर जोर से कहती थी कि समहाउ घर की जो बाकी लेडीज थी उन्हें थोड़ी शर्म फील होती थी और वो बकायदा किचन में जाके मम्मी को गर्म रोटी बना के देती थी. तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. अब यहाँ पर निलोफर क्या कहती हैं, कहती हैं कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है पर मैं रेसिपीज चेंज नहीं कर सकती. अच्छा, इनके इनके किचन का ये रूल है कि इनको खाना बनाने का बड़ा शौक है लेकिन ये खाने की रेसिपीज चेंज नहीं कर सकती. अगर मैं पास्ता भी बनाऊं तो मम्मी जी जो कहेंगी वही डालकर बनाना होता है. हाँ, ये थोड़ी सी मुसीबत तो लगती है. अब इसमें मुझे लगता है कि हर एक मम्मी को चेंज होना पड़ेगा, तब जाके सारी जो बहुएं हैं ना वो खुशी मना पाएंगी. देखिए इतना मुश्किल नहीं है, मैं सच बोलूं, चाहे हमारी सबा हो या फिर हमारी जोया हो या फिर कोई भी हो, आप सबकी बातें सुनकर ना दिल भारी सा हो जाता है. ये छोटी छोटी बातें हमें लगता है कि ना कोई मायने नहीं रखती, पर हमारी आइडेंटिटी को ना ये धीरे धीरे खत्म कर देती हैं. वैसे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं कि हर कोई कंफर्टेबल भी नहीं होता इस प्लेटफॉर्म पर आकर शेयर करने के लिए. लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब तक लेडीज बोलती नहीं है तभी तक है, लेकिन जब एक औरत बोलती है तो वाकई 10 को सुनना पड़ता है और बाकी 10 को हिम्मत मिलती है. तो अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी साइंस की. लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ. हमने दिमाग की बात तो कर ली, पर हमारा जो जिस्म है वो क्या कह रहा है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल जब आप सुबह उठती हैं तो आपकी जॉ यानी जबड़े में थोड़ा दर्द रहता है, या फिर आपके जो टेम्पल्स हैं, चेहरे की बात कर रही हूँ, सर के कोने में हमेशा एक खिंचाव रहता है. स्ट्रेस जब दिमाग से निकलकर जुबान तक नहीं पहुंच पाता ना, तो वो हमारे शरीर में घर कर लेता है और इसके चलते हमें नींद नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है, हम दांत पीसते रह जाते हैं, है कि नहीं? आपकी जो बॉडी है वो उन बातों को बाइट बैक करने की कोशिश कर रही होती है और तभी ये सब कुछ होता है. योर बॉडी इज लिटरली ट्राइंग टू च्यू द वर्ड्स, और वो जब सप्रेस करती है तो ये टाइटनेस, ये दर्द, ये जो है ना आपकी बॉडी का रोना है. अब इस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हमें किसी लंबी छुट्टी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अपनी नर्व्स को शांत करने की. ये नर्व हमारे नर्वस सिस्टम की हाईवे है. जब घर में टेंशन बढ़े, जब सास बहू की बेहद या पुरानी बातें आपको आपका दिमाग घुमा दे, तो ये दो बायोलॉजिकल औजार इस्तेमाल करें. हाँ, क्या? पहला है द हम. मेरे साथ कीजिए अभी एक गहरी सांस लीजिए और जब सांस छोड़े तो एक लंबी हम की आवाज निकालिए. ठीक है, सिर्फ 2 मिनट तक ये करने से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि आप सेफ हैं, डरने की बात नहीं है. और दूसरा है द स्प्लैश. जब लगे कि गुस्सा या रोना कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो वॉशरूम में जाइए और ठंडे पानी का एक झोंका, एक स्प्लैश अपने चेहरे पर ना मारिए. ये हमारे डाइविंग रिफ्लेक्स को ट्रिगर करता है. ये साइंस है, मैं कोई यूं ही नहीं कह रही. ठंडा पानी आपके स्पाइक्स लेते हुए हार्ट रेट को तुरंत नीचे लाता है. ये टिप्स ना सिर्फ कामिंग टिप्स नहीं है, ये आपके बायोलॉजिकल वेपन्स हैं आपका सुकून वापस पाने के लिए. जब घर भारी लगे तो अपना सुकून खुद बनाइए, ठीक है? एंड आई एम वेरी सर्टेन कि इससे भी आपको हेल्प मिलेगी. याद रखिए, आप एक

0: वो होने से पहले एक इंसान है, ठीक है? और एक इंसान की पहली जिम्मेदारी खुद की हिफाजत करना, खुद को प्रोटेक्ट करना है। आज हमने बात की इज्जत की, सब्र की और उस दर्द की जो हम अपने जबड़ों या यूं कहें जॉज में छुपा कर रखते हैं। अगले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं द ग्रे रॉक मेथड की, कि कैसे उन लोगों से डील किया जाए जो आपको बार बार ट्रिगर करते हैं। हाँ, तो आपने क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

वेलकम बैक, मैं हूं अमिता आपके साथ। आप सुन रहे हैं मेरी पहचान और ये बिल्कुल हमारे शो का आखिरी मुकाम है। वेल, अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं हूं अमिता आपके साथ और बताना चाहती हूं कि मेरी पहचान में आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो डॉटर इन लॉ या बहू का जो बोझ होता है, परफेक्ट बहू का जो बोझ होता है, उसे कैसे हम अपने कंधों से उतार कर एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं हमारे सबसे इमोशनल सेगमेंट पर जिसका नाम है छुपी हुई मैं। छुपी हुई मैं आज उस लड़की की कहानी है

है जो इस डर में जी रही है कि लोग उसे डिफिकल्ट कह देंगे. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप उस शानदार घर में या विला में एक घोस्ट की तरह घूम रहे हैं. आप किचन में खाना बना रही हैं, मसालों की खुशबू है, कुकर की सीटी है, पर आपका अपना दिल खामोश है. आप सबके लिए चाय बनाती हैं, सबकी पसंद का ख्याल रख रही हैं, रिचुअल्स ट्रेडिशंस सब बिल्कुल फॉलो कर रही हैं, मशीन की तरह परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन उस घर में आपकी अपनी जगह कहाँ है? उसे डर लगता है कि अगर उसने एक बार भी कहा मम्मी जी मैं थक गई हूँ या मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो रिश्तों का ये माहौल जो उन्होंने सदियों की उम्मीदों पर खड़ा किया है वो एक पल में गिर जाएगा. आपने खुद को एक शॉक एब्जॉर्बर यू कहें तो बना लिया है. घर का हर फ्रिक्शन, हर गुस्सा, हर ताना आप ऑब्जर्व कर लेती हैं ताकि बाकी सब शांत रहें. पर ब्यूटीफुल लेडीज कब तक करेंगी? एक स्पॉन्ज भी तभी तक काम करता है जब वो पूरा गीला ना हो जाए. तो हम बात कर रहे हैं उन लेबल्स की, डिफिकल्ट, टू मॉडर्न या वो मशहूर ताना हमारे बेटे को तो बदल दिया है कि नहीं. ये अल्फाज हमें इसलिए डराते हैं क्योंकि हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों के सर्टिफिकेट पर डिपेंड करती है. हमने बचपन से सीखा है कि अच्छी लड़की वो है जो सब्र पेशेंस करे, पर सब्र का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपनी सैनिटी कुर्बान कर दें. याद रखिए, बाउंड्री कोई दीवार नहीं है. हम अक्सर सोचते हैं कि बाउंड्री सेट करने का मतलब लड़ाई करना, बिल्कुल नहीं. बाउंड्री तो एक दरवाजा है ताकि आपका सुकून अंदर महफूज रहे और बाहर की जो टॉक्सिक चीजें हैं वो बाहर ही रहें. इट्स नॉट अबाउट कि हमें लोगों से दूर रहना है, बल्कि हमें अपनी जो आत्मा है, अपनी सोल है, उसको अलाइव रखना है, उसको जिंदा रखना है. तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी चाबियां, ऐसी कीज देने वाली हूँ जिससे हमारी ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी और फिर बाकी हम सॉल्व करके अपने आप को बेहतर बना पाएंगे. तो सबसे पहली चीज है टाइम बाउंड्रीज. आप दोहा की एक वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, आप एक बिजी होम मेकर भी हो सकती हैं, पर आप कोई 24/7 कॉल सेंटर नहीं है. अक्सर हमारी बैक होम वाली फैमिली या इन-लॉज एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी फोन बजे आप अवेलेबल हो. कहना सीखिए प्यार से मगर मजबूती से कि मम्मी जी मैं अभी थोड़ी थकी हुई हूँ और बच्चों के साथ हूँ, क्या हम शाम को सुकून से बात कर लें? या जब आप अपनी अवेलेबिलिटी की बाउंड्री सेट करती हैं तो लोग धीरे धीरे आपके वक्त की इज्जत करना भी सीख लेंगे एंड यू आर टीचिंग देम हाउ टू ट्रीट यू. दूसरी बात, दूसरी जो चाबी मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि द ग्रे रॉक मेथड. इमेजिन कीजिए एक सड़क पर पड़ा हुआ ग्रे कलर का पत्थर है, बोरिंग है, बेरंग है और बिल्कुल न्यूट्रल है. लेकिन जब आपका कोई रिश्तेदार या ससुराल वाला आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, शायद आपके पहनावे पर ताना दे या आपकी पेरेंटिंग को जज करे, तो उन्हें ड्रामा का फ्यूल मत समझिए, बहस मत कीजिए. बहस करने का मतलब है आपने उन्हें अपनी एनर्जी दे दी. इसके बजाय ग्रे रॉक बनिए, छोटे और बोरिंग जवाब दीजिए. अच्छा ठीक हूँ, शायद आप सही कह रहे हैं. जब उन्हें आपसे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा ना, तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट मत कीजिए जो आपको समझना ही नहीं चाहते. प्रोटेक्ट योर पीस एंड इट्स गोल्ड. तो याद रखिए. तीसरी और सबसे जरूरी बात, कभी कभी बोझ इतना बढ़ जाता है कि कोई भी मेथड काम नहीं करती. अगर आपको लग रहा है कि आप टूट रही हैं, तो प्लीज अंधेरा होने का इंतजार मत कीजिए. आप कतर में हैं, यहाँ पर बहुत सारी सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सिद्रा मेडिसिन की विमेंस मेंटल हेल्थ सर्विस है, वहाँ एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस और हमारी फैमिली स्ट्रक्चर्स को समझते हैं. उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे राब्ता कायम कीजिए. प्रोफेशनल काउंसलिंग लेने में कोई शर्म नहीं है, ये बदतमीजी भी नहीं है, ये खुददारी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है. एक न्यूट्रल इंसान से बात करना आपको वो रास्ता दिखा सकता है जो आप शायद स्ट्रेस की वजह से देख नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो इन सारे थॉट प्रोसेसेस का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बोल्ड बनाइए, जो कि आप हैं. लेकिन कई बार सिचुएशंस के चलते हम आगे नहीं बढ़ पाते.
देखिए, आप एक अच्छी बहू, एक अच्छी

बीवी या एक अच्छी माँ तभी बन सकती है जब आप अपनी खुद की सबसे अच्छी दोस्त बने. सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ें ताकि आप अपनी फैमिली को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे पाए. और इसी बात के साथ मैं कहूंगी कि आई एम वेरी सर्टेन कि आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा. और अगर जरूर पसंद आया है तो आप हमें जरूर मैसेज कर सकती हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ और अपने दिल की बातें हम तक पहुंचा सकती हैं. या फिर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, FM 107 के और आरजे अमिता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकती हैं. वेल, आज के एपिसोड में इतना ही. अब आप मुझे दीजिए इजाजत, आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ हमारे शो मेरी पहचान पर. तब तक के लिए खूब सारा ख्याल रखें. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु साथियों, इस वक्त एफ एम 107 की घड़ी बजा रही है 11:01 और टाइम हो चला है सफा के साथ जुड़ने का। एफ एम 107 पर
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफ एम 107 पर दिल से देसी।
2: जी हाँ साथियों, एफ एम 107 पर वक्त हो चला है। अच्छा भाई, मैं जब भी टाइम बताती हूँ ना तो उस वक्त कुछ ऐसा टाइम हो जाता है कि उसके कुछ सेकंड बाद 11:02 हो जाते हैं, तो अब जो है वो 11:02 हो गए। आप अपनी घड़ी दुरुस्त कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ने का टाइम हो गया है, यानी कि सफ़ा के साथ एंटरटेनमेंट पैकेज का टाइम हो गया है। तो भाई साथियों, वेलकम वेलकम, ढेर सारा वेलकम। देखें आज जो है ना वो वेनसडे है भाई। आज पता नहीं क्यों ना आज वेनसडे वाली फील नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। दिल तो ये कर रहा है कि वीकेंड आ जाए लेकिन वेनसडे वाला फील नहीं आ रहा। किस किस के साथ ये मसला है आज आप लोगों के किस किस का दिल आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों आउट ऑफ ऑर्डर थोड़ा मुरझाया हुआ है। मेरा दिल आज पता नहीं क्यों मुरझाया हुआ है। मुरझाने की कोई वजह नजर नहीं आ रही लेकिन पता नहीं क्यों दिल आज थोड़ा बहुत ऑफ रोड चल रहा है। किस किस के साथ ये मसला है आज मेरे साथ ही मसला हुआ हुआ है। वैसे हमेशा मैं एंटरटेन कर रही होती हूँ, आज मुझे कोई चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई मुझे एंटरटेन करके दिखाओ तो माने भाई। अच्छा भाई साथियों, मेरा और आपका साथ रहेगा 11:00 से लेकर 1:00 तक और इस सफर के दौरान आप अपनी पेटियां, ये जो निश्चित की पेटियां होती हैं वो बांध लीजिए। जिसको ये बात समझ में नहीं आई मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा इंग्लिश में कि अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हम उड़ने वाले हैं। नहीं वो वाला उड़ना नहीं, जहाज वाला नहीं, उसका टिकट बड़ा महंगा आता है, वो मैं अभी फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती। महीने का आखिर अभी आया नहीं है लेकिन वो बस मिड आ गया है ना, समझा करें ना। बस वो कुछ ऐसे मराहिल पर है ज़िंदगी कि अभी जहाज वाला खर्चा ना उठा पाएंगे। पहली तारीख को आना फिर जहाज़ में चलेंगे सफ़र करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो एंटरटेनमेंट का पैकेज कुछ ऐसा होने वाला है आज का कि हमें सीट की पेटियां बांधनी पड़ेंगी, ठीक है। और क्योंकि भाई आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और ड्राइविंग श्राइविंग चल रही है तो ड्राइविंग करते हुए बेल्ट तो बांधना ही है ना। अब लाजमी थोड़ी है कि बेल्ट सिर्फ जहाज़ों में बांधा जाए, ड्राइविंग करते हुए तो बांधते, सेफ्टी ज़रूरी होती है भाई। और सफ़ा के साथ सफ़र करते हुए तो सेफ्टी डबल ट्रिपल ज़रूरी हो जाती है। तो भाई साथियों, ये एक इंटरैक्टिव शो है, आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ मैसेज पर भी शामिल हो सकते हैं। आप चाहते हैं अगर शो में इंटरेक्ट करना तो आप ज़रूर करें, आप किसने मना किया है। मैं नंबर दे रही हूँ ना, नोट डाउन करें और धड़ाधड़ मैसेज करें। फिलहाल अभी के लिए तो ये मैसेज करें कि कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है।

और आज किसका दिन कैसा शुरू हुआ है? मैं बता रही हूँ, मेरा दिन बड़ा ऑफ सा शुरू हुआ है. दिन वैसे शुरू ऑन के साथ होना चाहिए, लेकिन कोई रीजन नहीं है ऑफ का. एक पर्टिकुलर रीजन होता है ना कि भाई आज ऐसा हो गया, या फलानी खबर आपने गलत सुन ली, या फलाना ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया. बस पता नहीं क्यों ऑफ है. सब माइंड फॉग चल रहा है, कुछ पता नहीं क्या है, आई डोंट नो. तो भाई आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, 666-22107 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. चाहे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल, 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल. और आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है. अच्छा गुजर रहा है इंशाल्लाह. अल्लाह ताला जो है वो बाकी का दिन भी अच्छा गुजारेगा. अगर आपका, चाहे आपने नीली पीली काली हरी जो भी शर्ट पहनी हुई है, चाहे उल्टे सीधे मेरी तरह सॉक्स पहने में कि एक सॉक्स लाल रंग का तो एक सॉक्स नीले रंग का, कोई फर्क नहीं पड़ता. सॉक्स अपने लिए पहनते हैं हम, जल्दी में जो हाथ आया हमने वो पहन लिया. अब कौन सा मैंने मिस्टर बीन की तरह जो है ना वो जूते उतार के सबको सॉक्स दिखाने. तो अगर कोई एक आधा सॉक्स उल्टा सीधा पहन भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे तो नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी एक दिन के बाद वीकेंड ही है. ठीक है भाई, तो भाई आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कॉल कौन कौन कहां कहां से हमें सुन रहा है और किस किस का दिन कैसा चल रहा है. अच्छा, इससे पहले कि मैं आप लोगों की कॉल्स की तरफ आऊं, मैं थोड़ा सा वेदर रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. देखिए आज का जो टेम्परेचर है ना वो चल रहा है कुछ ऐसा कि आप कह लेंगे 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चल रहा है. आज जो है वो कदरे निस्बत बेहतर है मौसम. मैं बता दूं वो मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि मुझे एग्जैक्टली सितारे का नाम याद नहीं रह रहा, लेकिन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक, कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक वो एक सितारा नज़र आता है, तो उसके हिसाब से बताया जाता है कि अब जो है वो गर्मी की तपिश टूटना शुरू हो जाएगी. एक और दफ़ा मैं वापस से सर्च कर देखती हूँ, मैं गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाह रही, लेकिन उस सितारे का एक पर्टिकुलर नाम है, उसको डिटेक्ट किया जाए तो पता चल जाता है हाँ भाई अब गर्मियों की तपिश टूटने वाली है. तो भाई वो सितारा नज़र आ चुका है एज पर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वालों के. और आज का जो टेम्परेचर है वो बता देती हूँ, हाईएस्ट जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस तक और लोएस्ट जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस पर. और फील्स लाइक अभी जो है वो 47-48 हो रहा है. तो गर्मी को हमारे पर रहम आया हुआ है थोड़ा. अच्छा, मज़े की बात ही ह्यूमिडिटी भी नीचे जा रही है भाई, जा रही है ह्यूमिडिटी को हमारे पर तरस आया है. इट इज़ लोअर देन यस्टरडे, यानी कि 23% या आप कह लें कि 23-29 के दरमियान, परसेंट के दरमियान जो है ना वो ह्यूमिडिटी है. अच्छा, कल मैं गई थी मीनापोर्ट, नाइस. अच्छा, मेरे जैसे जो लोग हैं ना उनको गर्मी नहीं लगती, प्रॉब्लम ये है उनको ह्यूमिडिटी नहीं लगती. पता नहीं हम कौन से वाटरप्रूफ मटेरियल से बने हुए. जो एनेमिक लोग होते हैं ना इनकी खासियत यही होती है, इनको गर्मी, भाई इनको सख्त गर्मी में कहीं ले जाओ कोई हमें फ़र्क ना पड़ेगा. मैंने इतना एंजॉय किया कल मैंने, हाय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया आपकी बहन को. लेकिन एंजॉय करते करते कभी कभी, अच्छा मुझे चला मेरा दिल क्यों उदास है. अच्छा, एंजॉय करते करते ना कभी कभी कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि आपको उस वक्त तो समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि किसी की हुई रैंडम सी बात आपका दिल कैसे दुखा सकती है. वो शायद कुछ लोगों की भी बातें ना दिल पे लग जाती हैं, उस वक्त पता नहीं चलता लेकिन उनके आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर पता चलता है. तो मुझे लगता है कि मैंने कल तो बड़ा एंजॉय किया, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की बातें ना दिल पे ठा करके लग जाती हैं. तो मुझे लग रहा है आफ्टर इफेक्ट ना, जलजले का जो आफ्टर इफेक्ट है, उस वक्त तो मैंने एंजॉय कर लिया, पता ना चला जलजला आया आकर चला गया, अब ये मुझे शायद आफ्टर इफेक्ट लग रहा है. चलो एक दो दिन तक अरे आपकी बहन लक्कड़ पत्थर है, टेंशन ना लें. ऐसे लोगों की बातों को यूं कानों से, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं हम. मैं अभी अपने आप को फिट फाट करती हूँ, अभी आप लोगों से बात करूंगी, देखना बिल्कुल मजे की मस्त पोजीशन हो जाएगी मेरी, फिर मस्त वाला मूड हो जाएगा मेरा. अच्छा, अगर बात करें हवाओं की तो हवाएं जो हैं आज वो 8-10 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही हैं. सो हवा थोड़ी थोड़ी है, जिंदा हूं मैं, जिंदा टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है. अच्छा, अगर गर्मी के बारे में बात करें तो गर्मी इतनी भी कम नहीं हुई कि आप अपनी हाइड्रेशन का ख्याल ना रखें. आज एक ऐसी ड्रिंक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि फिर से, अब फिर लोग कहेंगे भाई आप कितनी ही कोई मिडिल ईस्टर्न ड्रिंक से लेकर आ रही हैं. देखो जहाँ पे रहते हो ना वहाँ का अच्छे तरीके से लुत्फानंदोज़ हो वहाँ की चीज़ों से. ये एक ऐसी ड्रिंक है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ये आप कह लें कि मिडिल ईस्टर्न या साउथ एशियन ट्विस्ट के साथ जो है ना ये ड्रिंक बनाई जाती है.

इसे मैं कहूंगी डेट एंड वो जो खजूर होती है ना, खजूर और इमली का जो कूलर होता है, ओ भाई किसी ने इमली का जूस पिया है? नहीं, वो खट्टा वाला नहीं, इमली का जूस वो एक अलग से भी बनता है, जो एक ताज़ी इमली होती है, जो जिसका ऐसा कोई टैंगी सा टेस्ट नहीं होता, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। आपने करना ये कि सिंपली आपने लेनी है 6 से 8 अदद सॉफ्ट वाली खजूरें होती हैं ना, वो लेनी है। खजूरों का मौसम भी अभी चल रहा है। अरे मेरे दोस्त ने एक दोस्त थे मेरे अरबी दोस्त हैं, उन्होंने जो है ना वो छोटा सा क्रेट अपने घर की खजूरों का भेजा मुझे। वो जो येलो वाली खजूरें नहीं होती, जो हाफ येलो होती हैं और हाफ ब्राउन होती हैं, कितनी ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मज़े की बात है, मुझसे कोई और खजूर ना खाई नहीं जाती, मुझे सिर्फ वही वाली खजूर अच्छी लगती है जो स्पेसिफिकली हाफ रेड या हाफ येलो होती है और हाफ ब्राउन होती है। मैं कहती हूँ भाई, जन्नत से आई हुई फल जो है ना, जन्नत से आई हुई चीज़ें, अगर आप अपनी पसंद का फल खा लो ना तो ज़िंदगी बहाल हो जाती है। अच्छे अच्छे दिए हुए ताने भी जो है ना वो आपकी नज़र से घूम जाते हैं, आपको पता नहीं चलते। तो मैंने वो खजूरें खाई थी और मैं तो बड़ी भाई खुश हुई हूँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनके गार्डन में बरकत दे। तो खैर भाई, आपने करना ये है कि आपने जो है ना वो 6 से 8 अदद सॉफ्ट वाली खजूरें लेनी है, जिनका आपने बीज निकाल लेना है साफ सुथरा करके, ठीक है। आपने 2 टेबलस्पून ये जो अपना इमली होती है ना, नॉर्मल इमली, इसका जूस आपने ले लेना है। पल्प जो होता है दुकान में मिलती है ना छिली हुई इमली, उसका आपने पल्प ले लेना है। आपने 2.5 कप ठंडा पानी, चिल्ड वाटर लेना है। चीज़ जितनी पानी जितना ठंडा उतना मज़ा आता है ना। और आपने क्या करना है, अगर आपको पसंद है तो 1 to 2 टेबलस्पून हनी या शुगर ले लें, ये ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है मीठा तो, मेरी तरह। आपने ऑप्शनल ये भी है कि इसके अंदर आधा जो है ना टीस्पून रोज़ वाटर भी डलता है। ऑप्शनल ये भी है कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर आधा टीस्पून हमारा जो पिसा हुआ ये होता है ना, अरे भाई क्या ही, ज़ीरा, हाँ पिसा हुआ ज़ीरा, ये ले लें, ठीक है। और हल्का सा एक चुटकी ब्लैक सॉल्ट होता है ना, जो काला नमक होता है, वो ले लें। और ढेर सारी आइस क्यूब ले लो भाई, आइस क्यूब तो भाई चलेगी चलेगी ना, जितनी भी ले लो कम है। और हाँ, फ्रेश फ्रेश पुदीने के पत्तों को नहीं भूलना। अब आपने करना ये है कि आपने आधे घंटे के लिए ना हल्के से ल्यूक वॉर्म वाटर में आपने अपनी जो खजूरें आपने साफ करके रखी थी उनको भिगो देना है, ठीक है। आधा घंटा या 15-20 मिनट के लिए इनको भिगो दो, थोड़ी सी और वो जो है ना अच्छी सी हो जाती हैं, सोक्ड हो जाती हैं। फिर आपने इनको ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंडर में डालना है इमली के पानी के साथ। आपने पानी डाला, इमली का पानी डाला, जो बाकी सारी अज्जा थी आपने इसके अंदर खजूर डाल दी, आपने इसके अंदर इमली का 2 टेबलस्पून जो है वो प्लम डाल दिया, आपने अपना चिल्ड वाटर इसके अंदर डाल दिया, ब्लेंडर के अंदर आपने चीनी या हनी जो भी था वो डाल दिया, मतलब सारा सामान आपने ब्लेंडर के अंदर डालकर जुम जुम जुम जुम घुमा दिया। और भाई फिर आई बारी इसको छानने की, आपने इसे छाना और आपने मजे की आइस के साथ डालकर इसको पिया। मैं बता रही हूँ ठंड पै जानी है, ठंड। अच्छा, गार्निशिंग के लिए मिंट डालना ना भूलना ऊपर से, यूं हाथों से ना मिंट के थोड़े थोड़े पत्ते तोड़कर यूं करके डाल देना और उसको मिक्स करके पीना, हो भाई जिंदगी बहाल हो जाएगी, बता रही हूँ। फ्रेश फ्रेश ऐसा लाइट फील करोगे ना। अच्छा, कुछ जूसेस ऐसे होते हैं जिनको पीकर बहुत भारी लगता है, आपके तो यार ये बहुत भारी बहुत मीठा हो गया, उनमें से एक ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका टेस्ट बहुत लाइट होता है, बहुत लाइट, बहुत मज़े का, मज़े से अच्छे से ठंडा ठंडा करके पियो। और फिर बहन को याद करना कि कितनी तो मज़े की कोई रेसिपी बताई थी, है, है, है, है। मैं अगर होती ना, मैं तो सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से ही काम चला लेती। हाँ, ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक डालना ना भूलना, उसका टेस्ट ही मज़े का होता है, बहुत डिफरेंट होता है, तो ये डालना ना भूलना। बाकी आप अपनी मर्जी से जो डालो भाई इसके अंदर। तो भाई ये हो गई हमारी मज़े की खट्टी मीठी सी रिफ्रेशिंग मिडल ईस्टर्न साउथ एशियन ट्विस्ट के साथ मज़े का हमारा जूस मशरूम आज का। और भाई देखें, इस खट्टे मीठे जूस के साथ ना अब मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। और अपना अपना ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें, मज़े मज़े के जूसेस पीते रहें। और भाई सीधी सी बात है, जिनका डिलीवरी का काम है या गाड़ी में बैठने का काम है, ड्राइविंग का काम है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाली पानी पिया नहीं जाता, कुछ चीज़ें मिक्स करके, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स हाँ वेजिटेबल्स वैसे कुकम्बर वाटर वगैरह होता है, हाँ कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिक्स करके आप

अपना डिटॉक्स वाटर भी बना कैरी कर सकते हैं, अपने साथ बनाकर रख सकते हैं. बस फोकस इस चीज़ के ऊपर रखें कि बॉडी से नमकीनियात कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक लगते हुए टाइम नहीं लगता. लाजमी नहीं कि टेम्परेचर जब 50 तक जाएगा तभी किसी को हीट स्ट्रोक लगेगा. कुछ लोगों को

बाद वापस आकर इंशाल्लाह आपसे की जाएंगी और मजीद बातें. ब्रेक के बाद वापस आकर उस पार जो है वो बात करेंगे किसके बारे में. देखो दरवाजे के बारे में सुना है कभी? दरवाजा. रुको रुको, सोने के बारे में अभी बात नहीं करो. रुक जाओ भाई. तो एक तो ये पहले सोना सोना शुरू हो गए. वो देखो डोरवे इफेक्ट के बारे में सुना है कभी? दरवाजा दरवाजा इसी से रिलेटेड है. बताती हूँ वापस आकर. सुनते रहे एफएम 107 पर सन एंड साउंड सफा के साथ दिल से देसी. और हाँ, सोना कितना सोना है. हाँ है, मैं पिछले दिनों खरीदने गई थी, वापस आ गई खाली हाथ. दुआ करो बहन खरीदने के लायक हो सोना. अच्छा अच्छा यूं तोले तोले भर के सोना खरीदेंगे मिलकर.

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: भाई बादशाह ने तो कमाल कर दिया, अब सफा भी कुछ कमाल धमाल कर दे, यानी कि आपको फन ट्रिविया की तरफ लेकर जाएं। वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107। और साथियों देखें, जाने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप भी इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, आपको किसने मना किया है। लेकिन फिलहाल जो है अगेन मेरा जो है वो स्टूडियो वाला मोबाइल शोबाइल जो है ना वो इत्थे उत्थे किथे किथे गुम हो गया है। अच्छा भाई चले नाजिया को दुआएं देते हैं। नाजिया जी क्या साथ ले जाती हैं क्या घर मोबाइल, चले पूछते हैं। चले भाई चले, जब तक आपका मोबाइल जो है हमारा वो इधर उधर से बरामद होता है, मैं आपको ले चलती हूँ फन ट्रिविया की तरफ। अच्छा अगर आप भी मेरे साथ कन्वर्सेशन में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर हों, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर मैसेज कर सकते हैं। टेंशन नहीं लें, अगर अभी मुझे मोबाइल नहीं मिल रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं गुम हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो बस अभी आसपास है। मैं भी आपके मैसेजेस पढ़ती हूं। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल, 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल। अच्छा इससे पहले कि आप कॉल करें फन ट्रिविया की तरफ भागते हैं, ठीक है। फन ट्रिविया हमारे पास ये है कि मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ कि देखिए दरवाजे जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ घरों के अंदर या मॉल्स के अंदर आने जाने के लिए नहीं होते, दरवाजे बड़ा एक अपना इफेक्ट रखते हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ कुछ ऐसी खिड़कियाँ भी, हाँ कह रहे हैं अगर आपने घर, अगर आपकी आदत है कि घर दरवाजे से नहीं खिड़कियों से कूद कर जाते हैं तो शायद आपके लिए वो दरवाजे का एक काम, अगर आपकी खिड़कियां आपके लिए दरवाजे का काम करती हैं तो हाँ ये बात सही है कि अगर आपकी खिड़कियां आपके लिए दरवाजे का काम करती हैं तो फिर आपको वो डोर इफेक्ट आपकी खिड़कियों में भी महसूस होगा। अच्छा चलिए बात कर रही हूँ मैं डोरवे इफेक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ मॉल्स में एंटर होने के लिए और घर में एंटर होने के लिए दरवाजे नहीं होते, दरवाजे ना एक बहुत बड़ा इफेक्ट रखते हैं हमारे दिमाग के ऊपर। अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि भाई आप जो हैं वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक रूम के अंदर एंटर करते हैं और अंदर जाते के साथ आपका दिमाग कहता है कि भाई वेलकम, आखिर यहाँ करने क्या आए थे, मतलब आप खड़े हुए मेरी तरह सोचते रहते हैं कि आखिर मैं इस कमरे में करने क्या आया था, मैं इस कमरे में आया हूँ मेरा कोई पर्पस है ज़िंदगी का, मैं यहाँ पर किसी वजह से आया था। मेरे साथ तो ये इतना ज़्यादा होता है कि मैंने लिटरली अपना नाम गजनी रखा हुआ है। देर इज़ अ रीज़न, हाँ ये और बात है कि मुझे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं जब सर्च मारा तो मैंने कहा ये भाई ये डोरवे इफेक्ट मेरे ऊपर डबल ट्रिपल काम करता है, इसके वॉल्ट मेरे ऊपर आकर ना डबल ट्रिपल हो जाते हैं। अच्छा भाई होता क्या है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, हॉल में जा रहे हैं, अपने बेडरूम में जा रहे हैं, मतलब आसपास आप घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किचन में गए, किचन का दरवाजा आपने क्रॉस किया, आप वहाँ पानी लेने गए थे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वहाँ आप खड़े हुए सर खुजा रहे हैं और कह रहे हैं मैं यहाँ क्या करने आया, मैं यहाँ आया क्यों था, किस लिए आया था। कितनी बेसिक सी चीज़ है पानी पीना, तो कितनी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आपका दिमाग टेल ही नहीं कर पाता उस चीज़ को। अगर आपके साथ भी होता है ना मेरी तरह, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको अल्जाइमर्स का कोई मरीज बन गए आप या लामा करें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मामला पता है क्या है, मामला ये कि छोटा सा ना दिमाग के अंदर अपडेट चल रहा होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट। अब मैं बताती हूँ होता क्या है, हमारा दिमाग ना जैसे आप अपने लैपटॉप और आप अपने ये अल्लाह भला करे अपने डेस्कटॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ होती हैं, हमारा दिमाग एट इंस्टेंट विद इन मिली सेकेंड्स पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों को, लाखों करोड़ों चीज़ों को एक साथ रेगुलेट कर रहा होता है। अब होता है कि विजुअल इफेक्ट भी उसके अंदर आता है, जब हम एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा क्रॉस करते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो कहते हैं द डोरवे इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना, खास तौर पर दरवाजा किसी

0: किस्म का कोई क्रॉस करते हैं
1: तो दिमाग इसे एक नई सिचुएशन समझ सकता है.
0: यानी कि दिमाग ये कहता है कि ओके बॉस, सीन चेंज हो गया है, पुरानी इन्फॉर्मेशन टेम्पररी जो ना वो जो टाइप था उसको साइड पे करो और अब नया सीन ऑन हुआ है. इसे ऐसे समझ, आप दिमाग एक स्मार्ट से लाइब्रेरियन की तरह होता है, आपको एक रूम से दूसरे रूम तक लेकर जाता है किताब रखने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किचन का चैप्टर आपका एक खुला हुआ था, एक टैब खुला हुआ था किचन का, लाइब्रेरी के एक सेक्शन में किचन का सेक्शन है, वहां तक आप गए और फिर क्योंकि आप अपना बेडरूम क्रॉस कर रहे थे तो आपको आपने बेडवाजा क्रॉस किया तो आपके में वो बेडरूम की टैब खुल गई. आप ये भूल गए कि आप किचन तक क्या करने जा रहे थे. वो कुछ टैब ना वो दिमाग के अंदर वो आप कह लेंगे शफल हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो भाई अगर आप किचन में पानी पीने जा रहे हैं, रास्ते में आपने आपको किसी ने आवाज़ दे दी या फिर आपने ये देखा कि भाई हाँ भाई बड़ा अच्छा सा टीवी पे सीरियल चल रहा है या कोई इंटरेस्टिंग सी बात आपको नजर आ गई, तो आखिर में आपने किचन में पहुंचना था लेकिन आप वो छोड़कर टीवी देखने लगे. मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं पानी पीने जा रही हूँ और मैंने टीवी देखना शुरू कर दिया, फिर एकदम से याद आया कि अरे मैं तो सफाई करने लगी थी, सफाई करने जाती हूँ तो एकदम से बीच में ना फोन रिंग हो जाता है तो मोबाइल बात करना शुरू कर देती हूँ. तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मल्टीपल चीज़ें कहाँ चल रही हैं और जो काम कर रही होती हूँ वो बीच में ही छूट जाता है. फिर आखिर में याद आता है एकदम से कि अरे मैं तो पानी पीना था, मैं तो खाना खाना था, मैं भूल जाती हूँ. एक्चुअली ये कि आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है. फिजिकल डोरवेज कभी कभी एक इमोशनल बाउंड्री की तरह काम करते हैं, जैसे दिमाग एक सीन को क्लोज करके दूसरा सीन ओपन करता है. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी आप वापस घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाते हैं और आप एकदम से किचन को देख रहे होते हैं, आपके यार मैंने कुछ तो करना था किचन में, ऐसा याद आ रहा है अंदर से कि कोई बहुत ज़रूरी काम था, कोई बहुत ज़रूरी काम था. और फिर वहां पर आपकी मेमोरी एकदम से झटाक से वापस आती है और आप कहते हो अरे भाई मैं तो खाना खाने जा रहा था, मैं तो भूल ही गया. लेकिन आपकी मेमोरी थोड़ा वक्कू उठाती है किचन का दरवाजा देखकर कि भाई तुमने यहाँ पे खाना खाने जाना था, पानी पीने जाना था, कहाँ रह गए तुम? बीच में तुमने जो है ना टीवी देख लिया, तुमने घर की सफाई कर ली, तुमने ये काम कर लिया, तुमने जूते समेट लिए, कपड़े समेट लिए, तुमने तो किचन में जाना था. तो फिर एकदम से मेमोरी क्लू देती है दोबारा से आपको और आप वापस से किचन में आकर फ्रिज खोलते हो अपना खाना, एक किस्म की पार्टी है जो कि कहीं गुम हो जाती है बीच में. तो भाई याद रखें कि अगली बार जब आप रूम में जाकर ये भूल जाए ना कि आप क्या करने गए थे तो आपको अल्जाइमर्स की बीमारी लग करे, ऐसा कुछ नहीं है. जेन्युइनली एक तो अपना विटामिन B12 चेक कराओ, विटामिन जो बी है ना कॉम्प्लेक्स वो चेक कराओ, दूसरा अपने आप को जीनियस समझने की भी कोई जरूरत नहीं है कि मैं आइंस्टाइन हूं तो मैं सब कुछ बताऊं, ऐसा नहीं है. बस सोचने वाली बात है कि दरवाजे के पास वापस जाओ, किसी ना किसी घर के किसी ना किसी दरवाजे के पास वापस जाओ तो एकदम से याद आ जाएगा. इसे कहते हैं डोरवे अफेक्ट. किसी दरवाजे के पास जाके टेक लाए खड़े हो गए तो लगा अच्छा ये मामला था, यहाँ जाना था मैंने. तभी तो हम अक्सर औकात कहते हैं जब हमारी कोई चीज गुम हो जाती है हमसे तो हम अक्सर औकात एक दूसरे पूछते हैं ना कि आखिरी दफा क्या किया था, आखिरी दफा कहाँ गए थे. तो वो दिमाग जो है ना हमारा वो करने की कोशिश कर रहा होता है मेमोरी, और दरवाजे उसका कनेक्शन और ज्यादा मजबूत कर देते हैं हमारी मेमोरी से. तो नेक्स्ट टाइम कोई चाबी वगैरह या कुछ भूलना तो कमरों में दरवाजों में आगे पीछे घूमना, कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा. और सच बता रही हूँ मेरे साथ ऐसा होता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रही होती हूँ और एकदम से याद आता है हाँ मैं इधर से इधर गई थी, आखिर इधर से इधर चाबी मैंने यहाँ रखी थी. अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं बस चाबी की जगह नहीं बनी हुई, लेकिन बस आदत से मजबूर हूँ ना, घुमानी है ना चीज़ें मैंने. लेकिन ये डोरवे इफेक्ट मेरे ऊपर काम करता है. आपके ऊपर कितना काम करता है मुझे मैसेज करके बताएं 6622107 पर, 6622107 पर चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं और चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर. फिलहाल के लिए काम करते हैं साथ में एक छोटू मोटू सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें. और ब्रेक के बाद वापस आकर हमने ये भी करना है क्या, मुद्दे पे बात करनी, मुद्दे पे आज का मुद्दा क्या है, क्या क्लू दे दिया जाए. हाँ ये मुद्दा मेरे बहुत दिल के करीब है क्योंकि ये 110% मेरे ऊपर बैठता है. मुझे हमेशा ये कहा जाता है कि अपना लहजा दुरुस्त करके बात करो. मैं कहती हूँ लहजा दुरुस्त करके बात

करो। हैं? मैंने तो बिल्कुल सही तरीके से बात की थी। मुझे हर कोई कन्फर्म बात करते हुए आज गुस्से में है, मजाक में है। अक्सर औकात तो मैं मजाक कर रही हूँ तो इन लोग सीरियस मजे होते हैं भाई, अक्सर औकात ऐसा होता है। अच्छा वो भी वो लोग जो घर के सब सालों से इन लोगों की जिंदगी गुजार रही हूँ और इन लोग को पता ही नहीं है कि मेरा मजाक करने का स्टाइल कैसा है। मतलब आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि लोग पार्ट को गलत समझ जाते हैं भाई, व्हाट व्हाट विच यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, इसी पे बात करेंगे आज दुखती रख के। ठीक है, फिलहाल के लिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी कॉफी पर। अरे भाई नाजिया मोबाइल तो वापस कर दो, सुबह की शादी है और मोबाइल लेकर चली जाती हैं। अच्छा अभी देखती हूं नाजिया को। प्यारी नाजिया आप तो जाएं भाई, आप तो ब्रेक पे जाएं, मैं नाजिया को ढूंढती हूं, मोबाइल को भी ढूंढती हूं, क्या पता मोबाइल यहीं पे कहीं पे पड़ा हो। मैं नाजिया का नाम ले रही हूं, पता चले नाजिया फेंडी लगाएंगी कहीं, ए, मेरा नाम ले रही है, मुझे बदनाम कर रही है। अच्छा मेरे पास क्या मोबाइल नहीं है। चलो कोई नहीं, वापस आकर आपसे बात करते हैं। सुनते रहें FM 107 पर सन एंड साउंड विद सपा, दिल से देसी, जूम कर करके।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: ओए होए बाबर मंगी ऑन द माइक कोक स्टूडियो सीजन 15 कमाल किया कमाल
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
0: वेलकम बैक साथियों आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107 दिल से देसी भाई दिल से देसी देखो इस वक्त जो है ना 11:50 हो रहे हैं तो भाई अब जो है जैसा कि आपसे वादा था कि वापस आकर मुद्दे पे बात करेंगे मुद्दे पे बात करने से पहले मैं आपको ये खुशखबरी दूं खुशखबरी कि मोबाइल बरामद हो गया है नहीं नाजिया नहीं लेकर गई थी टेंशन नॉट मतलब मेरी बड़ी बड़ी आंखें जो है ना वो चश्मा लगाने के बावजूद भी वो नाकारा ही नज़र आ रही हैं मुझे लगता है ये नंबर चेंज कराने का टाइम आ गया है चश्मे का या तो फिर ये जो पटाटे मैंने लगाए हुए ना आंखों पर इनको उतार कर खुली आंखों से देखने का वक्त आ चला है चले भाई आपकी मैसेजेस की तरफ चलती हूँ मैसेजेस इससे पहले कि मुद्दे पे बात की जाए मैसेजेस हाय ये कौन है भाई इस सॉन्ग का नेम भेज दें भाई ये जो गाना मैंने अभी चलाया था आई कोक स्टूडियो का है और चले मैं आपको भेज देती हूँ दिल तो वाकई में खुश हो गया अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है सिंधी सुन के तो दिल खुश नहीं हुआ आपका वैसे हमेशा पश्तो गाने चलाते हैं आज मैंने कहा कोक स्टूडियो का सिंधी गाना लगाते हैं भाई अच्छा भाई कौन है हमारे साथ हमज़ा खोकर हैं ठीक है हमज़ा भाई खुश हो रहे हैं गाना सुनकर अच्छा और कौन है हमारे साथ ये नाम मालूम अफराद नहीं नाम लिखा है भाई ने कह रहे हैं मजद रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ और सुन रहा हूँ वर्क हार्ड है बस सब आपने एक दूसरे को दुआ में याद रखा करें हर हाल में अल्लाह का शुक्र चाहिए करना चाहिए लाइफ इज़ शॉर्ट बी काइंड लव एफएम 107 अजीज़ रहमान अजीज़ भाई अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलें आसान करे ज़िंदगी किसी की भी मैं कहूँगी कि आसान नहीं है हर किसी के अपने अपने अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अच्छा भाई अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे सबकी मुश्किल आसान करे अच्छा भाई हमारे साथ और कौन है रोहेल भाई मतलब अच्छा रोहेल भाई ना हमारे एफएम 107 के वेब पेज पे जाकर सारे आरजेस की तस्वीरें देख रहे हैं और फिलहाल तो मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं और भाई देखें ये जो सेहत का मामला है ना अब इन्होंने मुझे ना खड़ा किया हुआ है कहीं आसपास सरवर भाई के आसपास तो अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो हल्के लगेंगे तो मैं भी हल्की लगूंगी सरवर भाई के आसपास तो समझा करें अच्छा भाई हमजा भाई क्या कह रहे हैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम कराची हमजा भाई अगर आप कराची से तो आपको सिंधी समझ में आनी चाहिए अगर नहीं आती तो बहुत जुल्म किया है बहुत इतने साल सिंध में रहकर फिर किया क्या सिंध बोर्ड से पढ़े ना कराची बोर्ड भी तो सिंध बोर्ड ही है ना और उसके ना सीना पढ़ी और सीनी ना समझी ये किए थी तो सीखे तो भाई और कौन है साध नूर है साध नूर प्लीज पश्तो सॉन्ग प्ले करें कोक स्टूडियो वाला वाह अब देखो इधर जो है ना इधर शुरू हो गई फरमाइशी प्रोग्राम इंशाल्लाह करते मेरे भाई करते साध नूर भाई आपकी फरमाइश इंशाल्लाह चाहिए अच्छा और कौन है हमारे साथ इरफान खान है इरफान क्या कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी सॉरी मैं कॉल करने वाला था बट नंबर भूल गया अच्छा कह रहे हैं माय नेम इज इरफान यूनुस इरफान भाई नंबर मैं आपको बताती हूँ कोई सॉरी करने की बात नहीं है 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल और हमें किसने किया है मैसेज अरे भाई तड़कती भड़कती गर्मी का मैसेज आया है क्या है भाई 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है गाड़ी कहाँ हो भाई कहाँ हो कौन सी नगरी में हो कौन है ये कौन है भाई कौन है अभी भाई साहब कौन है अपने तीन दोस्तों को लेकर खड़े हुए ट्रिपलेट्स साथ में खड़े हुए अब कौन है ये नहीं पता मुझे नाम नहीं लिखा भाई ना मालूम अफराद अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इफ्तिखार भट्टी भाई ने भी मैसेज किया है और कौन है हमारे साथ सैयद जौहर फ्रॉम अलवाकरा कतर सैयद जौहर भी हमें सुन रहे हैं वेलकम टू द शो मोहम्मद यूसुफ खान भी सुन रहे हैं मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम हैप्पी वेडनेसडे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाह करके आज वो फील कर रही हैं मे बी बाय दिस क्लाइमेट अल्लाह आपको सदा खुश रखे नहीं यूसुफ भाई मुझे एकदम से याद आ गया मैं भुलक्कड़ हूँ ना क्या करूँ मेरा

नाम की जगह लिखा ऑनलाइन, तो ऑफलाइन भाई बहन जो भी हैं, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ऑनलाइन आके सलाम रिसीव कर लें। अच्छा भाई, और कौन है हमारे साथ? 47 डिग्री सेल्सियस भाई, कौन है ये, कहाँ है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग, बात भाई कहाँ घूमते फिर रहे हैं 47 डिग्री पे? मुझे तो भाई 44-45 डिग्री दिखा रहा है टेम्परेचर, और मैं बाहर से होकर आई हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ 44-45 डिग्री ही है, मेरे साइड पर तो इतना ही चल रहा है। और कह रहे हैं आमिर सुल्तान 48 टेम्परेचर जिन्होंने भेजा था, ये कहाँ, कौन से इलाके में? अच्छा भाई, कोई सिद्धू मूसा वाले का सॉन्ग का फरमाइश चाहिए, वाह वाह वाह वाह, मैं यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट सॉन्ग यहाँ पे चला रही हूँ, चलिए देखते हैं क्या किया सकता है, अगर प्ले लिस्ट जरूर। अच्छा, और कौन है हमारे साथ? हमजा खोकर कह रहे हैं जब भी तो सॉन्ग मांगा है। अच्छा भाई, कह रहे हैं सॉन्ग समझ में आया तो अच्छा लगा, रे वाह भाई, ये बताना चाह रहे हैं शॉर्ट कि भाई ने कराची में रहकर कुछ और किया हो ना किया, और सिंधी ज़रूर सीखी भाई, चलें ठीक है, ओके भाई अच्छा हो गया। चलें भाई मुद्दे पर बात करते हैं, आपके मैसेजेस आते चले जा रहे हैं, मैसेजेस ठीक है ओके, मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन बात करते हैं मुद्दे पर आते हैं। देखिए मुद्दा हमारे पास ये चल रहा है कि देखिए आपकी छुट्टी ना एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अक्सर औकात लोग थोड़ा सा टाइम लगा के, कुछ लोग थोड़ा टाइम लगा के सही कोशिश करते हैं, और कुछ लोग आपको बिल्कुल बुक की तरह समझते हैं, ऊपर से कवर देखा और कहते हैं भाई हमें पूरी बुक समझ में आ गई, हमने पढ़ ली, होता है कुछ ऐसा होता है। मामला ये, कभी कभी आपने ये नोटिस किया है कि लोग हमें देखकर इतनी जल्दी, मोस्टली लोग इतनी जल्दी जजमेंट बना लेते हैं ना, जैसे इंसान नहीं हो, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा हुआ कोई प्रोडक्ट हो, ये आप यूं समझ लेंगे जैसे आप किसी इंटरव्यू में पहुंचे हो, 5 सेकंड के अंदर उन्होंने आपको इंटरव्यू जो है ना वो रिजल्ट देना है, मतलब ये एक्सप्रेशन देख लेते हैं तो आपके ऊपर एक दिमाग बना लेते हैं, आपको एक आधी आदत नोटिस करेंगे तो उसके ऊपर अपना ही दिमाग बना लेंगे, 2 मिनट आपसे बात करेंगे तो उसके ऊपर अपना एक जजमेंट, अपने दिल में एक जजमेंट, अपने दिमाग में एक जजमेंट रखेंगे, और बस कि भाई हमें पता है ये बंदा कैसा है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ उन्हें बस ये समझ गया ये शख्स कैसा है। असल में पर्सनैलिटी जो होती है ना वो कोई सोशल मीडिया कोई बायो नहीं होती जिसे आप 2 लाइन में लिख लो और कहो कि भाई पूरी किताब समझ में आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर कहा था, अगर मैं आपको मिसाल दूँ ना, तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो और सामने वाला ना थोड़ा सा खामोश हो, आपको उस स्पॉन्टेनियस अपना दे रहा हो, तो आप एकदम से बोलते हो कि हाँ देखो इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, बड़ी अकड़ दिखा रहा है, बड़ा अकड़ वाला था। अच्छा, अब वो मासूम बेचारा क्या पता आपसे पहली दफ़ा मिल रहा हो, दूसरी दफ़ा मिल रहा हो, और वो डर के बैठा हो, अब उसके फेस एक्सप्रेशन कुछ और बता रहे हैं, वो अंत दिमाग में कैसा है वो तो आपको नहीं पता ना, मुझे नहीं पता, तो लोग क्या कहते हैं ये अकड़ दिखा रहा है, ये एटीट्यूड वाला है। कभी कभी कुछ लोग मेरी तरह बहुत ज़्यादा बोलते हैं और फिर उनके बारे में ये जजमेंट पास किया जाता है कि भाई ये तो बहुत बातूनी शख्स है, ये तो जो है ना बहुत बेवकूफ़ सा इंसान है, ये बहुत ज़्यादा बोलता है, ये बहुत ज़्यादा क्या कहने के ओवर फ्रेंडली इंसान है। अक्सर औकात जजमेंट पास करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये इंसान असल में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान है। जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, जो दोस्त इक्का दुक्का मेरे, उनको पता है कि मैं कितनी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन जब आप मेरे सामने आओ तो बिल्कुल नहीं हूँ। जो मुझसे फिर लोग वो कहते हैं नहीं इसका कुछ मसला है, इसको जो है ना वो लोग समझ के बात तो कुछ, अगर फ्रेंड सर्कल है इसका कोई तो फिर इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा बात करनी, इतनी बातें करें कि कान पर, लेकिन अगर ये किसी को नहीं जानती और सामने बैठे तो आपको देखकर लोग ये जजमेंट करते हैं कि ये बहुत फुल ऑफ एटीट्यूड है, तो मैं और एटीट्यूड शक्ल देखिए मेरी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर आप कुछ लोगों के बारे में ना हम ये भी समझना शुरू कर देते हैं कि बहुत ओवर सेंसिटिव है, अगर किसी और ने 4 आंसू आपके भी निकाला है, लोग कहते हैं बहुत सेंसिटिव है, बहुत ओवर सेंसिटिव है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनैलिटी को देखकर लोग आपकी पर्सनैलिटी भांपने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग तो अपना माइंड सेट कर लेते हैं ऑलरेडी। देखिए पर्सनैलिटी ना असल एक पजल की तरह होती है, स्माइल से आप किसी का पूरा पजल सॉल्व नहीं कर सकते, या किसी की सांस देखकर आप ये नहीं समझ सकते कि इस बुक के अंदर क्या है, कि क्वाइट नेचर होती है तो लोग ये समझ लेते हैं कि एटीट्यूड वाला है, लेकिन असल में वो शायद गुड लिसनर होता है। आप अगर रिशनल हैं तो शायद आपका दिल अच्छा फील करता है, आप अगर सीरियस हैं तो क्या पता भाई आपके पास इतना

डार्क ह्यूमर हो, या जिसे मैं कहती हूँ कि वीआईपी ह्यूमर हो, जो कि सबके सामने नहीं आता। तो भाई लोग, आज का सवाल ये कि आपको क्या लगता है लोग आपके बारे में क्या गलत समझते हैं। एक होता है ना, एक एक लोग जजमेंट पास कर देते हैं आपको लेकर, लेकिन आप कहते हैं ये तो मेरी पर्सनालिटी ऊपर सूट नहीं करती चीज, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने कुछ गुना देखा हो और आपके बारे में कैसा जजमेंट किया हो जो कि आपने घर वाले सुनकर हंस पड़े? भाई ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल पर ना किस्सा सुनाती हूँ। मेरा जब यूनिवर्सिटी पहला दिन था ना, तो मुझे जितने भी फेलोज ने क्लास देखा, उनको ऐसा लगा कि मैं दुनिया की सबसे फुल ऑफ एटीट्यूड और सीरियस हूँ। सोचो मेरे बारे में, सोचो कोई ये बोले, मैं तो हंस हंस कैसी पागल हो गई। वो मेरे बन गए कुछ टाइम बाद और मुझे अपना पहला पहजमेंट पास किया। उन्होंने कहा, जब पता है सफा जब पहली बार देखा था ना क्लास में, तो हमें ऐसा लगा कि ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस फुल ऑफ एटीट्यूड और बहुत जो है ना सीरियस ना ये कोई। लेकिन अब जाके हमें चला ये तो फुल ऑन जोकर है, मतलब इसका ह्यूमर ऐसा है कि ये किसी को भी हंसा दे। हम पहले सोचकर तो मैं नहीं सोच सकते कि ये इतना मतलब ह्यूमर होगी या इतना जॉयफुल बंदा हो सकती है। तो आपके बारे में कभी किसी ने ऐसा कुछ कमेंट या जजमेंट पास किया है जब आपको भाई नहीं ये आप कर दी बोल कर, देखो ये बहुत गलत बात कर दी? आप जो है ना मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-2107 पर, 666-2107 इज द नंबर टू मैसेज, और चाहें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर, द नंबर फॉर कॉलिंग 443-443-77। और सवाल ये है कि आपके बारे में क्या गलत समझा जाता है? अक्सर बात तो ये होता है कि मजाक करती हूँ ना, तो लोग मेरा लहजा सुनकर ये समझ रहे होते हैं कि मैं सीरियस बात कर रही हूँ, और फिर मुझे उनको बाद में बताना पड़ता है मजाक था, है वो मजा, इतना सीरियस क्यों हो गए, दिल पे क्यों ले ली? ये भी एक मसला है। तो भाई आपके बारे में लोग क्या गलत समझते हैं मुझे जरा बताएं, आज दिल खोल के बताएं। शिकायतें सब शिकायतें करेंगे आज हम सबकी, क्या मेरे बारे में ऐसा बोला और बारे में ऐसा समझा। 3343-77 इज द नंबर टू कॉल। और भाई मैसेजेस की तरफ आते हैं, मैसेजेस में क्या चल रहा है हमारे पास, ज्यादातर मैसेज आ रहे हैं। इसमें चल रहा है, हाँ कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है, हाँ हमजा खोकर है। हमजा खोकर क्या कह रहे हैं, हाँ मेरे साथ यही होता है, सब देखते ही बोलते हैं कि बहुत गुस्सा है, एरोगेंट है, बट मैं ऐसा नहीं, और जब भी जब भी तबीयत खराब हुई है तो डॉक्टर भी हो तो फेस देख कर ये बोलता है कि ठीक है तबीयत कैसी, ठीक हो तबीयत कैसी है। अच्छा कुछ लोगों के फेस एक्सप्रेशन ही आते हैं, ये मेरे साथ समझ सकती हूँ। आई अंडरस्टैंड आई फील यू। अच्छा कौन है हमारे साथ और कौन है, हसनैन भाई, हसनैन भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा हसनैन भाई क्या कह रहे हैं, हसनैन भाई टुडे का आज एक बलोची सॉन्ग ही हो जाए। अरे भाई बलोची सॉन्ग जो है तो बता देना, ये क्या आज के हम कल्चरल डे मना रहे हैं क्या हो रहा है? मैं तो जब सीरियस कुछ समझ रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं आप गुस्सा कर रहे हो, हाँ समझा रहा होता हूँ। अच्छा मैं जब सीरियसली कुछ समझा रहा होता हूँ तो कहते हैं लोग, मुझे कहते हैं कि तुम गुस्सा हो, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल कर बात करता हूँ। मेरे भाई हसनैन भाई मेरे साथ भी बिल्कुल ये मामला है कि जब मैं किसी से मुझे जब किसी से बहुत ज्यादा मैं वैसे तो लोग एक्सक्लूसिव ही रहती हूँ, इंक्लूड नहीं होती किसी के साथ, मैं इतना ज़्यादा नहीं रखती, लेकिन जब मैं किसी से किसी को मुखलिसाना एडवाइस दे रही होती हूँ ना, लबो लहजा शायद थोड़ा सा सख्त हो जाता है, तो उससे लोग समझते हैं मैं गुस्सा कर रही हूँ। मैं कहती भाई मैं गुस्सा नहीं कर रही, बस आई एम कंसर्न अबाउट यू। लेकिन जो मेरे पप्पू दोस्त हैं ना, जो अच्छे वाले दोस्त हैं, जो जिगरी हैं, उनको ये बात पता है कि मैं जब मेरे कंसर्न में से मैं कंसर्न होती हूँ तो मैं इसी लहजे बात करती हूँ, वो सवाल नहीं पाते। जो नया बंदा होगा ना पता चल जाएगा ये नया बंदा ये बाहर है अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, ग्रीन टी। अब मैं क्या बोलूं।

ग्रीन टी, क्या करूँ. हाय गुड मॉर्निंग अबू हमूर, 45 डिग्री सेल्सियस शोइंग इन माय कार. मनदीप नाम है आपका या है? मनदीप इज इट योर नेम? 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री तो हो बता रहा है, ठीक है. और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो. नुसरत फतेह अली खान का सॉन्ग ला दें. कौन है ये, कौन है जरा, दिलबर अली, दिलबर भाई ये? मैं सवाल क्या कर रही हूँ, जरा क्या आ रहा है, मैं सवाल ये कर रही हूँ आपके पर्सनैलिटी के बारे में सवाल कर रही हूँ, और लोग सिर्फ गानों की फरमाइश कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सी थ्री डायमेंशनल टॉक चल रही है हमारे यहाँ पर. मैं किसी और डायमेंशन में देख कर बात कर रही हूँ, आप किसी और डायमेंशन में देख कर गाने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शो किसी और डायमेंशन में जा रहा है. वाह वाह शैम्पी वाह. अच्छा मंदी भाई ने कहा हाँ, दिस इज मनी. ओके ओके ओके मंदी भाई, हमारे पास भी 45 डिग्री का तकरीबन टेम्परेचर है. और कौन है हमारे साथ, हसनैन भाई की सिस्टर ने गाड़ी रेंट पर ली हुई है, तो मैं आज रेंट वाले को बोल रहा था भाई मैं पैसे थोड़ा देर में दूँ, अभी मुझे तंग ना करो. तो मेरे से लड़ पड़ा, वो बोल रहा है कि भाई तुम इतने गुस्से में क्यों, एक तो तुम पैसे नहीं दे रहे हो और दूसरा तुम इतना गुस्सा कर रहे हो. उस भाई तुम एक काम करो, तुम थोड़ा 3-4 घंटे 8 घंटे गाड़ी चलाकर देखो, तो बस लगा कि इंसान का दिमाग कहाँ से हिल जाता है, दिमाग की लस्सी बन जाती है गाड़ी चला चला कर. तो अगर थोड़ा सा लबो लहज तुम्हें ऐसा लग रहा है तो माजरत भाई, मैं ऐसे बात कर रहा था, मैं नॉर्मली बात कर रहा था, मैं नॉर्मली ऐसे ही बात कर रहा हूँ. और भी और कौन है मसा, असलाम अलैकुम जी, कैसा हाल चाल है आपके? मेरे हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक हैं. कौन ये, सरफराज आलम भाई, आपकी डीपी मुझे, मैंने पहले बोला था मुझे बड़ी प्यारी थी माशाल्लाह, की बेटी इनके साथ डीपी में, अल्लाह खुश खुरम रखे. अच्छा भाई कौन है शाहानिया में क्या हो रहा है भाई? मैं तो क्या है ये, मैं तो पता नहीं क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं शाहानिया में, ठीक है. मैं तो बोलता हूँ, क्या है ये वर्ड भाई, इसको डीकोड करने के लिए मुझे नासा वालों के पास जाना पड़ेगा, क्या जाए. चलो भाई इसी टेंशन के साथ ये मुझे किस किस्म के मैसेज आ रहे हैं, एक काम करते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर आप बात करेंगे मुद्दे पर. मुद्दे बात ये हो रही है, मुद्दा ये है, जरा बताओ कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको गलत लिया गया, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, यू आर अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, यू वेरी सेंसिटिव, अ वेरी जेंटल पर्सन, लेकिन लोग को एरोगेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप जो हो वो ज़्यादा हंस के मुस्कुरा करते हो तो लोग आपको ओवर फ्री कहते हैं, होता है भाई, लोग करते हैं ऐसे रहते. अगर आप ऑब्जर्वेंट हो तो लोग आपको एटीट्यूड कहते हैं. कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? 4333 7 इज द नंबर. और भाई मेरे महबूब कयामत होगी, नहीं भाई ना हो पाएगा. चले भाई इनका गाना सुनते हैं. आप सुन रहे हैं साउंड सफा के साथ ऑन एफएम 107 दिल से देसी. वैसे मोहब्बत से जितना दूर आ जाए ना उतना अच्छा है. एडवाइस दे रही हूँ, एडवाइस

0: It's you, boy, Badshah.
1: Damn.
2: आप रहे हैं सन एंड साउंड आसफा के साथ सिर्फ 107 पर दिल से देसी
0: भाई चीज मुझे लगती है जब ये गाने के बीच में आता है इशू बॉय बादशाह आई लाइक इट आई लाइक इट आई लाइक इट

0: एक अजीब टैग बन जाता है ना इसका, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो भाई गोविंद बुल्लो आ जाओ जरा खुशबू लगा के, सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप सभा के साथ और FM 107। और भाई रिचार्ज होने में आ गया है, मतलब एक दूसरे की शिकायतें करने का टाइम आ गया है। लेडीज में जब एक दूसरे से बातें करती है ना, चार बर्तन बचते हैं साथ में, कर शोर होता है, जल्दी आपस में बैठी हैं, चारों की बुराई करती हैं, तो फिर वो ना वो रिचार्ज आए। तो आज हम भी ऐसा माहौल बनाएंगे क्योंकि सफा उदास है, आज सफा को भी नहीं पता चल रहा कैसे। तो आज आपने सफा है कॉल कर लिया 4344377 पर, 4344377 पर आपने कॉल करना है और आपने जो है वो मैसेज 9662107 पर, 6622107 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और मुझे एकदम से आपके, हाँ मुझे याद आ गया कि मैं क्यों अपसेट फील कर रही हूँ। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, सिर्फ बड़े ही नहीं बच्चों का भी मामला होता है, कभी ना आपके बच्चों को भी चार लोग देखकर बहुत ज्यादा ओवर ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं। बाकी बच्चों को ये कहेंगे कि भाई ये जो बच्चा है ना तुम्हारा, तुमने इसे तमीज से खाई, ये जो है ना ज्यादा बात नहीं करता, चार लोगों के अंदर बैठ के ये बच्चा चुप करके बैठा रहता है। अब ये कमेंट देने वालों को कौन क्या ही बताए कि हम एज अ पेरेंट ये जानते हैं कि अगर हमारे बच्चे ने मुंह खोल लिया ना तो फिर इसका शटर नहीं होगा, आप अपने कान पकड़ लेंगे, शुक्र करें ये चुप करके बैठा हुआ है। तो मेरा ना ऐसे लोगों की बातों से दिल बड़ा खराब है जो अजीब वगैरह जजमेंट पास करते हैं और वो भी दूसरों के बच्चों को लेकर। तो भाई ऐसा ना किया करो, अगर आप इनमें से एक हो या आप ऐसा कुछ भुगत चुके हो तो मुझे जरूर बताओ, लेकिन अपने मामले तक रखकर बताओ कि आपको देखकर लोग औकात क्या क्या जजमेंट पास करते हैं, होता ना कुछ लोग देखकर। तो भाई मेरे पास मैसेजेस की भरी हुई आज पता नहीं कॉल वाली सो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वैसे इतनी कॉल आ रही थी लेकिन जब मैंने कॉल रिसीव करूंगी तो अब कॉल खामोशी हो गई है। मैसेज वालों की बात चलती है, आयशा ने मैसेज किया है, लोग मुझे बहुत सीरियस थे हैं लेकिन क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा पागल हूँ। आयशा क्या आप मेरे जैसी हैं? यकीन जाने मेरे जो एक से दो मुश्किल से दोस्त है ना मेरे, वो एक मेरी दो नहीं कहूंगी, एक ही दोस्त है मेरी जिसको पता है कि मैं कितनी पागल हूँ। तो जब भी कोई अगर ये कहता है ना कि सफा तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट और तुम तो बड़ी सीरियस मोड वाली, तो वो तो उसकी बस हो जाती है, वो लोटपोट हो जाती है जमीन पर हंस हंस के। अरे अच्छा आपको पता नहीं सफा का, चलिए भाई कॉलर की तरफ चलते हैं। ये क्या किया मैंने कॉल किया ठक से, वाह वाह शैम्पी वाह, यूं मैंने कॉल उठाई यूं कॉल काट दी गई। चलो भाई और कौन है हमारे साथ मैसेज में, मैसेज में हिना है, हिना क्या कह रही है, मुझे लोग एरोगेंट समझते हैं क्योंकि मैं कम बात करती हूँ, एक्चुअली मैं बस शाय हूँ और पहले ऑब्जर्व करती हूँ। अच्छा यही मामला ना हमारे घर में मेरी, हिना मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है लेकिन मेरी बेटी के साथ ये मामला है, मेरी बेटी बहुत, आप कहेंगे ना मेरी बेटी को तो आप कहेंगे सफा ये तुम्हारी ही बेटी है इतनी खास, तो वो बहुत ऑब्जर्वर और बहुत खामोश रहे दूसरों के आगे, लेकिन भाई उसका जो ह्यूमर है ना डार्क ह्यूमर वो सिर्फ उसके घर वालों को और उसके दोस्तों को पता है, हम कान पकड़ लेते हैं अगर वो अपना मुंह खोल लेते हो, शी इज सैवेज। तो जब कोई कहता है ना कि ये आपकी बच्ची जो ना बात नहीं करती क्यों बात क्यों रहे, मैं चुप करके देखती हूँ। चलो कॉलर की तरफ चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, सफा जी कैसे
0: हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन है हमारे साथ? सर भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जैसे कल थे वैसे उस ज्यादा बेहतर हैं कि वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा में राजी भाई, अल्लाह की रजा में राजी। अच्छा भाई मुदस्सिर भाई ये बताएं कि दिन कैसा गुजर रहा है अभी का?
1: दिन तो बच्चा गुजर रहा है, अभी तुम्हारा ये मुद्दा बहुत लेट क्यों स्टार्ट होता है?
0: तो इसलिए लेट स्टार्ट होता है क्योंकि मामले के कुछ हमें रूटीन के साथ यूं करके चलना पड़ता है ना, एक पैटर्न के साथ, पैटर्न के साथ चलते हैं तो पैटर्न ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो कुछ डिमांड होती है करें बात को। अच्छा ये बताएं मुदस्सिर भाई कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि लोग गम जाओ?
1: तो कभी तो हमारे साथ तो बार ऐसा हो रहा है मैम।
0: अरे भाई हो ना मेरे भाई भाई, मैं आपको समझ सकती हूँ।
1: मेरा जो फेस है ना वो सीरियस टाइप का लगता है।

0: अच्छा
1: तो मैं मैं पाता हूँ ना जो के साथ मेरा पहला मुलाकात होता है वो बोलते है आप बहुत सी आदमी और आप बहुत एक ऐसा नहीं है बहुत बार हो गए ये 8-9 साल में मैंने तकरीबन 50 दफा से ज्यादा हो गया है कसर में
0: आप ये भी ना एक रोब रखने वाला है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिखाएं इसके अंदर कुछ लोगों ना साइन कहती है कुछ लोगों का नेचुरल एक्सपीरियंस जो है ना वो सीरियस हो इवन जब आप बिल्कुल रिलैक्स भी होंगे ना और कोई आपकी तरफ देखेगा तो वो ये ज्यूम करेगा कि भाई ये ना बहुत रास शख्स है या बहुत डेंजरस गेम खेलने वाला बंदा है ये बहुत सीरियस बंदा है
1: लेकिन ऐसे आदमी है ना उसको जब मैं तकरीबन मैं 15 मिनट उसके साथ बैठता ना फिर वो बोलता है यार ये वो तुम्हारे से लेकिन मेरा एक दोस्त है वो हमारे साथ खा रहे पीते है बहुत टाइम हो गया हमारे साथ टाइम गुजारता है लेकिन वो बस वही एक बार अटका है कि आप बहुत गुस्से वाला है मैंने मैं उसे बोलता हूँ तुम गद्दा है गद्दा
0: पाकिस्तान से और मेरे ख्याल से मैंने आपसे पहले बताया पूछा था मैंने अच्छा मैंने ये पता क्यों पूछा मैंने जो है ना वो इसलिए पूछा कि कभी कभी ना जहाँ पे आप रहते हैं ना वहाँ के एनवायरमेंट के लोगों के लहजे भी ऐसे होते हैं जिससे आपको भी फर्क पड़ता है जैसे अगर पंजाब वालों के बारे में बात करूँ ना फॉर एग्जांपल पंजाब में रही हूँ तो लोग पंजाब वालों बड़ा स्लैंग समझते हैं मतलब कहते हैं कि ये बहुत ये चीपा नहीं करते ये बड़े खुले डुले लोग होते हैं तो वो मजाक भी कर जाएंगे वो भी कर जाएंगे ऐसी बात भी कर सी बात भी कर जाएंगे तो जब अगर हम कोहाट की या किसी पहाड़ी इलाके मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं ना मरी गई थी पहाड़ी इलाका ना मुझे ऐसा लगता है पहाड़ी में रहने वाले लोग होते हैं ना या जो ऐसे में रहने वाले लोग होते हैं उनका लबो जा वैसे ही थोड़ा बात करने का स्टाइल ना थोड़ा सा सख्त होता है जिसको लोग गलत समझ जाते
1: हैं
0: आपने मुझे बताया था कि आपका आपका आप पहाड़ी इलाके में नहीं रहते आपने बताया था
1: लेकिन ये बस नहीं हमारे लोगों को
0: लोग लो अपनी जजमेंट होती है बात समझ नहीं आती अपनी जजमेंट मैं कहती हूँ तब तक आप जजमेंट को पास नहीं करो जब तक आप उसके साथ उठो बैठो नहीं
1: जी जी हाँ? नहीं मैं आप बोला ना कि एक मेरा दोस्त है ना हमारे साथ उठता बैठता है ना उनको भी समझ नहीं आता तकरीबन 5 साल से हमारे साथ उठता बैठता है
0: तो उससे भाई तुम्हारा कोई इलाज नहीं
1: क्या क्या
0: पता नहीं ऐसे साथ क्या किया जाए जिनको आप पसंद भी नहीं होते लेकिन वो आपके साथ उठते बैठते भी हैं
1: उठते बैठते भी है आते क्या करेगा फिर उसके साथ लेकिन मैं बहुत ऐसे आदमी से मेरा जैसे लोग हो गया या मां को डोनेस हर कंट्री को पहली दफा मुझे बोलता है फिर उसके बाद में 15-20 मिनट सब बात कर वो बोलते हैं आप तो ऐसा नहीं है
0: अच्छा
1: हां
0: बस ये अब क्या करें हमारे साथ ही मसला है मेरे साथ भी
1: वैसा तो ये बार बार होता है
0: मुझे अगर कोई बाहर देख ले ना जानती नहीं हूँ तो मतलब मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सनलिटी हूँ वो भी देखकर कहेंगे ये बहुत वो है एरिगेंट है या बहुत ज्यादा मुरू है बहुत
1: लेकिन एक बात है मैम एक बात है लेकिन पाकिस्तान में कितनी भी अभी तक मुझे नहीं बोला है या कर में सिर्फ लोग बोलता है
0: पता नहीं शायद एक ट्रेंड है क्योंकि यहाँ पे मल्टी लोग रहते हैं तो एक ट्रेंड है कि आप एक दूसरे से जब भी मिलो या किसी को देखो तो मुस्कुरा कर देखो
1: जी और दूसरा बात यही है कि जब मैं अपनी सलवार कमीज नहीं पहनता हूँ ना सब लोग मुझे मोरक्को समझते हैं
0: मैं बोल रहा हूं कि लोग समझते होंगे मोरक्को
1: ये जो पठान है जो खासकर हमारे जो पठान भाई है
0: हाँ।
1: वो भी मुझे नहीं पहचानते लेकिन पठान का फेस पलटा किया
0: चले
1: वो भी नहीं पहचानते
0: कोई बात आज से आप मोरक्को के हुए हमने आपको टैग लाइन दी मोरक्को की
1: मोरक्को
0: चले ये अच्छा है जब किसी की बातें सुननी हो ना आपने कि वो किस किसकी क्या क्या बुराइयां करे कहना मुझे उर्दू नहीं समझ आती नहीं मुझे उर्दू नहीं समझ मैं मोरक्को का हूँ
1: एक आदमी मेरे साथ बात करता था ना उस टाइम मेरे सर में दर्द था मैं उसको बोला एक बार के सर में दर्द है बड़ा खामोश बैठो और फिर ये कैसा है ये मुझे तो नहीं आती वो बोलते कि मुझे अभी बोलो अभी मैं मरो को

0: हाँ ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी
1: ये सर था दिस वाज गुड जान छुड़ा दिया जान छुड़ा ये अच्छा है ये बहुत अच्छा है इट इज गुड
0: हाँ ये एक फायदा मिल रहा है लेकिन वो दूसरा जो है ना ये हर बार आदमी बोलते हैं कि इसमें सीरियस आदमी है हम किधर सीरियस है हम तो बहुत हंसी मजाक वाला आदमी है
1: उम्मीद नहीं किया है वो उम्मीद करते हैं कि ये गलतफहमी उस एक शख्स की दूर हो जाए उस एक शख्स की
0: तुम्हारा एक लिंक वो शहजाद सलीम ने किया ना
1: शहजाद सलीम
0: अगर वो सुन रहे उसको बोलो कि फोन करो फोन और उसका जब हम बात सुनते हैं उनको बहुत मजा आता है
1: शहजाद वो मजा है भाई वो बहुत मजा बंदे वो
0: पता नहीं लग रहा है फोन कर रहे नहीं कर रहे
1: फोन तो वो मैसेज वगैरह तो करते हैं कल भी उन्होंने मैसेज किया था
0: अच्छा
1: चले भाई उनको आपका मैसेज इंशाल्लाह मुदस्सिर भाई जरूर पहुंचाएंगे
0: उसको बोलो कि लाजम फोन करो फोन करो फोन
1: हाँ फोन करो भाई करो हम उन्हें फोन किए ठीक है भाई
0: ओके
1: चले जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें गेम खेलना पसंद करेंगे गेम गेम गेम गेम गेम कहाँ जा रहे हैं
0: खेलेंगे
1: चले भाई खेलेंगे गेम हम और गेम के अंदर करना क्या है आपने ये करना है कि आपको एक मिनट दिया जाएगा और उस एक मिनट के अंदर
0: ये नहीं बोलेगा
1: पूरे सेंटेंस में नहीं बोलना भाई ये बता दूं ठीक है ये नहीं ये बीच सेंटेंस में हाँ ना फिर नहीं आपने कहा था सेंटेंस में इंग्लिश वाला भी हाँ ना नहीं और उर्दू वाला भी हाँ ना नहीं ठीक है चलिए भाई एक मिनट रुक जाए एक मिनट और हमारा टाइमर ये जो मेरा टाइमर है ना ये बड़ा दूर दे जाता
0: चेंज करो
1: मेरी तरह सुन लेकिन कुछ बात नहीं इट इज ओके अच्छा भाई चलिए आपसे सवाल किए जाएंगे और अब जो है आप टाइमर शुरू होता है क्या आप इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं
0: कोशिश तो कर रहा है
1: कोशिश कर रहे हैं ठीक क्या आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे
0: फिर बोलो समझ में नहीं
1: क्या आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे
0: कोशिश में कर रहा है कि जीत हो जाएगा
1: अच्छा फोन आपके पास है फोन है आपके कम से कम दो सवालों का तो जवाब सही दिया गुड चलो जी अपना ढेर सारा ख्याल रख अल्लाह हाफिज हाँ बोलना नहीं था लेकिन गलती से बाय मिस्टेक उनके मुंह से हाँ निकल गया आदतन मैंने करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनसे हुआ नहीं कवर अपना कर पा दिल्ली लिए दूसरे से मैंने बोल दिया दिल्ली दिल्ली भी बोल देता हूँ कुछ और लेकर और अपना कर पाए कोई बात नहीं मुदस्सिर भाई कोई बात नहीं आए होता है चलता है एक कॉलर की तरफ चलते हैं देखते हैं कौन है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कौन है हमारे साथ
2: सरफराज आलम
1: कौन कौन कौन कौन कौन
2: सरफराज आलम
1: अच्छा जी सरफराज भाई कैसे हैं अल्लाह का करम है अल्लाह ताला की रजा में राजी है भाई ये बताएं कि आपके बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं बताएं आपने क्या क्या सुना है मार्केट में
2: सुनने के लोग मन है मुंह है जिसको जो बोलना होता है बोल देता है
1: सरफराज की बात बड़ी मजे की लगी सरफराज भाई आपने इतनी आजिजी के साथ मेरी तरह मैं ऐसे बोलूं मैंने कहा भाई उनका मुंह है वो जो बोले हम क्या ही कर सकें मैंने कहा मैंने कई रिश्तेदारियां पालनी है जो मैं सुलझाती फिरूं लेकिन फिर भी क्या सुनने में आता है
2: ये सुनने में यही आता है मैं किलोमीटर का बंदा हूँ आदमी को मतलब तुरंत बोल देता हूँ उसके मुंह पे बोल देता हूँ कोई भी बात है तो उसको बहुत खराब लगता है आदमी सोचता है बंदा सही नहीं मेरे बर्दाश्त नहीं कर पाते बर्दाश्त नहीं कुछ भी हुआ या अगले गलत हो रहा है बोल देता हूँ ये नहीं है लेकिन बाद में जब उसको एहसास होता है कि हाँ आदमी सही बोल रहा था यार इस हिसाब से बंदा तो सही तुरंत पारो कर दिया हमको बता दिया ये नहीं कि ठीक है अगर वो हमारा जानने वाला रहा खास है कुछ गलत भी कर रहा है करना
1: हमको बस आपका ये मामला है सरफराज भाई का कि सरफराज भाई कहते हैं कि अच्छा लगे तुम्हें बुरा लगे आई डोंट केयर सरफराज टपक से बोल देंगे
2: जी
1: चलें ठीक है ये भी ये एक मैं कहती हूँ ये इस चीज को कुछ

0: ऐसा ये सादा नेचर होती है लोगों की, कुछ लोग ना बड़े सादा होते हैं, उनके अंदर ये फॉर्मेलिटी नहीं होती कि वो कहते हैं, लोग कहते हैं भाई देखभाल के बात करो, के बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या मजा देखभाल की बात कर रहे हैं, मैं उसने बोल दिया अच्छा लगे तुम्हें बुरा बोल कर गया जाने सरफराज कभी वाला मामला है, सरफराज कहते हैं मैंने बोल दिया बस जाने दो, मेरा काम था बोलना मैंने बता दिया कम से कम तो नहीं निकल रहे होते कम से कम, हाँ ऐसे लोग है ना कम से कम शुक्र आस्तीनों से निकल रहे होते
1: जी जी जी वही वही है अगर हम तो खराब घर हमारे कुछ मैटर लेके भी आ रहे हो तो हम ये बोलेंगे कि हाँ यार ये सही है ये गलत।
0: चलिए बस भाई उम्मीद करते हैं अच्छी अच्छी एडवाइसेस लोगों को देते रहे आईना दिखा। हाँ अब लोगों को मसला ये कि शुगर कोटेड आईना चाहिए, वो शुगर कोटेड ना बड़ी मेहनत लगी है और आजकल महंगाई हो गई है तो जैसे है वैसे ही रहे भाई महंगाई का और है भाई। चलिए चल फिर आपके साथ गेम खेलने की कोशिश की जाए क्या देखो जरा सरप्राइज करें जिंदगी भी गेम आप भी खेल ही क्या ही कोई जाता है कुछ क्या ही चला जाएगा क्या ही होना है। चलिए सर भाई मामला ये है कि आपको दिया गया एक मिनट और उस एक मिनट के अंदर आपने मैं आपसे जितने भी सवाल करूंगी आपने उन सवालों के जवाब में पे भी हाँ ना हूँ या नहीं लेना। इंग्लिश में हाँ बोलना है ना उर्दू में हाँ बोलना है ना इंग्लिश में ना बोलना है ना उर्दू में ना बोलना है आपने हाँ ना इंग्लिश उर्दू किसी में बोलना ठीक है।
1: ठीक
0: है चले जी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको भूख लगी है?
1: सोच रहा।
0: अच्छा सोच रहा है अच्छा ये बताएं चाय पी ली आपने?
1: कल
0: अच्छा कल पियेंगे ये पता नहीं पी ली जी बताएं कि गाड़ी पेट्रोल डलवाया था फुल टैंकर
1: खाली
0: है। अच्छा ये बताएं कि केले गाड़ी में घूम रहे हैं या कोई किसी को साथ में कंपनी के तौर पे लेकर घूम रहे हैं?
1: छह आदमी
0: है अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि गब्बर है जिनकी बात से ये बताएं कि आपको गाते हुए नींद तो नहीं आ रही?
1: आ रहा है।
0: ये इतना लंबा पॉज क्यों लिया भाई? पॉज तो नहीं था हमने ये इतना लंबा सोच समझ के पहले सोचो समझो फिर जाओ। चले भाई नहीं हम आपको इसको काउंट ना करेंगे आपने 40 सेकंड क्लैप पॉज बहुत लंबा था नोटिसेबल पॉज नोटिसेबल ब्रेन फॉग हो जाना ऑन एयर आके ब्रेक
1: वही बात है।
0: चल भाई ढेर सारा ख्याल रखें 40 से ऊपर का टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखें
1: अल्लाह हाफिज।
0: और भाई कोई तो है जो मुझे मैसेज के नंबर पे कॉलिंग कर रहा है पता नहीं कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग अब कितना तो जाए मैं ये कॉल उठाकर जो है ना ऑन एयर कर दूं इनको लेकिन नहीं जहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं ना ये करने के लिए नंबर है 4434377 मैसेज करने के लिए नंबर है 666227। हेलो आसिफ भाई कैसे हैं ठीक ठाक हैं? और भाई और कौन है हमारे साथ? रात को हुए बातें करने की आदत है और बातें भी ऐसा शोर डालता हूँ कुछ नहीं आया कुछ समझ आया बस क्या है उर्दू में लिखा है लेकिन उर्दू में भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है मेरी उर्दू ख़त्म हो गई मेरी अब ठीक है। अच्छा इनको नींद में बातें करने की आदत है ठीक है ओके जी तो हमारा सवाल ये नहीं

0: क्या आपको नीनू की आदत है कि नहीं? हमारा सवाल ये कि लोग बारे में क्या तबसरे करते हैं, कैसी पर्सनालिटी समझते हैं आपको, बताएं जरा। अच्छा भाई, कौन है हमारे साथ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी कौन है हमारे साथ?
1: करीम भाई।
0: आसिफ भाई मुझे डांट रहे, कह रहे कॉल तो उठा, मेरी कॉल नहीं उठा रही है मेरी। कौन भाई? और आसिफ भाई की कॉल लग गई।
1: अच्छा
0: करीम भाई कैसे हैं, ठीक है?
1: मैं ठीक राजू, मैं कर रहा था, लाइन बिजी आ रहा था, मैंने कहा चलो कोई भाई कर रहा होगा, जैसे उसका कट जाएगा अपना लगेगा फोन।
0: करीम भाई ये बताएं कि आपके बारे में लोग क्या सोच, आपको कहां कहां से क्या रिपोर्टें मिली, जरा बताएं।
1: मेरे बारे में, मैं ये बाज रात पे इस पे दोस्त है अपना आया हुआ था रूम पे, तो बैठे बातें हो रही थी बस, हम कभी कभी यही मरा की गुफ्तगू के हवाले से हम बात करते हैं, कहते हैं रूम पर धकेलो कि भाई मोबाइल साइड पे रखो, थोड़ी से अपने हालात शेयर करो। तो एक बंदा ने कहा वो यहाँ आके होते भाग गया, ये कोई 15-20 दिन की बात है।
0: सही,
1: पर किस्मती से बुलाया भी मैंने था उसको, लेकिन हालत देख करना बस सोचा के भाई
0: यू टर्न मार लिया,
1: नहीं हो सकता ना।
0: जी जी,
1: तो मुझे बस रात को सिर्फ फोन किया कि मैं तो जा रहा हूँ, बेचारा मजाक कर रहा है। तो मैं वैसे भी जब आता हूँ 11-12 बजे तक पहुँचता हूँ, 10 बजे ही निकल गया, अब जाके जो है ना लगाया है
0: केस मुझे फंसा दिया।
1: हाँ ये लोग बोलते हैं भाई अगर आप ऐसे पड़े होते ना तो हमें तो 7-8 बंदे हैं, आप ही बुलाया, आपने सहारा दिया और आज तक सहारा दे रहे हो, तो पहली बार मेरा शिकायत किसी ने लगाया।
0: तो वैसे आमतौर पर अगर आपकी पर्सनालिटी देख क्या के करीब किस्म के बंदे,
1: मुझे हमेशा लोग इस तरह तक जहाँ तक तक मैसेजे पहुँचते हैं जो बोलते हैं कि यार आप जिधर आते हो ना जहाँ पर हमारे पास आते हो, वो लोग बोलते हैं यार वो बंदा कहाँ गया, वो नजर नहीं आ रहा यार, उसको बुलाओ ना।
0: अच्छा ये लोग ऐसे होते हैं जो महफिलों की जान होते हैं, और ये है, ये वाकई में बात है, कुछ खुशबख्श लोग होते हैं
1: बिल्कुल। मैं ईमानदारी ये बात, मैं जिधर हूँ अपने पहचान वाले के पास वैसे मैं जाता भी हूँ उधर, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उनको कहता हूँ मेरे आने का एक बड़ी वजह ये है ताकि पास वाले रखे कि यार इसका भी कोई है आता है, मैं लगाता हूँ वहां पर। ऊपर जब मैं बैठता हूँ तो हमेशा बात इज्तिमाई होती है, वो जो साथ वाले हो गए ना रिलीजन में नहीं देखता कि उसका किस रिलीजन से ताल्लुक है उसका, ईमानदारी में वही जो इंसान वाली बात है ना,
0: आप सरसरी बातें, आप मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये भी अच्छी, ये मैं कहती हूँ ये स्किल है कि आप चार लोगों के अंदर बैठो, हर लोग जब आप उठो तो वो आप में अच्छा ही गुमान रखें, क्योंकि आखिर में यही गुमान लिया जाता है।
1: जी जी बिल्कुल, मैं ये मैं अपना खुद चेक कर चुका हूँ कि ऐसा मेरे बारे में कैसे सोचते हैं, ये बहुत ये जो पॉइंट है ना ये जरूरी भी है, हर शिक्ष चीज का जो है ताकि आदमी उस चीज को देख कर अपने आप में सुधार ला सकता है। असल मसला ये जो आदमी चाहे खुद को बदले ना, बदलना अपने अंदर से होती है, आप अगर अपने दिल को नहीं बदलोगे, अपने सोच को नहीं बदलोगे तो आपको कोई नहीं बदल सकता।
0: सही, दुरुस्त रखना चाहिए, तो एक ऐसी बात है कि लोगों के साथ इखलाक अपना अच्छा रखें, हाँ लेकिन ज्यादा मीठे भी नहीं होकर बात करें, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कंधे बैठ के खाने की, तो लोगों को उनकी बाउंड्री में रखते हुए ऑब्जर्व करके कि इससे कितनी बात करनी चाहिए। अच्छा मजे की बात ये, हम एक ही इंसान होते हैं लेकिन हम पर्सनैलिटी मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ होती है, हमको वही पर्सनैलिटी देते हैं जो वो डिजर्व करें, ये सबसे दारी का काम होता है।
1: हाँ यही वही काम है कि वो हमारे एक पश्तों में एक हाल देते हैं ना, कहते हैं कि ना इतना मीठा हो के लोग खा जाए ना इतना कौड़ा हो के लोग, एक हदूद में रहोगे तो सही चलोगे, अगर ज्यादा कौड़ा रहेगा तो भी ज्यादा मीठा रहेगा
0: न्यूट्रल आना
1: बिल्कुल।
0: चले भाई करीम भाई ये बताएं गेम खेलेंगे हमारे साथ, गेम
1: हाँ खेले हैं तो लेकिन

0: ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾ ਚੁੱਪਾ
1: ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਦੇਂਗੇ
0: ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੇਂਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੂੰਗਾ
1: ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ
2: ਬਾਦ ਨਾ ਭਾਈ
0: ਤੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਨਾ ਤੋ ਯਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
1: यही तो आपने तरीका निकाला करीम भाई इतने अच्छे इस पे देखिए आसिफ भाई कह रहे हैं कि करीम भाई को जो ना पीएचडी की डॉक्टर की डिग्री पकड़ा दो इतनी अच्छी बातें करते हैं करीम भाई तो मतलब ये इंप्रेशन से नहीं ना बातें तो आप माशाल्लाह कर लेते हैं कहीं ना कहीं घुमाई सवाल करते हैं आपके साथ ठीक है
0: आदल मसीन भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान वो है जो जोड़ने का कोशिश करे यानी नफ्सी तकाजा छोड़ दे कोशिश करे सबको साथ चलने का असल मसीन यही है
1: अरे करीम भाई कितना भी कोशिश कर लो कितना भी कोशिश लो किसी ना किसी की कहानी में तो विल हो गए ही मैंने तो ये सीखा है मैंने तो यही सीखा भाई आप पेड़ियां रख लो लोगों के लिए सर कटवा लो
0: इस बंदे को जानता हूँ उस बंदूक को भी जानता हूँ जो मैं यानी आप उसको फालो तो भी वो आपको विलन समझेगा
1: ये बात ये तो फिर होगा ही भाई ये इनों का मसला है चले मैं आपका गेम खेलते हैं दिया जाएगा एक मिनट के अंदर आपने अपने जवाब में सवालों के जवाब में आपने इंग्लिश में भी नहीं उर्दू में भी नहीं हाँ हूँ ना नहीं बोला
0: ना हूँ ना
1: ठीक है और पॉज भी नहीं लेना
0: ठीक है मैं करता था करूँ
1: समझ गया देखते ठीक है एक मिनट तक सर्वाइव करना है एक मिनट तक ओके आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ क्या आप गेम के लिए रेडी हैं
0: करूंगा
1: अच्छा ये बताएं कि आपकी गाड़ी है वो सही तरीके से खराब तो नहीं है
0: चला रहा था
1: अच्छा घर कब जाएंगे
0: जाऊंगा
1: अच्छा चाय पी लिए
0: पीऊंगा
1: भूख लग रही है
0: लग जाएगा
1: लग जाएगा क्यों रहे हैं आप हंस रहे हैं आप
0: हंसना है
1: अच्छा क्या आपको पता है कि अभी थोड़ी देर बाद क्या करने वाले हैं
0: सोचूंगा
1: अच्छा आपने हाँ नहीं बोला
0: कौन हाँ
1: हमने कहा कौन सा हाँ
0: कौन सा हाँ किस हाँ के बारे में बात
1: हाँ तो बोलना ही था ना बोलना ही नहीं था हाँ तो बोलना ही था लेकिन फिर भी तकरीबन 55 सेकंड आपने सर्वाइव किया है 55 सेकंड गुड गुड हाँ तो बोलना ही नहीं था ना हाँ तो बोलना ही नहीं था
0: ये तो पिछले दिन से आज
1: हाँ हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट
0: क्या जिंदगी रही इंशाल्लाह इससे भी आगे जाएंगे
1: चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज
0: अस्सलाम
1: चलें भाई एक और कॉलर चलते हैं देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
1: जी कौन साथ मोहम्मद सरफराज ऐसा क्यों लगा है कि अभी सरफराज आलम ने कॉल की थी अभी फिर एक मोहम्मद सरफराज है
3: जी हम आप जब से शो में हैं ना तो कॉल सोच रहे मिलाने के लिए लेकिन मिलते आज मिला
1: है अरे भाई इतना ऑन डिमांड मेरी मुझे पता ही नहीं था कि मेरा शो इतना मशहूर चल रहा है सेवन स्टार चल रहे हम सेवन स्टार इंटरनेट
3: एक बार लगाए थे शायद कॉल उठ भी गया बहुत खुश होने लगे बाद में मालूम चला
1: और चले कोई नीता से बातचीत हो गई आपकी अमिता भी माशाल्लाह अच्छी वो है एंटरटेनर है माशाल्लाह अच्छा मोहम्मद सरफराज भाई आप वो वाले सरफराज तो नहीं हुए जिन्होंने हमें कॉल की थी पहले
3: नहीं नहीं आपसे दो बार हुआ था महेश साथ जब आप शो कर रही थी उस टाइम में बात हुआ था
1: अच्छा चलिए ये बताएं कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं आपको देखकर लोग क्या आप ना तबसरा किसी का भाई मैं ये समझ रहा था

0: आता है, ऐसा तो नहीं मिला, लेकिन वही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव तो हर जगह।
1: तो कभी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सुनने को मिला हो ना, कुछ तो शेयर करें, जिंदगी कह रही होगी, कुछ तो होगा जिंदगी मेमोरी में।
0: जिंदगी इतना मतलब तंगी में है कि किसी को अपना बैक करने के लिए टाइम नहीं।
1: अच्छा कल मेरी भी ना किसी से यही सो रही थी, पता है, मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा था, लेकिन उस अच्छे दिन के अंदर ना मेरी किसी का एक बहुत सेट वाली भैंस हो गई, और वो इसी बात के ऊपर हो रही थी कि आपको ऐसा लगा है कि सामने वाला बड़ा फारिग बैठा हुआ है और वो अपनी जिंदगी आपके मुताबिक चलाएगा, लेकिन हर किसी को पता है कि वो किस चीज से निपट, हर इंसान जिंदगी में किसी चीज को गले में अजाब की तरह बांध बैठा हुआ है, लेकिन वो भुगत रहा है।
0: कुछ दिन पहले हमारा ऐसा माना ना, चलो भाई रिश्तेदार कोई भी हो, बोलना चाहिए, उससे भी बात करना चाहिए, जाना नहीं तो खैर खरीद करना चाहिए, लेकिन सालों में ऐसा एटीट्यूड आ गया है कि जब तक कोई कॉल नहीं करता, यहाँ तक अपनी फैमिली, अपनी खुद की फैमिली अगर फोन ना करे तो फोन घर बंद रखो। वो पहले से तो शायद हो सकता है अब नेगेटिव आउट सोचता हो कि वो वगैरह वगैरह, तो ये नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा है क्योंकि पहले आदमी को कॉल करते थे तो बात तो होता था, फिर कुछ आदमी ऐसे हो गए कि कॉल करो तो कॉल उठाते नहीं, बाद में बोलते बहुत बिजी थे, यार भाई हम भी नहीं, हम भी टाइम नहीं, कहीं आन कर रहे हैं ड्यूटी करके, कभी दिल चाहता है अपना नहीं कॉल कर रहे हैं। आप अगर उधर ये सुना रहे हो कि हम भी है घर पे बैठे हुए, तो हम किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इस तरह से सबको बंद किया।
1: नहीं भाई सरप्राइज है, इस मामले का ना, इस मामले का हल पता क्या होता है, अक्सर औकात मुझे भी कोई कॉल करता है ना, घर वाला कोई वगैरह कॉल करते हैं, सबकी जिंदगी अपने अपने मामले, देखिए आप किस जूते में पांव रख कर बैठे हुए हो किसी को पता, ऐसा नहीं है कि आप मसरूफ नहीं हो, ऐसा नहीं है कि सामने वाला मसरूफ नहीं है, मेरा तो एक ही फंडा है, मैं कॉल बैक करती हूँ, मैं सबसे माजरत करती हूँ, मैं कहती भाई उस वक्त कॉल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अब मैंने सोचा था तफसील से बताऊँ, आराम से अब बात करो।
0: बिल्कुल सबकी लाइफ है, सब सरफा घर पे हो या यहाँ पे हो, सबको हो, लेकिन कम से कम फोन तो उठा लेता था भाई, कुछ अर्जेंट था इसलिए बात नहीं हुआ, ये एक अलग।
1: अच्छा ये एक बात है कि एटलीस्ट एक मैसेज छोड़ जाना चाहिए, आप उस वक्त कॉल नहीं उठाओ लेकिन मैसेज में लिख दो कॉल यू।

0: मैंने भाई हम इतना बिजी रहते हैं नहीं भाई, ठीक है आप बिजी रहते हो, तो कभी फारिग के टाइम में मोबाइल आदमी इतना है कि मोबाइल चलाते चलाते कॉल कर दे तो कॉल नहीं उठाता, फिर बात पूछे तो बोलता है फ्री नहीं।
1: सफाज भाई लोगों के खून सफेद हो गए, खून सफेद। चलिए दिल दुखा हुआ सरफराज भाई का। सर मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस, वो भी फ्री का, लेकिन चार्ज नहीं करती मैं इस एडवाइस के लिए। मैं जो ना मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसके ऊपर मैं बच जाती हूँ और इसी वजह से मैं खुश रहती हूँ। पहली बात तो ये, अपना मेमोरी बॉक्स छोटा कर दो, ठीक है, कौन अगर उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दो, आपने अपना फर्ज पूरा किया, खत्म। दूसरी चीज ये कि इंसानों से उम्मीदें रखना छोड़ दो। मैं बता रही हूँ 90% टेंशन का भाई।
0: मेमोरी तो इतना सॉफ्ट ले सकी, अगर कितने बार भी प्रॉब्लम हो जाए कितना बार भी तो कर एक बार
1: ये मेरे वाला हिसाब है इनका,
0: ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत होता है ना, टेंशन हो गया कोई भी या कुछ एक्सीडेंट हो गया, लेकिन सो के एक बार उठ गया
1: भाई, इंसानों से उम्मीद रखना छोड़ो। आपका दिल था किसी बात करने का, आप माओ अगर नहीं उठाया माफ कर दो छोड़ो। आप रात को जब सोया करो ना तो माफी मांग कर और माफ करके सोया करो भाई। हम तो रात को ही कहकर भाई अगर मुझे कोई गलती हो माफ कर दे, मुझे हिदायत दे, और अगर मेरा किसी ने गलती से दिल दुखा दिया मैंने उसे माफ किया, खली वल्ली जा दो, खुश रहेंगे भाई। चले आपको और खुशी देते हैं थोड़ी सी, आपका गेम खेलते हैं, ठीक है।
0: आप खुशी नहीं देंगे, आप फंसा करती
1: हैं। अरे भाई ऐसे फन भाई, फन फन है, आखिरी ये कुछ मिनट रह गए, फन करते हैं, चलें, ठीक है।
0: चले
1: हाँ ना ना इंग्लिश में, उर्दू में हाँ ना हूँ नहीं बोलना, ठीक है।
0: जी बोल सकते हैं, जी बिल्कुल,
1: हाँ हाँ वो बोल सकते हैं, बस डायरेक्टली हाँ ना हूँ और पॉज नहीं लेना, ठीक है, पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी, ठीक है। चल भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। आपको मेरी आवाज आ रही है?
0: जी।
1: अच्छा जी, आपको क्या लगता है, रेडी है गेम खेलने के लिए? आप अपनी स्ट्रेटेजी बना चुके हैं गेम खेलने के लिए?
0: बिल्कुल।
1: अच्छा जी, क्या सोच रहे हो अभी?
0: कुछ नहीं।
1: नहीं
0: कुछ न...
1: कुछ और फिर नहीं
0: नहीं नहीं तो बोला ही नहीं
1: नहीं आपने कहा कुछ नहीं, देखे मैं
0: कुछ बोल के उतने पर साइलेंट हो गया।
1: पहले क्या बोला था कुछ नहीं
0: नहीं नहीं पूरा सेंटेंस नहीं बोला,
1: नहीं तो आया था सेंटेंस। हाँ मैं अभी नेक्स्ट कॉलर से पूछ लूंगी।
0: नहीं फूल अभी कुछ ना बोलने वाला था, बोला नहीं है।
1: नहीं बोला था। दूसरा में आपने बोला कि कुछ, और पहली दफा में आपने बोला कुछ नहीं।
0: नहीं
1: कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ नहीं।
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, ठीक है, कल फिर से ट्राई करेंगे।
0: बस बात हो गया, ये खुशी है।
1: अपना ढेर सा ख्याल रखें और इस प्रोपेगेंडा पे चलें कि भाई दुनिया से उम्मीद नहीं रखनी, अपना जिस चीज में दिल खुश होता है वो हो नहीं हो, खली वल्ली जाने दो। चलें जी अपना ढेर सा ख्याल रखें। अरे भाई मुझे ना ये कॉलें आ रही हैं और मेरा टाइम भी इतना कम रह गया है कि मुझे नहीं लगता कि आखिरी कॉलें मैं उठा पाऊंगी, क्योंकि 52 तो हो गए भाई। देखो मेरे को जो है वो शो बाइंड करना होता है और मैं थोड़ी देर हो गई है। एक काम करते हैं, थर्सडे वाले दिन ना मिलकर खूब मजे और मस्ती वाली बात करेंगे, यानी कि कल, कहते हो? अभी के लिए कॉलें बंद, ठीक है, और अभी आप लोगों से चाहूंगी बस जिंदगी का ना एक सिंपल सा लेसन याद किया जाती हूँ, जाते जाते थोड़ा सा सीरियस मोड वाला, ज्यादा हैवी वाला लेकिन हल्के मोड वाला थोड़ा सा लेक्चर देना चाहूंगी। देखें लाइफ का पता है क्या मसला है, लाइफ का लेसन ये याद रखें कि इंसान की पढ़ना ही एक किताब की तरह है, ठीक है। जैसे जैसे सफ़े पढ़ते हैं ना वैसे

पढ़ते वैसे आपको उसकी पर्सनैलिटी की और डेप्थ पता चलती जाती है। कभी भी किसी बुक का कवर देखकर जज करना शुरू नहीं कर जाया करें। यू नो बडी टू जज एनीबडी। और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ पर्सनैलिटी सामने लेकर आते हैं। इसे कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो हर सिचुएशन में एक जैसा हो। हम दिन में 10 दफा 10 लोगों से मिलते हैं और 10 डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। होता है नहीं, मैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रही मैं यूजुअल सी बात बोल रही हूँ। हो सकता है जो इंसान आपको रूड लग रहा हो वो एक्चुअली में शाय हो, जो सीरियस लग रहा हो उसके अंदर कॉमेडियन छुपा हो, और जो बहुत आता है ना कभी कभी वो अंदर से अपनी ही कोई बैटल फाइट कर। इसलिए जज करने से पहले थोड़ा वक्त दें, समझने की कोशिश करें और एजम्पशंस को थोड़ा सा ब्रेक दें। और याद रखें जो चीज दुनिया आपकी वीकनेस थी ना, हो सकता है वही आपसे खूबसूरत क्वालिटी हो। तो भाई वैसे रहें और जो जहाँ डिजर्व है उसको वैसा डील करें। कुछ लोग भी अंदर रहते हैं उनसे अच्छा डील करें, और कुछ लोग बाउंड्रीज को जाते हैं तो उनके लिए फिर हमारी दूसरी वाली पर्सनैलिटी भी जरूरी होती। तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि जो इंसान अपना ख्याल रखता है वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा, है कि नहीं। फिलहाल गई इश्क बुलावा, चलो जी मैं जाने लगी हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी वीकेंड वाले मोड पर। अभी ये तो सुहाब सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल 4488806 पर या ईमेल करें marg@qmc.qa.
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं.
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड वो प्रोग्राम जहां हम दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक पहुंचा. मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन. आज हम बात करेंगे एक लेजेंड के बारे में, स्विमिंग लेजेंड और वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है माइकल फेल्प्स. या दोस्तों, फेल्प्स ओलंपिक तारीख का सबसे कामयाब एथलीट. ओलंपिक गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है. हर एथलीट का ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क के लिए मेडल जीते और तारीख में अपना नाम लिखवाए. दोस्तों, चंद ही एथलीट्स ऐसे होते हैं जो मेडल नहीं जीतते बल्कि पूरे तारीख बदल रहे हैं. स्विमिंग की दुनिया में माइकल फेल्प्स एक ऐसे ही नाम है. उन्होंने ओलंपिक गेम्स में 23 गोल्ड मेडल्स जीत वो कारनामा अंजाम दिया आज कोई और एथलीट हासिल नहीं कर सका. और ये बहुत मॉडर्न ओलंपिक गेम की बात कर रहा हूँ, कोई पुरानी 50 साल 60 साल 40 साल की बात नहीं. वेरी फेनोमेना. माइकल फ्रेड फेल्प्स की पैदाइश 30 जून 1985 को बॉल्टिमोर मैरीलैंड अमेरिका में हुई. बचपन से ही उनमें स्विमिंग की हियत नुमाया थी. सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने स्विमिंग शुरू की और जल्द ही कोचेस को अंदाजा हो गया कि भाई ये बच्चा मामूली टैलेंट नहीं रखता. उनके कोच बॉब बोमन ने उनकी ट्रेनिंग पर खास तवज्जो दी और माइकल ने बहुत कम उम्र में ही नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ना शुरू कर दिए. सन 2000 में माइकल फेल्प्स ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ओलंपिक्स में हिस्सा लिया. वो उस ओलंपिक टीम के सबसे कम उम्र में मेल स्विमर थे. अगरचे वो मेडल नहीं जीते लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि एक नया सितारा उभर रहा है. उनका ओलंपिक मेडल 4 साल के बाद एथेंस ओलंपिक्स और वहां पर सबने देखा. इस ओलंपिक में फेल्प्स ने गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते. ये एक शानदार कामयाबी थी और दुनिया भर के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स ने उन्हें स्विमिंग का नया बादशाह करार देना शुरू कर दिया. लेकिन असल तारीख तो ही लिखी जानी बाकी थी. या दोस्तों, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स माइकल फेल्प्स के करियर सबसे यादगार मोड़ था. उन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड अमरीकी स्विमर मार्क स्पिट्स के पास था जिन्होंने 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में 7 गोल्ड जीते थे. फिर इस रिकॉर्ड को तोड़कर साबित कर दिया कि वो सिर्फ चैंपियन नहीं बल्कि एक लेजेंड है. उन्होंने हर रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया स्विमिंग के हर कैटेगरीज में. बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, मेडली और रिले में उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कई मुख्तलिफ स्विमर्स उनके मुकाबले में कमजोर नजर आने लगे. दुनिया भर के मीडिया ने उन्हें द ग्रेटेस्ट ओलंपियन का टाइटल से पुकारना शुरू कर दिया. 4 साल के बाद लंदन ओलंपिक्स, वहां भी माइकल फेल्प्स ने अपनी बरकरार रखी और इस ओलंपिक में उन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते. इसके साथ ही उन्होंने सोवियत जिमनास्ट लारिसा लेनिना का ओलंपिक मेडल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया. लारिसा के पास 18 ओलंपिक मेडल्स का रिकॉर्ड के फेल्प्स ने इस नंबर को 6 छोड़ दिया और ओलंपिक हिस्ट्री के सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले एथलीट बन गए. लंदन ओलंपिक्स के बाद माइकल फेल्प्स ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. बहुत से लोगों को लगा कि उनका करियर खत्म हो गया है लेकिन चंद सालों बाद उन्होंने स्विमिंग में वापसी का फैसला किया.

0: women gymnast mein Simone Biles ki baat mein hum baat karte hain, one of the most successful Olympic gymnasts, bahut sare medals hain, unko bhi kuch is tarah ki problem face na pada tha. I don't know, ek level tak athletes ko ek out se ki kuch gehrai tak chale jate hain, soch gehrai tak chale jate hain, kuch soch unko kha jati hai, kuch depression. There are some stories, told stories hain hame nahi pata. Aur yahan par Michael Phelps ki example de raha hu, depression ka shikar hai aur you know down, apne aap se ladai kar rahe the ki what to do in swimming. Uske baad ye baat hai ki sab to unke bas baaye hath ka khel tha, and uske baad kya shayad wo kuch dhoond rahe the aur ise karte karte I think finally he found himself. The jo self jo hai, basically self wali baat hai wo unhone I think mehnat karke unhone dhoond nikala. He has to stay in that race, he has to you know succeed and then say tata bye bye to the sport. Michael Phelps ne duniya ko ye sabak diya ki talent ke sath mehnat, discipline aur lagan ho to namumkin ko mumkin banaya ja sakta hai. Unka safar ek chote se swimmer se duniya ke azim tareen champion banne ki kahani hai. Ye kahani har us naujawan ke liye inspiration hai jo apne khwab poore chahta hai. Yahan dosto, it's a marvelous story. Michael Phelps, बार बार इसको दोहरा रहा हूँ कि आप लोग पढ़िएगा. पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूँ तो माइकल फेल्प्स के बारे में जरूर पढ़िएगा. मेंटल फटीक, मेंटल डिप्रेशन, यू नो मेंटल इश्यूज अगर कभी किसी को हो रहा है, होता है, अगर आप एथलीट हैं, स्टूडेंट हैं, तो माइकल फेल्प्स पढ़िएगा. ही इज अ रोल मॉडल और शायद आप मुतासिर होंगे माइकल फेल्प्स को पढ़कर या माइकल फेल्प्स की सुनकर. I think you will be able to overcome those challenges. Olympics ne bahut se likhe hain dosto, lekin Michael Phelps ka maqam alag hai. 20 Olympic gold medals, 28 majmui medals aur beshumar world records unhe sports history ke azim athlete shamil karte hain. Unka naam hamesha Olympic tareekh ke sunehri safon mein likha rahega aur aane wali generation unki kamyabiyon ko yaad karti rahengi. Dosto, Michael Phelps sirf ek swimmer nahi, main agar unko sirf swimmer kahun ya athlete kahun, I think it was a larger than life figure. Balki excellence, determination aur greatness ki misal hai. Isiliye unhein aksar the greatest Olympian of all time kaha jata hai. Aur unka 23 gold medals, kitna 20th, yaad rakhiyega 23 gold medals Olympic mein jeetna. Ye jaise maine shuru mein kaha, kisi country, ek country bhi itne gold medals le nahi pate hain, jeet nahi pate hain. To 23 gold medals ek individual swimmer ne, aur unka jo record hai, ये 23 गोल्ड मेडल का जो रिकॉर्ड है ओलंपिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाब में से एक माना जाता है. तो दोस्तों यहाँ ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक. माइकल फेल्प्स की कहानी से हम काफी मोटिवेट हो रहे हैं, आप भी हो रहे होंगे, और छोटा सा ब्रेक. लिसन टू एफएम 1
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरानगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ एफएम 107 पर. स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं.
0: वेलकम बैक टू एफएम 107 और ये शो है स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड. मैं हूं आपका मेजबान अमीन और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नुमाया किरदार के बारे में. बात कर चुके हैं बिफोर द ब्रेक, माइकल फेल्प्स 23 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक हिस्ट्री. आज भी जबरदस्त रिकॉर्ड है, अनब्रोकन है, ए फीट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन. आई वुड उस कॉन्फिक्शन के साथ मैं कह सकता हूँ आने वाले ओलंपिक गेम्स में आई डोंट थिंक इट्स इजीली ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल. 28 गोल्ड मेडल्स नहीं बल्कि टोटल मजबूत तौर पर जो मेडल्स उन्हें हासिल की, तोड़ना मुश्किल है. Anyway, let's now move on to the athletics track and field में, और देखते हैं आज athletics track and field में क्या रिकॉर्ड है. एथलेटिक्स ये दुनिया में मैराथन का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड आज हम बात करेंगे, और ये सबसे यू नो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड की केल्विन किप्टुम के नाम है. केल्विन किप्टुम 2023 को शिकागो मैराथन में 42.195 किलोमीटर का मैराथन सिर्फ 2 घंटे 35 सेकंड में मुकम्मल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम

किया। मैराथन देखने से ही लगता है कि भाई नहीं, हमसे ना हो पाएगा। देखिए जो अफ्रीकन एथलीट्स हैं, अफ्रीकन से मुराद मैराथनर्स जो है ज्यादातर अफ्रीकन, यू नो दे आर द वर्ल्ड बीटर, आई मीन दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस, ऑल चैंपियंस। और यहाँ पर केल्विन किप्टुम के बारे में बात कर रहे हैं, इनका जो रिकॉर्ड 42.195 किलोमीटर यानी 42.195 किलोमीटर का मैराथन था शिकागो मैराथन में, 2 घंटे 35 सेकंड में मुकम्मल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड अफ्रीकन्स आर रियली गुड एट एथलीट, अफ्रीकनली गुड एट लॉन्ग डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस रनिंग में। और इस परफॉर्मेंस ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और किप्टुम को मैराथन हिस्ट्री के अजीम तरीन रनर्स में शामिल कर दिया। उनकी रफ्तार इतनी शानदार थी, वो मैराथन को 2 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल करने के करीब पहुंच गए। और यह रिकॉर्ड एथलेटिक्स की तारीख के सबसे यादगार कारनामों में से माना जाता है। एंड द रीजन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको एथलीट्स को चैलेंज करना है मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में, मत करिएगा, दे आर द अनबीटेबल, दे आर द लेजेंड्स। अब आप देखते हैं कि फुटबॉल के मैदान पे क्या हो रहा है। जी हाँ, की तारीख में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है दोस्तों, प्रोशोगोसुआरसियासविन के नाम से दुनिया के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप्स में गोल स्कोर किया। पर मेसी के फैंस थोड़े से नाराज हो जाते हैं ये सुनने के बाद कि हम रोनाल्डो के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों दोज आर लेजेंड्स, मेसी इज अ लेजेंड, रोनाल्डो इज अ लेजेंड, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं रोनाल्डो के यूनिक रिकॉर्ड को। पिछले महीने जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें रोनाल्डो ने 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड, अच्छा रोनाल्डो और मेसी दोनों ने 2006 में अपना जो वर्ल्ड कप सफर है उसको शुरू किया था, और रोनाल्डो ने हर वर्ल्ड कप किया 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और इस 2026 वर्ल्ड कप में उन्होंने ये गोल करके एक अपने आप को बना लिया कि ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स। ये कारनामा उनकी कंसिस्टेंसी, फिटनेस और गोल स्कोरिंग सलाहियत का सबूत है। कई दौर के फुटबॉल स्टार्स आए और गए, लेकिन रोनाल्डो ने 2 दहाइयों तक अपनी शानदार परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिखवा दिया। अब चलते हैं, देखते हैं कि गोल्फिंग ग्रीन्स में क्या हो रहा है और गोल्फिंग ग्रीन्स में क्या रिकॉर्ड है। गोल्फ की दुनिया का एक और शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बायरन नेल्सन के नाम है। याद तो बायरन नेल्सन ने 1945 में मुसलसल 11 PGA टूर टूर्नामेंट जीतकर ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक नहीं टूट सका। उन्होंने मजीद तौर पर 18 टूर्नामेंट जीते और गोल्फ की तारीख की सबसे डोमिनेंट परफॉर्मेंसेज में से एक पेश की। लगातार 11 इवेंट जीतना इंतहाई मुश्किल माना जाता है क्योंकि हर टूर्नामेंट में मुख्तलिफ कोर्स और मुख्तलिफ हालात होते हैं, इसीलिए बायरन नेल्सन का ये रिकॉर्ड गोल्फ के सबसे अजीम रिकॉर्ड में शुमार होता है। हमने आउटडोर फील्ड्स, आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड्स, आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में हम काफी बात की। थोड़ा सा देखते हैं कि स्नूकर में क्या करें। स्नूकर की तारीख का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड रॉनी ओसुलिवन के नाम है। यहाँ दोस्तों रॉनी ओसुलिवन ने प्रोफेशनल स्नूकर में सबसे ज्यादा रैंकिंग टाइटल्स जीतने का रिकॉर्ड कायम किया। अपनी गैर मामूली स्किल, तेज गेम प्ले और कंसिस्टेंसी की वजह से उन्हें द रॉकेट के टाइटल से जाना जाता है। रॉनी ने कई दहाइयों तक स्नूकर पर हुक्मरानी की और बेशुमार टूर्नामेंट जीते। उनकी कामयाबियों ने उन्हें स्नूकर हिस्ट्री के सबसे अजीम क्लबों में शामिल कर दिया। आज भी तो उनके रिकॉर्ड्स और परफॉर्मेंस नए प्लेयर के लिए मिसाल और इंस्पिरेशन का जरिया है। इंडोर स्पोर्ट से मुराद बैडमिंटन एक और मजेदार स्पोर्ट्स है और बैडमिंटन में हर कोई इंटरेस्ट शो करता है। खतर में तो बैडमिंटन के कोर्ट नहीं है, लोग सिर्फ फिटनेस के चक्कर में बैडमिंटन कोर्ट्स पहुंच जाते हैं। एंड देयर आर बैडमिंटन कोर्ट्स जो कि एडवर्टाइज किया जाता है कि आइए खेलिए एंड आपको फिट रखिए, तो यहाँ पे बच्चे बूढ़े यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैडमिंटन इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक स्पोर्ट। अगर आपने बैडमिंटन खेल लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अगर आधा घंटा खेल और अगर हाफ दे नहीं है तो मैं ये समझ जाऊंगा यू आर रियली फिट, बिकॉज बैडमिंटन इज रियली कहने को तो बड़ा ही आसान दिखता है, लेकिन जब आप लंजिंग करते हैं, फॉरवर्ड लंजिंग, बैक हैंड स्मैशिंग,

हर तरह के मारते हैं, शॉट मारते हैं, नो बैक हैंड, फोर हैंड और शटल को जिस तरह से आप पंच करते हैं। तो दोस्तों बैडमिंटन बॉडी मूवमेंट का एक नुमाया, अगर बॉडी मूवमेंट की बात करूं पूरे खेल में, तो एक नुमाया स्पोर्ट अगर मैं समझता हूं वो बैडमिंटन है, सब अल्टीमेट फिट स्पोर्ट है। तो दोस्तों यहां बैडमिंटन की बात हो रही है और बैडमिंटन की तारीख का एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड लिंडान के नाम है, जहां लिंडान दुनिया के पहले और अब तक के वाहिद बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स और 2012 लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करके बैडमिंटन में अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाया। लिंडान नाम याद रहेगा। अपनी स्पीड, टेक्निक और कंसिस्टेंसी की वजह से लिंडान को द सुपर डैन कहा जाता है और उनकी कामयाबियां बैडमिंटन के सबसे अहम रिकॉर्ड और अचीवमेंट्स में शुमार की जाती हैं। मूविंग ऑन टू टेबल टेनिस, पिंग डिफिकल्ट है, मैंने कभी की नहीं एक खेल को खेलने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैंने ना कभी कोशिश की एंड मुझे इट्स वेरी डिफिकल्ट। पता नहीं क्यों आज भी लगता है कि टेबल टेनिस रैकेट जो है, यू नो जो रैकेट तो नहीं मैं कहूँगा, टेबल टेनिस बैट है, रैकेट कह लीजिए, बैट के तो दोनों ही ठीक है, उसको अगर आप पकड़ते हैं थोड़ा थोड़ा, यू नो देयर इज अ टेक्निक जिसको हम चाइनीज ग्रिप बोलते हैं, विद पेन पेंसिल जिस तरह पेंसिल पकड़ते हैं, उस ग्रिप में आप उस बैट को पकड़ते हैं या रैकेट को पकड़ते हैं एंड देन यू फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू यू नो स्ट्राइक द बॉल, क्योंकि पिंग पोंग वो गेंद की जो टेनिस कोर्ट है वहां पर जब ये छलांग लगाती है ना ये गेंद, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और यहीं पर ही बात होती है फिटनेस की, यहीं पर बात होती है कि टेक्निक की। और टेबल टेनिस की बात करूं तो मालोंग मुझे हमें चाहिए। मालोंग टेबल टेनिस की तारीख का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड ओनर हैं और मालोंग बेसिकली चाइना इज वर्ल्ड बीटर के ओनर टेबल टेनिस में, उनके आस पास कोई यू नो मंडरा नहीं सकते हैं, हमें कहने का मतलब है कि दे आर रियली गुड। मालोंग दुनिया के पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी बने जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक मेन सिंगल्स गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करके ये अनोखा रिकॉर्ड, अपनी बेहतरीन कंसिस्टेंसी और प्रेशर में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से मालोंग को टेबल टेनिस हिस्ट्री के सबसे अजीम प्लेयर्स में शुमार किया जाता है। उनकी कामयाबियां दुनिया के टेबल टेनिस प्लेयर्स के लिए इंस्पिरेशन का जरिया हैं। Now moving on to camel racing. और दोस्तों as usual camel racing अरब दुनिया की सबसे पुरानी और मकबूल स्पोर्ट्स में से एक है। इस खेल में अजीम कैमल सैनिकों ने अपना नाम तारीख में दर्ज करवाया, लेकिन बाशायर को सबसे मशहूर रेसिंग कैमल्स में शुमार किया जाता है। ये रेसिंग का जो सीजन है ऑलमोस्ट आई थिंक इट विल स्टार्ट अराउंड अगस्त सितंबर कतर में, और ये रेसिंग ट्रैक्स जहाँ पर है ये आप लोगों को बताया था मैंने पिछले बार भी कि रेसिंग ऑफ कैनी ऊँटों की रेस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर का हिस्सा है, अरब कल्चर का एक हिस्सा है, जहाँ पर ये जो हम बात करते हैं अबाउट हॉर्स रेसिंग, अबाउट मोटर रेसिंग, अबाउट यू नो एवरी डिफरेंट रेसिंग के बारे में जो हम बात करते हैं, तो वहाँ पे इस नॉर्मल, लेकिन ऊँट वाली रेस जो है, ऊँट की रेस जो है वो एक नुमाया है, एक वेरी आई वुड से डिफरेंट बट आई वुड से इट्स यूनिक थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इसको देखना भी बड़ा अच्छा लगता है एंड जब यू नो, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग लेते हैं, द ह्यूज नंबर ऑफ फैन दैट यू नो दे मीट एट दैट प्लेस एंड दे शाहनिया ट्रैक जो है वहाँ पर, एंड यहाँ पर ऊँटो के अगर आपने लाइव टेलीकास्ट भी अगर आप लोगों ने देखे होगी तो मुझे लगेगा कि लाइक यू नो यू हैव सीन सम ऊँटो के ऊपर वो लगा दिया जाता है। आई मीन ऑब्वियसली इट्स नॉट रन बाय द, जैसे कि हॉर्स राइडर्स है, यहाँ पे कैमल को दौड़ाने के लिए कोई कैमल राइडर नहीं है, बल्कि कैमल को सिर्फ एंड सिर्फ उनके ऊपर कैमरा लगा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, उससे क्या स्पीड मालूम चल जाता है एंड उसके साथ साथ ये डम कर सकते हैं कि कौन चैंपियन है और कौन रनर्स अप है, कौन पोजीशन है। आई मीन दिस इज द वे दे कैलकुलेट, दे फाइंड आउट ईच चैंपियन इन द रेस।

0: तो दोस्तों ये आज के जो जितने भी रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे शेयर किया आप लोगों से, जो मैंने बताया है, सो उनसे आप लोगों को कौन सा, अगर मैंने तो लीड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज जिसके बारे में मैंने बात किया था, टॉप लीड स्टोरी जो है वो है मुफर्सी 28 ओलंपिक मेडल्स और 23 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स, 28 मजमूई तौर पर ये एक मेडल जीतना एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो मैं अगर कहूँगा तो बहुत ही छोटी सी बात होगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ओलंपिक गेम्स में 28 मेडल जीतना और 30 गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। सो ओवरऑल आई फील दैट माइकल फेल्प्स की कहानी मैं दोहराना चाहता हूँ इसलिए कि जिन एथलीट को प्रॉब्लम है, जिन एथलीट को प्रेशर यानी दबाव से उनको परेशानी होती है और जिनके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल वीकनेस, मेंटल फटीग है, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उन तमाम एथलीट्स के लिए आई वुड रिक्वेस्ट गुजारिश है कि आप माइकल फेल्प्स की कहानी पढ़िएगा। माइकल फेल्प्स की कहानी अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम इनके जो परफॉर्मेंसेस ऑन द टीवी, ऑन द सोशल मीडिया पर वो देखिएगा, रीड करिएगा हाउ ही ओवरकेम ऑल दोज चैलेंजेस एंड रिमेन वन ऑफ द टॉप लीडिंग नेम्स इन स्विमिंग। 2016 में वापसी करते हुए उन्होंने देखे क्या जबरदस्त पहुंच दी एंड उसी के साथ साथ आई फील दैट ऑल स्पोर्ट लेजेंड्स गोस थ्रू सम काइंड ऑफ डिफिकल्ट फेजेस और यहाँ पर चैलेंजेस हैं और इस चैलेंजेस को ओवर करने के लिए जो हिम्मत, जो सलाहियत, जो दिमागी आपकी जो तेजपन है, दिमाग आपके तेज उतनी होनी चाहिए, सो यू नो यू कैन ओवरकम द चैलेंजेस और यहाँ पे माइकल फेल्प्स इज रियली इन द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ द टर्म। दोस्तों कतर की स्पोर्ट्स में आज एक और आपको एक बात करूँ कि यहाँ पर एक कतर एंगल में अगर बात करूँ दोहा स्टेडियम, जी हाँ दोस्तों दोहा स्टेडियम एक खास मकाम है। दोहा स्टेडियम अगर कतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, दोहा स्टेडियम को कतर के से पुराने फुटबॉल स्टेडियम में शुमार किया जाता है और ये मुल्क में फुटबॉल की इराई दौर की निशानी है। ये तलवार सिग्नल जस्ट बैक में है ये स्टेडियम, आप लोग जब कभी भी उस तरफ जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। और स्टेडियम ने कई अहम मुकाबलों और कौमी टूर्नामेंट बनी जिसने कतर में फुटबॉल के फरोख में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों दो स्टेडियम का रिकॉर्ड है कि ये कतर के फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी मराहिल का गवाह रहा और मुल्क स्पोर्ट्स सफर की इब्तदाई से जुड़ा हुआ एक तारीखी वेन्यू माना जाता है। और इसी के साथ हम क्लोजिंग स्टेजेस पे आ गए हैं इस प्रोग्राम, इस शो में। और दोस्तों आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए ओलंपिक गेम्स में अपना नाम मजीद रोशन किया। एंड हमेशा याद है कि ये रिकॉर्ड सिर्फ वर्ड्स का नहीं, ये लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और एक्सेलेंस का रिकॉर्ड है। मैं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और अगली क्लिप में हम किसी और अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, कहाँ रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। FM7 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@c.ua।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम कॉल करें 448888 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक
2: चेक चेक चेक टाइम चेक इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर डेढ़ यानी ये वक्त हो चला है
3: आप सुन रहे हैं एसके हूं ए फॉर अमिता के साथ ऑन एफएम 107 दिल से दी
2: हां जी मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल है हां जी 3-1 ये गिनती शुरू होते ही बस टाइम हो जाती अब हम एनर्जी सेव करें और उसे लगा दें आज के हमारे एस्केप रूम के इस शो में क्योंकि यहाँ

0: ना कुछ भी आसान नहीं होता. बड़ी मोहब्बत से शुरुआत होती है शो की, एक प्यारी सी सिचुएशन मिलती है और उसके बाद जद्दोजहद चालू जाती है क्योंकि हमें यहाँ से एस्केप करना होता है कि नहीं. बल आज की सिचुएशन भाई हमारे सारे किताबी कीड़ों के लिए है जिन्हें बुक बेहद लगाव है. हाँ, आई नो कि ये डिजिटलाइजेशन चल रहा है लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लाइब्रेरीज जाना बहुत पसंद है. तो समझ लीजिए कि आज का जो ये चैलेंज किताबों की दुनिया का चैलेंज होने वाला है. सो भी अपने आप को लूजन अप कीजिए. जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो मन है वो खाइए वो पिए और उसके बाद बस ये म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात दोबारा होगी क्योंकि यहाँ पर आएगी एस्केप रूम की सिचुएशन जिसे आज आपको एस्केप करना है. ठीक है, सो नंबर 666-2107-666-2107 इस नंबर के जरिए हमारी बातचीत कंटिन्यूसली चलने वाले. तो बस नोट किए और अभी के लिए
1: कलंदर मस्त कलंदर
0: सजना वे सजना बेहतरीन गाना इसे एंजॉय करें और फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में. स्टे ट्यून्ड टू FM 106.6.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कदर। दिल से देसी
1: Absolute शिवा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 1 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आप फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं RJ कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट और आपके फेवरेट ट्रैक।

0: हफ्ते नाइट प्राइज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। याद रखिए फ्राइडे 9 PM 10 सॉन्ग ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम फॉर अम्मी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ये फर्मी। और आज आप कहाँ हैं? आज आपने कदम रखा है द ग्रेट लाइब्रेरी के अंदर। और ये म्यूजिक ना हॉन्टेड क्यों है? क्योंकि आप उस जगह पर हैं जो कि एक फॉरबिडन विंग है, जहाँ आम तौर पर जाना मना है। यहाँ की फजा में पुराने पन्नों की महक है, मोमबत्तियाँ धीरे धीरे धीरे बुझ रही हैं। और रुकिए, क्यों इंसाइक्लोपीडिया अभी हवा में उड़ी? ओह माय डियर, लगता है यहाँ की दास्तानें स्टोरीज किताबों की कैद में ना चाहती। एग्जिट भी दिखा है, एग्जिट पर रूहानी सील लगी है और इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें साबित करना हो कि हमें हकीकत और अफसाने यानी फैक्ट और फिक्शन का फर्क पता है। अगर आप इन बेचैन रूहों को शांत करना चाहते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना दिमाग तरीके से इस्तेमाल करें और एक एक करके क्लूज को सॉल्व। हमें दिख रहा है

सीधा एग्जिट, एक सनुमा लाइब्रेरियन या यू कहें घोस्टली लाइन ठीक एग्जिट के ने खड़ी है और उनका मिजाज काफी सख्त लग रहा है। उन्हें पार अगर हमें करना है तो हमें उनकी दी हुई हर एक हेली को सुलझाना होगा ही जवाब देकर। क्लू नंबर वन की तरफ रुक करते हैं। मैं एक सच्ची कहानी हूँ, मैं किसी इंसान की पूरी जिंदगी का किस्सा हूँ, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसे उस शख्स ने खुद अपने कलम से लिखा है, मेरी दास्तान मेरे ही अल्फाज में। बताइए इस स्पेसिफिक जॉनरा को। जनाब हम सब ने बड़े बड़े महान हस्तियों की, सेलिब्रिटीज की ये किताब ही है। क्या कहते हैं, मैं एक सच्ची कहानी हूँ, ठीक है, मैं किसी इंसान की पूरी जिंदगी का किस्सा हूँ, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसे उस शख्स ने खुद अपने कलम से लिखा है, मेरी दास्तान मेरे ही अल्फाज में। बताइए इस स्पेसिफिक जॉनर को क्या कहते हैं, सोचिए, आपको पता है इसका जवाब। 666-22107, 666-22107, इस नंबर के जरिए अपना नाम लिखें और हमें सही जवाब भेजें। एंड लेट मी सी कि आप में से कितने लोग इस पड़ाव को पार कर पाते हैं। और अभी एनर्जी बरकरार रखनी है तो म्यूजिकल ब्रेक, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड टू FM 107।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली एफएम 107 दिल से दी.
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप एंड आई एम वेरी सर्टेन कि इस एनर्जेटिक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अब दिमाग और भी ज्यादा तेजी से चलने वाला है. मैं देखो आज इसके जो सिचुएशन है वो थोड़ी हॉन्टेड है. हाँ जी, किताबी कीड़े बने हुए हैं आज हम. किताबों से बड़ी मोहब्बत है तो एक ग्रेट लाइब्रेरी में आज हमने कदम रखा. अब वहाँ पर हम उस जगह चले गए जहाँ पर आमतौर पर लोगों का जाना मना है, फॉरबिडन विंग. अब यहाँ की फ़जा में पुराने पन्नों की महक है, मोमबत्तियाँ भी जो थीं वो धीरे धीरे बुझ रही थीं और एनसाइक्लोपीडिया हवा में तैर रहा है. थोड़ा अजीब और गरीब नज़ारा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी जो दास्तानें आप किताबों की कैद में नहीं रहना थी और हमें एहसास हो रहा है कि हम अकेले हैं. कई सारे स्पिरिट्स, कई सारी रूहें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं. एग्जिट पर भी अगर देखा जाए तो एक सायानुमा लाइब्रेरियन वहाँ खड़ी है और उनका मिजाज काफ़ी सख्त है. अब उन्हें पार करना है तो हमें जो तीन क्लूज हैं, तीन पज़ल वो सॉल्व करने होंगे और सही जवाब देना होगा. सो क्लू नंबर वन हमारे लिए ये था कि मैं एक सच्ची कहानी हूँ. मैं किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी का किस्सा हूँ लेकिन है कि इसे उस शख्स ने खुद अपने कलम से लिखा है, मेरी दास्तान मेरे ही अल्फाज में. यस, तो बताइए इस स्पेसिफिक जॉनरा को क्या कहते हैं. तो हम कुछ लिसनर्स हैं जो लिख रहे हैं, आई मीन इट्स अ बुक. कुछ ने लिखा है सेल्फ डॉक्यूमेंट्री, कुछ ने लिखा है ऑटोबायोग्राफी. वेरी सिंपल, सही जवाब ऑटोबायोग्राफी. तो जोरदार तालियां सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने जवाब देने की कोशिश की और जिन्होंने नहीं दी, भाई देखो पहले पड़ाव में फंस गए हो. अब कैसे इस रूहानी लाइब्रेरियन को आप इसका पाओगे और निकल पाओगे. हाँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना तो हमारे लिए बंदा है. तो जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है उनके नाम हैं, सबसे पहला नाम है आफ्ताब, देन मोहम्मद रिजवान, इंदर रिया, मोहम्मद यूसुफ खान. तो एक बार

पेर्सी के लिए जोरदार तालियां. क्या बात है. और जैसे ही हमने सही जवाब दिया, हमारा जवाब सुनते ही वो जो लाइब्रेरियन हमें दिखाई दे रही थी, उसने अपना सर हिला और स्याही के एक गुलाबी बादल में गायब हो गई. उफ, फिर भी वो हम पे नजर रखे हुए है. मगर मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है. ये भारी भारी पुरानी अलमारी किसी जायंट वुडन मेक की तरह घूम रही है हमारे आसपास. मुश्किल आसान करनी है तो हमें क्लू नंबर 2 सॉल्व करना होगा, और रास्ता ढूंढने के लिए हमें किताबों का जो ऑर्गेनाइजेशन है समझना होगा. सो क्लू 2, अगर आपको साइंस या हिस्ट्री की किताब ढूंढनी हो तो आप नंबर्स और डेसिमल्स का खास सिस्टम यूज करते हैं. इसे साल 1876 में मेलविल नाम के एक शख्स ने इजाद किया था. इस मशहूर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या है, आपको मैं ऑप्शन देती हूँ. डूवी डेसिमल सिस्टम, डूवी डॉट सिस्टम, डूवी रिंग सिस्टम. इन तीनों में से क्या सही ऑप्शन है. एक बार फिर से मैं क्लू नंबर 2 दोहराऊंगी. कुछ लोगों के लिए काफ़ी टेक्निकल हो रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुने. आई एम वेरी सर्टन आप इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर प्राव को भी पार कर पाएंगे. सो क्लू नंबर 2, अगर आपको साइंस या हिस्ट्री की किताब ढूंढनी हो तो आप नंबर्स और डेसिमल्स का एक सिस्टम यूज करते हैं. इसे 1876 में मेलविल नाम के उस शख्स ने इजाद किया है. इस मशहूर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम क्या है. तीन ऑप्शन दे रही हूँ, ध्यान से सुने. डूवी डेसिमल सिस्टम, डूवी डॉट सिस्टम, डूवी रिंग सिस्टम. इन तीनों में कौन सा सही ऑप्शन है वो लिख 666-22107 पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब दें. एंड लेट्स सी उसका पड़ाव आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं. और अभी के लिए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपकी मुलाकात होगी. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए रब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ua।
1: एस्केप रूम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं 2:02। हमेशा ये वो होता है जहां पर हम ये विश करते हैं कि आज की सिचुएशन से हम कैसे भी करके एस्केप कर पाए।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम की फॉर अमिता के साथ ऑन FM 107 दिल से दी।
1: वेलकम वेलकम के फॉर अमिता और एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। तो आज हम कहाँ कैद हो गए? आज बड़े शौक से हम एक ग्रेट लाइब्रेरी में गए और हमने कहा कि आज हम अपनी पसंद की कुछ किताबें पढ़ेंगे, कुछ अच्छा वक्त बिताएंगे इन किताबों के बीच, इन किताबों की खुशबू के बीच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लाइब्रेरी थी जिसमें हम बड़े शौक से गए वो हॉन्टेड निकली। जब गए तो सारे दरवाजे खिड़की लॉक और हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम ऐसी जगह चले गए जहाँ पर जाना मना था। हम चले गए फॉरबिडन विंग में और वहाँ पर अलग अलग रूहें हमें देख रही हैं, हम पे नज़र रख रही हैं। हमें एहसास हो रहा है कि हम अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं और यहाँ से निकलने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक एक करके हमें क्लू सॉल्व करने हैं और यहाँ एक एक पड़ाव को पाना है। नंबर वन हम सब ने सॉल्व किया, ऑटोबायोग्राफी वॉज द राइट आंसर। और उसके बाद हम आगे बढ़े क्लू नंबर टू की तरफ और क्लू नंबर टू आपके लिए था कि आपको साइंस की किताब ढूंढ हो तो आप नंबर्स और डेसिमल्स का एक खास सिस्टम यूज़ करते हैं। देखिए, जो हम में से जो ज़्यादातर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं या जो लाइब्रेरी जाते हैं वो इस इत्तेफाक रखते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं ऑप्शंस भी दे रही हूँ, ठीक है? तो अगर आपको साइंस या हिस्ट्री की किताब ढूंढनी हो तो आप नंबर्स डेसिमल का एक खास सिस्टम यूज़ करते हैं। इसे 1876 में मेलबर्न के एक शख्स ने इजाद किया था। इस मशहूर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस हैं, इनमें से एक को चुनना है। पहला है डूवी डेसिमल सिस्टम, डूवी सिस्टम या डूवी रिंग सिस्टम। क्या ऑप्शन हो सकता है? आइए देखें आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है। अभी हमारे लिसनर्स अलग अलग जवाब ही लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आज का एस्केप रूम हो गया है। देखिए, सोचिए, वरना एस्केप करना अगर नहीं कर पाए तो बड़ी मुश्किल होगी। तो कुछ हमारे लिसनर्स लिख रहे हैं डूवी डॉट सिस्टम। देखिए, जब मैंने आपको क्लू दिया ना उसमें डेसिमल्स और नंबर्स का जिक्र था, तो सही जवाब है डूवी डेसिमल सिस्टम। ज़ोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे लग रहा है एस्केप रूम कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्लूज सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिसनर्स के लिए। देखिए, जब भी मैं आपको कोई क्लू तो आप ध्यान से सुने क्योंकि जवाब उसी में छुपा होता है। आइए देखें जिन्होंने क्लू नंबर टू सही जवाब दिया और हुए पार हुए इस सेकंड पार्ट को, या यूँ कहें दूसरे पड़ाव को। तो आफ्ताब हैं, मोहम्मद, रिजवान, इंदर, नूर, रिदा एंड मोहम्मद यूसुफ खान। गुड जॉब, आप सभी ने सही जवाब देकर दूसरे पड़ाव को पार कर लिया है। इस हॉन्टेड लाइब्रेरी के अंदर अभी भी हम कैद हैं क्योंकि आखिरी पड़ाव पार करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आखिरी दरवाजे तक पहुंच तो गए हैं, पर रुकिए, इसे एक पत्थर का जो गारगोयल, गारगोयल मतलब एक तरह का एनिमल होता है, वो गार्ड कर रहा है जो सिर्फ लियो में बात करता है। उफ़, ये भी एक नई मुसीबत हमारे सामने आई। आइए ज़रा क्लू नंबर थ्री हमें

यूं मिला, अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है? मैं नामुमकिन की दुनिया हूँ, ध्यान से सुने, मैं नामुमकिन की दुनिया हूँ, मैं ऐसा जॉनरा हूँ जहाँ जादू, ड्रैगन्स, बोलते हुए जानवर और ख्याली ज़मीनें होती हैं। मैं साइंस या हिस्ट्री पर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ख्याल हूँ, एक तसव्वुर हूँ, बताइए मैं क्या हूँ? तो जनाब बताइए कौन सा वर्ल्ड है, कौन सा जॉनरा है? हम अक्सर कहते हैं बच्चों से कि बच्चों को ये जॉनरा की स्टोरीज में बड़ी अच्छी लगती हैं, क्या है वो जॉनरा? आप मैं तीनों देती हूँ, इन तीनों में से कोई एक चुनना है, फिक्शन, फैंटेसी, फैबल। फिक्शन, फैंटेसी, फैबल, बताएं इन तीनों में से क्या सही जवाब है। 666-2207, 666-2107 इज़ आर नंबर, इस पर आप अपने नाम के साथ हमें सही जवाब भेजें और बताएं कि सही जवाब क्या है, ठीक है? आखिरी मुकाम पर पहुंच गए आज, स्किप का बिल्कुल आसान हो सकता है अगर आपने सही जवाब हम तक पहुंचा दिया। और अभी आपके लिए हम पहुंचा रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, तो एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए, सही जवाब दीजिए और फिलते हैं। स्टे ट्यून्ड टू FM 107।

पहला देसी रेडियो स्टेशन M107 देसी देसी छोटे मियां सुभान अल्लाह।

0: सुन रहे हैं एस्केप रूम FM 107 दिल से दी।
1: हाँ जी मेरी देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। तनावाज एक रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की। आज हम किताबी कीड़े बने थे, पहुंचे एक बेहतरीन सी लाइब्रेरी जहाँ बहुत सारी और बहुत खूबसूरत बहुत वैरायटी की बुक्स हैं। लेकिन हमसे एक गए कि हम चले फॉरबिडन विंग में, जहाँ नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो एक हॉन्टेड एरिया था। किसी ने हमें बताया नहीं, वॉर्न नहीं किया, बस हम तो चले गए हैं तो अपनी इस गलती का भुगतान करना पड़ेगा। एस्केप रूम की आज सिचुएशन में फंस गए और अब यहाँ से निकलने के लिए हमें एक एक करके क्लूज सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला क्लू हमारे सामने आया, सही जवाब था ऑटोबायोग्राफी। दूसरा क्लू हमारे सामने आया, सही जवाब था डूवी डेसिमल सिस्टम। और तीसरे में हम थोड़ा आखिरी दरवाजे तक तो पहुंच गए, लेकिन उसको गरा है एक पत्थर का गार्गोयल। ठीक है, गार्गोयल जो है वो एक तरह का एनिमल है लेकिन पत्थर का है। आपको लग रहा है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो वो असली रूप में आप पर हमला कर सकता है। ये हमको वहां हो रहा है। चलिए, क्लू नंबर 3 था कि मैं नामुमकिन की दुनिया हूँ। मैं एक ऐसा जॉनरा हूँ जहाँ जादू, ड्रैगन्स, बोलते हुए जानवर और ख्याली जमीन होती है। मैं साइंस या हिस्ट्री पर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ख्याल हूँ, एक तसव्वुर हूँ। बताए मैं क्या हूँ? तो मैं आपको ऑप्शन दिए कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ है, फिक्शन, फैंटेसी, फैबल। कुछ लोग फिक्शन और फैंटेसी में काफ़ी कन्फ्यूज हो रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं फिक्शन, कुछ लिख रहे हैं फैंटेसी, और चुनिंदा लिख रहे हैं फैबल। अब बताएं इन तीनों में सही जवाब हो सकता है। ये डिसीजन आपके हाथ में है क्योंकि यही डिसीजन आपको आज के एस्केप रूम की सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ओके, आई रिपीट अगेन, क्लू नंबर 3, मैं नामुमकिन की दुनिया हूँ या सब कुछ मुमकिन हो सकता है भाई, जो आप कहें, जो आप सोचें। मैं एक ऐसा जॉनरा हूँ जहाँ जादू, ड्रैगन्स हुए जानवर और ख्याली जमीने होती। मैं साइंस हिस्ट्री पर बेस्ड बिल्कुल नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ एक ख्याल हूँ, एक तसव्वुर हूँ। बताएं ये किस जॉनरा की बारी है, फिक्शन, फैंटेसी, फैबल। बताएं सही जवाब 666-22107, 666-22107 पर अपने नाम के साथ।

मेसी की आप में से कितने लोग सही जवाब दे और आज एस्केप रूम के सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं। तो चलिए एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ रुक करते हैं और उसके बाद हमारे एस्केप रूम का भी पड़ाव हमारे सामने आएगा। This is one of my song and I'm really thankful हमारी सारी म्यूजिक को जाकमाल का गा। Enjoy songs, stay tuned.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेट। FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें राउंडअप वाले कबीर के साथ एम थर्सडे एट 1 PM,
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
3: सर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, चाहे मौसम कितना भी क्यों ना हो जाए, रेडी वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड के लिए मुफीद साबित होगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सफा के साथ, से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ऑन FM 107, दिल से।
5: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता। एंड एस्केप रूम की सिचुएशन अब बिल्कुल अपने आखिरी मुकाम पर गई है, जहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ी सी ग्रेट लाइब्रेरी में हमने आज कदम रखा किताबों की दुनिया में, और सोचा कि ऐसा वक्त बीतेगा, लेकिन हमारी गलती ये हो गई कि हम एक फॉरबिडन विंग में चले गए, तो बस सारी जो रूहें थी उन्होंने हमें कैद कर लिया। एक एक करके क्लू सॉल्व करने थे, तो पहले क्लू का सही जवाब था ऑटोबायोग्राफी, दूसरे क्लू का सही जवाब था ड्यूई डेसिमल सिस्टम, और तीसरे क्लू पर थोड़ा सा अटके हैं। हम आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए हैं, और इसे एक पत्थर जो गार्गोयल है, एक तरह का एनिमल है, वो गार्ड कर रहा है, लेकिन वो फील ऐसा दे रहा है कि वो रियल है। ठीक है, तो क्लू हमारे सामने आया है कि मैं नामुमकिन दुनिया हूँ, मैं एक ऐसा जॉनरा हूँ जहाँ जादू, ड्रैगन, बोलते हुए जानवर और ख्याली ज़मीनें होती हैं। मैं साइंस या हिस्ट्री पर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ख्याल हूँ, एक तसव्वुर हूँ, क्या हूँ मैं? और आपको 3 ऑप्शन दिए थे, फिक्शन, फैंटेसी, फैबल। तो सही जवाब की तरफ हम सीधा रुख करते हैं, सही जवाब है फैंटेसी। तो ज़ोरदार तालियां हमारे सारे लिसनर्स के लिए जो फैंटेसी वर्ड चूज़ किए, क्योंकि फैंटेसी एक ऐसा जॉनरा है जहाँ पर सब कुछ हो सकता है, तभी उसका नाम फैंटेसी है, ख्यालों की दुनिया। और जिन्होंने हमें सही जवाब देने की कोशिश की उनका नाम है आफ्ताब, रिजवान, नूर और मोहम्मद। ये हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो नॉन स्टॉप हमें सही जवाब देते रहे। अशफाक, इन्होंने भी सही जवाब दिया, सो गुड जॉब।

गुड जॉब, जोरदार ताली आप सभी के लिए। और अब जैसे ही आपने फैंटेसी कहा, ये लव्स आपकी जुबान से जब निकला, तो ये जो गार्गोयल नाम का एनिमल था जो हमें एहसास दे रहा था कि एकदम जिंदा है, वापस से पत्थर का बया और बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ हम कि कोई अब हमारे असर है। भारी भरकम दरवाजे हमारे सामने खुले, सीधा बाहर निकल चुके हैं, कदर की हमारी इस तेज धूप को महसूस कर रहे हैं। देखो भले ही गर्मी लग रही है लेकिन जान में जान तो जरूर आ गई होगी, आई एम वेरी वेरी श्योर। चलिए इसी बात के साथ आज के लकी विनर कौन है उनका नाम बता दिया जाए, तो आज के लकी विनर है रिजवान। हाँ भाई, जोरदार तालियां आपके लिए। आज के एपिसोड के आप रीडर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी मोहब्बतें आपके लिए। आपने कमाल कर दिया ही, जवाब देकर ये प्रूफ कर दिया कि भाई यहाँ पर भी हमारा दिमाग लग है अच्छे से, वहीं पर हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है कि किताब एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा होती है, बस ध्यान हमें ये रखा है कि वहाँ से निकलते वक्त हम जैसे उसे बंद करें, वरना कोई और भी चीज़ें आता जाएंगी, है कि नहीं। चलो इस बात के साथ मेरी सरन आपको आज का एपिसोड जरूर होगा, जस्ट इन केस कोई बात है, कुछ कहना चाहते हैं, 666-2107 पर आप मैसेज करके अपने दिल की बात बता सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आप सकते हैं FM 107 पर, और अपनी आर्जमीता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं। अब वक्त है मेरे जाने का, कल आपकी मेरी मुलाकात होगी ठीक दोपहर 1:30 बजे, मिस मत करना। रवि जाते जाते कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिले चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से दिल।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से दे।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको एफएम 107। साथियों, आजकल हम सब रिसाइकलिंग के बारे में सुनते आ रहे हैं, है ना? आजकल ज्यादा मशहूर हुआ है टॉपिक। स्कूल्स में, सोशल मीडिया पर, कैंपेन्स में, हर जगह हमें बताया जाता है कि रिसाइकलिंग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई रिसाइकलिंग के बारे में जो बातें हमें सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी मिथ्स हैं, यानी कि गलत फहमियां हैं। कभी हम ये है कि भाई हर चीज रिसाइकल हो सकती है, कभी हमें ये लगता है कि हम सिर्फ रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो भाई बाकी वेस्ट की टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिसाइकलिंग सही तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं सोचा क्यों ना आज ये इको स्विच में हम रिसाइकलिंग मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स के बारे में बात करें, यानी रिसाइकलिंग के बारे में सच और गलत फहमियों को

0: साथियों रिसाइक्लिंग एनवायरमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन इस बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी शामिल होती है अक्सर औकात। अगर हम रिसाइक्लिंग को सही तरीके से ना करें तो हमारी मेहनत का फायदा कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूं तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हर प्लास्टिक आइटम रिसाइकल होता है। कुछ लोग रिसाइकलिंग बिन में हर तरह का कचरा डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि भाई सब कुछ ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जाएगा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ रिसाइकलिंग ही एनवायरमेंट के तमाम मसाइल का सलूशन। हकीकत ये है कि रिसाइकलिंग जरूरी है जी, लेकिन रिड्यूस और रीयूज भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहली चीज तो मैं आपको मिथ वर्सेस फैक्ट्स में बता दूं। पहली मिथ ये है कि हर प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। हर प्लास्टिक आइटम रिसाइकल नहीं होता भाई, नो। प्लास्टिक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और टाइप को प्रोसेस करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है कि रिसाइकल रूल्स को समझें और सिर्फ एक्सेप्टेड आइटम्स ही रिसाइकलिंग के लिए डालें। दूसरी मिथ ये है कि रिसाइकलिंग बिन में सब कुछ डाल देना ठीक है। फैक्ट ये है कि रिसाइकलिंग बिन में गलत चीजें डालने से पूरा प्रोसेस मुश्किल हो सकता है, यानी कि फूड वेस्ट, डर्टी कंटेनर्स और नॉन रिसाइकलेबल आइटम्स रिसाइकलिंग सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आइटम्स को क्लीन और प्रॉपरली सेपरेट कर देता है। अच्छा, मिथ नंबर 3 क्या है? रिसाइकलिंग का मतलब है ये वेस्ट प्रॉब्लम खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म। अरे भाई, फैक्ट ये है कि रिसाइकलिंग हेल्पफुल है, लेकिन सबसे पहला स्टेप है रिड्यूस एंड रीयूज। अगर हम अननेसेसरी चीजें कम खरीदें और जो चीजें हैं उन्हीं को हम दोबारा से यूज करें तो वेस्ट पहले कम हो जाएगा, है कि नहीं? चौथा ये है कि रिसाइकलिंग सिर्फ बड़ी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना जी कि हर घर का रोल इम्पोर्टेंट है। अगर हर फैमिली उसे सेपरेट करना शुरू करे और रिस्पॉन्सिबल होकर डिस्पोज करे तो कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं ना, तो भाई अगर एक फैमिली हर हफ्ते ग्रोसरी शॉपिंग के बाद प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और इसको अलग अलग रखना शुरू कर दे तो वो रिसाइकलिंग प्रोसेस को इजी बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी रिसाइकलिंग बैग में फूड, यूज्ड टिश्यूज और मिक्स्ड गार्बेज भी डाल दिया जाए तो रिसाइकलिंग आइटम्स भी खराब हो सकते हैं। इसीलिए रिसाइकलिंग का पहला रूल यही है, सही चीज सही जगह। आजकल बहुत से लोग घर में छोटे छोटे रिसाइकलिंग स्टेशन बना रहे हैं जहां अलग अलग कैटेगरीज के बिन्स रखे जाते हैं। ये आदत बच्चों को भी सिखाती है कि वेस्ट को समझ करना ज्यादा जरूरी है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज अपने घर कचरे को थोड़ा सा डटोलें और आइडेंटिफाई करें हम कितनी चीजें रिसाइकल कर सकते हैं और हम कितनी चीजें अननेसेसरी वेस्ट बना रहे हैं। और हमें जरूर बताएं घर में रिसाइकलिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या कलेक्ट होता है, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास या और। इसके साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, रिसाइकलिंग सिर्फ कचरा अलग करना नहीं होता बल्कि रिसोर्सेज की कदर का है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट एक बड़ा फायदा पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 देसी।

0: पहला देसी रेडिएशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड पर FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे महावेश खान।

0: और आज हम बात करेंगे रोजाना दुआ की लिस्ट बनाने के बारे में। दुआ मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अक्सर हम मुश्किल वक्त ही दुआ करते हैं और अपनी रेगुलर नीड को भूलते हैं। एक सिंपल सी आदत यह है कि हम अपनी दुआओं की छोटी सी लिस्ट बनाएं। इसमें हम अपनी जरूरियात, गोल्स और दुआ के लिए दुआएं शामिल कर सकते हैं। इस तरह से दुआ ज्यादा फोकस्ड होता है और इंसान को अपनी जिंदगी को बेहतर एहसास दिलाता है। ये आदत दिल और अल्लाह के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करती है। अमल ये है कि अपनी छोटी सी दुआ लिस्ट तैयार रखें और रोज उसे देखते हुए अल्लाह से दुआ मांगा करें। आज का मैसेज आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश। फिर मिलेंगे एक नई जिसी बात के साथ।
1: हेलो,
2: आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट।
3: सुन कतर बिजनेस न्यूज विद RJ सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन M107, दिल से देसी।
5: One step to 2030.
6: वेलकम टू आवर सेगमेंट One Step to 2030. मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया।
5: One Step to 2030.
6: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखिए, आजकल तालीम जो है वो सिर्फ रूम्स या फिर स्कूल तक महदूद नहीं है। तेजी से बदलती इस दुनिया में लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी जिंदगी भर सीखते रहना हमारी और आपकी पर्सनल ग्रोथ, हमारे करियर एडवांसमेंट और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरह से एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रही है और लर्निंग में किस तरह के नए मौके जो है वो पैदा कर रही है। डिस्कशन में ऑनलाइन लर्निंग होगा, डिजिटल क्लासरूम्स की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑफ कोर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग जैसे टॉपिक्स भी शामिल होंगे। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और जॉब्स बदल रही हैं, नए स्किल सीखना और अपनी नॉलेज अपडेटेड रखना जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट इस बात पर रोशनी डालते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिजनेस और कम्युनिटीज मिलकर इस तरह से रन करें कि कल्चरल भी प्रमोट हो और बात भी बन जाए। देखिए, स्मार्ट एजुकेशन और कंटिन्यूस लर्निंग के जरिए हम फ्यूचर के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार भी है। दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लर्निंग टूल्स इस्तेमाल करके एजुकेशन को ज्यादा इफेक्टिव, इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल बनाना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, इंटेलिजेंट और पर्सनलाइज्ड लर्निंग इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स अपनी स्पीड और अपने लर्निंग स्टाइल के मुताबिक सीख सके। वहीं लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये क्या है? देखिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है जिंदगी भर सीखते रहना। आज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड सिर्फ स्कूल या यूनिवर्सिटी की डिग्री काफी नहीं होती। लोगों को अब स्किल्स अपडेट करनी पड़े, नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ कंटिन्यू प्रोसेस अडॉप्ट करना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियर है और अगर कोई इंजीनियर AI कोर्स करता है या कोई डॉक्टर नए मेडिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में ट्रेनिंग लेता है तो ये हुई लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और अगर ये लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वर्चुअल क्लासरूम्स के जरिए, स्मार्ट एप्स के जरिए तो ये हुआ स्मार्ट एजुकेशन। तो स्मार्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को आप मुस्तकबिल के वर्कफोर्स के लिए कितना अहम समझते हैं? वैसे तो कहूंगी कि आज के डिजिटल एरा में एजुकेशन जो है वो सिर्फ क्लासरूम्स तक महदूद नहीं है। स्मार्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करने एक बहुत अहम रोल जो है वो अदा कर रहे हैं और हमें और आपको इस बात को समझना भी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमें और आपको जो है वो तैयार करता है। इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से ज्यादा है कि हम अपने स्किल को अपडेट रखते हैं, नई टेक्नोलॉजीज और मार्केट से कुछ सीखते हैं और कंट्रीब्यूट बेहतर तरीके से करते हैं और हमारी करियर ग्रोथ ये भी तो बढ़ती है।

0: लोग कंटिन्यूअसली सीखते रह रहे हैं उनके लिए प्रमोशंस और नई अपॉर्चुनिटीज जॉब में कितनी आसान हो जाती हैं। वहीं एडेप्टेबिलिटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेबिलिटी चेंज को एक्सेप्ट करने और नए चैलेंजेस का सामना करने की सहायता पैदा करती है। और जब इतनी सारी स्किल्स आपके पास होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा? आपका कॉन्फिडेंस तो होगा ही होगा, तो आपके कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव है। वहीं पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग नए आइडियाज बेटर सॉल्यूशंस पैदा करने में मदद करती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग आज के एरा में बहुत अहम है, क्योंकि नॉलेज टेक्नोलॉजी हर रोज चेंज हो रहे हैं, मगर जो लोग कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं वो अपने स्किल्स को रेलेवेंट रखते हैं, करियर ग्रोथ हासिल करते हैं और फ्यूचर के चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला करते हैं। इसीलिए लर्निंग को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन तक महदूद ना रखिए, बल्कि जिंदगी भर का सफर बना लीजिए या समझिए। पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए और इस तरह से खुद को, सोसाइटी को मजबूत कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आसिया और शकीब अहमद, हम दोनों पे इजाजत दीजिए एक दिल सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप ही हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग से। कॉल करें 888-8806 या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल ना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सभी अक्स अनस्टेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद

0: लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन सिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है या उनको उस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सके। वजारत दाखला का कहना है कि ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: कतर का पहला देसी रेडियो FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सलाम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है, इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, इस्लाम इंसान की जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करता है। इत हो या मामलात, गुफ्तगू हो या खामोशी, खाना हो या पीना, सफर हो या क़ियाम, हत्ता के लिबास ख़्वाब और उसे पहने के अंदाज में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बेहतरीन नमूना छोड़ा है। मोमिनीन उम्म सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, كان حب ثيابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم کو تمام لباسوں میں قمیص سب سے زیادہ پسند تھی۔ اور قمیص سے مراد ایسا لباس ہے جو جسم کے اوپری حصے نیچے پہنا جائے اور بدن کو مناسب طور پر ڈھانپے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص کیوں پسند تھی؟ علماء نے اس کی چند حکمتیں بیان کی ہیں۔ सबसे पहली वजह तो ये बयान की गई कि कमीज में सतर पोशी ज्यादा बेहतर होती है। इजार और चादर अलग अलग पहनने के मुकाबले में कमीज जिस्म को ज्यादा मुकम्मल अंदाज में ढांपती है। दूसरी वजह यह है कि कमीज एक ही लिबास के तौर पर आसानी से पहनी जा सकती है। सनिक्राम, आज लिबास के मामले में हमारी तरजीहात बदल गई है। कभी हम सोचते हैं लिबास कितना महंगा है, किस ब्रांड है, लोग क्या कहेंगे, क्या मौजूदा फैशन के मुताबिक है या नहीं, लेकिन इस्लाम लिबास के तीन बुनियादी मकसद सिखाता है: एक पोशी, इज्जत और आखिरी में जीनत। यानी लिबास की इज्जत और वक़ार का ज़रिया होना चाहिए, गुरूर और मुकाबलेबाजी का। यहाँ एक बात सही है, वो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमीज पसंद, इसलिए कमीज पहनना इत्तबाए सुन्नत का एक खूबसूरत इजहार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर मुसलमान पर एक ही किस्म, एक ही रंग, एक ही अंदाज की कमीज पहनना लाजिम है। इस्लाम ने लिबास के लिए बुनियादी उसूल दिए हैं जबकि इसकी शक्ल में इलायादात और चाय सकाफतों की गुंजाइश रखी है। यहाँ तक के बाज़ उलमा ने तो ये भी बयान किया कि इसको बिला ज़रूरत ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जो उसे अपने इलाके के लोगों में गैर मामूली तौर माया कर दे, मसलन ऐसा लिबास जो सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल करने, अपनी खास दीनदारी दिखाने या खुद को दूसरे मुमताज़ साबित करने के लिए पहना जाए। इसे उलमा लसे शोहरत से ताबीर करते हैं। इस्लाम सादगी सिखाता है।

समझना चाहिए। चलिए अब नजर डालते हैं उनके कंट्रीब्यूशन की जो मैथमेटिक्स के हवाले से था। अगर हम अल्किंडी के मैथमेटिक्स के कामों की बात करें तो उनकी कंट्रीब्यूशंस भी काफी ग्राउंड ब्रेकिंग थी। उन्होंने नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री की फील्ड्स में काफी मदद की। वो पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने नंबर्स उनके रिलेशंस को समझने में काफी तरीके इख्तियार किए। उन्होंने क्रिप्टोग्राफी की साइंस को भी दरियाफ्त किया। क्रिप्टोग्राफी यानी किसी भी पैगाम को कोड करना ताकि वो सिर्फ इंटेंड पर्सन तक पहुंचे, यानी उन्होंने ले लोगों के लिए ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जिनके जरिए वो अपने राज को सिक्योर कर सकते थे। अल्किंडी का एक और बड़ा काम था अलजेब्रा। उन्होंने अलजेब्रिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करने की कोशिश की और एक ऐसे सिस्टम का इंतजाम किया जो बाद में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के हल में मददगार साबित हुआ। सामईन, अल्किंडी के मेडिसिन कामों के हवाले से बात करें तो न सिर्फ फिलॉसफी और मैथमेटिक्स बल्कि मेडिसिन के हवाले भी उन्होंने काफी काम किया। उन्होंने उन जमानों के दर्द और बीमारियों का इल्म इकट्ठा किया और उनके इलाज के तरीके भी डेवलप किए। उन्होंने ड्रग्स और मेडिसिन्स के इंग्रेडिएंट्स का भी तजजिया किया। उनका काम उनके दौर के लिए एक रेवोल्यूशन था और उनकी किताबें आज भी मेडिकल हिस्ट्री में एक कीमती सोर्स हैं। अल्किंडी एक मशहूर काम था किताब अल मज़ाहरफत, जो एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया थी। इस किताब में उन्होंने कई डिजीजेस और उनके ट्रीटमेंट मेथड्स को डिटेल से बताया। इस किताब को बाद में यूरोप में भी ट्रांसलेट किया गया था और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए एफएम 107। दोस्तों, कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवंस और ट्रेलर्स को करने के औकात समाप्त कीजिए। संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। बाय करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें। राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें। और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है। कैरेवन के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रियर लाइटिंग का काम करना, रियर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल ये मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग का वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरेवंस या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवंस का लोड ज्यादा है तो ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टर्न की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवंस की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों, अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो अल्किंडी का नाम उस दौर के बड़े इल्मकार के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में

भी अपना कीमती हिस्सा डाला। उनका काम सितारों और उनके मूवमेंट के मुताले में था। उन्होंने एक ऐसे साइंटिफिक मॉडल को डेवलप जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को समझने में मददगार साबित हुआ। उन्होंने अपने साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए इख्तलाफात को एक्सप्लोर की तो बाद में और भी साइंटिस्ट के लिए रास्ता बने। वो पहले साइंटिस्ट थे अपने टाइम के सबसे एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करने वाले और उनको बेहतर बनाने वाले। दोस्तों, अबू यूसुफ याकूब इब्न इशाक अल-किंदी का इल्म और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस सिर्फ उनके हमारे तक महदूद नहीं रही। उनका इल्म दुनिया भर के इल्मकारों में गुजरते हुए आज भी जिंदा है। उनकी फिलॉसफी और साइंटिफिक अप्रोच ने न सिर्फ अरब्स को पूरे यूरोप और बाकी कल्चर्स को भी इन्फ्लुएंस किया। उनका काम इस्लाम गोल्डन एज का हिस्सा है और इस दौर में उन्होंने एक ब्रिज का काम किया जो ग्रीक और अरबिक नॉलेज को जोड़ता है। उनका काम न सिर्फ उनकी जिंदगी में कद्र किया गया बल्कि उनका असर आज भी वेरियस फील्ड्स में यूज होता है। कोच अल-किंदी से मुतासिर थी उसमें हम एक कोशिश देख सकते हैं जो गैर फलसफे को मुसलमान तहजीब के तारीखी तरह से हम आहंग की कोशिश करती है। ये एक खास नुक्ता है जिसको हम किंडियन रिवायत कह सकते हैं। एक इल्मी लहर जो 10वीं सदी तक चलती रही जो खास तौर पर अल-किंदी के पहले और दूसरी नस्लों तक तालिब इल्म से वाज़े हुई। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर शख्सियत अल अमरी हैं, जो एक जाने पहचाने नियो प्लेटोनिस्ट सोच रखते थे और अल-किंदी का दूसरा नस्ली तालिब इल्म था। ये रिश्ता अल-किंदी के तालिब इल्म अबू जैद अल बाखी के जरिए था। अल-किंदी से मुतासिर होने वालों में जुएश फफी इसाक इजरायली, जिसे अल-तमन और सैटन 1958 ने स्टडी किया है, और दूसरी तरफ 10वीं सदी के इल्मी मिसकवे भी शामिल हैं। इसके बरक्स अल-किंदी लैटिन वाले दौर के फलसफियों के लिए एक बड़ी शख्सियत थे। उनका काफी असर एस्ट्रोलॉजी पर था, जैसे कि बर्नेट 1999 में देखा गया है। लेकिन उनका काम जैसे ऑन द इंटेलेक्ट भी तर्जुमा हुआ था, और जैसे पहले कहा गया, कुछ काम जो किंडियन कॉर्पस में हैं सिर्फ लैटिन में ही मौजूद हैं। इनमें से एक ऑन रेज को गाइल्स ऑफ रोम के जरिए एक पॉलेमिक का शिकार बनाया गया। भाई, इस पर हम ये भी कह सकते हैं कि फलसफे का इस्लामिक दुनिया में जो वसी विरसा था वो भी अल-किंदी की मेहनत का नतीजा था, और ये दो तौर पर था। पहला जो में किंडी सर्किल ने किए, सदियों तक स्टैंडर्ड फलसफी किताबें बन गए, खासतौर पर उनके एरिस्टोटेलियन कामों के तर्जुमे जैसे कि मेटाफिजिक्स और प्लॉटिनस का काम जो जी और एरिस्टोटल में मौजूद था। दूसरा, जब ऐसे लेखक जैसे कि अल फराबी और एविरोइस अल-किंदी का ज्यादा जिक्र नहीं करते, अल फराबी तो कभी नहीं किया और एविरोस सिर्फ उनकी फार्माकोलॉजिकल थ्योरी को तनकीद करते हैं, लेकिन वो उसकी फिलहेलेनिक मनहज को आगे बढ़ाते हैं जिसमें फलसफे का अमल ग्रीक फलसफी कामों से वो मुस्कुराता ताल्लुक रखता है। दोस्तों, बात करें अल-किंदी के अखलाक और अमली फलसफे की तो ज्यादा जिक्र एक रिसाले फी अल-हिलाली दफ अल-अहजन, गम दूर करने का फन में होता है, जो कि असलियत पे शक है। फहमी जराइन 1968 के का कहना है कि अल-किंदी पर स्टोइक रिवायत का गहरा असर था, खासतौर पर एपिक्टेटस के ख्यालात का।

जो इस वक्त इस्लामी दुनिया में सीरियक क्रिश्चियन उलेमा के जरिए मालूमात में आया था। अगर ये स्पेसिफिक मतन के जरिए नहीं हुआ तो एपिक्टेटस ने दुनिया से आजादी और इंसान के इख्तियार को बढ़ावा दिया था, जो अपनी आखिरी आजादी के जरिए अपनी खुशी का जिम्मेदार होता है और दूसरों से आजाद होता है। उसका आखिरी लॉजिक ये था कि अगर जिंदगी जीने के लायक ना हो तो खुदकुशी की इजाजत है। ये बात अलकिंदी में नहीं मिलती। एस्टोइक के लिखे हुए रिसालों की तरह अलकिंदी का ये रिसाला, जो कि फलसफे की तस्फीये के किस्म का है, कारियों को जहन और रूह की जिंदगी पर तवज्जो की हिदायत देता है, ना कि जिस्म की। अलकिंदी कहते हैं कि इंसान अपनी असल शख्सियत रूह में होता है, जिस्म में नहीं, और फिर वो दुनिया में नजर आने वाली चीजों की आदम मुमकिनियत कहते हैं कि जो इंसान वो होता है जो फितरत में नहीं, वो उस चीज की तमन्ना करता है जो मौजूद नहीं। इस रिसाले में अलकिंदी अपने अंदर का इत्मीनान कायम करने की बात करते हैं, जो इंसान के अपने अंदर की आजादी के जरिए मुमकिन होता है। अगर दुनिया के मालो दौलत की फिक्र हो और फिर वो खो जाए या नुकसान हो जाए, तो ये इंसान के जहनी सुकून को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, ले छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 107। दोस्तों, ट्रैफिक साइन का करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है। ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं, जो के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ट्रैफिक साइंस इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है, बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है। हर साइन का अपना एक मकसद होता है, जैसे कि स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें, तो हम ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं। ये सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किल से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। M7 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। स्टोइक के ख्यालात, जो दुनिया की चीजों की वक्त गुजर और नापायदारियत को समझते हैं, अलकिंदी कहते हैं कि इंसान को अपने मन पसंद दुनिया की चीजों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और प्लूटार्च के ऑन मोरल वर्च्यू से एक मिसाल देते हैं। इस कहानी में नेरो को एक खूबसूरत शिकार क्रिस्टल का टेंट दिया जाता है, जिसमें वो काफी मोहित होता है। वहां एक फिलोसफर जो मौजूद होता है, उसे ये कहकर नसीहत करता है कि वो ऑलरेडी अपनी चाहती हुई चीज के लिए फकर का शिकार हो गया है। अगर नेरो को ये चीज खो जाए तो वो दुख भुगतने वाला है कि ये चीज ना मिलने वाली है। बाद में जब ये चीज समुंदर में खो जाती है तो नेरो पूरी तरह से उदास हो जाता है। इल्मी लोगों का कहना है कि ये रिसाला एक अजीम हिकमत और हेलेनिस्टिक सोच का इख्तलाफ है, जो कि किसी भी किस्म का किंडियन ख्याल नहीं दिखाता। इब्न मिसकाविया अपने अखलाक पर लिखी हुई ट्राइज तहदीब अल आक में अलकिंदी के ख्यालात का हवाला देते हैं। कुछ इखलाकी गुफ्त

Qatar's most heard radio station, FM 7, FM 7, Dil Se Desi.

0: FM 107. Time check.
1: हाँ जी, अभी भी टाइम फॉर द टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो पे चेक कर लो, चार्ज कर रहे एक मिनट, और ये शो आपका अपना फेवरेट जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: हाँ जी, अभी भी दिल से देसी। और भाई, ये दिन का इंतजार तो कौन करता, वेंसडे का दिन है। और अच्छा, वेंसडे का जो एक तरह से होता है ऐसा वाला ना कि कल बस आज झेलो, आज की झेलो, कल तो किसी तरह निकल ही जाना है भाई। और कल निकल गया तो बस खुशी है, क्योंकि कल है थर्सडे, वीकेंड का दिन, बस इसी का तो इंतजार रहता है। बाकी द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने होते हैं और इन गानों को लेकर तैयार होता हूं मैं, यानी कि फजील। और आज तारीख 12 अगस्त, क्या है स्पेशल आज? या आज की जो है वो बड़ी ही लाजवाब है। आज की थीम है आपका दिल खुश ना हो जाए, जो गाओ वो हार जाऊंगा भाई साहब। कई लोगों की फेवरेट, कई लोगों के दिलों के करीब, कई लोग इनके फैन हैं, और कुछ तो इतने खतरनाक फैन हैं, लोग घर में घुस जाते हैं, इनके अब्बा से लड़ाई भी

कर लेते हैं भाई। आज जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ है सारा अली खान। आज की थीम है सारा अली खान। 12 अगस्त को इनका होता है जन्मदिन और आज हम इनके गाने प्ले करने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ इनके गानों के लिए और बड़े ही लाजवाब इनके गाने आने वाले हैं। सारा अली खान ने पिछले कुछ दशक में ऐसी मूवीज बेहतरीन मूवीज दी हैं जिनके गाने बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, लोगों बहुत शौक से सुने हैं। तो सारा अली खान को हम इस्तकबाल कहेंगे और जन्म की बहुत बहुत मुबारकबाद कहेंगे और साथ ही सारा अली खान के जबरदस्त सॉन्ग्स भी यहाँ चलेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत से सॉन्ग्स हैं जो हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, लेकिन डिमांड आपकी होनी चाहिए। जैसे कि मुझे याद है एक मूवी थी केदारनाथ, उसका गाना था जान निसार, ये गाना भी बहुत अच्छा था। फिर तेरे बिन महरमा शायद, ये सब जो गाने हैं इमोशनल मोहब्बत प्यार वाले हैं। फिर थोड़े अपबीट वर्जन है तेरे वास्ते चकक आंख मारे लड़की, तो ये सब गाने जो है तैयारी करके अपन बैठे ले भाई। पर रिक्वेस्ट आपको करनी है, रिक्वेस्ट के लिए नंबर है 666-22-107 666-22-107 और तैयार हो जाओ बेहतरीन से गाने के लिए। अच्छे वाले गाने की रिक्वेस्ट करना भाई, ऐसे वैसे मत कर लेना कोड़े वाला आदमी धरा। बाकी सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, गुड इवनिंग, इंतजार कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हो, मैं कौन सा शोर में बांट रहा हूँ भाई मैं कौन सा, ये देखो इंतजार दो वक्त पे दो लोगों का होता है मुझे लगता है। इंतजार होता है रमजान में अजान का मगरिब की सुबह की बात नहीं करी मैंने, मगरिब की अजान का इंतजार। और दूसरा इंतजार होता है इंसान को तब जब उसकी अरेंज मैरिज हो रही हो, उसको अपनी शादी का इंतजार हो यही दो वक्त तो होता है इंतजार का, बाकी तो बस कट रही है जिंदगी। लोगों ने रिक्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया, मुमताज भाई ने कहा है आंख मारे ओ लड़की, ये गाना आपने करने को कहा है। तो दो लोगों ने रिक्वेस्ट कर लिया, तैमूर के साथ साथ मुमताज ने भी रिक्वेस्ट कर लिया। उसके अलावा खालिम भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, कैसे मेरा भाई, बहुत अच्छे हैं आप, कैसे हैं वैसे मैंने पूछा है। रमेश भाई कहते हैं तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा, फिर सिम्बा सिम्बा सिम्बा या सिम्बा है, सिम्बा है ऑब्वियसली। तो एक एक करके तैयार करने पड़ेंगे, आंख मार रही। वैसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, आप सबको आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना, मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया है कि अमिता के शो में कोई मसला हुआ था, ऐसा है क्या, मतलब आवाज़ किसी को क्लियरिटी, अगर है तो बताने का मेरे को, कोड़ वाला आदमी बैठा हुआ है उससे बचते हुए मैं बॉस के पास पहुँच जाऊँगा, बॉस कुछ मसला चल रहा है कोड़े लगाओ, चार कोड़े लगाओ, क्या मसला है फिलहाल जो आंख हमारे गाना है अपन लेकर आ गए नेहा कक्कड़, मीका सिंह और कुमार सानू की आवाज़ में। 2018 मूवी का ट्रैक है और सारा अली खान सिम्बा मूवी में तो है। फिर सिम्बा मूवी का एक और गाना भाई ने कहा है, रमेश गुरुंग इनका नाम है, रमेश भाई की रिक्वेस्ट पे गाना चलेगा। उसके बाद एक घंटे में आप कितने ही सारा अली खान के गाने बजा लोगे, आपका दिल करे बजा दो, सुन लेंगे हम। ये भी बात सही है, आसिफ भाई कोशिश रहे ज्यादा मतलब कम ना पड़े। दिलबर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, सॉन्ग नेम तेरे वास्ते चांद, चांद तोड़ के लाएंगे दिलबर अली नाम ना, अच्छा देखो जिस तरह का नाम है उस तरह से इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट भी करी, दिलबर आदि जो है किसी लिए चांद उड़कर लाएगा तो अच्छा भी लगेगा। सलाम, ऑफिस से छुट्टी का भी इंतजार, बिल्कुल उस्मान साहब आपका इंतजार तो 11 मुल्क के लोग कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कही, मेरा नहीं 12 मुल्क कहना चाहता हूँ, कल आबिद भाई को बाद में हमने गिना है न्यूजीलैंड से, वो सुन रहे हैं तो वो मुल्क तो लेना पड़ेगा यार, काउंट करना पड़ेगा और देखो इंडिया बांग्लादेश पहले मैं करा चुका हूँ, इंडिया बांग्लादेश कतर बहरेन सऊदी नेपाल श्रीलंका न्यूजीलैंड पाकिस्तान, कोई छूट रहा है, नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका 9 हो गए, न्यूजीलैंड भी हो गया, सऊदी बहरेन हो गया, फिर कतर भी हो गया और 9 हुए यार, दो और क्या था, एक ऑस्ट्रेलिया था है ना दोस्तों हंसी हुए हैं, एक और गिनवाओ जल्दी से कौन था, 7 दो भाई, एक और मुल्क था यार, बहरेन सऊदी, अरे यूएई बच गया। बाकी मोहम्मद भाई बिल्कुल सही कहते हैं, यूसुफ भाई कहते हैं आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, फजील जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और गाने की रिक्वेस्ट आ गई है यूसुफ भाई की तरफ से, बिल्कुल ये गाना भी अपन प्ले। फिर अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कतर से सुन रहा हूँ, हाँ देखो 11 मुल्कों में हैं, न्यूजीलैंड वाले थे

आप तो यार आबिद भाई, न्यूजीलैंड से इधर आ गए। आई एम आबिद फ्रॉम इंडिया, फिर नीचे न्यूजीलैंड लिखा हुआ है सबसे पहले मैसेज में। ये धोखाधड़ी है, एक और देखना पड़ेगा यार। अभी अभी 11 मुल्क किया था मैंने इतनी मेहनत से। अच्छा एक और चीज है, यूएई अमीरात है ना, अबू धाबी दुबई, और ऐसे ऐड कर दूंगा 6 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपन सिर्फ यूएई से आगे बढ़ते हुए अबू धाबी ले लेते हैं, वहां तक अपना जा रहा है, बज गया। न्यूजीलैंड कैंसिल कर दो तब भी। बाकी गाने की तरफ और बाकी मैसेज की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे, लेकिन अभी 3 गानों की तरफ आते हैं जल्दी से। यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट है केदारनाथ मूवी का, और ये है स्वीट हार्ट। स्वीट, अरे यार स्पेलिंग SWEET, स्वीट हार्ट वो लफ्ज है जो कभी मैंने किसी के कान से मेरे लिए नहीं सुना। हाय हाय, दुख दर्द पीड़ा सैडनेस अफसोस सब यही तो है। तो 2018 में केदारनाथ मूवी आई थी, ये गाना जो है अपन ढूंढ के लाए हैं। और फिर एक और मैसेज है, तेरे वास्ते चांदी, इसमें सारा अली खान है। दिलबर तेरे वास्ते, दिलबर भाई बना इसमें नहीं है जहां तक मेरा आइडिया। बाकी ये दो गाने तो अपन ले करते हैं, बाकी फिर एक एक करके छाटेंगे, ठीक है। फिलहाल नेहा कक्कड़, मिका सिंह और कुमार सानू की आवाज में FM 107 पे बेहतरीन सा गाना, दिल से दई से।

क्या गाना है वरुण सज्जन और जिगर की आवाज भी ना सुना आपने FM 107 पे तेरे वास्ते। और सच में अगर इंसान खुश रहे तो सबसे कहता है और अपने घर वालों से भी कहता है।

0: पैसे निकाल के बहन ने मुझे दे दिए, तो फिर बहन से कहना पड़ता है कमाई अगर होगी तो फिर बॉस अगर छुट्टी नहीं, बॉस नहीं, तब ये वाली लाइन थोड़ी चले। तुम क्या समझ रहे हो, फ्लो फ्लो में प्ले कर दूंगा कि बॉस छुट्टी देते तो फलक। अरे ऐसे कैसे, वहां 4:20 स्टूडियो की घड़ी में इस्तकबाल है आप सभी का, और 5 बजे तक हमारा और आपका साथ होने वाला है दोस्तों। और ये शो द रिक्वेस्ट शो,
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजी के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: तो भाईजान देखो क्या है कि 5 बजे तक अगर हम और आप साथ में हैं और आप अपनी प्लेलिस्ट से वो गाने ना निकाल पाए जो गाने लाजवाब हैं, सारा अली खान पर फिल्माए गए हैं या फिर सारा अली खान के फिल्म के हैं, क्या खाक आपने 5 बजे तक हमारे साथ वक्त गुजारा, खर्चा किया है सिर्फ। वक्त को इन्वेस्ट करना और एक्सपेंस कर देना, पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा एक्सपेंस यानी कि पैसा खराब बर्बाद कर देना, ये दो अलग चीज है। आप किसी काम में पैसा लगाते हैं उससे एक्सपीरियंस मिलता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। किसी काम में पैसा लगाते हैं उससे पैसा वापस आपको भी आता है, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने कोई एक ऐसी चीज खरीद ली जो घर में कूड़े के माफिक पड़ी हुई है, उसे कहते हैं बर्बाद कर दिया पैसा, फिजूल का पैसा खराब किया। तो आप वक्त खराब ना करें, वक्त मेरे साथ इन्वेस्ट करें। ओए होए लाइन देखो मेरी वॉइस ऑफ। तो इन्वेस्ट करते हुए उम्मीद है कि आप और भी गानों की रिक्वेस्ट करेंगे। फिलहाल हमारे पास 3 बेहतरीन गाने तैयार हैं। एक गाना है हाँ मैं गलत, अरिजीत सिंह शाश्वत सिंह की आवाज़ में ये गाना है, और ये गाना किसने रिक्वेस्ट किया था, शेख अरफान अल कासमी ने। और फिर उसके बाद एक और गाना है, रमेश ने रिक्वेस्ट किया तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा फिल्म सिम्बा से। ये 2 ट्रैक हमारे प्यार है कि जो गाने हैं वो मिल नहीं रहे। वालेकुम अस्सलाम, मदीना खलीफा से सुना हूँ, गुड सॉन्ग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।

फिर उसके बाद एक मैसेज है, कभी नुसरत अली को भी लेकर आओ यार अगले हफ्ते। नुसरत पाजी तो नहीं है लेकिन मैंने पश्तोंग जरूर ऐड किए हैं, और साथ ही साथ मैंने ऐड किए हैं पाकिस्तान के आतिफ असलम के सॉन्ग, तो वो आपको आतिफ असलम के सॉन्ग मिलेंगे उसके नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पूरी रहेगी। बात कर लेते हैं और मूवी पार्टनर सॉन्ग, यार पार्टनर मूवी का सॉन्ग नहीं प्ले कर सकते क्योंकि आज की थीम कुछ और है, आप इधर पार्टनर कहते हो उधर तेल की डिबिया निकल जाती है सामने। जिनको पता है किसकी बात कर रहा हूँ उनको पता है। हिशाम भाई का वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, और भाई सैयारा का टाइटल ट्रैक, सैयारा में सारा अली खान थी पक्का यार? नहीं यार, सैयारा में सारा अली खान थी या नहीं थी मुझे ये आइडिया तो नहीं, लेकिन इतना आइडिया कि सारा अली खान तो मेन लीड में नहीं थी, बैकग्राउंड में कहीं पर हो, जहाँ तक मेरा आइडिया तो नहीं थी ऑब्वियसली। यार सैयारा तो अभी नई मूवी आई है ना, जिसमें जो लीड एक्ट्रेस अनीत थी, बाकी तो देखो अनीत के बारे में पता है वो लड़का कौन था, उनकी पांडे के कुछ खास लगते थे, पांडे ही होंगे वो, तो आहान नाम था या वाहान नाम था याद नहीं भाई, मैं ये जल्दी भूल जाता हूँ। बाकी अगर सारा अली खान का गाना कोई करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल बद्रीनाथ का सॉन्ग प्ले कर दो। बद्रीनाथ का कौन सा गाना बद्रीनाथ में थी है? ठीक है मैं टाइप करके देख लेता हूँ अपन, बद्रीनाथ की दुल्हनी हाँ इसमें थी। कैसे फजील मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आपको जो आपको पसंद है बजा दो। रुकने किए नहीं क्या, रन किए कि नहीं? अरे नहीं मेरा भाई, रनिंग तो नहीं हो पा रही है, पिछले साल ही जो हो पाई तो हो पाई, फिर रनिंग नहीं हो पा रही है। बाकी मैं बद्रीनाथ का सॉन्ग प्ले करता हूँ आपके लिए, और एक गाना है तम्मा तम्मा, तीसरे नंबर पे ये सॉन्ग आएगा आपके लिए। सबसे पहला जो सॉन्ग आ रहा है हाँ मैं गलत, फिर तेरे बिन राहत फतेह खान और असीस कौर की आवाज़ में, एंड देन तम्मा तम्मा अगेन बपी लहरी अनुराधा पौडवाल और बादशाह की आवाज़ में। FM 107 सबसे पहला ये गाना लव आजकल का, एंजॉय दिल से देसी।

0: नहीं नहीं नहीं प्ले करूंगा भाई, नहीं प्ले, बाहर निकलो, यहाँ नहीं, अभी बाहर निकलो, पहले बाहर निकलो।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: अरे भाई कॉला अंदर तक आ गया था यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? ये कौन था जिसने कहा तम्मा तम्मा गाना प्ले कर दो, बरीनाथ की दुल्हनिया से गाना प्ले कर दो? कौन था ये भाई? क्या यार, तो अभी कोड़ा पूरा गीला करके लेकर आया था कड़वे तेल में यार।

उसने यहां पर सटाक से एक जर हिला भी दिया हवा में, मैं अभी उसको बाहर निकाला यार। बद्रीनाथ की दुल्हनिया में नहीं थी यार सारा अली खान यार तुम लोग। अभी तो मेरा सब में हो जाता, तेरे वास्ते अलग फलक हो जाता मेरे। मेरा फलक टूट जाता भाई अभी तुम लोगों के चक्कर में, मेरे चांद के टुकड़े हो जाते हैं यार। ये कौन है जिसने कहा बद्रीनाथ का गाना प्ले करवा दूं, मैं अभी ढूंढ कर। भाई झगड़ा हो जाएगा बता रहा हूं मैं, बहुत बुरा झगड़ा होगा। मैं बच गया भाई, अच्छा हुआ मैंने रीचेक कर लिया। उधर से यूसुफ भाई ने भी कहा, इधर से मैं भी देख रहा हूँ, अरे मेरा भाई। मेरे को लगा हाँ है उसमें, मेरे को कुछ और समझ में आ रहा था। बद्रीनाथ में मेरे को इतना आइडिया है कि अरे वो आलिया भट्ट और उनके साथ का बड़ा अच्छा जोड़ी होती है यार उनकी। अरे कूलमर जो था, अरे डेविड धवन का बहुत अच्छा वो बेटा है, वो कोई तो धवन है ना, हाँ वो धवन वो था। और मेरे को याद आ रहा है कि उसमें जो है वो सारा अली खान है, तो ऐसा कन्फ्यूजन था क्योंकि उनके साथ बहुत मूवी करी उन्होंने। मैं वहां पर कन्फ्यूजन में था भाई, अगर अभी तो मेरे चांद के चार टुकड़े हो जाते थे भाई। अंदर तक आ गया था ये कोड़े वाला आदमी, तुम लोगों के चक्कर में मैं सूद दिया जाऊंगा भाई। इसलिए माजरत के साथ वो गाना प्ले नहीं हो सकता, लेकिन बाकी गाने अपन यहाँ पर तैयार करके बैठे ले। रमेश भाई ने कहा है, नहीं रमेश भाई ने तो बहुत पहले कह दिया है। अब एक और गाना, ये किसने गाता है, ये हुस्न है सुहाना वाला भाई कहाँ गया, हुस्न है सुहाना, हाँ ये साध है, साध ने कहा है गोरिया चुराए मेरा जिया वाला रीमेक सारा अली खान है जिसमें। कुली नंबर वन का ये ट्रैक है और ये चंदन और अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है, हुस्न है सुहाना इस गाने का नाम है, ये रिक्वेस्ट किया है साध भाई ने। फिर उसके बाद ये गाना तो मैंने कभी सुना भी नहीं कि इस गाने में थी भी कि नहीं, मैंने इधर रिसर्च किया तो पता चला तनिष्क बागची उदित नारायण ने गाना गाया है मम्मी कसम। और फिर जरा हटके जरा बचके 2023 में आई थी एक मूवी, उसका गाना है सांझा, श्रेया घोषाल और विशाल मिश्रा की आवाज में। लेकिन ये मम्मी कसम वाला मैं तीसरी बार वो करने जा रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, पता करने जा रहा हूँ कि ये सही में इसमें थी। तो कूली नंबर वन एक मूवी आई थी 2020 में, उसमें थी ये, ठीक है तो सेफ तो है, मैं दो तीन बार रिसर्च कर लिया इधर। बाकी भाई आज तो मेरा हिसाब हो जाना था। आंख मारे एक बार और किसी भाई ने कहा रिक्वेस्ट किया, वजाहत खान साहब वक्त निकल गया है ऑलरेडी, सबसे पहला सॉन्ग हमने यही प्ले किया था, सारा अली खान का एक सॉन्ग है हैप्पी बर्थडे टू यू प्लीज प्ले। बस भाई हैप्पी बर्थडे तो हो गया, आखिरी के कुछ मेरे ख्याल से तीन सॉन्ग प्ले होंगे, उसके बाद हम गेम की तरफ बढ़ेंगे धीरे से हल्के हंसे। FM 107 पे इन गानों को एंजॉय करें, हुस्न है सुहाना फिलहाल सबसे पहला गाना दिल से देसी।

श्रेया घोषाल, विशाल मिश्रा की आवाज में ट्रैक साझा आपने सुना FM 107 पे। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:46 और वो वक्त आ गया जिसका इंतजार कार में बैठे हर वो शख्स कर रहा होता है जो FM 107 का ये शो द रिक्वेस्ट शो सुनता है, यानी कि पहचान कौन का गेम इज ऑन। और अभी से लेकर 10-12 मिनट तक अपन ये गेम खेलेंगे, जिसमें बहुत आसान सा काम होगा, जिसमें ये जो गाने मैंने तैयार किए हैं ये बीच से कहीं से प्ले करूंगा और आपको बताना है गाने का नाम। दो तो बहुत आसान मुझे लगता है, तीन में से दो बहुत आसान होने वाले। अच्छा, इसमें कैच ये है कि दो किसी और के लिए आसान होने वाले हैं और बाकी के दो किसी और के लिए आसान होने वाले। ऐसा नहीं है कि एक जनता जो 100 लोग अगर सुन रहे हैं या 100% लोग अगर सुन रहे हैं, उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो इन्होंने ऐसा देख लिया कि अरे यार ये दो गाने मुझे पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं। ऐसा नहीं होगा। 50% ऐसे हो सकते हैं जिनको शुरुआत के दो गाने पसंद आएंगे, पता चल जाएंगे कि कौन सा है, लेकिन बाकी के 40% ऐसे होंगे जिनको आखिरी वाले, और 10% वो जिनको कुछ भी नहीं पता चलेगा। हमेशा एक गैप रखता हूँ मैं, 10% उनको लेकर रखता हूँ जिनको पता नहीं है, बस गाना सुनना पसंद आता है, FM 107 सुनना पसंद आता है। ठीक है, तो अपन एक एक करके गाने प्ले करेंगे, ये गाने बीच से कहीं से भी लिरिक्स जो है इनके गाने प्ले करेंगे, कहीं से प्ले होंगे, और आपको गेस करना है गाने का नाम, गाने का हुक, फिर बाद में

जी बस कर दो, इससे ज्यादा नहीं प्ले करना है। बताओ गाने का नाम क्या है और इस गाने में फंसाने की कोशिश मैंने पूरी करी है लेकिन फलक ने कहा है हमको कहाँ फंसा पाओगे भाई साहब। फलक एसआरके ने बिल्कुल सही जवाब दिया, यूसुफ भाई टाइपिंग कर रहे हैं और यूसुफ भाई के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है सही जवाब देने का, लेकिन उन्होंने इस जवाब नो सॉरी डोंट नो। अरे क्या इस गाने में ऐसे लफ्ज मैंने ऐड करवाए या फिर ऐसे ऐसे गाने को काट कर लाए हूँ जो बहुत ज्यादा टफ है। मुमताज ने भी सही जवाब दे दिया है, आबिद ने सही जवाब दे दिया है। न्यूजीलैंड वाले नहीं है ये, कोई और वाले आबिद है क्या कि आकिब थे वो? यार मैं भूल जाता हूँ यार, आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहे हूँ क्या। ये कौन है, अरिजीत नाम लिख दिया। हाँ अरिजीत तो है इसमें लेकिन आपको बाकी बताना है। एक मोहम्मद भाई कह रहे भाई हम 10% में से ही है। ओके इंटरेस्टिंग मोहम्मद भाई, कोई नहीं गाना एक बार फिर से सुन लो।

बाकी आसिफ भाई ने जवाब दिया है, लेकिन आसिफ भाई का जवाब गलत है. उसके अलावा वाजिद भाई ने भी गलत जवाब दिया है. और एक और मैसेज है, आदिल इनका नाम है, आदिल भाई आपने भी गलत जवाब दिया है. फिर वसीम भाई ने भी गलत जवाब दिया है. गाने का जो नाम है वो बहुत ही आसान है, मतलब आपने सुना होगा गाने का नाम है

बात है, अली मकसूद भाई भी कहते हैं मैं भी 10% वालों में। ओके ठीक है, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि ये वाला ना सबसे आसान होगा। तो मैंने जो शुरुआत के 50% बताए थे ना कि शुरुआत के दो गाने आपको पता चल जाएंगे कौन से, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा परसेंटेज क्या बनाऊं इसका। क्योंकि अब बाद के दो गाने हैं वो और ज्यादा मुश्किल है। उनमें से तीसरा गाना ज्यादा टफ है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी कई बार ऐसा होता है खिलाड़ी एकदम से निकल के आता है कि अरे मेरे को आता है, मैं अब भी ठीक करके देता हूँ। नहीं भरोसा है तो मेरे को 5,034 रुपया दे दो मेरे को। ये लो, ये दूसरा गाना आ रहा है, इसे सुनो और 100% मैं श्योर हूँ कि 90% लोग आसानी से बता लेंगे इस गाने।

0: point.
1: हाँ जी बताओ. अच्छा इसमें मुझे खुद भी लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, बट मैं थोड़ा सा कोशिश कर सकता हूँ इसको सही करने की, बेहतर करने की. तो एक और इसी का आगे का एक्सटेंडेड वर्जन वाला मैं म्यूज़िक प्ले कर सकता हूँ, अगर ये वाला जवाब लोगों का नहीं आता है तो ठीक है. लेकिन अबू खान का पहले ही आ गया, आई एम विथ 10% तो मजबूरी में प्ले करना पड़ेगा, पहले ही मैसेज ये है. ठीक है ये सुनो और 100% अब आप बता लोगे.

रोक दो, अब तो नस पकड़ ली होगी आपने यार, अब तो नस आपके काबू में है, 10% वाले भी दे ले तो गारंटी के साथ कह रहा हूं अब। बड़ा पक्का होता है ये आसिफ भाई की बात समझ नहीं पाया मैं। उसके अलावा फलक एस आर के ने कहा है, अब तो यार एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, अब तो मेरे को पता है कौन सा गाना है। बिल्कुल सही जवाब है वैसे। फिर उसके बाद मुझे मेरा 5,034 रुपया वापस चाहिए 34 रुपया दे सकता हूँ साकिर साहब, इसके अलावा पैसे नहीं है मेरे पास, 5,000 खर्च कर दी मैंने आपके गर्दन गार्ड पे गर्दन जो भी है गर्दन, मैं बोल नहीं पाऊंगा भाई, ये कोई नहीं बोल पाएगा, गिरगर्दन घाट वही था ना, यही था ना गिरगर्दन घाट नॉट श्योर, स्टिल नॉट श्योर, मुश्किल है ये कहां से लाए सॉन्ग। बिल्कुल सही यूसुफ भाई आपने, अब जाके एक्चुअली मैं लिरिक्स बताई है, गाने का नाम नहीं बताया, एक बार फिर से सुन लो सब लोग।

बस इसी के बाद एग्जैक्ट वही लाइन आती है जो गाने का नाम है. आपको बताना है, कुछ लोग टाइप तो कर रहे हैं, लेट्स सी कि आप लोग क्या सही हो पाते कि नहीं. यहाँ आज का मामला जो है एकदम ही टेढ़ा भाई साहब. और तीसरा वाला तो और टफ है. आज मैंने परसेंटेज एकदम ही बदल दिया भाई. एक्चुअली में 10% वाले 100% निकल आए. बाकी एक जवाब तो आया है फाइनली. और ये जवाब किस भाई का है मेरे को देखना पड़ेगा. अरे और भी जवाब आ गया क्या? तुषार आ गया. अरे एकदम से झटके लग गए. आसिफ भाई ने बिल्कुल सही कहा है, जवाब दिया है. मोहम्मद साहब ने भी सही जवाब दे दिया, 10% से निकल के बाहर आ गए. फिर अनुज भाई ने क्या मैसेज किया है, बोला था. अच्छा ये सॉरी, कब का ये मैसेज? मैं कब का मैसेज पढ़ रहा हूँ भाई? ओह अनरीड वाले में आ गया था, तभी मैं कहूँ एकदम से कैसे मैसेज इतने सारे पड़े. एनीवे बेस्ट सॉन्ग आई वांट, प्लीज़ प्ले फुल सॉन्ग. ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, अगर वक्त बचता मैं ये गाना प्ले करूँगा. उस्मान भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दे दिया. मुमताज़ भाई ने सही दिया कि नहीं? मुमताज़ भाई कहते हैं 50,334 रुपया बोला था. अरे 50,000 कहाँ होता है यार, एक रोड रोलर बनाने में इतना थोड़ा पैसा लगता है. वेल जवाब बिल्कुल सही दिया है आपने. फिर उसके बाद एहसान अली ने भी जवाब सही दिया है. वजाहत दिखा है, जो सॉन्ग फेमस और सुनने में अच्छे हों वही सबको याद रहते हैं. वैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग था, अभी आपको पता चल जाएगा मेरे भाई वजाहत साहब. फिर अस्का, ये क्या नाम है भाई, आयम्बन, अस्काइम्बन नाम, मैं कहीं मिस कर रहा हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो रही है, मेरा भाई माजरत. लेकिन आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया. गाने का नाम बहुत ही आसान है और गाने का नाम है ये. बादशाह, कृषल, किशोर और इप्सिता की आवाज में गाना था. खैर कोई बात नहीं, ये गाना थोड़ा सा टफ हो सकता था, लेकिन ये तीसरा गाना ज्यादा टफ है. लेट्स सी कि क्या आप इसका जवाब दे पाते हैं. ऑल्दो ये गाना भी आपने 100% सुना होगा.

हाँ, मजे की बात ये है गाने का नाम बताना है लिरिक्स तो आप बता लोगे, बीच से कहीं से भी उठा लोगे, लिरिक्स बता लोगे, लेकिन असली गाने का नाम क्या है वो आपको बताना है। हुक अगर आप बता पाए तो बहुत ही अच्छा है। गेस करना थोड़ा मुश्किल है, वजाहत भाई कहते हैं। हाँ मुझे भी लग रहा है, अभी ठीक करके देता हूँ, 5,334 रुपये ये मुमताज़ भाई ने लिखा है। अभी ठीक, बहुत सही है, खिलाड़ी तो मुमताज़ भाई हैं। फजील ये सभी तो सारा अली खान नहीं लग रही, सब सारा अली खान है भाई, मैं ऐसे थोड़ी आ रहा हूँ यार, मेरे को कोड़े से डर लगता है। काली तेरी परांदा तेरा लाल, ये किसने लिखा है? जाकिर हुसैन ने। जाकिर भाई लाइन आपने सही पकड़ी है, गाने का असली नाम सही नहीं पकड़ा है, एक बार फिर से सुन लेते हैं।

अरे एक भाई ने तो मेहनत करा दी है, क्या लिखा है, कैसी मछली का तुझ पे आ गया दिल है। ऑटो करेक्ट हो गया, ऑटो करेक्ट हो गया, मैं मान रहा हूँ। फिर उसके बाद एक जवाब आया है अली मकसूद से, 10% से बाहर निकल के एक बार फिर से आ गए हैं। और परांदा कहते हैं यूसुफ भाई, लेकिन गाने का असली नाम है रूप रानी।

ये है गाने का असली नाम, रूप दीरानी बाय गुरु रंधावा एंड हीर एज वेल। वेल ये दो गाने बड़े ही बेहतरीन थे, एक तो है रूप दीरानी और फिर एक है हमने वहीं लगाया दिल। अब इन दोनों में से कौन सा गाना प्ले करवाना चाहती है जनता, ये जनता डिसाइड करेगी क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम है। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। बहुत ही अच्छा खेला लोगों ने, जवाब देने की कोशिश करी है, लेकिन मैं अगली बार आऊंगा थोड़ा आसान गानों के साथ। सारा अली खान के फैन तो हैं लेकिन गाने शायद उस तरह से उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए लोग। ये एक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर की कमी है कि उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, थोड़ा मिस हो गया लोगों से। बाकी मैसेज है फजील भाई, ये सॉन्ग लगा कर जाओ। कौन सा, मतलब नाम लिखो जल्दी से। फीलिंग प्राउडली फाइनली मैं भी 10% वालों में आ गया। नहीं भाई ठीक है, हमने वही लगाया दिल, दिलबर अली ने कहा है, बहुत देर में जवाब दिया, प्लीज प्ले सेकंड वाला सॉन्ग। फजील ये सॉन्ग मैं सारा नहीं सुना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार होता है। वेल हमने लगाया दिल ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है इसी गाने को प्ले किया जाए। सो ये गाना आ रहा है, एंजॉय करें FM 107 पे और मुझे दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी आपसे कल, और कल होगी शाम को 4 बजे आपके अपने मर्जी के गानों के साथ। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: बस अभी करा रहा हूँ मैसेज। आप लोग मैसेज नहीं कर रहे, बच्चा रो रहा है, बताइए ये क्या कोई बात होती है। बस अभी करा रहा हूँ मैं। बस आज ये अभी अंकल मैसेज करेंगे, गुड इवनिंग लिखेंगे, है ना। बस अभी शांत। बस मैसेज कर दो भाई, क्या बच्चे को परेशान कर रखा है आप लोगों ने भाई। बस अभी कर रहे अंकल, आ गए बड़े बूढ़े पापा आ गए।

शाबाशी मिलेगी, सबको शाबाशी मिलेगी जिन्होंने मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दोहवाला कबीर एफएम 107 पे आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आज रजी लट काट दिया हमने। और क्या हाल है, बढ़िया मैसेज कर दिया करो। देखो आपके मैसेज से ना गाड़ी स्टार्ट होती है, इग्निशन तभी होता है जब आपके मैसेज आते हैं। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। मैसेज करो, एक सेकंड बात कर लूँ। और भाई क्या हाल है, बढ़िया। कल की गाने की ऐसे लगी मौज आई। सर मैसेजेस पढ़ दूँ आते के साथ ही। आज मैं इतना लेट होने वाला था।

ना मुझे लगा सीधा मैं 5 बजे ही एंट्री करने वाला हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। कुछ मैसेजेस आए हैं जो लोग मुझे सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई 1 घंटे पहले भेजनी थी रिक्वेस्ट। ये तो अभी क्या हो रहा है, लोग सरकारी दफ्तर बन गए हैं। अरे 1 घंटे पहले वाले शो में रिक्वेस्ट थी भाई, इसमें कुछ नहीं चिल्लाने वाला, बोलते रहो। मैं इतना चिकना खड़ा हो चुका हूँ ना, इतना आप मुझे बोलोगे कैसे आर जी वो चलाते नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई लिखते हैं, क्या बोलती कंपनी, विराज क्या सीन है बच्चे, आज मैसेज कहते हैं फुल एनर्जी के साथ हमारा भाई आते हुए, क्या हाल है बच्चा, किसका है भाई, जरूर है, क्या करना है आपको आसिफ भाई, ये कैसे सवाल है आपको, बस बच्चे को रोने से रोकना चाहिए ना, मैसेज करना चाहिए। कल वाली स्टोरी मैंने क्या है इन्हें मौज करवा दी भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ कि आपने खुद जाके स्टोरी चेक करी। मलिक वकास साहब लिखते हैं गुड इवनिंग, क्या हाल है, कमाल की स्टोरी थी भाई, क्या कैरेक्टर था, और लिखते हैं सिंपली सुपर माइंड इंटेलिजेंट, सोचो कि अगर सच में माइंड यूज करके बनता तो क्या करता, आंधी लाता भाई आंधी। एक भाई कह रहे बच्चा मेरा है। ये भाई भाई शाम की जनता ही अलग है। हीरो भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है। और एक हमारे भाई हंस रहे हैं क्योंकि उनका गाना नहीं चलाया मैंने, पर अच्छी बात है इन्होंने अपने नाम में भाई भाई ने अपने व्हाट्सएप का नाम रखा है मोबाइल। अरे यार सही जा रहे हो भाई आसिफ भाई, ये क्यों कर रखे। उन्होंने व्हाट्सएप का नाम रखा है मोबाइल। एम के भाई वालेकुम अस्सलाम, शाम साहब वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक फ्रॉम राउंड अबाउट। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सफीर भाई, बहुत बढ़िया। और इनके बाद मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, ये कौन साहब हैं, अलीम भाई ने मैसेज किया है, आलिम भाई ने सॉरी। देन मुमताज़ अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम, बच्चे की जान लोगे, अरे आपको चुप कराना चाहिए मैसेज करके। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम गाबा जी, गाबा जी के भाई बच्चे को ये लगाओ इफ क्राइंग कंटिन्यूसली। बहुत केयरिंग लोग हैं माशाल्लाह। एक भाई ने मुझे मैसेज किया है रूप दी रानी, नहीं चलाऊंगा। और इनके बाद यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। देन भाई मेरा ही है, अच्छा ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। जुल्कनैन साहब वालेकुम अस्सलाम, जुल्कनैन साहब पता कैसे स्टोरी लेके अटैची में बंद करके भाग जाते हैं। बताते नहीं कैसे लगी, कौन सी कहानी थी, कहानी दो कहानी ली अटैची में रख के भाग गए पहली फ्लाइट से। एक मैसेज है वेदर इज ओके टुडे, इमरान भाई ये बाहर का वेदर इज ओके टुडे, ना मत करो यार इमरान भाई, मैं आपसे दोस्ती बरकरार रखना चाहता हूँ, ये आप कह रहे हैं बाहर का मौसम अच्छा हो रहा है। अरे यार एक मैसेज है कि कितने रिस्पॉन्सिबल फादर हैं साथ ले आए अपने बेबी को, हाँ हाँ एक और इल्ज़ाम लगा दो, अफवाह तो पहली है मेरे ऊपर, मुझे 5 महीने बाद आए। वालेकुम अस्सलाम सुहेल भाई, थैंक यू सो मच, कल मेरा डे ऑफ था आपको नहीं सुन पाया, उसका मुझे बहुत अफसोस है। मुखालफा लगता है मोहम्मद भाई हमारे शो को ना सुनने पे। और एक मैसेज है गुड इवनिंग कबीर भाई, धूल का वेट, अच्छा ढोल का, सॉरी भाई मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो गई, मैं कुछ देर में चलाऊंगा, अभी अस्कार शाम के अस्कार का वक्त है ना मोहम्मद अशरफ भाई, तो कुछ देर में जा दूंगा। मैंने फालतू में बच्चा एफएम पे छोड़ के चला गया भाई, ले जा कर। और मकसूद भाई कह रहे हैं दूसरी ग्रेड हो भाजी, एंड अस्सलाम वालेकुम भाई कैरी ऑन है, ठीक है जी। के एम खान साहब जजाकल्ला बहुत शुक्रिया। और कबीर भाई क्या है खादी मैं कह रहे हैं मेरे तो बच्चों को भी आपकी स्टोरी सुनने का इंतजार होता है पाकिस्तान में, लॉट्स ऑफ लव पाकिस्तान को भाई, बहुत सारा प्यार यहीं से सीधा। फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, आई होप आप ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ भाई। फजील छोड़ गए बच्चा। एक मैसेज है वो क्या है, वो मीम है ना, एजेंट बने करे वन। एनीवे 666-221-07 का मैसेज आ जाना चाहिए, प्लीज़ कर दीजिएगा मैसेज, क्योंकि आपके मैसेजेस से लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, मज़ा आएगा। और हाँ आज की जो स्टोरी है थोड़ा सा बता दूँ मैं, तो आज की कहानी जो है वो भी कल वाली जितनी ही लंबी हो सकती है, पर मैं कोशिश करूँगा उतनी ना हो ताकि आपको ये लगे अरे यार ख़त्म ही नहीं हो रही है, मगर आज की कहानी है बड़ी ख़ास, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी कल की तरह ही, बट दोनों की वैल्यू अलग अलग जगहों पर है, कल वाली की वैल्यू अलग है, आज वाली कहानी की वैल्यू बहुत अलग है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आज की कहानी भी पसंद आने के चांसेस हैं। सो 666-221-07 नंबर है, मैसेज कीजिएगा और बताइएगा। बाकी मैंने भाई मेरा दोस्त है वो कह रहा है कि कोई भोजपुरी गाना चला दें, अंसारी नाम है, अंसारी भाई अल्लाह हाफिज़। और इकरम भाई वालेकुम अस्सलाम।

0: हम और मकसूद भाई वालेकुम अस्सलाम, मिलते हैं अदकार के बाद 11 सेकंड, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जाना आपने नहीं, स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: सबा सिमिले की पूरी सबा सिमिले की अस्सलाम वालेकुम। 5:21 मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। और मैंने उस दिन एक बात बोली थी, उस बात पे एक भाई ने मैसेज किया है। पहले बता दूं बात क्या थी। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा देखो जो तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हारे स्पेशली इंस्टाग्राम पे एडिड हैं वो लोग क्या लाइक करते हैं वो तुम देख सकते हो। तो जाहिर सी बात है जो आप लोग लाइक करेंगे वो आपका दोस्त देख सकता है। तो अगर आपने कुछ लाइक किया है और आपके दोस्त ने देख लिया कि अच्छा वेट ये बॉय, तो आप फंस जाएंगे। तो एक भाई हमारे आरिफ भाई, उन्होंने मैसेज किया, कहने लगे कि भाई मैंने अपने दोस्त को पकड़ा है कि वो, मैं बता नहीं सकता, वो किसी के फोटोज को लाइक कर रहा होगा और आरिफ भाई ने उसकी चोरी पकड़ ली। कह रहे हैं कि इस दुनिया शरीफों के लिए बिल्कुल नहीं है। आरिफ भाई सही पकड़े भाई। तो आरिफ भाई आपने क्या किया, मतलब उसे कन्फ्रंट किया इस बात को लेके कि नहीं किया, करना तो नहीं चाहिए, अकेले बैठे बैठे मजे लेने चाहिए इस बात को लेके, बेस्ट ही है। पर मैं फिर से बता दूं कि अगर आप कहीं पे लाइक का बटन दबा रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल में लोग उस लाइक किए हुए बटन को देख सकते हैं मेरे दोस्त। फिर कहानी जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: पहले रेडियो बंद करो।
0: हाँ बताइए
1: कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए।
1: पहचाने नहीं पहचाने कबीर भाई?
0: भाई पहचान लिए भाई, वो हैदराबाद से लोग बहुत कम आते हैं इधर क्या?
1: मानिए आज मेरी खुशनसीबी है, मालूम है आपको?
0: कैसे?
1: देखो शायद आपको याद है नहीं है नहीं मालूम है, लेकिन मेरी बात शायद आपसे लगभग एक महीने या डेढ़ महीने के बाद आज आपसे बात हो रही है।
0: पिछले महीने हुई थी हमारी बात, जहाँ तक मुझे याद है पिछले महीने हुई थी।
1: हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, पिछले महीने यानी लगभग एक महीना हो गया ना भाई।
0: हाँ मतलब उतना ही हो गया। हाँ तो ये गिनाने का मकसद क्या है आपका, ये बताओ पहले।
1: गिनाने का मकसद क्या है, यानी मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जो सुबह के शो में जो हलचल, जो खलपना, जो छिली बोल के आवाज जो रहते थे ना, वो सुबह के टाइम पे नहीं है। सुबह के शो में आपके बिना शो इज नथिंग।
0: अरे भाई बहुत प्यार, भाई बहुत प्यार, थैंक यू सो मच।
1: सच में बता रहा हूँ मैं, और यकीन मानिए मैं जैसा मैंने की 13 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह आप की दुआ से उम्रे को भी जाके आया।
0: अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह।
1: कबीर भाई क्या है, वाकई में बहुत खुशी होगी मेरे को, सच में बहुत खुशी होगी आपसे बात करके।
0: थैंक यू, मुझे बड़ी खुशी, बहुत टाइम बाद आप आए हैं। आप जरा थोड़ा रखिए, थोड़ा रेगुलरिटी रखिए, मतलब आप तभी आएंगे जब मैं सुबह आऊंगा, ऐसा सीन है क्या?
1: वैसा नहीं है, देखो शाम के टाइम आप अवेलेबल है, वो टाइम पे हमारे को भी तो टाइम मिल सकता
0: है। हाँ ये तो है। सुबह टाइम होता है,
1: क्या है सुबह में क्या है, जंगल के गेटा खुल जाते, पूरे शहर बाहर
0: क्या बात है।
1: पे बात करने का मौका रहता।
0: अच्छा।
1: अब ये टाइम पे क्या है, शाम में वापस आने का रहता, आके खेतखाने में बंद होने के रहते।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, डन।
1: मैं फर्स्ट गाड़ी चालू करा, आपकी आवाज सुना।
0: थैंक यू भाई,
1: सारी दुनिया एक तरफ, वीर भैया हम एक तरफ,
0: भाई को बहुत सारा प्यार, क्या बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत
1: कबीर भाई, इंशाल्लाह फिर रابطہ करेंगे।
0: जरूर मेरा भाई, जरूर भाई। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना। ओके भाई, तो भाई की बे इंतहा मोहब्बत। एक और मैसेज आया है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, हम सब की तरफ से राना वहीद, अब्दुल हलीम और अखील मस्तान। क्या नाम है भाई, ये तो बहुत ही डेंजर नाम लग रहे हैं सबके सब। कहाँ जा रहे हो भाई, किसको उठाने के लिए? वैसे क्या हैदराबाद वाले भाई को क्या है, बंदा लेके क्या, मैं समझा नहीं है। पर आप तीनों को सलाम वैसे तो मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मास्टर जी लिखा उन्होंने। अरे थैंक यू सो मच अबू यूसुफ भाई, क्या ले यूसुफ भाई के। और एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज की कहानी में कुछ खास है क्या? खास हर कहानी में होता है, आज की कहानी में खास बताऊँ तो क्या बताऊँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपने कल की कहानी सुनी थी, इट हैड समथिंग वेरी वेरी वैल्यूएबल, है ना, कुछ तो काम आई होगी कल की कहानी, उसका हैंगओवर उतारने के लिए आज की कहानी है। कोशिश करूंगा कि आज की कहानी भी उतनी अच्छी हो। आई डोंट नो कि इसका कॉन्टेक्स्ट आपको कल वाली कहानी जितना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आप वो तो हो जाएंगी, क्या कहते हैं उसको यार, वो अंग्रेजी में क्या वर्ड है वो, भूल गया चलो, लेकिन आपकी है निकल जाएगी, देसी कर देता हूँ मैं, हैं और क्या बात कर रहे हो, वैसा हो जाएगा। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, 666-22-107 नंबर है। जो लोग लाइव सुनने वाले हैं वो मुझे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज इन दैट वे आई नो कि कौन कौन है अभी ऑडियंस में जो लाइव सुन रहा है। एक भाई कह रहे हैं सलाम यस्टरडे स्टोरी प्लीज़। देखो क्या है, सुन लिया करो लाइव, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है, पर मैं अभी तो भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं साजिद भाई, ले लो गाने। एक मैसेज, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये लिखा है आबिद भाई, थैंक यू सो मच। ओके, तो अपना हाजिरी लगा दीजिए ज़रा, कहानी सुनने के लिए कौन कौन है, बस एक डॉट अगर भेज देंगे तो काम हो जाएगा, सो दैट आई नो कि कौन कौन है अभी लाइव सुन रहा है, बिकॉज टुडेज स्टोरी इज़ वेरी वेरी स्पेशल। अब मैं सवाल पूछना चाह रहा था आज भी, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा, कहानी जब मैं सुनाऊंगा तो आज की कहानी भी टाइम लेने वाली है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, समीर भाई नहीं मैं कबीर भाई हूँ, अरे यार कबीर लिसनिंग लाइव भाई, थैंक यू सो मच भाई। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा वो ले लेते हैं ब्रेक, ब्रेक भी क्या है, एक प्रोमो चलेगा बस, आपको तो पता ही है, अब तक तो रट जाना चाहिए, तो उसके बाद सीधा मैं कहानी की तरफ बढ़ूँगा। किधर गया, कोई और भी छोटा सा प्रोमो अगर होगा वो चला देता हूँ। किधर गया रे मैं बटाटा ही रे, रुको हाँ रहा, मेरी आवाज़ में चला देता हूँ ये लो, एकदम छोड़ा जा।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
0: हाँ जी, तो अब इस खूबसूरत प्रोमो के बाद मेरी बारी है, तो मैं जरा शुरू कर देता हूँ। एक सेकंड, सबसे पहले तो जरा रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। ओके, सो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती, एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, इट्स अ रियल रियल स्टोरी, और इसलिए ही बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज हो जाती है। तो शुरू करें, बिकॉज टाइम लगेगा भाई, तो जो लोग लंबी कहानी सुनना नहीं पसंद करते हैं, जो लोग लंबी कहानी से बोर हो सकते हैं, इधर आइए आप थोड़ी वॉल्यूम कम रखिएगा, पर जिन्हें सुनना है ये लो। तो मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, और आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए मुझे कई साल पीछे ले जाना पड़ेगा आपको। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो टू 1970, अर्ली 1970, बेसिकली 1971 शुरू होने वाला था, यूं समझ लीजिए नवंबर दिसंबर का महीना होगा, और ये जगह थी कनाडा, विनिपेग। एक लड़का था, इसका नाम था जेराल्ड डैनियल ब्रांचर्ड, और जेराल्ड जो था वो जिस खानदान में पैदा हुआ उसमें ऑलरेडी इतनी मुश्किलें थीं कि वो बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। बच्चा जो था एक बहुत ही ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ फाइनेंशियल कंडीशंस ऑलरेडी बहुत ख़राब थी, और जिस वजह से उसका जो बचपना था वो बहुत बहुत डिफिकल्ट था, एंड बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, ऐसा था कि बर्थडे आया, उम्र बढ़ गई, बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ बाप जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, तो इस छोटी सी फैमिली में ये बच्चा पैदा हुआ विद ऑल द स्ट्रगल्स। सो जेराल्ड डैनियल जो था वो करता तो क्या करता, उसे कुछ चीजों से किक मिलती थी, वो बाकी बच्चों की तरह बाहर जाके खेलता नहीं था, उसको घर में पड़ी चीजों के साथ मैकेनिक गिरी करने का शौक था। बहुत सारे बच्चे होंगे या आप जब बच्चे रहे होंगे तो आपकी आदत रही होगी कि यार एक टाइम था जब खिलौनों को खोल लेने में मजा आता था, याद है छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लिया और उसके बाद जो है आपने उसकी मोटर निकाल ली, मोटर से खेल रहे हैं, बस वैसा ही बच्चा था जेराल्ड, उसे हर टॉय को खोलने में बड़ा मजा आता था। और फिर उसने क्या किया, एक दिन अलार्म क्लॉक जो होती है ना उसको खोल के समझने की कोशिश करी कि इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये कैसे काम करती है, कैसे बचती है, और फिर उसने देखा कि VCR टेप्स जो होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं TV के शोज को वो कैसे करते हैं, एंड ही कुड डू ऑल ऑफ इट। अपने आप को वो कुछ बहुत ही खास चीज सिखा रहा था, और साथ साथ उसे लग रहा था कि मुझे खुद को चैलेंज देना चाहिए, मैं अपनी अकल कहां कहां लगा सकता हूं। और वो मूवीज भी देखता था जिसमें बहुत ही फैसिनेशन के साथ दिखाया जाता था कि कितनी कूल लग सकती है चोरी। तो उसने कहा क्यों ना मैं अपने आप को चैलेंज करूं और क्यों ना चेक करूं कि क्या मैं चोरी कर भी सकता हूं कि नहीं। और ये ख्याल उसने अपने तक ही रखा, अपने दोस्तों, अपने माँ बाप, किसी के साथ शेयर नहीं किया। और ये जो शुरुआत थी वो हुई पड़ोसी के घर से। पड़ोसी के घर पे उसने देखा कि हर सुबह वेलकम मैट के पास जो है, जो पायदान है, वहां पे एक दूध वाला आता है और दूध की बॉटल्स रख के वहां पे चला जाता है। तो उसने चलो ठीक है ये ट्राई करता हूं मैं, कुछ असर पड़ता है नहीं पड़ता। और उसने वहां से ये शुरुआत करी, उसने पड़ोसी के घर के दरवाजे से दूध चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी है तो चोरी होती है, आप छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ये जो चीज थी उसे किक देने लगी। क्या यार क्या मजा आया, पकड़े ना जाने की जो किक मिल रही थी उसे वो बहुत खास थी और वो उसके बिहेवियर का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनती चली जा रही थी। और जब वो बड़ा होता गया, जब हाई स्कूल में आ गया, तो उसकी जो चोरी करने का तरीका था बड़ा ही सिस्टमैटिक हो गया। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो चोरियां आम चोरों की तरह नहीं कर रहा था। वो करता ये था क्योंकि वो एक वाइट बॉय था इन दिस एरिया, जहां पर लोग जो हैं कहते देखते ही कहते थे कितना शरीफ बच्चा है। तो ही यूज टू वेयर स्वेटर्स एंड ऑल, और अमूमन क्योंकि वहां ठंड बहुत ज्यादा रहती है और शरीफ सा बच्चा चश्मा लगाए हुए जाता था स्टोर के अंदर, किसी भी स्टोर के अंदर, और वहां पे जाके प्रोडक्ट्स चुराता था। पर यहां बात खत्म नहीं होती, वो प्रोडक्ट्स को चुराता था और फिर कुछ घंटों के बाद वापस ले आता था और कहता था एक्सक्यूज मी ये मुझे वापस करना है प्लीज, ये मुझे जम नहीं रहा। और उसकी शक्ल देखते हुए स्टोर मैनेजर्स या जो भी वहां पे होते थे, रजिस्टर पे जो होते थे, वो यकीन कर लेते थे कि बच्चा लेके गया होगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, और उसे बदले में अमाउंट दे देते थे, रकम दे देते थे उसे। और वो लेके उसे लगा भाई ये तो बड़ी कमाल की चीज है, ये ट्रिक तो बड़ी शानदार है। और वो हर स्टोर में ऐसा ही करने लगा, अलग अलग स्टोर अलग अलग दिन पे जाता था, प्रोडक्ट्स चुराता था और उसके बाद उन्हें कुछ टाइम के बाद वापस करने के लिए जाता था और कहता था सॉरी ये प्रोडक्ट जो है मैंने आपसे लिया था और ये मुझे वापस करना है। जो एक मन में आपके डाउट आया होगा वो है रिसीट का, भाई कि रसीद भी तो कटती है, तो वो भी वो बनाना जानता था। वो अपने स्कूल से वहां जाके जो फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके वो ये भी बना लेता था। एनी अंडरस्टूड कि ये काम कितना ज्यादा आसान है। उसने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई वायलेंस नहीं, प्रोडक्ट अपनी जगह पर है और उसने उसकी नजरिए से कमा भी लिया, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। एंड जब उसे इससे बहुत ज्यादा किक मिलने लगी तो उसने कहा मैं क्यों ना इसी में एक शॉर्टकट ऐड कर दूं। तो जेराल्ड डैनियल ने एक और रास्ता अपनाया। वो मॉनिटर करता था कि जो एम्प्लॉयज हैं जो किसी जगह पे किसी दुकान में किसी कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं वो कितने वफादार हैं, क्या उन्हें पड़ी है कि यहाँ पे चोरी होती तो कुछ असर पड़ेगा। और उन एम्प्लॉयज को वो जाके मॉनिटर करता था, बातचीत करता था और फिर उनके साथ एक डील क्रैक करता था कि सुनो तुम चुपके से मुझे रसीद बना के दे दो है ना, और फिर 50-50 कर लेंगे। और 10 में से 2 एम्प्लॉय भी अगर उसकी बात मान गए तो काम बन जाएगा, क्योंकि वो ये प्रोडक्ट जो चुरा रहा था ये बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते थे। जैसे किसी जगह पे गया तो वहां से साइकिल निकलवा ली, किसी जगह पे गया तो वहां से कुछ निकलवा लिया, वहां से कुछ निकलवा लिया, एंड फिर उससे डील क्रैक करता था एम्प्लॉय के साथ के हाफ हाफ कर लेंगे। तो वो प्रोडक्ट लेके चोरी किया, उसके बाद क्योंकि रसीद वहीं से बनी हुई है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, वही रसीद ले जाके वही प्रोडक्ट ले जाके वापस उसी जगह को वापस कर दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए ये वापस कर लीजिए, और बदले में जो वैल्यू है वो ले लेता था और उसका शेयर एम्प्लॉयर को, जो एम्प्लॉयज थे उनको दे देता था। ऐसे करते करते करते करते वो इस कदर इस काम में माहिर हो चुका था कि जब वो महज 15 साल का था तो उसके पास $100,000 थे। 1,00,000 जब बाकी बच्चे उसके उम्र के ड्राइविंग लाइसेंस के सपने देख रहे थे, तो ये $1,00,000 लेके घूम रहा था। उसने एक लॉयर हायर किया और $1,00,000 से अपनी माँ को एक घर खरीद के दिया, ये बोलकर कि वो फ्रीलांस कुछ काम कर रहा है और ये गिफ्ट करना चाहता है। और जो प्रोडक्ट्स वो घर पे लाता था उनके बारे में वो कह देता था कि गैराज सेल से है। एंड पीपल यूज टू बिलीव हिम, क्योंकि लुक्स आर डिसेप्टिव, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इन तमाम चोरियों में एक और खास बात थी जो आपको हैरान कर देगी। जेराल्ड डैनियल जब ये चोरियां कर रहा था तो ये सब कुछ वो कैमरे में रिकॉर्ड करता था, अपने आप को रिकॉर्ड करता था ये सारे के सारे कारनामे करते हुए। और जब उसने घर भी लिया ये चोरी के पैसों से, तो उसने इसका भी वीडियो बनाया, बाकायदा ऐसे वीडियो बनाया जैसे उसकी सक्सेस स्टोरी हो। और फिर उसने हाथ अब बड़ा मारना शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पर हाथ मारना शुरू किया। और फॉर्मूला उसने वही अपनाया, प्रोडक्ट्स उठाए, चोरी करी, रसीद बनवा ली या बना ली और प्रोडक्ट को कुछ टाइम के बाद वापस किया और उनसे उसका वैल्यू का अमाउंट ले लिया। कुछ रसीद वो स्कूल में जाके बनाता था, कुछ रसीदें वो जब आलस उसे आता था तो वो प्रिंटर से ना बना के वो सीधा डील क्रैक कर लेता था। वो हफ्ते भर में $20,000 से $25,000 बना रहा था ये चोरियां कर करके, जिसमें कोई हथियार नहीं था, जिसमें किसी से लड़ाई नहीं थी, जिसमें किसी को पता ही नहीं था, एंड सब कुछ इतना स्मूथली जा रहा था। एक दिन क्योंकि उसके दोस्त भी उसका साथ देने लगे थे एंड संगत बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके दोस्तों ने कहा यार कुछ बड़ा हाथ मारते हैं। तो इन सब ने एक ट्रक रेंट पे लिया, किराए पे, भाड़े पे एक ट्रक लिया और ले जाके खड़ा कर दिया एक स्टोर के पास। बोले स्टोर को खाली करके जाएंगे आज तो, मगर ये कर नहीं पाए और बीच में फंस गए और पुलिस जो थी वो वहां पर पहुंच गई। मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंची तो दोस्त तो भाग गए लेकिन जेराल्ड डैनियल छुपने की कोशिश में पकड़ा गया। नतीजा उसे जुवेनाइल डिटेंशन में भेज दिया गया। मगर यहां पे उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, उसके लिए गवाही देने आगे आई उनके टीचर। और टीचर ने बोला कि देखिए ये बच्चा बुरा नहीं है, आप खुद की शक्ल से लगता है ये कोई क्रिमिनल होगा, ये बहुत शरीफ बच्चा है सर। और उसे परोल मिल गई एंड ही वॉज आउट। ये जो किस्सा हुआ इसने एक सबक तो दिया लेकिन

मैं कुछ गलत तो कर रहा था, मैं पकड़ा तो नहीं जाता था, ये मैं पकड़ा कैसे गया? अगर हम और आप इस सिचुएशन में होते तो हम ये सोचते कि यार कल से मैं ये सब नहीं करूंगा यार, ये बहुत बहुत गलत बात है ये। मगर जेराल डैनियल सोच रहा था कहां गलती हुई यार, मैं पकड़ा कैसे गया, ये कैसे हो सकता है। उसने उसके बाद अपने किरदार पे एक और नकाब पहना कि जो उसके करीब हैं उनको और करीब रखा जाए ताकि वो उसके लिए गवाही देने को हमेशा तैयार रहें। यहां से निकल के उसने सबसे पहले एक वीडियो बनाया अपने टीचर के लिए जिसमें बोला कि सर थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माय लाइफ, थैंक यू सो मच, पर ये सब कुछ एक फरेब था। अब उसे समझ में आ गया था कि वो कैसे पकड़ा नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से चोरियां करने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने कहा अब तो आसपास की सारी दुकानें कवर कर ली हैं, अब जरा कपड़ों की दुकानों पर जाते हैं। कपड़ों की दुकानों पर गया, फिर वहां से उसका मन भर गया तो वो घड़ियों की जो एक्सपेंसिव वॉचेस होती हैं वहां तक जा पहुंचा। सिंपल फॉर्मूला, प्रोडक्ट्स उठाओ, चोरी करो, रिसीट बनाओ और वापस करके नोट ले लो। अलग अलग दुकानें, अलग अलग शहर, अलग अलग टाइमिंग्स, रिस्क कम और रोकड़ा ज्यादा। घर पे तो उसे पता है क्या बोलना है, शरीर दिखता है अच्छा खासा, बोल देगा गिराज सेल से, और वो यही करता था। पर उसका दिमाग जो अभी तक इस चीज से किक दे रहा था, चोरी करना ना पकड़े जाना, ये अभी तक एक आदत थी, बुरी आदत थी लेकिन आदत थी। लेकिन फिर आगे धीरे धीरे चलते चलते ये आदत बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी बन गई। उसने अब नौजवानों को अपने गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया, छोटी सी गैंग, ये खुद एक बच्चा था और ये नौजवान लोगों को हायर करता था। ये सारे मिलके, कोई हथियार नहीं, कोई वेपन नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस, सिर्फ और सिर्फ अकलमंदी से काम लेते थे। जब 21 साल का हुआ जेराल डैनियल तो उसके दिमाग में कई सारी बातें थी। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और यह प्लान इतना एलेबोरेटेड था कि उसके दोस्त ने कहा यार बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भाई, ये करते हैं भाई, ये करते हैं, और पंप कर दिया एकदम जेराल डैनियल को, एकदम पंप कर दिया। और उसके बाद दोनों ने मिलकर एक गाड़ी जो थी उसके फेक पेपर्स बना के, और दूसरी गाड़ी उसके भी पेपर जो ऑलरेडी थे उसके पास, उसको जला के इंश्योरेंस लेने की कोशिश करी। डिसाइड किया आधा तेरा आधा मेरा, ये लोग तेल लेकर आए गाड़ी को आग लगाने के लिए। लेकिन जब जेराल डैनियल ने आग लगाई तो कुछ ज्यादा ही तेल लेके आ गया था आग लगाने के लिए, 40 लीटर ऑफ पेट्रोल लेकर आ गया था। और हुआ ये कि गाड़ी को तो आग लग गई लेकिन उसके कपड़ों से पेट्रोल की बहुत खतरनाक महक आ रही थी। आग लगाने के बाद इसने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करी कि सर मेरी गाड़ी जल गई है, सर ये हो गया वो हो गया, लेकिन साफ था उसके कपड़ों से बू आ रही थी पेट्रोल की। और विद इन दो सेकंड्स उसके बताने के पुलिस वालों ने फौरन उसे पकड़ लिया और कस्टडी में ले लिया। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, तो मेरे साथ रहेगा। जब उसे कस्टडी में लिया तो उसे इंटरोगेशन रूम में बिठा दिया। ये रूम जो था बहुत छोटा सा रूम था, दो साइड के मिरर थे जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा, और पूरा अंधेरा था। कोई भी ऑफिसर आके इसे इंटरोगेट करने के लिए राजी नहीं था, कह रहे बच्चा ही तो है, थोड़ी देर से यहाँ रखो, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और क्योंकि रात का वक्त था तो कोई भी इससे बात करने के लिए आ नहीं रहा था। पुलिस थाने में लोग इधर उधर तितर बितर हुए हुए थे, नोबडी वॉज इंटरेस्टेड हिम, सब इसे बच्चा समझ के इग्नोर कर रहे थे और इसे इंटरोगेशन रूम में बस बिठा के चले गए थे। वहां बैठे बैठे जेराल डैनियल बस सोच रहा था कि मैं क्या करूं, ऊपर नीचे चारों तरफ देख रहा था। और उसके दिमाग ने इसे एक ऐसा आइडिया दिया जो इससे पहले आपने शायद किसी फिल्म में भी नहीं देखा होगा। ये अपनी चेयर से उठा, जो उसके सामने टेबल रखी थी उस पर चढ़ा, उस पर चढ़ के सीलिंग का एक पूरा हिस्सा लिफ्ट किया, पैनल हटाया और पैनल हटा के ये उसके अंदर घुस गया, समझ रहे हैं आप। सो टेबल है, टेबल पे चढ़ा और ऊपर जो सीलिंग है क्योंकि इसके पैनल्स थे, पैनल्स को हटा के उसके अंदर चढ़ गया। पर वहां से

फौरन भागा नहीं, अंदर घुस के बैठ गया, घंटों तक वहीं रहा कि कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं। जब चंद घंटों के बाद किसी पुलिस वाले को होश आया कि अरे वो लड़का इंटरोगेशन रूम में, तो वाय उन्होंने देखा है लड़का किधर गया किधर गया किधर गया। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, पैनल खुला हुआ था, नीचे गिरा हुआ था। उसने कहा अरे ये भाग गया। पुलिस वालों के हिसाब से ये अंदर अंदर अंदर होके निकल गया। तो सारे के सारे पुलिस वाले, इनफैक्ट पूरे पूरे पूरे थाने में भगदड़ मच गई और सारे के सारे इधर उधर भागने लगे। जब उसे नजर आया कि पुलिस वाले अभी इधर उधर भाग रहे हैं, तो फिर ये वापस नीचे उतरा सीलिंग के इस पैनल वाली जगह से। और नीचे उतरने के बाद इसने ड्रॉर खोली, ड्रॉर खोली तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आया नहीं था उसमें बुलेट रखी हुई थी उसके ड्रॉर में। वो बुलेट उसने उठाई, बुलेट पे एक चेहरा बनाया उसी के मार्कर को यूज करते हुए, उस पे एक स्माइलिंग फेस बनाया और उसको डेस्क पे रख दिया। फिर उसी की फैमिली फोटो को अपने पास रखा और बहुत ही मजे से इस पुलिस थाने के पीछे वाले गेट से फरार हो गया। और पुलिस वाले इसे कहां कहां नहीं ढूंढ रहे थे, मगर यहां पे ओवर कॉन्फिडेंस बहुत भारी पड़ा। जेराल्ड डैनियल को लगा कि पुलिस वाले सोचेंगे बच्चा है कहीं और ही जाएगा, तो मैं मां के पास चला जाता हूं। तो ये अपने मां के घर चला गया। जेराल्ड डैनियल अपने मां के घर गया ये सोच करके पुलिस वाले यहां तो नहीं आने वाले, वो क्यों आएंगे, ऑब्वियस है कि ऑब्वियस जगह पे सर्च नहीं करने का है। लेकिन पुलिस वाले भी यही सोच रहे थे और वो पहुंच गए उसके घर पे। जब रेड पड़ी तो उसे फौरन धर लिया गया। इस बार सिचुएशन बहुत खराब थी। अभी वो सिर्फ एक नॉर्मल सस्पेक्ट नहीं था, वो एक भागा हुआ क्रिमिनल था। उसे फौरन एक अलग फैसिलिटी में रखा गया और बाकी सबको बताया गया कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत तेज है, बहुत तेज है, ये इसको ले जाना एक जगह पे, मैं तुम्हें बताता हूं। और एक अल्लग जगह भिजवाने के लिए जेराल्ड डैनियल को हाथों में हथकड़ी लगा के एक पुलिस वाले के साथ भेजा गया और ये था बेसमेंट का प्रिजन सेल। तो गाड़ी जो थी वो नीचे की तरफ आई, प्रिजन सेल की तरफ जाके रुकी, वहां पे ताला लगा हुआ था। तो पुलिस वाले ने गाड़ी अपनी बेसमेंट में पार्क करी, उसके बाद वो गाड़ी से उतरा और चाबी लगा के खोलने लगा। इतने में जेराल्ड जो पीछे बैठा हुआ था वो आगे आया, अभी तक उसके हाथों में हथकड़ी है, आगे आया, उसने नोटिस किया कि गाड़ी की चाबी ऑलरेडी लगी हुई है। उसने बंधे हुए हाथों से ही गाड़ी की चाबी को बिना निकाले, ना कुछ आवाज किए, उसने एक्सेलरेटर दिया, पुलिस वाले को थोड़ा सा उसने टक्कर मारी कि बस वो गिर जाए, उसको चोट ना आए, उसे घिरा के गाड़ी घुमा के और वहां से फरार हो गया। 21 साल का जेराल्ड डैनियल हथकड़ी में भाग गया। इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस। जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो ये भूल गया, उसकी उम्र की गलती है कि वो भूल गया कि पुलिस वाले उस पर बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं और शहर के बाहर जाने की इस कोशिश में पुलिस वाले उसके पीछे लग गए। उसने गाड़ी से कूदने का फैसला किया, गाड़ी से कूदा तो कोई फायदा नहीं हुआ। कहां तक भागेगा, कितनी दूर तक भागेगा, और पकड़ा गया। इस बार उसकी जो क्राइम की फाइल थी बहुत मोटी बन चुकी थी और उसे सजा भी बहुत तगड़ी दी गई और सजा सुनाई गई 7 साल कैद। मगर फिर जेराल्ड डैनियल का करिश्मा, वो शरीफ दिखता था, बहुत ही सीधा दिखता था और बिहेवियर भी उसका अच्छा था। सो 7 साल की सजा 4 साल में बदल गई और 4 साल के बाद वो बाहर आ गया। 1997 में वो रिलीज हुआ और क्योंकि वो अमेरिकन नहीं था तो उसे डिपोर्ट कर दिया गया कनाडा वापस और यूएस के लिए हमेशा हमेशा के लिए बैन लग गया। जब वो कनाडा की तरफ गया वापस तो ये उसकी लाइफ का एंड हो सकता था, उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मगर उसने इसको अपनी जिंदगी का इंटरवल समझा, क्लाइमेक्स नहीं। मैंने कहा ना, अभी तो कहानी शुरू होनी बाकी है। वो जब बॉर्डर की तरफ जा रहा था डिपोर्ट होते हुए तो पुलिस वाले को बड़ा तरस आया कि यार क्या नौजवान लड़का बेचारा कितनी बुरी हालत में। तो उसने कुछ उसे $30-40 दे दिए कि बेटा जा। इन $30-40 से उसने सोचा कुछ तो करना चाहिए मुझे, ऐसे कैसे। तो उसने खरीदा एक कैमरा और कैमरा खरीदने के बाद वापस वही करने लगा जो वो

करता आया था. बैक ऑन द सेम ट्रैक उसने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भारी भरकम था वो उठाया, उसकी रसीद बना के उसे बेचा. जब इतना अमाउंट आ गया कि अब वो अपने पैरों पे वापस खड़ा हो सकता है, तो उसने कुछ टाइम बाद एक छोटा सा कमरा एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया, और जब और ज़्यादा बनाने लगा तो एक गाड़ी रेंट पे ली और वापस अपनी लाइफ की कंट्रोल में आ गया. इस बार ही उसने कहा नहीं, अब तो नहीं पकड़ा जाऊँगा चाहे कुछ हो जाए. और इस बार उसने एक और चीज़ करने का फैसला किया, वो ये कि एक अमीर लड़की ढूंढनी पड़ेगी. He started searching for a rich girl. और उसकी ये जो खोज थी ये कुछ 8-10 महीने के बाद पूरी भी हुई. वो एक लड़की से मिला, उससे बातचीत करी और उसका भरोसा जीतने के बाद उससे शादी भी कर ली. ये रिश्ता उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी जरूरत थी. पर उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया उसे कि उसकी 25-30 नकली आइडेंटिटी है, वो खुद एक फ्रॉडस्टर है, कुछ नहीं. ये शादी करने के बाद, क्योंकि अब उसका बैंक बैलेंस था मिक्सचर ऑफ बोथ, चोरी का पैसा और हलाल का पैसा, दोनों उसमें मिला हुआ था, तो उसने कहा क्यों ना थोड़े मजे किए जाए, क्योंकि उसका गोल बहुत बड़ा था. तो उसने फ्रांस जर्मनी ट्रेवल किया और फिर पहुंचा सबसे मेन टारगेट एरिया में जो था वियना. जेराल्ड यहां घूमने फिरने नहीं आया था अपनी वाइफ के साथ, यहां पे उसका एक मकसद था. उसका टारगेट था शॉनबरून पैलेस, एक बहुत शानदार पैलेस, और यहां पे रखा हुआ एक बहुत ही शानदार डिस्प्ले सीसी स्टार. ये जो स्टार था, ये सितारा बहुत खूबसूरत था, ऑर्नमेंट था ये डायमंड का, पर्ल का बना हुआ, और ये नेशनल ट्रेजर था ऑस्ट्रिया का. अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी खूबसूरत चीज़ है, वो भी पैलेस है, तो सिक्योरिटी भी टाइट होगी. तो ऑफ कोर्स बुलेट प्रूफ ग्लासेस थे, वेट सेंसर लगे हुए थे, आर्म्ड गार्ड्स थे. इम्पॉसिबल है, मगर इम्पॉसिबल जेराल्ड डैनियल के लिए इम्पॉसिबल नहीं. वो ये मानता था कि इम्पॉसिबल का मतलब है अनसॉल्व्ड पजल, जो अभी तक बस सॉल्व नहीं किया गया है, इम्पॉसिबल नहीं है. तो उसने अपना दिमाग लगाया. ये जब डिस्प्ले पे दिखाया जाने वाला था तो उसने अपने ससुर जी से कहा, जो बहुत रसूखदार थे, कहा कि प्लीज मुझे वो देखना है. और ससुर जी के बनाए हुए रेफरेंस के जरिए जेराल्ड को एक दिन पहले, इसके ऑफिशियल ओपनिंग से भी एक दिन पहले, ये सितारा देखने को मिला जो डिस्प्ले के तौर पर रखा गया था इस पैलेस में. वो अंदर गया और जो गाइड था वो बता रहा था, सर ये इतना पुराना है, सर ये खासियत है, वो खासियत है, वो बोलता रहे. जेराल्ड कुछ नहीं सुन रहा था, उसकी नजर थी हर एक चीज पर. वो देख रहा था खिड़कियों की तरफ, स्क्रूज की तरफ, कितना वजन हो सकता है, कितनी हाइट है, कौन सी खिड़की खोलनी है, एक एक चीज वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन. ऐसा लग रहा था कि पेन और पेपर उसके दिमाग में लगातार चल रहे हैं. और फिर उसने अपने बैग से कैमरा निकाला, जैसे टूरिस्ट का रोल प्ले कर रहा हो, और उसने सब कुछ उसमें रिकॉर्ड किया. और फिर जब वो जो गाइड था वो अलग रूम में जाने लगा कि आप आराम से टेक योर स्वीट टाइम, तो ऐसे में उसने अपनी वाइफ को किसी बहाने से भेजा और फिर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकाल के उसने इस केस के अंदर रखे हुए स्टार का जो बाहर का एरिया था उसे लूज कर लिया. उसने स्क्रूज निकाले नहीं, बस लूज कर दिया, ये चेक करने के लिए कि अलार्म खुलता है कि नहीं. पर अलार्म स्क्रू निकालने से नहीं खुला. और फिर वो कोने में गया, उसने एक खिड़की को खोल दिया, इतना खोला कि लगे कि नेचुरली खुली है, और फिर वापस वहां से चला गया. अगले दिन वो एक गिफ्ट शॉप पे गया. गिफ्ट शॉप पे जाने के बाद उसने उसी सितारे जैसा एक रेप्लिका, एक बिल्कुल सेम चीज खरीदी. अब ये बिल्कुल क्लासिक हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल चीज करने जा रहा था, नकली रख के असली चुराना. एंड इसने बिल्कुल वही किया, मगर जैसे किया वो शायद किसी पिक्चर में भी आपने नहीं देखा होगा. देर रात को, इट वॉज डेड साइलेंस वियना में, एकदम थी. और जेराल्ड का प्लान बहुत बड़ा था. उसने मोटी रकम देके एक पायलट और एक हेलीकॉप्टर अरेंज किया, और उसके बाद उसने नोटिस किया कि हेलीकॉप्टर की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है, पकड़ा जाऊंगा. तो उसने कहा नहीं, मैं और स्पेंड करूंगा इन हायर्ड अ प्लेन. और उस प्लेन से एक हाइट पे जाके वो पैराशूट लेके कूदा,
और सीधा जाके कूदा छत पर शॉन बोरोन पैलेस की। इस पैलेस में 1441 कमरे थे, मतलब अगर आप गलत जगह गिर गए तो आपकी हड्डी तो टूटेगी ही टूटेगी, प्लस अगर आप बच भी गए तो आप कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे खास। लेकिन वो जो खिड़की वो खोल के गया था, उसे पता था कि लोग इतने ज्यादा आलसी होते हैं कि इन चीजों पे इतना फोकस नहीं करते, उन्हें लगता कि खिड़की खुली है तो खुली है, कौन आएगा यहां से, एंड नोबडी केयर्ड अबाउट दैट विंडो जो खुली थी। उसने अपने बैकपैक से रस्सी निकाली, उसको एंकर किया ऊपर की तरफ, उस रस्सी से नीचे नीचे धीरे धीरे धीरे धीरे जाके उस खुली हुई खिड़की से वो अंदर चला गया। उसने एक बात सीख ली थी, मोशन सेंसर, क्योंकि वो खुद बचपन में कारीगरी करता रहता था कि कैसे चीजें काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो उसे पता था कि मोशन सेंसर अगर वो तेज चलेगा तो पकड़ लेंगे, पर अगर वो बिल्कुल मिलीमीटर मिलीमीटर कर करके धीरे धीरे चलेगा तो मोशन सेंसर उसे मोशन मानते ही नहीं है। और उसके पास तो बतेरा टाइम है, पूरी की पूरी रात पड़ी है, तो वो बहुत ही इंच बाय इंच मूव करते करते पहुंच गया। उसने स्क्रूज तो ढीले कर ही दिए थे, ग्लास उठाया और फिर स्लाइड करके वजन को मेंटेन करते हुए वो नकली वाला सितारा लगाया और असली वाला चुरा लिया। उसके बाद वापस चुपके चुपके चुपके जाके और वापस रूफ की तरफ उसी रस्सी से पहुंचकर और फिर से पैराशूट लेकर वहां से निकल लिया। अगले दिन एग्जीबिशन वाले, क्योंकि एग्जीबिशन देखने पहुंच रहे थे, तो जितने लोग वहां पर आए थे वो एक नकली तारे को, सीसी स्टार को देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। ये तब तक हुआ जब तक गार्डन में एक पैराशूट नजर नहीं आया और शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, एंड देन दे चेक, तो उन्हें पता लगा कि सब कुछ नकली है। अभी ये मामला उसके लिए पैसे के लिए नहीं था, वो किसी को जाके ये तारा, ये खास चीज बेचने नहीं वाला था, वो अपने आप को एक चैलेंज दे रहा था कि क्या ये मैं कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि अभी तो वो मिलियन डॉलर्स बना चुका था जेराल्ड डैनियल अपनी जिंदगी में, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मगर वो जो चोरी करके ना पकड़े जाने की किक थी वो उसे चाहिए थी। वो इतने बड़े घराने में शादी करने के बाद भी ग्रोसरी स्टोर में चोरी करने की आदत को बरकरार रखे हुए था। कुछ वक्त के बाद ऑफ कोर्स वो रातों रात गायब रहता था, उसकी शादी भी टूट गई, मगर इट वाज जस्ट अ फेल्ड अपॉर्चुनिटी, उससे ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका प्लान तो और भी बड़ा था। उसका प्लान था अल्बर्टा में एक बैंक को लूटना, अल्बर्टा एडमिंटन में। अब आप अमूमन बैंक्स देखते हैं, चलते फिरते बैंक्स को लूटा जाता है, यहां पे कुछ अलग होने वाला था। यहां पर वो उस जगह पे पहुंचा जहां पर बैंक अभी खुला ही नहीं है। हम लेते हैं ना फ्लैट जो भी बन रहे हैं, पहले खरीद लेते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। वो एक ऐसी बैंक की ब्रांच पे पहुंचा जो अभी तक खुली ही नहीं है। बिल्डिंग का जायजा लिया उसने, दिन में जाता था वर्कर के कपड़े पहनकर, हाथों में फाइल लेकर, तो लोग कोई उसे पूछता नहीं था, और रात में निकलता आराम से घूमते टहलते वहलते, और उसे समझ में आ गया कि इन लोगों ने एक जगह पर एटीएम रख दिए हैं। एटीएम में पैसे नहीं है अभी तक, अंदर बैंक पूरा खाली है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अंदर एटीएम रखे हुए हैं। जेराल्ड डैनियल अंदर गया और उसने देर रात को एटीएम के लॉक को समझने के लिए उसका मॉडल नंबर नोट किया और फिर उस लॉक को रात भर अपने कमरे में तोड़ने की कोशिश करने लगा। यह रिहर्सल उसने ओवर एंड ओवर एंड ओवर करता रहा करता रहा करता रहा। एक एक चीज को स्टडी करने के बाद समझ में आया कि वो इस लॉक को आसानी से तोड़ सकता है। उसने अलार्म सिस्टम्स को पढ़ा, वायरिंग को पढ़ा, कैमरास को पढ़ा, और ये सब कुछ समझ जाने के बाद उसने फैसला किया कि मुझे इस बनते हुए बैंक ब्रांच के सामने रहना पड़ेगा, और वो सामने किराए पर रहने लगा। उसने इस एटीएम वाले रूम में, जहां पर अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं थी, उस एटीएम रूम में उसने

एक दिन पहले एटीएम्स को लोड करके वहां से लोग चले गए और अंदर बीबी मॉनिटर पे वो सब कुछ देख सकता था। उसने अगले दिन फैसला किया कि वही फॉर्मूला अपनाएगा जो पहले करता था। वेंटिलेशन की एंट्री वो खोल के आया था इस बैंक की, और उसी एंट्री से वो अंदर गया। अंदर जाके क्योंकि सब कुछ रटा हुआ था, सबको बाईपास करके मिनटों में हर एक एटीएम मशीन की क्रेट को खाली करके मोर देन हाफ अ मिलियन चुरा के वहां से भाग गया। जाने से पहले जो रिकॉर्डिंग कैमरास थे सबकी रिकॉर्डिंग्स को गायब कर दिया। जब सुबह हुई, अब तो बैंक की ब्रांच की ओपनिंग है, तो वहां पे लोग पहुंचे। एक बंदे को कहा गया, ये हमारा नया एटीएम है, आइए जरा चेक करते हैं। उन्होंने डेबिट कार्ड डाला लेकिन कुछ नहीं निकला। लगा कि शायद सिस्टम मेल फंक्शन है। हर एटीएम में जब उन्होंने कार्ड ट्राई किया कुछ भी नहीं निकला, और पता लगा कि हर एक एटीएम बिल्कुल सफा चट कर दिया गया है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा था, ये पुलिस को समझ नहीं आ रहा कहां, किधर, कौन, क्या है ये। उन्होंने फैसला किया कि वो इसको छोड़ेंगे नहीं, जो भी है। और जब ये पुलिस वाले बैंक में खड़े हुए बात कर रहे थे, तो बेबी मॉनिटर के जरिए सब कुछ सुन रहा था जेराल्ड, सब कुछ, एक एक चीज सुन रहा था वो। और उसने फैसला किया कि अब मैं पुलिस वालों से खेलूंगा। और उसने कॉल लगाई पुलिस वालों को, बोला कि मैं आपको पीस ऑफ एडवाइस देता हूं, यहां पर एक एम्प्लॉई है जिसने किया है। और वो अपने ऊपर से इस बात को हटाना चाहता था कि मेरे ऊपर से जैसे ना जैसे मेरे ऊपर ना आए और ये बात खत्म हो जाए। पुलिस को बहकाता रहा बहुत टाइम तक। उनकी लिस्ट में सस्पेक्ट 5 थे, 50 हो गए। मॉन्ट्रियल से लेकर वैंकूवर, हर एक जगह इसने ये फॉर्मूले से चोरियां करी। लेकिन कहते हैं ना कि हर शेर का सवा शेर होता है। एंड वो दिन भी आया। दरअसल नवंबर की 2006 में एक फोन बजा और कायरो से एक बंदे ने हायर करने के लिए, डिटेक्टिव था, उसने कॉल करी। उसे शक था एक बंदे पर और उस बंदे को उसने एक प्लांट बनाया, मतलब कि तुम कॉल करो हर एक जगह और एक एड डाल दो कि ऐसा कुछ है, वैसा कुछ है, बड़े बड़े बैंक्स खुल रहे हैं। एंड उसमें एक बड़ा सरगना फंस गया और उसने फंसा दिया जेराल्ड डैनियल को। जब वो सेम मेथड से एक बैंक को चोरी कर रहा था 2006 वैंकूवर में, तो उसकी एक एक चीज पर नजर रखी जा रही थी, एक एक चीज पर। एंड उन्होंने देखा कि अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आदमी सीधा बैंक के अंदर नहीं घुसता, ये ऊपर से आता है, हमेशा ऊपर से जाके बैंक को चोरी करता है। पर एक गलती जेराल्ड ने कर दी। वो रेडियो को जो टैप कर रहा था पुलिस वालों के रेडियो को, वो अपना भी रेडियो ऑन रखे हुए था। एंड उसने डक में घुस के अपने एक बॉस को कॉल लगाई, सो कॉल्ड बॉस को, जिससे वो बहुत ज्यादा लूटने वाला था बाद में, और उसको बोला अभी मुझे कॉल मत करो, मैं इस डक्ट में फंसा हुआ हूं, अभी कुछ देर में कॉल बैक करता हूं। और वो रेडियो बंद करना भूल गया। ये जरा सी गलती और रेडियो ट्रांसमिशन का आपस में टकराना उसे बहुत बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि पुलिस वाले फौरन चकरने में हैं, ये कहां से, ये क्या हो रहा है। एंड दे गॉट टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन। उसके बाद तो कोई देर नहीं हो रही थी, उसके बाद उसे फौरन फौरन पकड़ा गया। जनवरी 23, 2007 रेड पड़ी और लिटरली उसे घर से उठाया गया। 6,000 डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, कैश, 41 चार्जेस उस पर लगाए गए। डिटेक्टिव उसके फैन बन गए थे, मगर साथ में नफरत भी करते थे, क्योंकि बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ा था उसकी वजह से। उसने अपने बेसमेंट में वो जो तारा चुराया था इतने बड़े पैलेस से, वो भी वापस कर दिया। एक एक चीज को एक्सप्लेन किया और उसके चोरी का एक एक पैटर्न आज की तारीख में पुलिस स्टेशन में पढ़ाया जाता है। फाइनल ट्रायल हुआ उसका 7 नवंबर 2007 को। वर्डिक्ट आया, 16 चार्जेस लगे और 8 साल की सजा सुनाई गई, जो 8 साल की कभी हुई नहीं, और वो जल्दी रिहा हो गया।

एंड बाहर निकलने के बाद उसने सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पे भी काम किया. वो शख्स जो दुनिया के हर सिक्योरिटी को तोड़ चुका था, वो सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा था. ये काम से बोर हो गया तो फोटोग्राफी शुरू करी, और इस काम से भी बोर हुआ तो फिर वापस वहीं पहुंच गया जहां था. एक ग्रोसरी स्टोर में से सामान चोरी करने के बाद उसने गेमिंग कंसोल चोरी करने की कोशिश करी और पकड़ा गया. पकड़े जाने के बाद भी पुलिस वालों ने उसे कुछ नहीं बोला, जाने दिया, पर उसे ये कहा कि अब तू हमारे लिए काम करेगा और मुंह मांगी रकम देंगे. ही स्टिल देयर, ही स्टिल टीचेस, ही स्टिल ट्राई टू डू इट. और उनके जो चोरी करने के तरीके हैं, जो इंटेलिजेंस है, वो आज भी ट्रेनिंग मैनुअल्स में शामिल है एंड सिखाया जाता है, बताया जाता है कि क्या क्या चीज कब कब काम कर सकती है. आदत से मजबूर आदमी था ये. 666-22107 नंबर है, 666-22107 नंबर. आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपने कभी ऐसा आदमी देखा है जिसके पास अकल तो बहुत है लेकिन वो लगा कहीं और देता है? 666-22107. ये कहानी आपके हवाले और मैसेजेस के इंतजार में. मैं दो हवाला कबीर.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: 6:07 गला सुखा देने वाली गाने सुनाई मैंने, मेरा गला सूख गया भाई। लेकिन आई होप आपको मजा आया हो। बैक टू बैक आपको मैंने पूरी 30+ मिनट्स की स्टोरी सुनाई एंड आई लव्ड इट कि आपको अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मगर आपको पसंद आनी चाहिए, तो आपकी रिव्यूज़, आपकी एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारी असली कहानियाँ हैं, तो इनके बारे में आप बाद में जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। देर इज़ अ लॉट अबाउट दिस गाय एज वेल, जिसकी मैंने आज आपको कहानी सुनाई है। एंड आपको बहुत अच्छी लगी कहानी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 666-22-107 पर, 666-22-107 पर। 2 times ना गाने के बाद मिलते हैं, तब तक आपके मैसेज ज़रा चेक कर लूँ और पानी भी पी लेते हैं। हाँ जी, आशिक बनाया, आशिक बना, ओ आशिक बनाया, ये तो जैपनीज लग रहा है, ओ आशिक बनाया। सॉरी, डोंट माइंड माय जोक्स, मैं इतना लंबा सुनाने के बाद कहानी थोड़ा सा क्रैक हो गया हूँ।

और भाई क्या हाल है, बढ़िया। मैं जल्दी से मैसेज पढ़ दूं क्योंकि अभी अजान का वक्त वैसे भी होने वाला है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं सच में दिल से शुक्रिया कर रहा हूं आपका। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है आज भी कहानी सुनने के बाद, थैंक यू सो मच। क्योंकि इतनी लंबी कहानी सुनाने के बाद मेरी भी जान सूख जाती है, मगर लगता है कि चलो एग्जाम में 100 में से अगर 98 भी आ गए भाई के, 92-90 तक रहे तो बढ़िया है। थैंक यू सो मच। तब उसमें मैंने मैसेज किया, लिख दिया अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थी कहानी, कुछ पार्ट्स मिस हो गए होंगे लेकिन बहुत अच्छा नरेशन किया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल दीज एफर्ट्स। थैंक यू सो मच बहन। इनके बाद मैसेज किया है कि सलाम भाई, भाई हम लेट आए, सारा मजा तो 1970 में किया गया है कि वगैरह सारे मजे तो 70 में किए गए, हम तो बहुत लेट आए। तो वैसे भाई आज की स्टोरी आपके सुनाने का अंदाज कमाल, भाई आज की स्टोरी सबसे अलग थी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच भाई, जज़ाकअल्लाह इरफान साहब। इनके बाद जो है मारा भाई, भाई सीधा रहना थे। मणि भाई कह रहे हैं मैं तो स्टोरी सुनते ही सो गया, ले वहाँ आदमी इतनी चोरी चकारी कर रहा है, इनको नींद। ये टिपिकल नॉर्थ वालों का ये सीन है। वैसे आई वॉन्ट टू सल्यूट मिस्टर जेराल्ड, कमाल का दिमाग है बंदे का, है ना। इनके बाद एक मैसेज आया है, भाई पूरी वेब सीरीज़ बन जाती इस पर सुपर स्टोरी, लेकिन चिंदीगिरी से बाज नहीं आया, आदत से मजबूर, लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी निकली। हाँ किस्मत अच्छी थी वरना तो बैंड बज जाती सिद्दीकी साहब। और एक भाई है हमारे, उन्होंने बड़ा कमाल का मैसेज किया है कि सर कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई अमीर और खूबसूरत लड़की आ जाए तो मैं तो मस्जिद से ही नहीं निकलूँगा, तहज्जुद नमाज नफल सब पढ़ूंगा और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। लेकिन ये फिर भी चोरी कर रहा था। ये अरबाज भाई कह रहे अरबाज भाई की बात एक बजे कबीर भाई कहानी बहुत मस्ती, थैंक यू सो मच सरफराज आलम साहब। और मैसेज कुछ देर पढ़ता हूँ उसमें प्लीज़, क्योंकि अजान का वक्त है, इंशाल्लाह इसके बाद मुलाकात होगी। ये लो अरबाज भाई, टाइम टू गो टू मस्जिद राइट नाउ। मिलते हैं कुछ देर में, जाना नाई।

हाँ जी, तो सबसे पहले भाई कुछ मैसेज देख लेते हैं कि गुरु आपसे मुलाकात करने का दिल कर रहा है, कब पॉसिबल इंशाल्लाह ज़रूर मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको, आपने नाम ही नहीं बताया ना लिखा हुआ, एक मैसेज है कि हर बात भाई कह रहे हैं जल्दी चला जाता हूँ मस्जिद की सफाई करने के लिए इस कहानी सुनने के बाद। सर ये जो रेडियो सुन रहे हैं उन सबसे कहूँगा कि मुझे ऐसी वाइफ मिले जो पैसे वाली हो जितनी जल्दी हो। मैं आमीन बोलूँ क्या इसमें? आमीन। नसीम साहब थैंक यू सो मच, तौफीक साहब थैंक यू सो मच, एंड मैसेज क्या है, राय साहब ने कहते हैं कली कहानी बहुत बड़ी है, थैंक यू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद साहब वालेकुम अस्सलाम, एंड किसका मैसेज रह गया, एक मैसेज क्या है, क्रेजी स्टोरी भाई, थैंक यू एहसन उबैद कुरेशी भाई, एंड देन मैसेज क्या है, दोहा वाले कबीर मज़ा आ गया कसम से, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार मोहम्मद आसिफ भाई को। आसिफ भाई ने क्या माइंड था रे बंदे का, हाँ भाई आज ऐसी था, आपका नाम मुझे बता दीजिए, एक मैसेज है आउटस्टैंडिंग स्टोरी थी भाई, थैंक यू सो मच भाई, चलो आप सबको अच्छी लगी, पैसे वसूल हो गए मेरे, हीरो भाई थैंक यू, तौफीक भाई के बाद मैसेज किया, तौकीर अहमद भट्ट साहब लिखते हैं जस्ट गेट आउट ऑफ वर्क एंड ट्यून इन टू लिसन टू योर प्रोग्राम, ज़रूर भेजूँगा भाई। और उवैस साहब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सब कबीर भाई कैसे हैं, मैं बढ़िया जुमेराती रहन साहब। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो मैंने पढ़ दिए, बाकी एक मैसेज है, MOQ में मिले थे आपसे आपका छोटा भाई उसामा नई दिल्ली से। अरे उसामा भाई तो नाम तो डाल लो व्हाट्सएप पे, फोटो देख के, अच्छा फोटो है डाली आपने, सॉरी मैंने फोटो बाद में देखी। भाई उसामा क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, गुड स्टोरी, थैंक यू सो मच, ये इकबाल भाई ने किया है, इसके बाद लव योर नरेशन ब्रदर, बहुत अच्छी स्टोरी थी। ये हया कुरेशी जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच, एंड इनके बाद जो मैसेज किया है मोहम्मद शरीफ भाई ने, शरीफ भाई बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। कतर में रहने वाले तमाम भाइयों को ये इन्होंने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बढ़िया हूँ उसाम भाई, एक मैसेज है, सबसे कह दो सर कि मेरे लिए दुआ करें। भाई अरबाज़ भाई कह रहे हैं इनकी दुआ की जाए कि इनको कोई अमीर पार्टी मिले जिनसे इनका रिश्ता हो सके।

एक बहुत प्यारा मैसेज आया रुमाना जी ने मैसेज किया, उनको कहना है कि क्या लिखा उन्होंने, अच्छा ये कह रही है कि मेरा 4 साल का बेटा है और वो आपका ये जो रैप है बहुत अच्छे से सुनता है, उसके लिए बजा दिया करें। थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। इतना छोटा सा तो है ये रैप, बट थैंक यू सो मच। नियाज भाई वालेकुम सलाम, एक मैसेज है भाई स्टोरी भेजने की जहमत करना, भाई जहमत क्या है, तो मेरा फर्ज है, मैं जरूर करूँगा मेरी जान, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप कॉल भी करना चाहें तो 4434377 नंबर है, आप इस पर भी मैसेज मुसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ खबरें हैं उन पर ध्यान देंगे, लेकिन कल वीकेंड स्पेशल स्टोरी है भाई, 2 लंबी चौड़ी कहानी मैंने सुना दी है, कल 2 बालिश कम रखूँगा, तो वो मत कहिएगा कि आज लंबी कहानी क्यों नहीं है, कल ज़्यादा लंबी कहानी नहीं होगी लेकिन मज़ेदार होगी, इतना वादा है। कुछ खबरों की तरफ पढ़ जाते हैं, जनरल टैक्स अथॉरिटी यानी GTA, अरे वाह GTA, सो जनरल टैक्स अथॉरिटी ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ इट्स ऑनलाइन मीटिंग बुकिंग सर्विस, उन्होंने लॉन्च करी है ज़रीबा प्लेटफॉर्म, और ये एक नया मूव है GTA डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, ताकि एक कम्युनिकेशन चैनल तैयार किया जा सके टैक्स पेयर्स के लिए और फैसिलिटेट किया जा सके और ईजी एक्सेस दी जा सके उन्हें, दिस इज़ वन थिंग। एंड इसके बाद जो है मिथराज की तरफ से एक अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया, हाईलाइट किया है मिथराज सर्विस को, उन्होंने कहा है कि अब यूजर्स जो है ऑथराइज कर सकते हैं देयर रिलेटिव्स वाइफ एंड चिल्ड्रन टू एक्टिवेट मिथराज एप्लीकेशन ऑन देयर ओन डिवाइसेस इवन इफ दे डू नॉट हैव अ मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर नहीं भी है और आपके स्पॉन्सर पे हैं वाइफ बच्चे, तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं मिथराज ऑन देयर ओन एंड यू कैन गिव देम द अथॉरिटी टू डू इट। ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड बड़ी बात के बाद थोड़ी सी छोटी बात कर लेते हैं, मौसम की बात, फर्क क्या ही पड़ जाएगा फिर भी बोल देता हूं, क्लियर भाषा में गर्मी बहुत है वो 33 मिनिमम 39 फॉर नाउ, और आज का जो टेम्परेचर है 40 फील हो रहा होगा आपको बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, कल से कम है ह्यूमिडिटी 43% है, तो आज चश्मों पे धुंध नहीं बनी, अभी बाहर 2 मिनट के लिए गया था मैं, पर ऐसा ही हाल है और अभी भी बनी रहेगी गर्मी, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे से उम्मीद मत करना कि अभी बोलेगा बारिश होगी, कुछ नहीं होने वाली। एक मैसेज है वो भी क्या भाईजान, आपको सुन के यासर काजी की याद आ गई जो कराची में 94.6 पे आते थे 2012 में, भाई आई विश आई न्यू हिम, आप जानते हैं उनको वो भी स्टोरी, नहीं भाई मैं इंडिया से हूँ तो मैं उन्हें नहीं जानता सिंस ही वॉज इन कराची, बट थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अगर आपको इतने पुराने शख्स याद आ गए मुझे सुनने के बाद, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच मेरे भाई, दिस इज़ सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट मोहम्मद आसिफ। एंड इनके बाद मैसेज है भाई बड़ा रैप बनाकर रिलीज करें ब्रदर, मिलियन व्यूज में आएंगे फॉर श्योर। हया कुरेशी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सारा प्यार, ये मोटिवेशन तो भाई भर भर के मिलता है अपने को कोई कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारा प्यार भाइयों। तो आज की कहानी तो होली भाई, कल जो है मेरे पास एक बहुत क्या कैसे बताऊँ मैं, वीकेंड स्पेशल तो है बट मैं कन्फ्यूज हूँ कि वही वाली सुनाऊँ कि ना सुनाऊँ, वो हॉरर मिस्ट्री दोनों है, दोनों का कॉम्बिनेशन है वो, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर, देखते हैं, पर कल आपको मज़ा बहुत आएगा, अभी तो फिलहाल ट्रैफिक का हाल बताइएगा। एंड ऑल्सो अगर आप कहानी के बारे में अभी भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं 666-22-107 पर। अरे दलजीत भाई कहाँ गए, दलजीत भाई को बुलाओ, भाई दलजीत ले लो माइक, दलजीत है

0: शाबाशी तो उन लोगों को देनी चाहिए जो लोग दिन डिसाइड करते हैं। कुछ दिन बहुत बढ़िया होते हैं और आज के दिन पे भी कैलेंडर में बहुत सारे इंटरनेशनली दिन मार्क्ड हैं। आज है वर्ल्ड एलिफेंट डे, हाथी का दिन है भाई, आज हाथी का दिन है। सो वर्ल्ड एलिफेंट डे आज है। आज इसके अलावा वाइनल रिकॉर्ड डे है, काफ़ी फैंसी लोग होते हैं इनके घर में, आपको आज भी वाइनल रिकॉर्ड दिख जाएगा। मेरा मन है उतना फैंसी बनने का पर मैं बन नहीं पाता हूँ, खर्चा बहुत होता है इसमें। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, क्या लिखा उन्होंने, एक सेकंड, कबीर भाई लव यू एंड योर स्टोरीज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर। भाई बहुत सारा प्यार आपको, ऐसी दिक्कत नहीं नौशाद आफ्ता भाई, मिल जाएगी कहानी, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। इसके बाद आज है वर्ल्ड कैलीग्राफी डे, ये आर्ट फॉर्म कतर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा चुका है। जो लोग कैलीग्राफी करते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कबीर लिख के देंगे क्या, बढ़िया सा एकदम इमोशन के साथ प्रमोशन भी ज़रूरी है, क्या है ना, थोड़ा सा अपना नाम चला कि फ्री में मिल जाता है मुझे, कुछ मजाक कर रहा हूँ बट अगर कोई कैलीग्राफी करता है वो मुझे सुन रहा है, एक थोड़ा सा वो कबीर वगैरह काफ वाफ से लिख के दे दो, मजा आ जाएगा। तो आज वर्ल्ड कैलीग्राफी डे है। आज है मिडिल चाइल्ड डे, तो ये जो जितने मिडिल चाइल्ड, भाई मैं तो इकलौता हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही आराम है, पर जो मिडिल चाइल्ड होते हैं, है ना, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, बीच में है वो, ये सैंडविच, आलू टिक्की कहता हूँ उन्हें मैं, दो बर्गर के बीच में आलू टिक्की, अगर आप एक मिडिल चाइल्ड हैं तो आज आपका दिन है। आप कर कुछ नहीं पाएंगे मगर आज आपका दिन है, मुबारक हो। इसके अलावा आज है बेसबॉल फैंस डे, तो इट डजंट रियली मैटर, बेसबॉल हालांकि कतर में आ रहा है बहुत जल्दी, हाँ, सो बेसबॉल जनरली मुझे बहुत पसंद है, आई होप कि यहाँ पर भी वो प्रिवेल करे जिस हिसाब से वो इंटरनेशनली बहुत पसंद किया जाता है। ये एक लौता ऐसा इंटरनेशनल गेम है जिसके रूल्स मुझे अच्छे से पता हैं, जितने मुझे क्रिकेट के पता हैं। और आफ्टरनून टी वीक डे चल ही रहा है, तो ये आपको पता ही है। कुछ मैसेजेस में ज़रा देख लूँ क्या है, वो इस बार क्या कह रहे हैं, और अरे आज जैनब का बर्थडे है एंड आई एम द, अच्छा आप मिडिल चाइल्ड है वेस भाई, मुबारक हो। मैं मिडिल चाइल्ड जितने उन्हें आलू टिक्की कहता हूँ भाई, दो बर्गर के बीच में बेचारे कुछ नहीं कर सकते इनसे छोटे वाले भी काम कराते हैं और बड़े भाई भी काम कराते हैं और जी जी जी बेचारे वेस भाई, मुझे आपके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, एक मैसेज है भाई, एक क्या एक बात, तनवीर हाथी का दिन है, दिन का क्या ही कहिए, मेरा एक दोस्त है हाथी, उसका नाम तनवीर है ऐसे दोस्त जो होते हैं ना यही खास होते हैं, यही दोस्त एक्चुअली में मोहब्बत करते हैं। हुसैन भाई अपने भाई तनवीर को मेरी तरफ से प्यार कहिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि आप उनकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। एक जरा मैं कॉल उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: जी मेरा भाई,
1: और मेरे भाई कबीर भाई, क्या नंबर,
0: एकदम बढ़िया भाई, थैंक यू भाई, बहुत प्यार गया,
1: जबरदस्त शोर को पकड़ के लाया,
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई। क्या क्या चल रहा है जिंदगी में, कहाँ घूम रहे हैं
1: कहानी बोल रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे, मजा आ गया यार,
0: थैंक यू सो मच भाई।
1: कहानी कैसे,
0: कहानी जब लंबी होती है ना तो उसमें साथ देना बड़ा मुश्किल होता है, पर जो लोग दे सकते हैं दे पाते हैं उनको बहुत मजा आता है, तो उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आज की कहानी भी मैं जानता हूँ बहुत लंबी,
1: वो जो सीन था ना, वो जो सीन था ना, उन्हें टीम में अंदर जीसी के गड्ढे में अंदर चले जाता हूँ,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो जो वायरलेस साउंड का वो मैं बंद कर रहा हूँ इधर
0: नहीं भाई मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जो किस्से हैं, क्योंकि 1970s 60s 80s के हैं, आज की तारीख में ये सारे दो मिनट में पकड़े जाते, पर ये इस वजह से बचे हुए थे कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये सब के सब एकदम मस्त मौज
1: भाई, अभी भी कई क्यों ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे कबीर भाई,
0: हाँ
1: करने वाला रखा, तो बहुत सारी चीजें हो अभी भी हो रहे
0: हैं, अच्छा अभी भी हो रही है,
1: टेक्नोलॉजी बनाए सवाल है, हम हैं, हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं हो सकते।
0: अरे नहीं गुलाम नहीं कह रहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आज की तारीख में अगर ये शख्स कर रहा होता ये सब तो फौरन पकड़ा जाता, बिकॉज आसानी होता, हाँ, पकड़ा जाता
1: आसानी,
0: हाँ। वैसे आप क्या मिडिल चाइल्ड हैं, आप कितने भाई बहन हैं आपके,
1: सबसे बड़े हैं,
0: अच्छा सबसे बड़े हैं, हाँ अरे आपकी तो बात, आज मिडिल चाइल्ड का दिन है ना, तो मैंने कहा एक बार पूछ लूँ, हाँ ये मिडिल चाइल्ड
1: भाई नहीं है, बहन है, तो
0: अरे तो फिर बात फिर अलग हो जाती है भाई, फिर तो बात अलग हो जाती है,
1: तो अपने को करना है,
0: हाँ अगर बीच में भाई होता तब बात
1: वो तो पीछे जाता था
0: हाँ डेफिनेटली, हाँ नहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको कहानी अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई,
1: भाई आपकी कहानी भाई पूरा दिन की थकान जो है आपकी कहानी उतार देती है,
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, थैंक यू सो मच भाई, بہت پیار بہت پیار, بہت پیار.
1: اللہ
0: آمین اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے بھائی, خیال رکھیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور بھائی کے بعد ایک میسج ہے میرے پاس, یہ نوشاد عالم بھائی کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ٹرو کبیر بھائی اباؤٹ آلو کی ٹکی ہے نا. آپ مڈل چائلڈ ہیں نوشاد بھائی, مجھے ایسا لگ رہا ہے جتنے مڈل چائلڈ ہیں وہ ٹریگر ہو رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں وہ لوگ. لگتا ہے ہم جیسے لوگ چھوٹے اور بڑوں بھائی بہنوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں. مڈل چائلڈ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کا انٹرن ہوتا ہے. وہ انٹرن ہوتے ہیں نا, چلے جاؤ ذرا وہ مدد کرو, جاؤ جلدی سے پانی کا بوتل لے کے آؤ, چلو جاؤ اٹھو. انٹرن ہوتے ہیں مڈل چائلڈ. اچھا نوشاد تو بھائی بھی کہہ رہے ان کا بھی یہی حال ہے. بھائی انٹرنشپ مبارک ہوئی تو لائف ٹائم ہے, اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک میسج, ویری نائس اسٹوری, تھینک یو سو مچ بھائی, بھیج دوں گا میں عثمان بھائی, فکر نہ کریں. ایک میسج ہے دل لگا کے بھیجائے اپنے, آپ سپر ہیں کبیر بھائی آل ٹائم. رانا بھائی کو بہت سارا پیار, مجھ کو رانا جی معاف کرنا. ایک میسج ہے, السلام علیکم کبیر بھائی, بہت زبردست کہانی. میں فلک کیا, میں فلک ہو ریا, کیا مطلب سمجھ میں, مجھے ذرا سمجھا دیں گے تو آسانی رہے گی. 666-22-107 نمبر ہے. اور اب وہ گانا چلائیں گے جو ہمارے شو کی ایک ٹائم پہ پہچان ہوا کرتا تھا, جو بہت ٹائم سے مجھے سن رہے ہیں, شاید انہیں اس بارے میں علم ہو. باقی تو میں, ارے گانا ہی کھو گیا یار, میں بھی ڈھونڈ رہا تھا کدھر گیا کدھر گیا گیا, لو گانا نہیں مل رہا. اتنا چوڑے میں آ کے میں نے سیل کیا اس کو, ایسا گانا جو شو کی پہچان تھا اور اب گانا ہی غائب ہے. لیٹ می سی اف آئی کین فائنڈ اٹ اسٹل, اگر مل گیا تو بہت بڑھیا, نہیں ملا تو پھر, ارے مل گیا. تو جو لوگوں نے ابھی ٹیون کیا ہے وہ لوگ جانتے. یاسر بھائی کہہ رہے نہیں ملنا چاہیے. آصف بھائی آپ کے لیے ایک ہی چیز بولنا چاہوں گا میں, مل گیا. مزہ آتا ہے چڑھانے میں صحیح میں. آصف بھائی یہ رہا, اب میں چلاؤں گا اور آصف بھائی کے سیدھا اسپیکروں کو چیرتا ہو جائے گا نا یہ. تھینک یو سو مچ ریان بھائی, بہت سارا پیار.

हाँ जी, तो कोई ना, एक मैसेज आया मेरे पास। एक भाई ने बोला कि मुझे लगा था कि आप चलाएंगे घूमी घूमी रे, वो पता है मैं गाने का नाम ही भूल गया, पता है घूमी घूमी रे तो उसका कुछ और नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ। मैसेज है क्या भाई, मैं रिक्वेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं लोग थोड़े लाड में आ गए, रिक्वेस्ट नहीं चला रहा मैं गाने, एक सेकंड रुक जाओ थामो, वो तो मैंने चिल्ला दिया ऐसी। अभी मेरा जो सबसे पहला सवाल है ना, अभी तमाम पाकिस्तानी से है, फिर मैं इंडियन से पूछूंगा, अपने भाई बहनों से दोनों तरफ बॉर्डर के इस पार उस पार, पर क्योंकि पहले 14 अगस्त आने वाली है भाई, कुछ प्लान श्लैन है, क्या सीन है इंडिपेंडेंस डे का, कोई है कुछ तैयारी व्यारी चल रही है, कहीं जाने जुने की कुछ है, बताओ भाई खुल के बताओ मैसेजेस में। 666-22107 नंबर है, कुछ तो सोचा होगा।

0: हाँ तो भाई जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान इंडिया दोनों का बहुत करीब है। आज क्या हो गई भाई, 12 तारीख हो गई ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे बरसों ही है भैया, कुछ तो प्लान श्लान किया होगा, क्योंकि हम दोनों देसी कंट्रीज के साथ ये है कि नहारी खानी चलेंगे सबसे पहले, तो वो तो ठीक है। तो दोनों ही दिन छुट्टी है, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि कोई तैयारी शहरी है, कहीं पे आप जा रहे हैं, सुबह सवेरे निकल रहे हैं, छुट्टी का दिन भी है, सो हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग योर इंडिपेंडेंस डे, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा बहुत ही सिंपल फंडा है, उससे पहले मैं एक कॉल उठा लेता हूँ, फिर ज़रा बात को आगे बढ़ाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम, के हाल है कैप्टन साहब?
0: बढ़िया भाई, एकदम स्वाद आ रहा है, आप बताओ। बस भाई, इंडिपेंडेंस डे का क्या प्लान है बाबा जी, ये बता दो जरा।
1: भाई उससे पहले तो मना ये बताओ, परसों का क्या प्लान है?
0: परसों का क्या प्लान है? नहीं नहीं, परसों का भाई इंशाल्लाह अगर बिल्कुल साज रही तभी तो आवारापन देखने का प्लान है सबसे पहले। तो
1: वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे
0: भाई, एशियन टाउन में लास्ट शो देखने के लिए जाने का प्लान है, और अगर वहाँ पहुँचना चाहे पब्लिक तो प्लीज जरूर जरूर पहुँचिए। वहाँ पे एक ही तो थिएटर में नाम ले नहीं सकता ऑब्वियसली रेडियो पे, मगर वहाँ पे जाके देखना है।
1: चलो भाई, अब यूं करना, मेरे से कॉल करना, फ्री होके है?
0: ठीक है, डन डन डन। और बता दो इंडिपेंडेंस डे का जल्दी से प्लान बताओ।
1: इंडिपेंडेंस डे का भाई फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी।
0: अच्छा, वहाँ पे जाएंगे? अच्छा, ओके ओके।
1: उसके बाद में आप बताओ अगर है कुछ।
0: नहीं, उसके बाद तो हमारे बहुत सारे यहाँ पे हमारा तो काम चलता है, जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन हमें सुकून नहीं मिलता।
1: नहीं, तो उस दिन है प्रोग्राम अपना?
0: प्रोग्राम हमारा आउटसाइड है, रेडियो पे नहीं है लेकिन बाहर है, कवरेज वगैरह रहेगी ना, तो वो वाला सीन रहता है। पर ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको इंशाल्लाह, और जितने भी लोग भाई हमारे पास देखने पहुंचेंगे तो बताइएगा। एक है, एक मैसेज आया है आपके लिए, गाब्बा जी को मेरा सलाम, उन्होंने नाम नहीं मेंशन किया।
1: वालेकुम सलाम जी।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच।
1: कबीर भाई आप कॉल करना।
0: डन डन डन डन डन। ओके मेरा भाई, ख्याल रखिए अपना। ओके, थैंक यू मेरा भाई। एक मैसेज है, आपने तो वैसे भी सोफा बनना है भाई, इस बार नहीं बन पाऊंगा सोफा मोहम्मद भाई। परसों का प्लान बड़ा सिंपल है, क्योंकि परसों अवारपन देखनी है, अवारपन 2 रिलीज हो रही है, तो वो देखने के लिए तो भाई आपका जाएगा। बाकी उसके बाद जो है देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर ये वाला प्लान तो भाई मैंने छोड़ना नहीं है, ये वाला प्लान तो रहेगा इसी बात पे। तो अगर आपका भी ऐसा सीन है, कुछ जो लोग एशियन टाउन में अवारापन 2 देखने जा रहे हैं तो बताइएगा, क्योंकि अवारापन 2 ऐसी पिक्चर है ना कि मैं वो सोफिस्टिकेटेड थिएटर में नहीं देखना चाहता। उसका मजा तभी है जब मुझे सीटी बजाने की आज़ादी हो, और वहां पे जो अपने भाई बंधु होते हैं उनके साथ सीटी वीटी बजाने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए वहां पे जाके देखनी है भाई। रात का शो देखेंगे बढ़िया करके, अरे मजा आ जाएगा भाई। अवारापन 2 का ये गाना तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज, तो अगर किसी आशिक के दिल के तार को मैंने छेड़ दिया हो तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, अच्छी बात है, मजे करो। साज भट्ट सुबोध की आवाज, तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। मैं दूहा वाला कबीर, स्टे

भाई साहब ये गाना थिएटर में सुनने का अलग ही मजा आएगा। तो मैं तो देखो पहले से बोल दे रहा हूँ, जितने लोग आवारापन टू देखने का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारी आपकी मुलाकात हो जाए एशियन टाउन वाले थिएटर में। लास्ट शो में मिलेंगे, बिल्कुल आखिरी शो में भाई साहब, मजे आ जाएगा। सीटी मुझे बजानी आती नहीं है, लेकिन मैं कुछ बंदों को ले जा रहा हूँ, सीटी बजा सकते हैं।

शाबाश, आज का दिन भी हो गया। एक मैसेज आया मेरे पास, कह रहे हैं भाई जाने का टाइम हमें भी क्या रुलाता हो रुलाता हो। ताहिर भाई देखो, मुझे लास्ट शो पता नहीं कितने बजे, पर लास्ट शो जरूर देखने जाऊंगा मैं। परसों वार अपन रिलीज हो जाएगी इंशाल्लाह यहाँ पर भी, तो जाके देखेंगे। एक मैसेज है, स्टोरी ब्रो अभी भेजता हूँ भाई, एक वॉइस नोट है, बाकी मैं सुनता हूँ। और टाइम देख के पता लग रहा है कि आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया। कल तो वीकेंड स्पेशल कहानी आएगी, अभी 7 बजे न्यूज़ बुलेटिन, एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल शामी 5 बजे। याद करते रहिएगा, ठीक है। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मा सलामा।

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी
2: एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना

0: चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं पर डोंट वरी मैं हूं ना भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में
2: हर मंडे सुबह 10 से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ
2: दोस्तों बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें सबसे पहले हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क झटका या यूजुअल स्मेल तो फॉरेन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं आपके घर और ऑफिसेज की हिफाजत आपके हाथों में है इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें एफएम 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम.
2: इस दुनिया में रहते हुए हर शख्स को अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात का सामना जरूर होता है. इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपनी बेहतरी के लिए दुआगो रहना चाहिए. याद रखिए कि दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं. दुआएं मांगते और देते रहा करें. अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए.
1: पैगाम ऑन FM 107. अस्सलाम वालेकुम. आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर. मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे रोजाना दुआ की लिस्ट बनाने के बारे में. दुआ मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अक्सर हम सिर्फ मुश्किल वक्त ही में दुआ करते हैं और अपनी रेगुलर नीड्स को भूल जाते हैं. एक सिंपल सी आदत यह है कि हम अपनी दुआओं की छोटी सी लिस्ट बना लें. इसमें हम अपनी जरूरियात, गोल्स और दूसरों के लिए दुआएं शामिल कर सकते हैं. इस तरह से दुआ करना ज्यादा फोकस्ड होता है और इंसान को अपनी जिंदगी को बेहतर एहसास दिलाता है कि आदत दिल और अल्लाह के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पैदा करती है. आज का मल ये है कि अपनी एक छोटी सी दुआ लिस्ट तैयार रखें और रोज उसे देखते हुए अल्लाह से दुआ मांगा करें. ये था आज का मैसेज. आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर. मैं हूँ आरजे मावश. फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.
3: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं. MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ.
4: पुलिस और आवाम.

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इलाज सिर्फ दवा नहीं,
2: परहेज और रोजमर्रा की देखभाल भी जरूरी है। प्रोग्राम हेल्थ गाइड में डॉक्टर फौजिया शफीक देती हैं वाज़े रहनुमाई,
1: मिथ्स की खोल, प्रैक्टिकल टिप्स, हर उम्र के लिए सेहत के मशवरे,
2: कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ।
3: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: सकते हैं, तो मैं उसके बारे में और खुलासा बताऊंगा। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ का अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें शुरुआत में, तो अक्सर बेशतर आप लोगों को मालूम है कि डायबिटीज़ एकदम एकाएक नहीं होती है, यानी ये एक प्री डायबिटीज़ के दौर से गुजरती है, फिर कई सालों के बाद फिर डायबिटीज़ होती है। क्या आपको मालूम है कि जो हज़रत जिसको डायबिटीज़ है, एक तिहाई लोगों को मालूम नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, एक तिहाई से हाफ 50%, तो जी तो तकरीबन एक तिहाई लोगों को मालूम ही नहीं है कि शुगर है। और शुगर खासकर इस मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जो हमारा जो गल्फ रीजन है, यहाँ पर पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा इसका प्रेवलेंस है। तकरीबन 1 in 4 लोगों, हर एक 4 में से एक अफराद को जो है शुगर है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में। तो वर्ल्ड वाइड जो है 10% शुगर होती है, हर एक में 10, लेकिन यहाँ पे एक में 4 लोगों को डायबिटीज है। अगर हम वजन की मोटापे की अगर बात कर लें, तो कतर में जो है 70% सर फीसद जिनका वजन या तो ओवर वेट में शुमार होता है या फिर ओबेसिटी में शुमार होता है, 70% काफी ज्यादा है। अगर हम सिर्फ मोटापे की बात कर लें, जिसका वजन काफी ज्यादा है, गैर सेहतमंदा वजन है, तो वो 40% है, यानी 4 out of 10। तो ये काफी खतरनाक जो है स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आ रहे हैं आजकल। तो लेकिन इससे हमको मालूम क्या हो रहा है कि भाई हमको इससे नए पॉलिसीज बना सकते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस के जो है प्रोग्राम्स कर सकते हैं, ताकि इससे बचा जाए, इसको उसको रोका जाए, या फिर अगर किसी को शुगर की बीमारी है या मोटापा है, तो उसको जो है उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए।
1: जी
0: जी, तो
1: इसमें जैसे कि डॉक्टर प्रियंका के जो मोटापा है उसकी तो खैर बाद में हम यहाँ या हर जगह पर ही जो इसकी कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो बात करेंगे, मगर जैसे हम प्री डायबिटीज़ है वो है क्या, मतलब जी इस पे पूछना चाहूँगा।
0: प्री डायबिटीज़ क्या, अक्सर ये सवाल आता है कि प्री डायबिटीज़ क्या है। तो प्री डायबिटीज़ देखिए, डायबिटीज़ जब होती है तो उससे पहले प्री डायबिटीज़ होती है, तो ये प्री का मतलब है डायबिटीज़ से कबल। तो डायबिटीज़ से कबल ये भी एक स्टेट है, लेकिन ये भी कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये भी एक बीमारी वाला स्टेट है समझिए। तो ये इसको भी एक डिसऑर्डर बोलें आप, डिजीज़ कह लें प्री डायबिटीज़। तो इसमें होता ये है कि आपकी शुगर कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं होती है। अब आप ये मत समझिए कि खाली शुगर सिर्फ खून में बढ़ जा रही है, खून शुगर का मतलब सिर्फ शुगर है और सिर्फ थोड़ा सा खून में बढ़ रही है, नहीं। शुगर जब भी आपके खून में बढ़ती है तो ये जिस्म के हर ऑर्गन में जाती है, आपके छोटे शरीयान हैं या बड़े शरीयान, हर जगह जाती है, और हर जगह इसके नुकसान हो जाते हैं इसके। तो प्री डायबिटीज़ में क्या होता है, प्री डायबिटीज़ में जो है जैसे कि आप के ख़ानदानी रुझानात हैं, या फिर आपका गैर सेहतमंदाना वज़न है, या फिर आप वर्जिश नहीं कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, या फिर आप काफ़ी मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स की वजह से आपको जो है शुगर होने के चांसेस होते हैं। तो जब शुगर होने के चांस होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे अंदर पैदा होता है। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, अब आप बेसिकली ये समझिए कि भाई हमारे जिस्म में जब शुगर जब हम खाना खाते हैं, इसका हाजमा होता है, तो जो शुगर जो बनती है वो खून में दौरान खून में आती है
1: जी।
0: तो खून में से जब ये जो है हमारे जिस्म के आज़ा में जब खलियों में जब उसको जाना होता है, तो उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है,
1: ठीक है,
0: ताकि ये जब अंदर जाए तो इसके इस्तेमाल हो सकता है, इससे एनर्जी बनती है आपको
1: जी।
0: लेकिन जब ये नहीं होता है तो आपके खून में जो है शुगर बढ़ जाती है। इसका आसान से इसका तस्वर आप ऐसा करें कि आप एक कमरा है, कमरे में जो है आप अंदर आना चाह रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद है, और वो दरवाजे का जो चाबी जो है वो इंसुलिन है
1: जी।
0: तो इंसुलिन की कमी की वजह से या रेजिस्टेंस की वजह से शुगर बाहर रह जाती है, अंदर नहीं आ सकती, तो ये खून में जो है इसका दौरान इसका ज्यादा लेवल हो जाता है। तो अब इसका लेवल कितना है,
1: बहुत ही अच्छी जो एग्जांपल है, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि आमतौर पर हम नहीं समझ पाते कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या
0: जी।
1: बिल्कुल यही कि एब्जॉर्प्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे ना, बिल्कुल कि वो ब्लड में चली जाती है, ठीक।
0: क्योंकि ये ज्यादा गैर सेहतमंदा वजन की वजह से, अगर पेट की तरफ अगर ज्यादा चर्बी है
1: जी,
0: या आपका वेट ज्यादा है, तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि नॉर्मली जो है हर रोज हमारे दिन हमारे जिस्म में 15-20 यूनिट इंसुलिन बनता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन जब ये वजन और आपके लाइफस्टाइल जो है, अगर आपका हेल्दी नहीं है, तो आपकी बॉडी को 30-40 यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, बल्कि 50 भी पड़ सकती है। तो जो हमारा तो जो हमारा लबलबा होता है, तो शुरुआती इनिशियल दौर में वो उतनी इंसुलिन बनाता है उतनी मिकदार में
1: जी।
0: लेकिन ये इसके ऊपर काफी स्ट्रेस है, बर्डन है ये, तो ये काफी दिनों तक, चंद महीने, चंद साल जो है बना सकता है, उसके बाद ये फेल हो जाता है। जब ये फेल हो जाता है जब डायबिटीज आती है, तो ये जब जब इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, ये जो दौर है इसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं
1: जी।
0: तो इसमें होता है कि आपकी जो शुगर नॉर्मली जो शुगर होती है फास्टिंग शुगर अगर हम बात कर लें तो 100 के नीचे होती है
1: जी, ठीक।
0: और डायबिटीज में जो है 126 के ऊपर होती है। तो अब जो शुगर जो प्री डायबिटीज में जो होती है 100 से लेके 126 के बीच में होती है, तो ये प्री डायबिटीज स्टेट है। आप एक नहीं इसके दो मरतबा आप चेक कर लें, या फिर खाने के बाद नॉर्मली जो शुगर होती है आपकी 140 के अंदर होना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन आपकी शुगर अगर 140-200 के बीच दरमियान में अगर है तो ये भी प्री डायबिटीज है।
1: अच्छा।
0: और अगर आपकी शुगर 200 के ऊपर है खाने के बाद
1: जी,
0: तो ये डायबिटीज में शुमार हो जाएगा। एक और एक टेस्ट 200 से ऊपर एक और एक टेस्ट जो आम लोगों में लोगों काफी इसके बारे में मालूम है, HbA1c जो हम करते हैं जो 3 महीने का जो एवरेज बतलाता है, तो वो भी एक टेस्ट जिससे प्री डायबिटीज हम डायग्नोस कर सकते हैं
1: जी।
0: तो बाज ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये है कि 6 से 6.5 प्री डायबिटीज की रेंज है। जैसे अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन बोलता है कि 5.7 से लेके 6.4 तक डायबिटीज है, ये प्री डायबिटीज है। तो ये जो रेंज है ये प्री डायबिटीज की रेंज है। लेकिन आप ये जान लें कि सबसे अहम चीज कि प्री डायबिटीज भी एक बीमारी है, अगर इसको सही वक्त पर रोका नहीं गया, इसको रिवर्स नहीं किया गया,
1: अच्छा।
0: तो ये डायबिटीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती है
1: जी।
0: डायबिटीज आगे आने वाले खासकर उन हजरात उन लोगों में, फॉर एग्जांपल मसलन जो औरतें हैं जिसको हमल में जिसको शुगर हुआ है, जिसका वजन ज्यादा है, जिसको फैमिली में फैमिली हिस्ट्री वालदेन को अगर शुगर है, या फिर आपके जॉब काफी सेडेंटरी है, आप एक ही जगह बैठ के जॉब कर रहे हैं, आप ज्यादा मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिलकर जो है डायबिटीज। अब ये देखना हो ये होता है कि कितनी जल्दी आपको शुगर आ रही है। तो ये प्री डायबिटीज स्टेट कैसा पता, ये तो बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक है। मसला ये है कि
1: ठीक
0: पेशेंट को या किसी अफराद को इसे कोई अलामत नहीं होती।
1: किस तरह पता चलेगा?
0: ये बहुत ही साइलेंट है। डायबिटीज भी इसको साइलेंट किलर बोलते हैं,
1: जैसे ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो भी साइलेंट किलर है।
0: जैसे किसी को मार लग गया सडनली आपको दर्द होता है, या किसी की हड्डी टूट गई तो फौरन दर्द होता है, उसका इलाज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई अलामत नहीं होती। इसलिए पेशेंट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट मिथ है, यानी मिसकंसेप्शन है कि बोलते हैं मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, मैं मीठा नहीं खाता इसलिए मुझे शुगर नहीं हो सकती, मतलब ऐसे काफी जो है मिथ होते हैं मुझे। तो ये जो है ये जो बीमारी जो पकड़ में आती है ये सिर्फ आपको जब आप टेस्ट करेंगे। अब देखिए अब हम हर साल गाड़ी का टेस्ट कराते हैं
1: जी,
0: इस्तेमाल कराते हैं, गाड़ी का हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो फिर क्यों ना अपनी सेहत पर आप चेक ना करें। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप हर साल 5 चीजें चेक करें आप
1: जी।
0: नंबर 1 है शुगर, चाहे आप फास्टिंग शुगर करिए HbA1c करिए, शुगर चेक करिए हर साल
1: जी।
0: नंबर 2 है आपका ब्लड प्रेशर,
1: ठीक,
0: बहुत जरूरी है। आप ये मत समझे कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं यंग हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, नहीं, आपको ये करना जरूरी है। तीसरी चीज कोलेस्ट्रॉल, हर इवन बच्चों में जो 12 साल से ज्यादा बच्चे हैं उन लोगों उन बच्चों में से लेकर बड़ों तक एक बार तो कोलेस्ट्रॉल चेक करना जरूरी है, ताकि आप चेक कर लें आप कोलेस्ट्रॉल क्या है,
1: ठीक है,
0: मतलब हर साल एक बार कर लें,
1: ठीक है,
0: खासकर जिसके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं। चौथी चीज आपका वजन, हर साल चेक करिए आप वजन, मैं तो हर साल बोलने बल्कि आप हर महीना चेक करिए वजन, देखिए कि आपका वजन बढ़ तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ये मालूम होता है कि सडनली आपका वजन 10 किलो बढ़ गया, तो ये तो वजन का चेक करना भी जरूरी है। और पांचवी अहम चीज आपकी वेस्ट लाइन, आपकी कमर की साइज कितनी है,
1: ठीक,
0: ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर अब आजकल हम लोग जो है मोटापा सिर्फ BMI से मापते हैं
1: जी।
0: लेकिन BMI खासकर हमारे जो एशियन पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्ला, इसमें देखिए आप हमारी फिजिक बहुत ही जो है उतनी जैसा कि यूरोपियंस है अमेरिकन उस टाइप की फिजिक नहीं होती है
1: जी।
0: लेकिन फिर भी ये शुगर होती है
1: जी,
0: BMI फिर कम होता है लेकिन फिर भी शुगर होती है, क्योंकि आप देखिए वेस्ट लाइन, कमर की सरकमफ्रेंस,
1: एब्डोमिनल फैट
0: जी, अगर कमर की सरकमफ्रेंस मर्दों में 90 सेंटीमीटर के ऊपर है यानी 36 इंच,
1: अच्छा,
0: और औरतों में 80 सेंटीमीटर यानी 32 इंच, यानी आपको बहुत बड़ा खतरा है। किन चीजों से खतरा है? नंबर 1 शुगर
1: जी,
0: नंबर 2 ब्लड प्रेशर, नंबर 3 हार्ट डिजीज,
1: ठीक,
0: और हो सकता है सांस की तकलीफ, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, तो एक काफी सारे और हार्ट, ये 4-5 बीमारियों का आपको काफी ज्यादा खतरा होता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। कमर की तरफ की चर्बी का मतलब अलामत ही मतलब ये है कि आपकी जिस्म में चर्बी हर जगह फैल रही है, आपके दिल में, आपके गुर्दों में, आपके लबलबे में, आपका लिवर में, खासकर आपके हार्ट में,
1: तो ये इसी में फैटी लिवर की जो बात करते हैं वो भी बिल्कुल, अच्छा, ठीक,
0: तो ये चीजें होती हैं
1: इसमें प्री डायबिटीज होते हैं वो, और उसमें स्पेशली जैसे कि ओबेसिटी के आपने
0: जी, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये आपको सालाना टेस्ट करना जरूरी है। आप कौन से हजारा टेस्ट करें
1: जी?
0: नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि जो भी 35 ईयर्स के ऊपर हैं आप टेस्ट करें, लेकिन 35 की नीचे लोग टेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग

0: जी बिल्कुल भी।
1: तो ये दो चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है जिसके आप जिसकी वजह से आपको टेस्ट जबरदस्त आता है। टेस्ट एनहेंसर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर, ये काफी सारी चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं।
0: जी
1: जी। तो बाज़ लोग बोलते हैं चलो हम डाइट वाली चीज़ इस्तेमाल, लेकिन डाइट वाली चीज़ भी उतनी आपको सेहतमंद नहीं है। जो चीज़ आप घर में फ्रेश बना के खा रहे हैं उसकी बात अलग है, जिसमें आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, आप तेल
0: जितना
1: डाल रहे हैं
0: हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे शुगर फ्री हैं,
1: जी जी जी,
0: तो वो भी तो कैसे,
1: शुगर फ्री चीज़ भी जो है इसके ऊपर भी काफ़ी आजकल रिसर्च हो रही है, ये उससे ये मालूम हो रहे हैं कि उसका खुलासा ये है कि वो भी चीज़ लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है। शुगर फ्री कभी कभी कभी कभार आप ओकेजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन एक मुसलसल रोजाना आपकी हैबिट होगी तो फिर वो भी अच्छी चीज़ नहीं है।
0: डॉक्टर, ये हमारे शुगर फ्री जैसे हैं प्रोडक्ट्स हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं और शुगर उन्होंने लिखा होता है नील है, तो इसका क्या, क्योंकि डायबिटीज़ में तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उन्हें भी तो रिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा करना होगा ना।
1: जी,
0: तो फिर ये नुकसानदेह हुई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो शुगर फ्री तो लिखते हैं लेकिन उसके अंदर फिर दूसरे एडेड शुगर्स होते हैं, आप अगर आप देखें एडेड शुगर बोल के रहता है।
0: अच्छा, ठीक।
1: तो इसलिए आपको जो है लेबल पढ़ना जरूरी होता है। जो जो भी चीज़ आपने मुंह में, जैसे कि आप बिस्किट खा रहे हैं मसलन, आप तो आप देखिए कि एक बिस्किट से कितने कैलोरीज हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, इस आप रोटी भी ब्रेड भी खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल खुबस खरीद रहे हैं, तो आप देखिए उसके अंदर प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है। बस वो एडेड शुगर्स बोल के होता है, एक्स्ट्रा शुगर डालते हैं आप। मसलन जो है बच्चों की जो भी मसलन फ्रूट जाम ले लें या फिर न्यूटेला वगैरह आप ले लें, उसमें देखिए आप अगर आप कैलकुलेट करें आप तो न्यूटेला के अंदर आधी तकरीबन आधी शुगर ही होती है। आप एक डब्बे में आधी सिर्फ शुगर खिला रहे हैं बच्चों को, तो इस तरीके से होता है। या मैं ये नहीं कह रहा कि अब आजकल ऐसा हो गया है माहौल कि भाई आप अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत ही जो है माइंडफुल इस्तेमाल करें उसका, ये काफ़ी ज़रूरी है।
0: ठीक है,
1: तो ये चीज़ें आपको यानी कॉमन आदमी को यानी हमारे आम आदमी को भी इसका जो है थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए कि भाई इसके देखना चाहिए कि कंटेंट क्या है, ये मेरे लिए फायदेमंद है नहीं है, कितने कैलोरीज हैं, एक चिप्स के अगर पैकेट खा लिए कितने कैलोरीज मिल रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए।
0: और दूसरी बात ये कि जो कैलोरीज लिखी होती हैं उसको कम मिकदार में वन सर्विंग का लिखा होता है, और अक्सर हम ये समझते हैं कि शायद ये पूरा जो पैकेट है उस पर इतनी ही।
1: जी जी जी
0: जी, ये भी बहुत
1: इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बिल्कुल, कि मसलन अगर आप कोई चिप्स के पैकेट खरीदे जो 200 ग्राम्स की, तो वो सर्विंग साइज बोल के लिखी थी उसने, अब वो सर्विंग साइज होती 50 ग्राम्स मसलन, तो 50 ग्राम्स के अंदर कितनी शुगर है कितना कोलेस्ट्रॉल बताता है, लेकिन फिर अगर 200 है तो ये तो उसको मल्टीप्लाई पे 4 करना पड़ेगा आपको।
0: जी,
1: तो ये सर्विंग साइज आप देखिए, हाँ बहुत जरूरी होती है।
0: ठीक,
1: तो ये चीज़ें हैं। तो आप जो है मशरूबात का इस्तेमाल कम करें, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें, और जो है प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कम करें। और एक चीज़ ये है कि अब हम वॉकिंग पे तो स्ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन अब आजकल जो साइंस ये भी बता रही है कि भाई वर्जिश जो बोलते हैं, जो हफ्ते में 2 या 3 दिन आपकी फुल बॉडी की जो वर्जिश होती है मसल्स की, वो भी ज़रूरी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो बोलते हैं, मसल की जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है, आप चाहे आप इसके मुख्तलिफ तरीक़े हैं करने के, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आप देखिए आप कैसे कोर मसल एक्सरसाइज बोलिए, प्लैंक्स बोलिए, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, सिंपल स्क्वाट्स होते हैं चेयर के साथ, वॉल पुशअप्स पुल के होते हैं, तो काफ़ी आप सिंपल, या फिर आप वो जो रबर के बैंड्स आते हैं एक्सरसाइज के, उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मसल्स बना सकते हैं आप, या हल्की बॉटलों से आप जो है उठाकर जो है वो भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज रेजिस्टेंस और क्यों, इससे क्या होता है कि आपके मसल्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, तो वो शुगर को सही इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब आपके मसल्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब आपके मसल्स को जो है हमारे इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद शुगर मसल्स के अंदर दाखिल हो जाती है, तो इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है, तो ये काफी आपको फायदेमंद होगा।
0: ठीक, तो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज जो है
1: ये जरूरी है। जी,
0: वॉकिंग तो है ही, वॉक करनी तो आपने जैसे कहा कि 150 आवर्स जो है पर वीक जो है वो मस्ट हमें करनी है, और ये कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है वो भी बहुत जरूरी है। जी
1: इसके अलावा जो जदीद जो अदविया जो हमारे पास हैं, जो मौजूदा इसमें मॉडर्न डायबिटीज जो ऐसे मेडिसिन हमारे पास हैं जिससे हम प्री डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: अच्छा प्री डायबिटिक जो है या
1: प्री डायबिटीज
0: उसमें भी मेडिसिन देते हैं, दे सकते हैं।
1: जी हाँ, क्योंकि अक्सर पेशतर ये लोग ये हजरात को जो है वजन का ही मसला होता है, दूसरे भी मसले चलते रहते हैं, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, तो काफ़ी सारे पेचीदगियाँ होती हैं उसके अंदर। तो मसलन अगर किसी का वजन जो है 100 kg से
0: जी।
1: अब हम बोलते हैं कि भाई आप वजन कम करिए, तो वजन कम करना भी बहुत नेक्स्ट में ये टॉपिक है, वजन कम करना है
0: जी।
1: तो अब देखिए लोग बोलते हैं वजन कम करना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक 5 kg भी अगर वजन कम करें तो इससे आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी शुगर इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म में हार्ट के रिस्क भी आप बच सकते हैं।
0: ठीक,
1: एनी वेट लॉस, थोड़ा भी वेट लॉस भी काफी फायदेमंद है। आप इससे ये ना हो जाए, नाउमीद ना हो जाए कि अरे बस थोड़ा वेट लॉस है कुछ भी नहीं, लेकिन आप यकीन करिए 3-4-5 kg भी बहुत मायने रख सकता है। खासकर एशियन हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम चार, अगर किसी का BMI नॉर्मल भी है 25-26 भी है लेकिन ज्यादातर चर्बी सिर्फ वेस्ट लाइन पे है, वो शख्स अगर सिर्फ 4-5 kg भी अगर कम कर ले वेस्ट से तो काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, हो सकता है शुगर भी रिवर्स हो सकती है।
0: अच्छा
1: जी, डायबिटीज, अगर डायबिटीज किसी को है जो जो न्यूली डायग्नोस जदीद डायबिटीज है यानी 5-6 साल का अरसा गुजरा है, तो ये जो हजरात है ये भी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: इसको हम रेमिशन बोलते हैं, लेकिन इसमें शर्त है, लेकिन आप ये खुद से ना करें, ये डेफिनेटली जब आपके डॉक्टर्स के पास आपको जाना होता है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लेना है, और जब आप डॉक्टर्स बताएंगे तो आप फिर तभी आप मेडिसिन बंद करना है, खुद से आप मेडिसिन ना बंद करें।
0: ठीक है,
1: तो ऐसे इंजेक्शन हैं, ऐसे दवाएं हैं जिससे आपका वजन कम होता है
0: जी।
1: आप वजन कैसा भी कम करिए, चाहे आप दवा से कम करिए, चाहे आप डाइट से करिए, एक्सरसाइज से करिए, या आजकल जो जदीद बेरियाट्रिक सर्जरी है उससे भी करिए
0: जी। ठीक,
1: ये जितने भी वजन लूज करने के तरीके हैं, अगर आपका वजन अब डबल डिजिट का वजन लूज हुआ यानी 10-15%,
0: ठीक है,
1: यानी मसला में किसी का वजन 100 kg था वो 15 kg कम कर लिए,
0: ठीक है,
1: तो ये डायबिटीज को रिवर्स कर देगा।
0: ठीक,
1: लेकिन तब तक रिवर्स है, शर्त यह है कि जब तक वो वजन मेंटेन है तब तक आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है, आपको डायबिटीज नहीं है जी।
0: से जो वजन है उस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और जैसे एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस भी आपने बताया कि जो वो भी उसी के साथ जो है वो मोटा,
1: एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस भी चेक करना है, और जदीदी और एक मेजरमेंट ये है कि जो हमारा जो एब्डोमिनल जो हमारा पेट के जो वेस्ट लाइन है, कमर का सर्कमफेरेंस है, और हमारी जो हाइट की जितनी हाई है, जो हाइट है
0: जी,
1: तो हमारी कमर की जो सर्कमफेरेंस है हाइट से 50% कम होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: अगर 50% से ज्यादा है, मसलन अगर किसी की हाइट 180 सेंटीमीटर है
0: जी,
1: और कमर 92 सेंटीमीटर है, यानी 50% ज्यादा हो गया है
0: जी,
1: तो उनको हार्ट का रिस्क ज्यादा है,
0: अच्छा,
1: शुगर का रिस्क ज्यादा है। ये काफी सारे है, पूरे ये क्या है, इसको एक न्यू जदीद जो है हम लोग टर्मिनोलॉजी दिए हैं, CKM, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल रहे हैं इसको आजकल। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं कनेक्टेड हैं, हार्ट, गुर्दे और आपका जो मेटाबॉलिज्म है, तीनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। किसी एक में कुछ बीमारी है, कोई मसला है, तो वो बाकी दोनों में भी मसले पेचीदगी शुरू कर सकता है।
0: सही,
1: एग्जाम्पल बता दूं आपको, जो भी शख्स जिसको डायबिटीज है, आप यकीन नहीं करेंगे, जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उसमें से 40% लोगों को किडनी की बीमारी होती है।
0: अच्छा, ठीक,
1: 100 में से 40,
0: ठीक है,
1: और वही 100 में 40 लोगों को हार्ट के फेलियर की भी बीमारी है। अब हार्ट फेलियर एक बहुत ही इमर्जिंग नया कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। अब हार्ट फेलियर की भी मुख्तलिफ आ रहा है, उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। एक बोलते हैं कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन जो हम चेक करते हैं जब इको करते हैं तो हार्ट का फंक्शन मालूम करते हैं 60% नॉर्मल है बोलते हैं, 40% तो थोड़ा कम हो गया, 30% और कम हो गया, तो रफली सामे नक्राम के लिए मैं आसान करना चाह रहा हूँ कि 40% से कम रहा तो उसको रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, 40 के ऊपर रहा तो जो है उसको जो है ठीक है बोलते हैं। तो हार्ट फेलियर हो रहा है जिसमें आपका इजेक्शन फ्रैक्शन फिर भी नॉर्मल लग रहा है, 40 है 50 है, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को हार्ट फेलियर की अलामत है, इसको हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये 40% डायबिटीज पेशेंट में पाया जाता है जी। तो इससे काफी तकलीफ होती है, सांस में तकलीफ होती है, पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, रात में 1-2 तकियों का इस्तेमाल करना पड़ता है सोने के लिए, पैरों में सूजन आ सकती है, तो इससे काफी सारी पेचीदगियां पैदा होती हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक ऑर्गन में प्रॉब्लम होने से दूसरा ऑर्गन भी
0: इन्वॉल्व हो सकता है
1: जी,
0: बिल्कुल सही।
1: फिर और एक जो तीसरी जो खतरनाक जो आजकल और एक चीज आ रही है वो फैटी लीवर की है
0: जी। फैटी लीवर, बिल्कुल,
1: तकरीबन 70% डायबिटीज पेशेंट में फैटी लीवर है
0: जी,
1: बहुत ज्यादा है।
0: इसकी क्या डॉक्टर वजह है? ये भी के फैट्स जो है वो डिपोजिशन है,
1: बिल्कुल। नॉर्मली जो फैट जो हमारे बॉडी में जहाँ होना होता है
0: जी,
1: जब एक्स्ट्रा फैट, जब हम ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं, ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो हर मशरूबात हर चीज फैट में तब्दील होती है।
0: ठीक,
1: तो फैट का जो स्टोरेज जो एरिया है हमारे बॉडी में, तो वहां पे जब स्टोरेज खत्म हो जाएगा, स्टोर, तो जाहिर बात तो बाहर निकलेगा।
0: ठीक है,
1: और वो बाहर कहाँ जाएगा? और आपके पेट आपके आपके पेट यानी आपके कमर में जाएगा, आपके लीवर में जाएगा, नंबर वन तो सबसे पहले लीवर में जाएगा।
0: ठीक है,
1: तो लीवर में जाके फैटी लीवर करेगा, लीवर भी बोलेगा बस भाई मैं बहुत ले लिया अब मैं ज्यादा नहीं ले सकता, फिर उसके बाद वो निकलेगा फिर किडनीज में जाएगा, हार्ट में जाएगा, आपके लेवल, तो इस तरह से मुख्तलिफ मकामात पे हो जाएगा। तो ये इस फैटी लीवर की इसकी वजह से फैट लीवर होता है।
0: सही,
1: तो वजन, मोटापा, ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दो चीजें बहुत बड़े ड्राइवर्स हैं इसके।
0: ठीक है
1: जी,
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड,
3: हेल्थ गाइड
2: डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: मेत्राज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेत्राश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: میں لسنرز آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں. اس میں پری ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے ہیں, باقی ساری چیزیں بھی. مگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے ڈائبٹیز تک پہنچنے والے ہیں تو اسے کیسے روک سکتے ہیں, اور اگر ڈائبٹیز ہے اور بالکل انیشیل سٹیجز میں ہے یا کچھ سالوں سے ہے تو اسے بھی ریورس کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صدیق مشہود احمد. اور ہم اب چلیں گے, پریونیشن تو بتا رہے ہیں ڈاکٹر ساتھ ساتھ, مگر پھر بھی تھوڑی سی میڈیسن ڈاکٹر صاحب بتا دیجئے کہ اور بھی جو نیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جیسے کہ انجیکشنز جو ہیں وہ جو اسے ویٹ لاس ہوتا ہے تو وہ بھی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں وہ یوز ہو رہے ہیں, وہ کیا ہیں؟
1: جی, تو ابھی ریسرچ جو جدید جو ہمارے پاس میڈیسنس آئے ہوئے ہیں کافی گیم چینجنگ میڈیسنس ہیں. اس کو بلاک بسٹر میڈیسنس بھی کہا جا رہا ہے.
0: اچھا,
1: اس سینچری کی جو ہے سب سے ون آف دا بیسٹ میڈیسنس میں ہے یہ. ایون ڈبلیو ایچ او بھی جو ہے ریسنٹلی اپنے لسٹ آف ایسنشیل میڈیسنس میں اس میں شمار کر دیا ہے. اس کا مطلب اس کی ضرورت تقریباً ہر کنٹری میں ہے, چاہے وہ ڈیولپڈ ہو یا ناٹ ڈیولپڈ ہو, جو بھی ہے, کیونکہ موٹاپا ہر کنٹری میں بڑھ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا اپیڈیمک ہے, شوگر اور موٹاپا, یہ اس سینچری کے بہت بڑے اپیڈیمکس ہیں کووڈ کے بعد.
0: بالکل,
1: تو یہ بہت بڑے
0: اپیڈیمکس, جب موٹاپا ہے اوبیسٹی ہے اس میں ہر چیز
1: ہے وہ. اس لیے یہ دواؤں کا سب کو اویلیبل ہونا, سب کو ریچ میں آنا بہت ضروری ہے. اس لیے ڈبلیو ایچ او اس کو اپنے ایسنشل لسٹ میں کرائے, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے چل کر یہ میڈیسنز کافی سستے بھی ہو جائیں گے اور سب کے ریچ میں بھی آ جائیں گے. تو اس یہ میڈیسنز جو ہے ایک کلاس آف میڈیسن ہے جس کو ہم جی ایل پی ون اینالاگس بولتے ہیں. اب یہ کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو سمپل لینگویج میں. آپ کو دیکھیے, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں اتریوں میں سے پیٹ میں سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کا نام ہے جی ایل پی ون.
0: ٹھیک ہے, جی ایل پی ون,
1: وہ جا کے آپ کے برین کو بولتا ہے, سگنل دیتا ہے کہ بھائی آپ کھانا بند کرو, کھانا آپ کا پیٹ بھر گیا ہے, آپ کھانا بند کر دیجیے.
0: ٹھیک ہے,
1: تو برین جو ہے آپ کی جو ہے جو ہنگر ہنگر کو کم کر دیتا ہے. آپ کھانا بولتے ہیں بس میرا پیٹ بھر گیا, اس کی وجہ سے وہ آپ یہ آپ پیٹ بھر گیا جو بولتے ہیں نا, وہ جی ایل پی ون کی وجہ سے. اب نارملی کیا ہوتا ہے, یہ جو ہمارے قدرتی طور پہ جو جی ایل پی ون بنتا ہے ہمارے انٹسٹائنس میں, اس کی جو ہاف لائف صرف 2 منٹ ہوتی ہے, 2 منٹ میں ختم آتا ہو.
0: ٹھیک ہے,
1: تو سائنس دیکھیے کہ بھائی ہاں یہ بہت اچھا ہارمون ہے, اس کے فائدے بہت ہیں.
0: جی,
1: کیا فائدے ہیں اس کے؟ ایک تو آپ کو کھانے سے روک رہا ہے, آپ کو بورا ایک سگنل دے رہا ہے کہ آپ کھانا بند کر دو.
0: جی,
1: دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسولین خود بخود انسولین اندر زیادہ پیدا کر رہا ہے.
0: اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے,
1: یہ ایک سٹیمولس ہے انسولین بننے کے لیے.
0: جی,
1: تو ہمارے اندر اچھا انسولین بنتا ہے جی ایل پی ون,
0: اس سے پھر جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ بھی کم ہوگا,
1: وہ بھی کم ہوتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: تیسری چیز جو ریسرچ میں یہ معلوم ہوئی کہ بھائی آپ جب آپ کھانا کم کھائیں گے تو آپ کا وزن بھی کم ہوگا.
0: جی,
1: تو وزن کم ہو تو اور آپ کا انسولین ریزسٹنس کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اور آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا, تو شوگر بھی کنٹرول میں آ جائے گی. پھر اس کے جو ہے کافی دوسرے ہارٹ پر افیکٹس ہیں, لیور پر ہیں, کڈنی پر ہیں, کافی بینیفیشل افیکٹس ہیں. ڈائریکٹ یہ ڈائریکٹلی ایکٹ کرتا ہے اس کے جو ہے وہاں جیسے انسولین جیسے اٹیچ ہونے کے جو ریسپٹر جو بولتے ہیں ہم لوگ, اس کے ریسپٹرس موجود ہیں ہارٹ پر ہیں, برین میں ہیں, برین میں تو بہت ہیں, لیور میں ہیں. تو یہ آپ کے لیور پہ فائدے مند ہے, آپ کے جو ہے ہارٹ کے لیے بہت کافی فائدہ مند ہے. تو کافی اس لیے نیو میڈیسنس کا ایجاد ہوا, اور یہ میڈیسنس یہ پتا چلا کافی ریسرچ کے بعد, سالوں کی ریسرچ کے بعد, ہزاروں پیشنٹس کے اوپر ریسرچ کی گئی, تو اسے پتا چلا کہ یہ میڈیسنس بہت ہی گیم چینجنگ ہے. کیوں؟ یہ شوگر کو بہترین کنٹرول کر رہے ہیں, وزن کنٹرول کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ وزن کم کر رہے ہیں. تیسری چیز ہارٹ اٹیک سے روک رہے ہیں, جو ہائی رسک پیشنٹ ہیں جس کے اندر جس کو آلریڈی ہارٹ ہوا ہے یا جس کو ہائی رسک ہارٹ پہ ہیں ان کے اندر ہارٹ اٹیک سے روک رہا ہے. چوتھی چیز کڈنی کو بچا رہے ہیں, جس کے اندر پروٹین یوریا ہے, جس کے اندر جس کی گردوں سے پروٹین خارج ہو رہا ہے, جس کی پروٹین ویک ہیں, اس کو کنٹرول کر رہے ہیں.
0: کمپلیکیشن ہے ڈائبٹیز کی, ڈائبٹکس کی جو ہے.
1: جی بالکل, تو اس کے کافی بینیفیشل, فیٹی لیور کو کنٹرول کر رہا ہے.
0: اچھا,
1: اور جسے کو سانس ملے جو آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہے اس میں فائدہ مند ہے. جسے کو آسٹیو آرتھرائٹس ہے, چلنے مسئلہ ہے کیونکہ وزن کم ہونے کی وجہ سے ان کو درد کافی کم ہو جا رہا ہے. تو اس کے مختلف کافی بے شمار اس کے فائدے ہیں. تو اس لیے یہ نیو میڈیسنس अब आज अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसका इस्तेमाल भी काफ़ी सालों से कर रहे हैं।
0: ठीक है,
1: तो
0: इसके भी साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं?
1: जी जी, साइड इफेक्ट्स तो हर चीज़ के थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, जनरली ये मेडिसिन काफ़ी सेफ हैं जनरली।
0: जी ठीक,
1: थोड़े से जो
0: कुछ मिथ हैं या कुछ?
1: जी जी जी हाँ, तो जी आई साइड इफेक्ट जो बोलते हैं, जो बास यानी 20-30% लोगों में थोड़ा सा आपको नौजिया होना, वॉमिटिंग सेंसेशन या वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन है,
0: ठीक है,
1: ये डायरिया है, ये काफ़ी कॉमन है और शुरुआती स्टेज में होते हैं, जब भी आप डोज बढ़ाएं तो थोड़ा होते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म एक्शन वही है कि आप खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम बोलते हैं इसको फूड नॉइज, यानी कॉन्स्टेंटली जो इंसान जो खाने के बारे में सोच रहा है वो उसको ख़त्म करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना नहीं खा, बिल्कुल आप खाना खाएंगे, लेकिन आप जितना जरूर उतना ही खाएंगे,
0: ठीक है,
1: उससे ज्यादा जैसा बोलता हमारा दिल भर रहा कि मैं ये खाऊं, बाज होता है कि आप पेट भरा हुआ भी है, आपके सामने कोई आपके मीठा आपके सामने लाया, फिर भी हम उसको खा लेते हैं, इसको हेडोनिक ईटिंग बोलते हैं, क्योंकि वो हमको एक फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, डोपामिन हमारे जिस्म में, इसलिए हम चीज़ को जाके खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वो खाते हैं, एक्स्ट्रा क्यों खाते हैं, इसी वजह से खाते हैं, तो ये क्रेविंग्स को कंट्रोल कर रहा है।
0: अच्छा,
1: अक्सर हमारा होता है कि जो हमारे जो सेवरी आइटम्स खाने की जो क्रेविंग है, समोसे पकौड़ी है, चुड़वा है, खारा है, आइसक्रीम है, ऐसे जो जो चीजें हैं जो हम एडिशनल खा रहे हैं
0: जी,
1: ये तो इसके क्रेविंग कम करता है।
0: तो ये पॉइंट ये है कि क्रेविंग जो है जो कि बहुत ज्यादा नुकसान है,
1: इसका असर है। तो अब हम बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आप अब हम जब वजन लूज करते हैं नॉर्मली आप भी आप लूज कर सकते हैं,
0: ठीक है,
1: लेकिन हमारी बॉडी खुद अगेंस्ट है बॉडी वजन लूज करने के लिए
0: जी,
1: क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि वी आर डिजाइन टू गेन वेट, कि वजन बढ़ना,
0: अच्छा,
1: हमारी बॉडी के डिजाइन, तो हमारे ब्रेन में है ना ये वेट हमारा सेट हो गया कि आपका वेट ये है, तो वो ऐसा करेगा कि बार बार आपको हंगर हार्मोन्स रिलीज करेगा कि आपको आप उतना खाना खाएं और उतना वेट वजन मेंटेन करें, उसको ही कंट्रोल करता है।
0: ठीक ठीक ठीक,
1: तो खासकर वो हजरात में जो डाइट करने के बावजूद एक्सरसाइज करने में जिसका वजन कंट्रोल नहीं हो रहा, उनके लिए काफी फायदेमंद है, जिसको हार्ट का मसला है उनको काफी है, जिसको फैटी लीवर है उनको मसला है, शुगर है, सिर्फ शुगर है उनको भी फायदा है।
0: अच्छा ठीक,
1: जिसको प्री डायबिटीज है प्री रिवर्स हो जाएगी, जिसको शुगर है न्यूली डायग्नोस है उसकी शुगर रिवर्स हो सकती है, 10-15 किलो अगर आप वजन लूज हुआ
0: तो उसमें रिवर्स हो जाती है, अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं इंसुलिन ले रहे हैं तो क्या वो बिल्कुल खत्म हो जाती है?
1: जी, अब देखिए जो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं इसका मतलब क्या, उनकी शुगर काफी एडवांस है
0: जी,
1: यानी हो सकता है 15-20 साल उनकी शुगर रिवर्स नहीं हो सकती।
0: अच्छा,
1: रिवर्स नहीं हो सकती मतलब पूरी रिवर्स नहीं हो जाएगी, हो सकता है उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाए या खत्म हो जाए
0: जी,
1: लेकिन फिर भी उनको एक दो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है या बहुत कम इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इंजेक्शन कम लग सकते हैं, जैसे कोई 4 ले रहा था तो 1 इंजेक्शन में आ जाएगा, कोई 100 यूनिट ले रहा तो 20 यूनिट पे आ जाएगा, ये काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। जी जी जी, जितना आप जल्दी लेंगे उतना आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा इसमें।
0: ठीक है
1: जी, तो दो किस्म के मेडिसिन हैं, एक मुंजारो है और एक विगोवी बोल की मेडिसिन है, ओजेम्पिक, तो सिमाग्लूटाइड है, और दोनों बहुत ही अच्छे मेडिसिन हैं, काफी रिसर्च बैक्ड अप है, प्रूवन है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन हैं।
0: ठीक
1: जी,
0: और बिल्कुल इनके अगेंस्ट कभी कभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो भी सुनने को भी मिलता है कि अच्छा ये हमारे हार्ट पे इफेक्ट कर रहे हैं या किडनीज पर, मगर जैसे आपने बताया कि बेनिफिशियल है,
1: तो बेनिफिशियल है ये, तो हम जो है दे रहे हैं कि देखिए मोटापा खुद अपने आप में कैंसर कर सकता है
0: जी,
1: 13 कैंसर सिर्फ वजन के ज्यादा होने से, 13 किस्म के कैंसर, आपको मालूम है कि सिर्फ मोटापा जो है सामान्य क्रम के 200 से ज्यादा बीमारी कर सकता है, 229 बीमारियां कर सकता है मोटापा।
0: और अब हम सिर्फ ओबेसिटी को या मोटापे को मोटापे की तरह नहीं बात करते या उस पे डिस्कस करते, उसे एज ए डिजीज डिस्कस करते।
1: बिल्कुल, अब आजकल कई ऑर्गेनाइजेशंस को मान ली हैं, ये इसका मानना है कि ये डिजीज है
0: जी,
1: ये उमुल अमराद है, समझिए
0: जी, बिल्कुल,
1: हर तकरीबन हर बीमारी का एक ये जड़ बोले तो यही है, समझिए।
0: सही सही,
1: चाहे आप शुगर ले लो, हार्ट की बीमारी ले लो, किडनी की बीमारी ले लो, आप ब्लड प्रेशर ले लो, आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ले लो, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ले लो, आप या फिर आप फैटी लीवर ले लो, आप ये तकरीबन बीमारियों का असल हम क्या है, अब तक हम सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर रहे थे
0: जी,
1: जैसे कि किसी को किडनी का मसला हो हम किडनी ट्रीट कर रहे हैं, किडनी डॉक्टर किडनी ट्रीट कर रहे हैं, हार्ट हुआ हार्ट का हार्ट, लेकिन आप पीछे जाएं ऊपर जाएं
0: जी,
1: ये शुरुआत कहाँ है, मोटापे से, तो आप मोटापे को ट्रीट करें, नीचे सब चीजें बच सकते हैं।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी से, मतलब वेट ज़्यादा है तो उसी से डायबिटीज़ की तरफ हम पहुंच जाते हैं
1: जी, जी।
0: और सबसे अहम पॉइंट ये है कि इससे बचा कैसे जाए, जो लिसनर्स आज इस प्रोग्राम में, हमारा मकसद भी यही था कि अपने आप को इससे बचाना है या जहाँ पर है वहीं पर रोक देना है और उसको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें भी कम से कम करते चले जाना है जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक्टिव लाइफस्टाइल का आपने बता दिया, बड़ी हमें डिटेल में बताया, फिर भी पूछना चाहूँगी जैसे कि रूटीन में जो है अगर कोई डायबिटिक है तो वो क्या करे, बाकी ये मेडिसिन ले रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अफराद जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि शायद वीकनेस बहुत ज़्यादा है या इस तरह से, वो तो उन्हें कोई फिर आप वाइटमिन वगैरह देते हैं, कोई सप्लीमेंट साथ देते हैं उसके या नहीं, डायबिटीज जो हैं डायबिटिक्स हैं उनके लिए सप्लीमेंट जो है वो जरूरी
1: है। स्क्रीनिंग करते हैं कि कोई मसला, यानी कोई जैसे कि विटामिन B12 की डिफिशेंसी है या विटामिन डी, अब विटामिन डी तो डिफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है यहाँ पे, तकरीबन लोगों में डी की कमी होती है, तो विटामिन डी तो हम हर एक को प्रिस्क्राइब करते हैं, ऑलरेडी हम लोग देते हैं विटामिन डी। जो लोग टैबलेट्स ले रहे हैं शुगर के लिए, जैसे खासकर ग्लूकोफेज और ले रहे हैं, तो B12 की डिफिशियंसी पाई जाती है, या कोई वेजिटेरियन है तो B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी होता है। बाज़ जो वीकनेस जो आप बोल रहे हैं तो वीकनेस काफ़ी वजूहत हो सकते हैं, तो जैसे कि किसी को आयरन की डिफिशियंसी हो गई है, आयरन की कमी, या फिर हार्ट की वजह से भी हो सकता है, तो ये डेफिनेटली इसके लिए टेस्ट करके पेशेंट के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से, उनके हिसाब से टेस्ट करना है। तो लीवर का कोई मसला नहीं है, किडनी का तो कोई मसला नहीं है, कहीं आयरन का, क्योंकि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आयरन से बहुत काफ़ी खुवत आती है हमारे को, तो अगर आयरन की कमी हो रही है तो आयरन की कमी क्यों हो रही है, कहाँ पर आयरन, मतलब आपका खून नहीं बन रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं लूज हो रहा है, क्या कहीं ब्लीडिंग हो रही है मसलन,
0: ठीक है,
1: या आपकी ग़िज़ा इतनी सही नहीं है कि आपको आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जैसे मसलन बाज़ लोग बेरियाट्रिक सर्जरी जो आजकल कर रहे हैं सर्जरी लोग वजन कम करने के लिए, उनके अंदर अक्सर विटामिनों की काफी डिफिशिएंसी होती है, तो हम वही बोलते हैं कि जो लोग लूज कर रहे हैं वजन सर्जरी से, तो उनको जिंदगी भर जो है विटामिन अक्सर लेना होता है और काफी ज्यादा तादाद मिकदार में लेनी होती है,
0: क्योंकि उसमें जो पोषण है एब्जॉर्प्शन यहाँ होती है, स्पेशल जो हमारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं स्टमक के अंदर, तो जब सर्जरी होती है तो वो
1: काफी उसका एरिया कम होता है, आपका पेट छोटा हो गया तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, 3 से 4 गुना डोज होता है, उनके लिए स्पेशल विटामिन आते हैं वो उनको प्रिस्क्राइब की जाती है।
0: ठीक है, इसमें डॉक्टर जैसे B12 का आपने बताया तो ज़रूरी है कि टेस्ट करवा के लिए जाएं, क्योंकि कुछ अफराद अक्सर ही B12 लेना शुरू कर देते हैं कि हमें वैसे ही शायद कमी है।
1: जी बहुत अच्छा सवाल है, B12 अक्सर जो है लोग नॉर्मली जो है आसाब की वजह से लेते हैं, अक्सर देखिए आप हमारे इंडिया पाक में, इंडो पाक में जो है टैबलेट्स कॉम्बिनेशन में आते हैं मिथाइल कोबलामिन के साथ और थोड़े मेडिसिन मिलकर, या आप ले लीजिए आपके पैरों की जलन के लिए बोल के, और आप देखेंगे B12 काफ़ी हाई रहता है उनका चेक अगर आप करेंगे तो वो उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, अनलेस कि आपका B12 आपका लो है।
0: अच्छा,
1: अगर आपका B12 लो है तो डेफिनेटली आपको जो है, क्योंकि उसके भी अलामत वही होते हैं, पैरों में जलन होना, थोड़ा सा आपको बैलेंस में आउट हो जाना, आपको थोड़ा चक्कर आना, ऐसा हो सकता है B12 डिफिशिएंसी वजह से, तो आप B12 अगर आपका सही है तो फिर आपको जो है काफ़ी रिलीफ मिलेगा उससे, तो आप B12 खा रहे हैं लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो मतलब उसकी कोई दूसरी वजह है।
0: जी जी, और बिल्कुल इस तरह से B12 जो है हम वैसे ही लेते हैं, मगर ये उसमें टेस्ट करवाना ज़रूरी है कि उसका लेवल क्या है। यानी स्टूडेंट्स, अगर आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो हफ्ते को सुबह 8 बजे प्रोग्राम रिपीट किया जाता है तो आप सुन सकते हैं। अब तक कोई मैसेज देना चाहें?
1: जी, कुछ आवाम के लिए एक मैसेज जो आप कल से अगर करना चाह रहे हैं तो ये है कि आप वॉकिंग पे फोकस करिए और रोज़ाना 15 से 20 मिनट बहुत ज़रूरी है, और आप जो है मीठे मशरूबात के ऊपर जो है पानी को तरजीह दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, मशरूबात को कम करिए और अपनी प्लेट को चेंज करिए, वेजिटेबल सब्जियों से भरिए, बहुत ज़रूरी है, और सिंपल जो है आप एक्सरसाइज, यानी आपके पट्टे भी जरूर स्ट्रांग होना ज़रूरी है, एक्सरसाइज जो वर्जिश जो बोलते हैं 10 से 15 मिनट जो है हफ्ते में 2 बार वो भी ज़रूरी है, और सालाना स्क्रीनिंग यानी आप अपना फहस अपना चेक करिए ज़रूरी है। 5 जो चीज़ें मैं आपको बताया था, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, वजन और आपकी कमर का सरकम, ये आप हमेशा चेक करें, इसको हमेशा चेक में रखिए।
0: बिल्कुल
1: जी
0: जी। और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर सदीक मशहूद अहमद और फौजिया शफी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और डॉक्टर साहब ने जो 5 चीज़ें बताई हैं उसे हमने सामने रखना है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।

0: Women in Sports, RJ Safa के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
1: Assalamualaikum साथियों, बहुत सारा ढेर सारा प्यार भरा वेलकम आप सभी लिसनर्स को जो कतर के कोने कोने से हमें सुन रहे हैं. आप ट्यून्ड इन हैं FM 107 पे, जहां चल रहा है शो जिसका नाम है Women in Sports, और मैं हूं आपकी होस्ट सफा. साथियों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस लड़की के बारे में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड में सिर्फ गेम नहीं खेल रही होती, बल्कि वो अपने हौसले, टैलेंट और मेहनत और पुरानी सोच को भी बदल रही होती है. साथियों, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आज के जमाने में सिर्फ कॉम्पिटिशन का नाम नहीं होते, वो प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहाँ ख्वाबों को पर मिलते हैं, जहाँ यंग गर्ल्स को अपनी एबिलिटीज दिखाने का मौका मिलता है, और जहाँ सोसाइटी को एक पावरफुल मैसेज मिलता है कि टैलेंट को किसी जेंडर की जरूरत नहीं. साथियों, एक वक्त था जब कई जगहों पर लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी समझा जाता था, लेकिन आज की दुनिया में फीमेल एथलीट्स ने ये साबित कर दिया है कि स्पोर्ट्स एक सक्सेसफुल करियर, एक आइडेंटिटी और एक इंस्पायरेशन का जरिया भी बन चुका है. सोचिए, जब एक छोटी सी बच्ची टेलीविजन पर किसी फीमेल एथलीट को मेडल जीतते हुए देखती है ना, स्टेडियम में अपने मुल्क का फ्लैग उठाते हुए देखती है, या पोडियम पर खड़े होकर नेशनल एंथम सुनती है, तो भाई उसके दिल में एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है. वो ये सोचती है कि भाई अगर ये लड़की कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. और यही वो मोमेंट होता है जहाँ एक रोल मॉडल एक पूरी जनरेशन को मोटिवेट कर देता है. भाई देखिए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की ना सबसे बड़ी खासियत उनकी विजिबिलिटी है. जब कोई फीमेल एथलीट किसी नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कामयाबी हासिल करती है, तो उसकी जीत सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं रहती, वो उसकी फैमिली, कम्युनिटी और पूरे मुल्क के लिए फख्र का बायस बन जाती है. देखिए भाई, एक बेटी का अपना शहर, अपने स्टेट या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक ऐसा लम्हा होता है जो लोगों की सोच बदल कर रख देता है. ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होती, बल्कि ये एक मैसेज होता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलने पर गर्ल्स हर फील्ड में अपना नाम बना सकती हैं. साथियों, आज हम एक ऐसी एथलीट के बारे में बात करेंगे जिसने ऐसे स्पोर्ट्स में अपनी जगह बनाई जहां अक्सर औकात आप कह लें कि भाई मर्दों की डोमिनेंस समझी जाती है. हम बात कर रहे हैं रोंडे रोसे की, जो मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया की एक मशहूर फीमेल एथलीट हैं. रोंडा ने अपनी परफॉर्मेंस और डिटर्मिनेशन से साबित किया कि स्ट्रेंथ, करेज और कंपेटिटिव स्पिरिट किसी एक जेंडर की प्रॉपर्टी नहीं होते. साथियों, जब रोंडा रोसे ने कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अपना करियर शुरू किया, तो बहुत से लोगों ने उन्हें मना किया था कि भाई वुमेन इस लेवल के टफ कॉम्पिटिशंस का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और अचीवमेंट्स से ना सिर्फ क्रिटिक्स को जवाब दिया, बल्कि वुमेन कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए नए डोर्स भी ओपन किए. भाई उनकी सक्सेस ने दुनिया भर की यंग गर्ल्स को इंस्पायर किया कि अगर पैशन और डेडिकेशन हो तो कोई भी फील इम्पॉसिबल नहीं होती. और साथियों, ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टार्स की कहानी नहीं है, हर मुल्क, हर सिटी और हर कम्युनिटी में ऐसी टैलेंटेड गर्ल्स मौजूद हैं भाई, जो लोकल टूर्नामेंट्स से अपना सफर शुरू करती हैं, स्कूल कॉम्पिटिशन्स, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप्स और कम्युनिटी स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उनके करियर में. यही छोटे छोटे टूर्नामेंट्स अक्सर फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स की पहली सीढ़ी बन जाते हैं उनके लिए. साथियों, स्पोर्ट्स गर्ल्स को सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं देता, बल्कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी डेवलप.

जब एक लड़की किसी टीम का हिस्सा बनती है तो वो ये सीखती है कि चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, प्रेशर में बेहतर डिसीजंस कैसे लेने हैं और अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट कैसे रहना है। ये क्वालिटीज सिर्फ स्पोर्ट्स ग्राउंड तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ फील्ड्स में भी काम आती हैं भाई आगे चलकर। देखें, इस पूरे सफर में फैमिली और कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती। जब पेरेंट्स अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराने के लिए एनकरेज करते हैं तो वो सिर्फ एक्टिविटी स्पोर्ट्स नहीं करा रहे होते बल्कि वो उनके कॉन्फिडेंस और फ्यूचर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब एक लड़की टूर्नामेंट जीतती है और उसका नाम अनाउंस किया जाता है तो उसकी खुशी के साथ साथ उसके घर वालों और कम्युनिटी का फख्र भी बढ़ता है। भाई ऐसे मोमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी का नजरिया भी तो चेंज कर देते हैं। देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया ने भी फीमेल एथलीट्स को एक पावरफुल प्लेटफॉर्म दिया है। आज के एथलीट की जर्नी, उसकी स्ट्रगल्स और उनकी अचीवमेंट्स दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकती हैं सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। जब यंग गर्ल्स सक्सेसफुल फीमेल एथलीट्स की स्टोरी सुनती हैं तो वो उन्हें नए पर देती हैं, यानी कि उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स मिलते हैं उन्हें। साथियों, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स असल में सिर्फ मेडल जीतने का नाम नहीं होते, ये इक्वालिटी, कॉन्फिडेंस और एम्पावरमेंट का जरिया होते हैं। हर वो लड़की जो स्पोर्ट्स फील्ड में कदम रखती है ना, वो अपने लिए एक नया रास्ता बनाती है और दूसरी लड़कियों के लिए भी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती है। तो भाई, आज का जमाना हमें ये मैसेज दे रहा है कि लड़कियों को सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म्स भी चाहिए, क्योंकि जब एक लड़की जीतती है तो सिर्फ एक एथलीट नहीं जीतती बल्कि एक पूरी जनरेशन इंस्पायर होती है। तो भाई, हमारे लिसनर्स, आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके नज़दीक वो कौन सी फीमेल एथलीट है जिसने आपको इंस्पायर किया हो या आपकी सोच बदली हो। भाई, हमें अपनी स्टोरी ज़रूर मैसेज कीजिएगा ऑन 666-22-107। आप हमें चाहें तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका हैंडल है @FM107Qatar। आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM107Qatar और मैं हूँ सफा। और भाई, हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि हिम्मत, अचीवमेंट और नए ख्वाबों की कहानियाँ होती हैं। तो चलिए साथियों, अपना ये सफर शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रोंडा रॉसे की, एक ऐसी एथलीट जिसने ये प्रूव किया कि कभी कभी एक शख्स की कामयाबी पूरी दुनिया के लिए नए रास्ते खोल देती है। रोंडा की जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर टैलेंट के साथ डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन हो तो सबसे बड़ी रुकावट भी एक दिन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। साथियों, रोंडा रॉसे को दुनिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA की दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल फीमेल एथलीट में से एक के तौर पर जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका स्पोर्ट्स का सफर MMA से नहीं बल्कि जूडो से शुरू हुआ था। और यही उनकी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। साथियों, देखिए, रोंडा का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनकी अम्मी एन मारिया डी मार्स खुद एक सक्सेसफुल जूडोका थी और वो पहली अमेरिकन एथलीट थी जिसने वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। रोंडा ने बहुत छोटी उम्र से मार्शल आर्ट्स और जूडो की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और कंपटीशन बचपन से ही शामिल हो गए थे। जूडो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहां सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि टेक्निक, टाइमिंग, बैलेंस और मेंटल फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोंडा ने अपने इस स्पोर्ट्स में एक्सेप्शनल स्किल्स का मुजाहिरा किया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के टॉप जूडोकास में शुमार हो गई। फिर आया साल 2008, जब बीजिंग ओलंपिक गेम्स में रोंडा रॉसे ने हिस्ट्री क्रिएट की। उन्होंने जूडो कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो पहली अमेरिकन वुमेन बन गई जिसने ओलंपिक जूडो में मेडल हासिल किया था। ये अचीवमेंट्स इसलिए भी खास हैं क्योंकि ओलंपिक लेवल पर जूडो में कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल माना जाता है। जरा सोचिए, एक यंग एथलीट जो एक ख्वाब लेकर ओलंपिक स्टेज तक पहुंची और फिर अपने मुल्क के लिए मेडल जीत कर वापस आई। ये सफर एक आप कह लें कि पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी, ये उन तमाम लड़कियों के लिए इंस्पायरेशन था जो ये सोचती थी कि भाई वो भी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकती हैं। रोंडा ने दिखा दिया कि जवाब हाँ है, वो जरूर पहुंच सकती हैं। लेकिन साथियों, रोंडा का असली चैलेंज अभी बाकी था। जूडो के बाद उन्होंने एक ऐसी फील्ड का इंतखाब किया जहां लड़कियों के लिए, विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड थी।
जो कि था मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA। अच्छा MMA एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जहां फाइटर्स आप कह लें कि मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स जैसे कि बॉक्सिंग हो गई, रेसलिंग हो गई, जिक्सु हो गया और जूडो का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जब रोंडा ने MMA में कदम रखा ना तो बहुत सारे लोगों ने उन पर सवाल उठाया था, क्या लड़कियां इस लेवल के फिजिकल कंपटीशन में सक्सेसफुल हो सकती हैं? क्या ऑडियंस फीमेल फाइटर्स को देखना पसंद करेगी या क्या स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं? अच्छा उस वक्त MMA की दुनिया में विमेन फाइटर्स के लिए जगह बहुत छोटी थी, मतलब इतना नहीं था स्कोप। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी MMA ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी UFC, इनके प्रेसिडेंट दाना वाइट ने 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भाई विमेन फाइटर्स के UFC में आने के चांसेस नहीं हैं। उनका फेमस जवाब था नेवर। लेकिन साथियों रोंडे रोसे उन लोगों में से नहीं थी जो सिर्फ बातों से जवाब देती, भाई इन्होंने तो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। देखिए 2011 में प्रोफेशनल MMA डेब्यू करने के बाद रोंडे ने एक के बाद एक विक्ट्रीज हासिल करना शुरू कर दी और भाई उनका सबसे फेमस मूव था आर्म बार सबमिशन, जिसमें वो अपनी ओपोनेंट को बहुत जल्दी हरा दिया करती थी। उनकी फाइटिंग स्टाइल पावरफुल भी थी और टेक्निकली ब्रिलियंट भी थी भाई। साथियों रोंडा की फाइट सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं होती थी, ना ना ना ना ना, ना। वो एक एक्सपीरियंस बन जाती थी। फैंस उनकी स्पीड, उनका कॉन्फिडेंस और भाई उनकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होने लगे थे। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं रही थी बल्कि एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बन चुकी थी। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि MMA इंडस्ट्री को अपनी सोच बदलना पड़ गई। समझ रहे हैं आप, सोच ही बदल कर रख दी। जो दरवाजा कभी बंद समझा जाता था ना लेडीज के लिए, रोंडे की कामयाबी ने उन दरवाजों को खोल दिया। और भाई फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट जिसने विमेंस MMA का फ्यूचर बदल कर रख दिया। यानी कि भाई 2012 में UFC ने ऑफिशियली फीमेल फाइटर्स को साइन करना शुरू कर दिया और रोंडे रोसे UFC की पहली फीमेल फाइटर बन गई। उन्हें UFC विमेंस बैंडमिन वेट चैंपियनशिप का पहला चैंपियन भी बनाया गया। अच्छा 23 फरवरी 2013 को UFC 157 में रोंडे ने UFC के लिए अपनी पहली टाइटल डिफेंस की। अच्छा ये जो इवेंट था ना वो इसलिए भी हिस्टोरिक था क्योंकि पहली बार एक फीमेल फाइटर ने UFC के मेजर पे पर व्यू इवेंट में अट्रैक्शन के तौर पर परफॉर्म किया था। अच्छा ये सिर्फ रोंडा की विक्ट्री नहीं थी, ये उन तमाम फीमेल एथलीट्स की विक्ट्री थी जो सालों से अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रही थी। रोंडे रोसे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया साथियों, कभी कभी आपको मौका दिया नहीं जाता बल्कि आप अपनी एक्सीलेंस से मौका क्रिएट करते हैं। अच्छा उनकी सक्सेस के बाद दुनिया भर में विमेंस कॉम्बैट स्पोर्ट्स को ज्यादा अटेंशन मिलने लगी। बहुत सी यंग गर्ल्स ने मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग और MMA को करियर ऑप्शन के तौर पर देखना शुरू कर दिया भाई। और यही स्पोर्ट्स की असली पावर होती है। एक एथलीट सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से नहीं जीतती बल्कि वो अपने बाद आने वालों के लिए रास्ता बनाती है। साथियों देखिए रोंडे रोसा की कहानी हमें ये भी बताती है कि क्रिटिसिज्म और डाउट अक्सर सक्सेस का हिस्सा होते हैं। जब लोग कहते हैं ना कि भाई ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, तो वो असल में एक चैलेंज होता है। और भाई चैंपियंस वो होते हैं जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल देते हैं। तो भाई आज दुनिया में हजारों फीमेल एथलीट्स हैं जो अपने अपने फील्ड्स में नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, स्विमिंग हो या कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो। भाई हर जगह विमेन अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर रही हैं। रोंडे रोसा का नाम स्पोर्ट्स हिस्ट्री में इसलिए याद रखा गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ फाइट्स नहीं जीती, ना ना ना ना ना, असल में उन्होंने एक माइंडसेट जीता। उन्होंने साबित किया कि भाई टैलेंट को जेंडर के बॉक्स में बंद करना मुनासिब नहीं हो सकता। तो भाई लिसनर्स, आज का सवाल आपके लिए ये है कि आप ये बात समझते हैं कि एक सक्सेसफुल एथलीट पूरी सोसाइटी की सोच बदल कर रख सकता है? और भाई हमें बताएं कि ऐसी कौन सी फीमेल एथलीट है जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया?
अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं 666-222-107 पर, या सोशल मीडिया पर हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107 Qatar। आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM107 Qatar। मैं हूं आपकी होस्ट सफा, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो हमें याद दिलाती हैं कि ड्रीम्स की कोई लिमिट नहीं होती, बस हौसला, मेहनत और यकीन चाहिए होता है।

0: Women in Sports, RJ Safa के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं रोंडा रोसे के बारे में, जिनका नाम दुनिया के सबसे फेमस फीमेल एथलीट्स में शुमार होता है। वो एक ओलंपिक मेडलिस्ट, जूडो चैंपियन, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर, यूएफसी की पहली फीमेल चैंपियन और प्रोफेशनल रेसलिंग की स्टार भी रह चुकी हैं। लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे भाई सिर्फ टैलेंट नहीं था, इसके पीछे सालों की मेहनत, चैलेंजेस, फेलियर्स और एक ऐसा माइंडसेट था जिसको हराना बहुत मुश्किल था। साथियों, रोंडा जेन रोसे की पैदाइश 1 फरवरी 1987 को रिवरसाइड, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। उनकी जिंदगी का सफर बचपन से ही थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा है। रोंडा तीन बहनों में सबसे छोटी थी। उनकी माँ आना मरिया डी मारिस खुद एक सक्सेसफुल जूडो एथलीट थी और वो पहली अमेरिकन वुमेन थी जिसने वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। रोंडा के लिए मार्शल आर्ट्स और कॉम्पिटिशन का एनवायरमेंट घर से ही शुरू हो गया था भाई उनके। देखो भाई, बचपन से ही ना रोंडा को एक मुश्किल का सामना करना पड़ा था। उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती थी और वो छोटी उम्र में क्लियरली सेंटेंसेस नहीं बोल पाती थी। अच्छा, उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया और उनकी माँ ने उनकी ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस बिल्ड पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। रोंडा ने बाद में ये भी बताया कि भाई स्पोर्ट्स ने उन्हें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं दी बल्कि अपनी आवाज़ और अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में मदद भी दी। अच्छा, जब रोंडा सिर्फ 11 साल की थी, उन्होंने जूडो की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उनकी माँ उनकी कोच भी थी और उन्होंने रोंडा को डिसिप्लिन, टेक्निक और कॉम्पिटिशन की इम्पोर्टेंस भी समझाई। अच्छा, जूडो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ सिर्फ ताकत काम नहीं करती बल्कि स्ट्रेटजी, बैलेंस और ओपोनेंट को भी समझना जरूरी होता है। रोंडा ने बहुत जल्दी इस स्पोर्ट्स में अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटी दिखाना शुरू कर दी थी। अच्छा, जो ये जो टीन एजेस होती हैं, टीन एज में रोंडा ने नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र फीमेल जो जूडो का बन जाती हैं वो बन गई थी। ये अचीवमेंट खुद में ही एक बहुत बड़ी बात थी भाई, क्योंकि ओलंपिक के लेवल तक पहुंचना दुनिया के हर एथलीट का ड्रीम होता है। सिर्फ ड्रीम ही करते रहते हैं, कुछ लोग तो उस तक पहुंच भी नहीं पाते। अच्छा, फिर आया 2008 का साल। ठीक है, 2008 का साल जब आया तो रोंडा ने अपने करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, यानी कि बीजिंग ओलंपिक गेम्स में उन्होंने जूडो कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा, इसके साथ वो पहली अमेरिकन वुमेन बन गई जिसने ओलंपिक जूडो में मेडल हासिल किया था। अच्छा, ये मोमेंट सिर्फ रोंडा के लिए नहीं था बल्कि अमेरिकन वुमेन्स जूडो के लिए भी हिस्टोरिक था। अच्छा, लेकिन रोंडा का सफर ना यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। ओलंपिक के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने जूडो से ट्रांजैक्शन करके मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA में कदम रखा। अच्छा, ये डिसीजन ना आपको सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन ये डिसीजन वैसे आसान नहीं था। MMA उस वक्त ज़्यादातर मर्दों के स्पोर्ट्स पर फोकस करता था और उस स्पोर्ट्स को ना समझा यही जाता था कि ये आदमियों का गेम है। मतलब ये वुमेन फाइटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत लिमिटेड थी वहाँ पर। मतलब इतनी कि लोग समझते थे कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, जब रोंडा ने MMA शुरू किया ना तो उन्हें कई डाउट्स का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग ये समझते थे कि भाई वुमेन इन स्पोर्ट्स में ऑडियंस अट्रैक्ट ही नहीं कर सकती। कुछ लोग कहते थे कि भाई कॉम्बैट स्पोर्ट्स वुमेन औरतों के लिए, खातिन के लिए होता ही नहीं है, स्टेबल नहीं है। लेकिन रोंडा ने जवाब डिबेट से नहीं दिया, ना ना ना ना ना, ना। बल्कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दी। मामला यही था ना कि ऑडियंस अट्रैक्ट होगी कि नहीं, तो भाई उन्होंने परफॉर्मेंस से जवाब दिया। अच्छा, फिर आया 2011 का सीजन। अच्छा, 2011 में प्रोफेशनल MMA करियर शुरू करने के बाद रोंडा ने अपनी ओपोनेंट्स के खिलाफ इंप्रेसिव विक्ट्रीज हासिल की। अच्छा, उसी दौरान उनका सिग्नेचर मूव आर्म बार सबमिशन बन गया था, जिससे वो फाइटर्स को जल्दी फिनिश कर दिया करती थी। अच्छा, लोगों को क्या इंस्पायर कर रहा था, लोगों को क्या मजा आ रहा था, उनकी स्पीड, टेक्निक्स और कॉन्फिडेंस में एमएमए में उनका दुनिया भर में एक यूनिक आइडेंटिटी बन गई। साथ ही रोंडा की पर्सनालिटी भी उनकी पॉपुलैरिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनी। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं थी, वो एक एंटरटेनर भी बन चुकी थी। उनका कॉन्फिडेंस, उनके इंटरव्यूज, उनका स्टाइल, भाई उनकी अचीवमेंट पर फैंस को यकीन आना शुरू हो गया था। भाई वो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ऐसी पर्सनालिटी बन गई थी जो फाइट से पहले भी हेडलाइंस में होती थी और फाइट के बाद तो होना ही था क्योंकि वो जी चाहा करती थी। साथ ही 2012 में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जब यूएफसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए पोजीशंस में से एक है, उन्होंने पहली बार फीमेल फाइटर्स को ऑफिशियली साइन किया। अरे भाई, रोंडा रोसे यूएफसी की पहली फीमेल फाइटर बनी और उन्हें इनॉग्रल यूएफसी विमेंस बैंटमवेट चैंपियन का टाइटल दिया गया। अच्छा, 2013 में यानी 2013 में यूएफसी 157 इवेंट में रोंडा ने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की और वो पहली विमेन बन गई जिसने यूएफसी पे पर व्यू में इवेंट को हेडलाइन किया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था। ये मोमेंट विमेन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का एक चैप्टर बन गया, यानी कि हिस्ट्री बन गया। भाई रोंडा रोसे के करियर की कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, यूएफसी विमेंस बैंटमवेट चैंपियनशिप, स्ट्राइक फोर्स विमेंस बैंटमवेट चैंपियनशिप और मल्टीपल अनडिफीटेड एमएमए विक्ट्रीज शामिल हैं। साथियों, वो एमएमए से आगे बढ़कर प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में भी गईं। देखिए, यहां तक तो उनका सफर लिमिटेड नहीं था। वो एमएमए से आगे बढ़कर प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में भी आगे गईं और डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। रोंडा के बारे में भाई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो मैं चाहूंगी कि आपके साथ शेयर करूं क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी का एक यूनिक हिस्सा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रोंडा का निकनेम रॉडी है। जी हाँ, रॉडी, जो लेजेंडरी प्रोफेशनल रेसलर रॉडी पाइपर से इंस्पायर्ड है। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा था और उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म्स में भी काम किया जिनमें से द एक्सपेंडेबल्स 3 और फ्यूरियस 7 शामिल हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि रोंडा सिर्फ एक फाइटर नहीं थी बल्कि एक ऑथर भी थी। जी हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था माई फाइट योर फाइट, ये लिखी जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया। लेकिन साथियों, रोंडा रोसे की सबसे बड़ी लेगेसी सिर्फ उनके टाइटल्स नहीं है, उनकी असल कामयाबी ये है कि उन्होंने हजारों यंग गर्ल्स को कॉन्फिडेंस दिया कि वो अपने लिए इस फील्ड में जगह बना सकती हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स के लिए ना एक बहुत पावरफुल टूल किट बन गया है। जब एक लड़की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो वो सिर्फ रनिंग, फाइटिंग, स्विमिंग या प्लेइंग नहीं कर रही होती या ये सब कुछ नहीं सीख रही होती, सिर्फ वो कॉन्फिडेंस सीख रही होती है। वो सीखती है कि अपनी जगह कैसे बनाई जाए, वो सीखती है कि प्रेशर में कैसे परफॉर्म किया जाए, वो सीखती है कि कैसे चैलेंजेस का सामना किया जाए। और हाँ, रोंडे की जर्नी हमें ये बताती है कि जब आप किसी ऐसी फील्ड में एंटर करते हैं ना जहाँ लोग आप पर डाउट करते हैं तो हर सक्सेसफुल स्टेप आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। एक एथलीट जब स्टेडियम या अरीना में खड़ी होती है ना तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रही होती या वो सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ी होती बल्कि उन सब के लिए खड़ी होती है जो कभी कभी ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये नामुमकिन है या ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कॉम्बैट स्पोर्ट्स ने रोंडा को डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सिखाया। हर फाइट से पहले ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, मेंटल प्रिपरेशन और ओपोनेंट की रिस्पेक्ट जरूरी होती है। ये क्वालिटीज जिंदगी के हर फील्ड में काम करती हैं साथियों। स्पोर्ट्स हमें ये सिखाता है कि जीत इम्पॉर्टेंट है लेकिन जर्नी और कैरेक्टर उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोंडा ने एक ऐसी फील्ड में कामयाबी हासिल की जहाँ कभी ये कहा जाता था कि यहाँ पर भाई औरतों का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन उनकी सक्सेस ने ये प्रूव किया कि जब टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भाई इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। तो भाई आज जब दुनिया भर की यंग गर्ल्स स्पोर्ट्स में अपने ड्रीम्स फॉलो कर रही है ना, तो उनके पीछे रोंडा जैसी एथलीट्स की इंस्पिरेशन भी मौजूद है। उन्होंने सिर्फ चैंपियनशिप नहीं जीती, उन्होंने सोच जीती। साथियों, स्पोर्ट्स हमें ये सिखाता है कि हमारी जो बॉडी है ना, सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ, पावर और कैपेबिलिटी का जरिया है। देखिए, हर लड़की के अंदर पोटेंशियल है कि वो अपनी पहचान बनाए, अपने गोल्स अचीव करे और दुनिया को अपनी एबिलिटी दिखाए। तो साथियों, आज के एपिसोड के इख्तिताम पर पहुंचते हुए मैं चाहती हूं कि आप कुछ देर के लिए रोंडा की जर्नी को याद करें, एक ऐसी एथलीट की जर्नी जिसने हमें ये सिखाया कि कभी कभी दुनिया आपके लिए दरवाजे बंद कर देती है। लोग आपकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन असली चैंपियन वो होती है जो इन आवाजों को अपनी मंजिल के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देती, बल्कि अपनी मेहनत, डिसीजन और टैलेंट से उन्हीं बंद दरवाजों को खोल देती है। देखिए भाई, रोंडा की कहानी सिर्फ एक फाइटर की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है, ये एक सोच की कहानी है। उस सोच की कहानी है जहाँ एक इंसान अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने के बजाय अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। उन्होंने जूडो के मैट से लेकर MMA के केज तक एक ऐसा सफर तय किया जहाँ हर कदम पर चैलेंजेस थे, लेकिन हर चैलेंज ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। उनकी जिंदगी हमें ये मैसेज देती है कि कामयाबी हमेशा सीधे रास्ते से और आसानी से नहीं मिलती, कभी कभी आपको नए रास्ते अपने लिए खुद बनाने पड़ते हैं और कभी कभी आपको पहला कदम उठाना पड़ता है जब कोई और आप पर यकीन करे ना करे, लेकिन आपको खुद पर यकीन होता है। और कभी कभी आपको अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित करना पड़ता है कि आप किस कदर कैपेबल हैं। साथियों, स्पोर्ट्स की खूबसूरती भी यही है। स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल्स, ट्रॉफीज और रिकॉर्ड्स का नाम नहीं होता, स्पोर्ट्स एक स्कूल है जहाँ जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जा सकते हैं। ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, पेशेंस सिखाता है और सबसे बढ़कर खुद पर यकीन रखना सिखाता है। रोंडा ने सिर्फ MMA में कंपटीशन नहीं किया, उन्होंने एक प्रसेप्शन को चैलेंज किया। उन्होंने ये प्रूफ किया कि टैलेंट और डिसीजन का कोई जेंडर नहीं होता। आज का हमारा मैसेज बहुत सिंपल है साथियों, अपने ख्वाबों को छोटा मत समझें, अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखें, और अगर कोई कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो अपनी मेहनत से जवाब दें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा चेंज वही लोग लेकर आते हैं जो पहली दफा एक नया कदम उठाते हैं। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM 107 को अपना वक्त दिया और हमारे साथ फीमेल एथलीट्स की इंस्पायरिंग जर्नी को एक्सप्लोर किया। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों, स्कूल्स और कम्युनिटीज में गर्ल्स को स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करें, उन्हें सपोर्ट दें, उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करें और उन्हें ये कॉन्फिडेंस दें कि वो जो चाहें वो अचीव कर सकें। क्योंकि जब एक लड़की को सपोर्ट मिलता है ना, तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिएगा, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। हर दिन दुनिया की किसी कोने में कोई ना कोई एक लड़की अपना पहला स्टेप ले रही होती है, कोई नया रिकॉर्ड बना रही होती है या नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही होती है, और कोई अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कर रही होती है। उन सब के लिए हमारी तरफ से एक मैसेज है भाई, कि आपकी मेहनत इम्पॉर्टेंट है, आपका टैलेंट इम्पॉर्टेंट है और आपके ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM 107 खतर। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, सीखते रहिए और अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करते रहिए। स्टे स्मार्ट, स्टे मोटिवेटेड और हमेशा याद रखिए कि चेंज लाने के लिए कभी कभी सिर्फ एक हिम्मत भरा कदम ही काफी होता है। इसी नोट के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, और फिर मुलाकात होगी एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है। एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें। एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है, जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं, जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
3: द रिक्वेस्ट शो
2: हर शाम 4-5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस दिलचस्प हलके में आप सबका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। सामने किराम, प्रोग्राम का नाम है तहफीमुल कुरान और कुरान के इफ़हाम व तफहीम के लिए हमें एक बात की वजाहत जाननी पड़ेगी और कुरान के इफ़हाम व तफहीम के हवाले से ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कुरान ने इंसानी तरबियत के हवाले से क्या तरीक़ा इख्तियार किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुरान करीम हमेशा बराह रास्त ये नहीं कहता कि ये करो ये ना करो, यूँ बनो यूँ ना बनो, बल्कि बहुत से मकामात पर पहले इंसान को इंसान से मुतारिफ कराता है। पहले उसकी नफसी साख्त, उसके बातिन, उसकी कमज़ोरियों और उसके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाता है, फिर उसके बाद इस्लाह और तरबियत की राह दिखाता है। गोया कुरान का मनहज ये है कि इलाज से पहले तशखीस हो, ये एक बुनियादी तरबियती उसूल है। अगर आप इंसान की तबीयत को समझे बगैर उसे बदलने निकलेंगे तो मुमकिन है आप बहुत सी हिदायत दे दें लेकिन इन हिदायत का असर महदूद रहे, क्योंकि सही तरबियत वही हो सकती है जो इंसानी फितरत को पहचान कर की जाए। हम कभी बाज़ कुरानी आयात पढ़ते हैं और जहन में सवाल आता है कि यहाँ तो कोई बराह रास्त हुक्म नहीं दिया गया, सिर्फ इंसान की कैफियत बयान की गई है, तो इस बयान का फ़ायदा क्या है? लेकिन यही वस्फी आयात दरअसल इंसान की नफसियाती तशखीस हैं। कुरान हमें बता रहा है कि इंसान किन हालात में किस तरफ मायल हो सकता है, कौन सी कमज़ोरी उसमें छुपी हुई है और कौन सा माहौल उसे किस रवैये की तरफ ले जा सकता है। यही इल्म बाद में तरबियत का नुक्ता आगाज बनता है। अमेरिका के तालीमी फ़लसफ़ी जॉन डिवी ने भी एक अहम उसूल बयान किया था कि हर तालीमी फ़लसफ़े को इंसानी तबीयत के सही फहम से आगाज़ करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि कुरान इस उसूल को सदियों पहले एक नहायत जामे अंदाज में हमारे सामने रख चुका है। पहले इंसान को समझो फिर उसे तरबियत दो, इरशाद खुदावंदी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى كلا إن الإنسان ليطغى يعني خبردار بشك إنسان سركشي کرتا ہے जब वो अपने आप को बेनियाज समझने लगता है। और कीजिए, यहाँ फौरन ये नहीं कहा गया कि सरकशी न करो, बल्कि सरकशी के पीछे काम करने वाली एक दाखिली कैफियत बताई गई और वो क्या है? इस्तिग्ना का एहसास। यानी इंसान हकीकतन बेनियाज हो या ना हो, अगर वो अपने आप को बेनियाज समझने लगे, अगर उसे ये एहसास पैदा हो जाए कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद काफ़ी हूँ, मेरा इल्म काफ़ी है, मेरा इख्तियार काफ़ी है, मेरी ताकत काफ़ी है, तो यही कैफियत तुग़यान की पहली निशानी है। एक नहायत बारीक नफसियाती नुक्ता है। इंसान जब ये सोचने लगता है कि मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं, मुझे

0: की अमानत है, ये जिम्मेदारी है। इस जगह मुझे इसलिए रखा गया है कि मैं अहल लोगों को, काबिल लोगों को आगे लाऊं, कामयाब मंसूबों को सपोर्ट करूं, माशरे में खैर के मौके पैदा करूं और हर उस शख्स का हाथ थामूं जो सही काम करना चाहता है। यही शुक्र है, यही नेमत को मुन्निम की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। कभी हम कहते हैं सामने कराम के यार फलां को लगा दिया, क्या करें, अपना आदमी था, तो इसके नताइज संगीन हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को अहम जिम्मेदारी दे दें जो इस काम के अहल नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो दोस्त है या अजीज है, तो नुकसान उसका काफ़ी बड़ा हो सकता है। मुमकिन है पूरा इदारा मुतासर हो, लोगों के हकूक ज़ाये हों, काबिल अफराद पीछे रह जाएं। इसलिए किसी नाअहल को सिर्फ ताल्लुक की बुनियाद पर आगे बढ़ाना अमानत में खयानत बन सकता है। तो सामने कराम, मनसब अगर नेमत है तो उसका शुक्र यह है कि उसे हक अमानत और सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। मज़ीद मनसब का सही शुक्र यह भी है कि इंसान मिफ्ताहुन लिल खैर बने, यानी खैर की कुंजी और शर के रास्ते बंद करे। खैर की कुंजी बनने का मतलब यह है कि अल्लाह सुभान व तआला ने किसी शख्स को अगर वसी दौलत दी है, अब क्या वो सिर्फ इस माल को बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट या नंबर से नापता है, या इस दौलत को जिंदा खैर में बदलता है, यानी बीमारों के इलाज, तलबा को यानी एकेडमिक लाइन में सपोर्ट करना वगैरह वगैरह, नेकी के कामों में इस्तेमाल करना, तो ओवरऑल माल का शुक्र ये नहीं कि आप खुद तकलीफ में रहें। इस्लाम ये नहीं कहता कि नेमत से फ़ायदा ना उठाएं। आप अच्छा घर रख सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने अहल वयाल पर ज़रूर खर्च करें, मगर सवाल यह है कि अल्लाह ने अगर आपको इतना दिया है जो आपकी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है, तो बाकी माल का क्या किरदार अदा किया आपने। अब शुक्र का ताल्लुक ये सिर्फ माल से नहीं, आपकी अक़ल भी नेमत है। कुछ लोगों के पास गैर मामूली तजसियाती ज़हनियत होती है, इसे हम इंग्लिश में एनालिटिकल एबिलिटी कह सकते हैं, तो वो पेचीदा मसाइल समझते हैं, निज़ामों का तजिया कर सकते हैं। तो अब सवाल ये कि जहानत को कहाँ इस्तेमाल किया गया, लोगों को नीचा दिखाने में, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स जीतने में, या वाकई माशरे के मसाइल हल करने में। अगर अल्लाह ने अकल दी तो उस अकल का शुक्र यह है कि उसे खैर, इस्लाह और हक की खिदमत में लगाया जाए। इसी तरह बाज़ लोगों को गैर मामूली क़ुव्वत बयान मिलती है, वो बोले तो लोग सुनते हैं, एक जुमला हज़ारों लोगों तक पहुंच जाता है, ये भी नेमत है। अब इस नेमत का शुक्र क्या होगा, इस ज़बान से नफ़रत फैलाई जाए, लोगों की इज्जतें उछाली जाएँ, या इस ज़बान को इल्म, इस्लाह, उम्मीद, अदल और खैर का ज़रिया बनाया जाए। अगर एक बच्चा बचपन ही से ये समझ ले कि मेरी हर सलाहियत एक अमानत है और हर अमानत का मसरफ अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होना चाहिए, तो उसकी पूरी ज़िंदगी का तसव्वुर बदल जाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि पहली जमात से यूनिवर्सिटी तक एक बच्चे को मुख्तलिफ उम्रों के मुताबिक शुक्र की तरबियत दी जाए, छोटा हो तो उसे सिखाया जाए, तुम्हारी आँख नेमत है, उसे गलत चीज़ देखने में इस्तेमाल न करो, तुम्हारी ज़ुबान नेमत है, उससे किसी को तकलीफ़ न दो, तुम्हारा वक्त नेमत है, उसे ज़ाया न करो, कुछ बड़ा हो तो तुम्हारी ज़हानत नेमत है, तुम्हारे वालिदैन नेमत हैं, तुम्हारे दोस्त नेमत हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुँचे तो तुम्हारी डिग्री नेमत है, तुम्हारा प्रोफेशन नेमत है, तुम्हारा पोजीशन नेमत है, और हर नेमत के साथ एक सवाल हो कि मैं उसे अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर सिर्फ ये एक सिफत मजबूत हो जाए, शुक्र की सिफत, तो माशरे की शक्ल बदल सकती है। सामने कराम, कुरान एक और सिफत बयान करता है, मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन असीम, और एक मकाम पर मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन मुरीब, यानी खैर से रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, इस तरह कहा गया है। तो यहाँ एक बारीक नुक्ता है कि कभी इंसान खुद किसी की चीज़ नहीं छीन रहा होता, वो सिर्फ खैर का रास्ता रोक रहा होता है। कुरान उसे एतदा यानी ज्यादती के साथ जोड़ता है, क्यों, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी के हक में आने वाली खैर को रोक देना भी उसके हक पर हमला बन जाता है। फर्ज कीजिए एक शख्स किसी नौकरी के लिए बिल्कुल अहल है, उसके पास इल्म है, तजुर्बा है, अखलाक है, सलाहियत है। अब किसी ने आपसे उसके बारे में पूछा, आप जानते हैं कि वो क्वालिफाइड है, लेकिन आप हसद या ज़ाती नाराज़ी की वजह से कहते हैं, नहीं, उसमें कुछ मसाइल हैं, मुझे नहीं लगता उसे लेना चाहिए, शायद वो फिट ना हो। तो आपने बाजार उसके जेब से कुछ नहीं लिया, लेकिन आपने उसके लिए आने वाली खैर को रोका है। और अगर आपने झूठ या मुबालगा भी किया तो ये वाज़ह ज़ुल्म है, यही मनाअन लिल खैर का ख़तरा है। बाज़ लोग खुद कामयाब ना हो तो भी मसला नहीं, मगर दूसरा कामयाब होता नज़र आए तो बेचैन हो जाते हैं। कोई अच्छी नौकरी पा रहा है, वो कोशिश करते हैं रोकते। कोई अच्छा मंसूबा शुरू कर रहा है, इसमें ऐब ढूंढते हैं। कोई नौजवान आगे बढ़ रहा हो, कहते हैं मैं इसमें इतनी सलाहियत भी नहीं। कोई शख्स खैर का काम कर रहा है, उस पर ऐसी तंकीद शुरू कर देते हैं कि वो काम ही रुक जाए। तो कुरान ऐसे रवैये को मामूली अखलाकी कमज़ोरी नहीं समझता, क्योंकि जो खैर रोक रहा है वो सिर्फ अपना दिल ख़राब नहीं कर रहा है, वो दूसरे इंसान का हक़ भी मुतासर कर रहा है। तो यहीं कुरानी तरबियत का कमाल सामने आता है कि इंसान फितरी तौर पर मनु हो सकता है, तरबियत उसे क्या बनाए, मुता यानी देने वाला, खैर रोकने वाले से खैर पहुंचाने वाला, हसद करने वाले से दूसरों की कामयाबी पर खुश होने वाला, मनसब को गनीमत समझने वाले से मनसब को अमानत समझने वाला, माल को जमा करने वाले से माल को खैर में जारी करने वाला, यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कुरान चाहता है। हमें बच्चों से सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि शुक्र करो, बल्कि उसे अमली सिनेरियोस देने चाहिए। अगर तुम क्लास मॉनिटर बन गए तो शुक्र क्या होगा, सब दोस्तों पर रोब डालना या इंसाफ करना। अगर तुम्हें पॉकेट मनी ज़्यादा मिले तो शुक्र क्या होगा, सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना या किसी ज़रूरतमंद के लिए भी कुछ रखना। अगर तुम पढ़ाई में बहुत ज़हीन हो तो शुक्र क्या होगा, कमज़ोर तालिब इल्म का मजाक उड़ाना या उसे समझाना। अगर तुम खेल में बेहतरीन हो तो दूसरों को टीम से निकालना या उन्हें बेहतर बनाना। तो इसी तरह शुक्र एक यानी रोज़मर्रा की शख्सियत बन जाता है या बन सकता है। कुरान हमें सिलसिले में वाज़ह भी बताता है कि हर नेमत हमें या तो शुक्र बनाती है या हमारी नाशुक्री की गवाही देती है। ओवरऑल सामिन कराम, खुलासा कलाम यही है हमारे आज के प्रोग्राम का कि कुरानी तरबियत इंसान को सिर्फ बुराई से रोकता नहीं, ये एक मुकम्मल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप किस तरह मनुअ से मेहता बने, कफूर से शकूर, खुद गर्ज से ज़िम्मेदार, यानी मनफी सिफात इंसान के अंदर फितरी तौर पर जो मौजूद हैं इसको हैंडल करने का जो मुस्बत तरीक़ा है वो हमें सही से सीखना है, जानना है। नफ्सियाती मसाइल को नफ्सियाती तरबियत के जाविये से देखकर अपनी शख्सियत या अपनी शख्सियत साजी पर फोकस करनी है। सामने कराम, हम अक्सर ये समझते हैं कि अगर हम कुछ टेक्निक्स फॉलो कर लें, कुछ हैबिट्स बदल लें, कुछ लेक्चर्स सुन लें, चंद बुक्स पढ़ लें तो दिल लाजमन दुरुस्त हो जाएगा। ये सब असबाब अहम हैं, प्लानिंग ज़रूरी है, बैड हैबिट्स ये ज़रूर आपने इससे गुरेज करना है, लेकिन याद रखिए कि दरअसल दिल की इस्लाह का ये सफ़र अल्लाह के सामने आजिज़ी, तज़र्रु और दुआ का सफ़र है। दिलों को पैदा करने वाला भी अल्लाह है, दिलों को फेरने वाला भी अल्लाह है, मुर्दा दिलों को दोबारा ज़िंदगी अता करने वाला भी अल्लाह है, लेकिन हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन ये अल्लाह ही अता फरमाता है। समझ कर हमें अपने दिल की इस्लाह के लिए दुआएँ करनी पड़ेगी। अपने रब से यूँ दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरा दिल सख्त हो गया है, उसे मेरे लिए दुरुस्त फरमा। اللهم ألن قلوبنا بذكرك اے اللہ مجھے اپنے عبادت کی لذت عطا فرما۔ ایسی دعائیں اور اس طرح کی جو معصور اور مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں، صبح و شام ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ صرف میرا نہیں، وہ میرے رب کی عطا ہے، اور اس عطا کا حق یہ ہے کہ اسے اس کے رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ یہی قرآنی تربیت کی ایک عظیم منزل ہے اور یہی شکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان مثبت قرآنی صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी,
2: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है, लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है, खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो, तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है, हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं, तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें। अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो, तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं। इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें। ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है। ड्राइव सेफ, सोचिए, समझिए और महफूज रहिए। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se, desi.

0: आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है, इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने किराम, इस्लाम इंसान की जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करता है। इबादत हो या मामलात, गुफ्तगू हो या खामोशी, खाना हो या पीना, सफर हो या क़याम, हत्ता के लिबास के इंतखाब और उसे पहनने के अंदाज में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बेहतरीन नमूना छोड़ा है। उम्मुल मोमिनीन उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, काना हब्बु थियाबि इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़मीस, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लिबासों में कमीस सबसे ज्यादा पसंद थी। और कमीज से मुराद ऐसा लिबास है जो जिस्म के ऊपरी हिस्से से नीचे तक पहना जाए और बदन को मुनासिब तौर पर ढांपे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमीज क्यों पसंद थी, उलमा ने इसकी चंद हिकमतें बयान की हैं। सबसे पहली वजह तो ये बयान की गई कि कमीज में सतर पोशी ज्यादा बेहतर होती है। इजार और चादर अलग अलग पहनने के मुकाबले में कमीज जिस्म को ज्यादा मुकम्मल अंदाज में ढांपती है। दूसरी वजह यह है कि कमीज एक ही लिबास के तौर पर आसानी से पहनी जा सकती है। सामिन इकराम, आज लिबास के मामले में हमारी तरजीहात बदल गई है। कभी हम सोचते हैं ये लिबास कितना महंगा है, किस ब्रांड का है, लोग क्या कहेंगे, क्या मौजूदा फैशन के मुताबिक है या नहीं, लेकिन इस्लाम लिबास के तीन बुनियादी मकासद सिखाता है, एक सतर पोशी, हिफाजत और आखिरी में जीनत। यानी लिबास इंसान की इज्जत वक़ार का जरिया होना चाहिए, न कि गुरूर और मुकाबलाबाजी का। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, वो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमीज पसंद थी, इसलिए कमीज पहनना इत्तबाए सुन्नत का एक खूबसूरत इजहार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान पर एक ही किस्म, एक ही रंग या एक ही अंदाज की कमीज पहनना लाजिम है। इस्लाम ने लिबास के लिए बुनियादी उसूल दिए हैं, जबकि इसकी शक्ल में इलाकाई आदात और चाय सकाफतों की गुंजाइश रखी है। यहाँ तक के बाज़ उलमा ने तो ये भी बयान किया कि इंसान को बिला ज़रूरत ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जो उसे अपने इलाके के लोगों में गैर मामूली तौर पर नुमाया कर दे, मसलन ऐसा लिबास जो सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल करने, अपनी खास दीनदारी दिखाने या खुद को दूसरों से मुमताज साबित करने के लिए पहना जाए। इसे उलमा लिबास शोहरत से ताबीर करते हैं। इस्लाम सादगी सिखाता है, मसनूई इम्तियाज नहीं। अगर किसी इलाके में लोग इजार और चादर पहनते हैं तो ये जायज़ है। अगर किसी इलाके में कमीज और शलवार मारूफ है तो ये भी जायज़ है। अगर किसी खित्ते में सोब यानी जुब्बा मारूफ है तो वो भी दुरुस्त है। असल चीज़ ये है कि लिबास शरई हदूद के अंदर हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वलिबास उत्तक्वा ذلك خير, और तक्वा का लिबास ही सबसे बेहतर है। यानी इंसान का जाहिर साफ हो ये तो अच्छी बात है बल्कि ज़रूरी है, लेकिन बातिन का साफ होना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी और बातिनी सुन्नतों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाएं, हमारे लिबास में हया, पाकिजगी और एतदाल पैदा फरमाएं, हमारे दिलों को तकब्बुर और दिखावे से महफूज रखे और हमें तक्वा के सबसे खूबसूरत लिबास से आरास्ता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ। हर बुध को दोपहर एक बजे

0: एजेंसी सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, बदर बिलाल कतर फुटबॉल के मशहूर फॉरवर्ड्स में से एक हैं। उन्होंने 1977 में सिर्फ 15 साल की उम्र में असद की यूथ टीम ज्वाइन की और बाद में सीनियर टीम के अहम खिलाड़ी बन गए। 1979-80 सीजन में वो मंसूर मुफ्ता के साथ लीग के जॉइंट टॉप स्कोरर रहे। 1982 के अमर कप फाइनल में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में आकर बदर बिलाल ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। 1991 तक असद क्लब के साथ उन्होंने 23 ऑफिशियल टाइटल्स जीते, जिनमें 1988-1989 एशियन क्लब चैंपियनशिप यानी आज के दौर में AFC चैंपियंस लीग जिसे कहते हैं सबसे नुमाया है। इस टूर्नामेंट में बदर बिलाल ने कई अहम गोल स्कोर किए और असद क्लब को एशिया का चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। 1981 में ऑस्ट्रेलिया में फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप मुनक्किद हुई थी और कतर रनर्स अप टीम रही, और इस रनर्स अप बनने के पीछे स्टार खिलाड़ी बदर बिलाल का एक अहम रोल रहा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनका गोल तारीख का हिस्सा बन गया और वो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड

0: कप के सेमीफाइनल में गोल करने वाले पहले अरब और एशियन फुटबॉलर बने। ये तारीखी वाकया आज भी लोग याद करते हैं। फुटबॉल एक्सपर्ट जब भी कतर फुटबॉल को लेकर बात करते हैं, बदर बिलाल इस परफॉर्मेंस को हमेशा जिक्र में लाते हैं। उन्होंने ब्राजील और पोलैंड के खिलाफ भी अहम गोल स्कोर किए और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। बदर बिलाल ने कतर की सीनियर टीम के लिए 1982 और 1986 के गल्फ कप्स में भी नुमाइंदगी की। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान है।

0: सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो जदीद दौर में तेजी से आम होता जा रहा है और वो है बर्नआउट। अब बर्नआउट सिर्फ थकावट का नाम नहीं है बल्कि जिस्मानी, जहनी और जज्बाती थकन की एक ऐसी कैफियत है जो तवील अरसे तक मुसलसल दबाव, ज्यादा काम और मुनासिब आराम ना मिलने के नतीजे में पैदा होती है। बाज़ लोग समझते हैं कि बर्नआउट सिर्फ मुलाजमत पेशा अफराद को होता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये स्टूडेंट्स, घरेलू ख़वातीन और निगहदाश्त करने वालों और हर उम्र के फर्द को मुतासिर कर सकता है। बर्नआउट की चंद अलामात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हर वक्त थकावट महसूस करना, काम या रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें दिलचस्पी कम होना, तवज्जो और याददाश्त में कमी हो जाना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा जो है वो ज़्यादा आना, नींद के मसाइल का सामना करना, सरदर्द या फिर जिस्मानी दर्द जो है वो महसूस हो, मायूसी या बेबसी का एहसास होना। बर्नआउट आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता है। इब्तिदा में इंसान सिर्फ थकावट महसूस करता है, लेकिन अगर बरवक्त तवज्जो ना दी जाए तो ये जहनी और जिस्मानी सेहत पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। इसके कई असबाब हो सकते हैं, जैसे कि मुसलसल काम का दबाव, तवील औकात कार काम जो आप कर रहे होते हैं, इसी तरह आराम और तफरी की जो कमी है, जहनी और पेशा वराना जिंदगी में अदम तवाजुन और हर वक्त बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का दबाव। बाज़ अफराद दूसरों की मदद करते करते अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो जहनी तौर पर बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। अगर आप महसूस करें कि रोज़मर्रा के काम पहले की निस्बत ज़्यादा मुश्किल रख रहे हैं या आप हर वक्त थकन और बेदिली का शिकार हैं, तो ये बर्नआउट की इब्तदाई अलामत हो सकती हैं। याद रखिए, बर्नआउट कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ऐसी हालत है जो इस बात का इशारा देती है कि जिस्म और जहन को आराम और तवज्जो की ज़रूरत है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, आजकल हम सब रिसाइकलिंग के बारे में सुनते आ रहे हैं, है ना? आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है टॉपिक। स्कूल्स में, सोशल मीडिया पर, कैंपेन्स में, हर जगह हमें बताया जाता है कि भाई रिसाइकलिंग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई रिसाइकलिंग के बारे में जो बातें हमें सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी मिथ्स हैं, यानी कि गलत फहमियां हैं। कभी हम ये सोचते हैं कि भाई हर चीज रिसाइकल हो सकती है। कभी हमें ये लगता है कि अगर हम सिर्फ रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो भाई बाकी वेस्ट की टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिसाइकलिंग को सही तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये इको स्विच में हम रिसाइकलिंग मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स के बारे में बात करें, यानी रिसाइकलिंग के बारे में सच और गलत फहमियों को समझने की कोशिश करें। देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं पहले। साथियों, रिसाइकलिंग एनवायरमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी शामिल होती हैं अक्सर औकात। अगर हम रिसाइकलिंग को सही तरीके से ना समझें तो हमारी मेहनत का फायदा कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हर प्लास्टिक आइटम रिसाइकल हो सकता है। कुछ लोग रिसाइकलिंग बिन में हर तरह का कचरा डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि भाई सब कुछ ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जाएगा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ रिसाइकलिंग ही एनवायरमेंट के तमाम मसाइल का

0: सलूशन है। हकीकत ये है कि रिसाइकलिंग जरूरी है, जी हाँ, लेकिन रिड्यूस और रीयूज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहली चीज तो मैं आपको मिथ वर्सेस फैक्ट्स में बता देती हूँ। पहली मिथ ये है कि हर प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। हर प्लास्टिक आइटम रिसाइकल नहीं होता भाई, नो। प्लास्टिक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और हर टाइप को प्रोसेस करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है कि रिसाइकल रूल्स को समझें और सिर्फ एक्सेप्टेड आइटम्स ही रिसाइकलिंग के लिए डालें। दूसरी मिथ ये है कि रिसाइकलिंग बिन में सब कुछ डाल देना ठीक है। अरे भाई, फैक्ट ये है कि रिसाइकलिंग बिन में गलत चीजें डालने से पूरा प्रोसेस मुश्किल हो सकता है, यानी कि फूड वेस्ट, डर्टी कंटेनर्स और नॉन रिसाइकलेबल आइटम्स रिसाइकलिंग सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आइटम्स को क्लीन और प्रॉपरली सेपरेट करना जरूरी होता है। अच्छा, मिथ नंबर 3 क्या है? रिसाइकलिंग का मतलब है कि वेस्ट प्रॉब्लम खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म। अरे भाई, फैक्ट ये है कि रिसाइकलिंग हेल्पफुल है, लेकिन सबसे पहला स्टेप है रिड्यूस एंड रीयूज। अगर हम अननेसेसरी चीजें कम खरीदें और जो चीजें हैं उन्हीं को हम दोबारा से यूज करें तो वेस्ट पहले ही कम हो जाएगा, है कि नहीं? चौथी मिथ ये है कि रिसाइकलिंग सिर्फ बड़ी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना जी। फैक्ट ये है कि हर घर का रोल इम्पोर्टेंट है। अगर हर फैमिली वेस्ट को सेपरेट करना शुरू करे और रिस्पॉन्सिबल होकर डिस्पोज करे तो कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं ना, तो भाई अगर एक फैमिली हर हफ्ते ग्रोसरी शॉपिंग के बाद प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और ग्लास आइटम्स को अलग अलग रखना शुरू कर दे तो वो रिसाइकलिंग प्रोसेस को ईजी बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी रिसाइकलिंग बैग में फूड वेस्ट, यूज टिश्यूज और मिक्स्ड गार्बेज भी डाल दिया जाए तो रिसाइकलिंग आइटम्स भी खराब हो सकते हैं। इसीलिए रिसाइकलिंग का पहला रूल यही है, सही चीज सही जगह। आजकल बहुत से लोग घर में छोटे छोटे रिसाइकलिंग स्टेशंस बना रहे हैं जहां अलग अलग कैटेगरीज के बिन्स रखे जाते हैं। ये आदत बच्चों को भी सिखाती है कि वेस्ट को समझना और मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज आप अपने घर के कचरे को थोड़ा सा डटोलें और आइडेंटिफाई करें हम कितनी चीजें रिसाइकल कर सकते हैं और हम कितनी चीजें अननेसेसरी वेस्ट बना रहे हैं। और हमें जरूर बताएं आपके घर में रिसाइकलिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या कलेक्ट होता है, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास या कुछ और। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, रिसाइकलिंग सिर्फ कचरा अलग करना नहीं होता बल्कि रिसोर्सेज की कदर करना होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फायदा पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे रोजाना दुआ की लिस्ट बनाने के बारे में। दुआ मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अक्सर हम सिर्फ मुश्किल वक्त ही में दुआ करते हैं और अपनी रेगुलर नीड्स को भूल जाते हैं। एक सिंपल सी आदत यह है कि हम अपनी दुआओं की एक छोटी सी लिस्ट बना ले। इसमें हम अपनी जरूरियात, गोल्स और दूसरों के लिए दुआएं शामिल कर सकते हैं। इस तरह से दुआ करना ज्यादा फोकस्ड होता है और इंसान को अपनी जिंदगी को बेहतर एहसास दिलाता है कि आदत दिल और अल्लाह के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पैदा करती है। आज का मल ये है कि अपनी छोटी सी दुआ लिस्ट तैयार रखें और रोज उसे देखते हुए अल्लाह से दुआ मांगा करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया. One Step to 2030. दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग. देखिए, आजकल ना तालीम जो है वो सिर्फ क्लासरूम्स या फिर स्कूल्स तक महदूद नहीं है. तेजी से बदलती इस दुनिया में लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी जिंदगी भर सीखते रहना हमारी और आपकी पर्सनल ग्रोथ, हमारे करियर एडवांसमेंट और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है. आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरह से एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रही है और लर्निंग के किस तरह के नए मौके जो है वो पैदा कर रही है. डिस्कशन में ऑनलाइन लर्निंग होगा, डिजिटल क्लासरूम्स की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑफ कोर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग जैसे टॉपिक्स भी शामिल होंगे. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और जॉब्स बदल रही हैं, वैसे ही नए स्किल सीखना और अपनी नॉलेज अपडेटेड रखना जरूरी हो गया है. एक्सपर्ट इस बात पर रोशनी डालते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिजनेस और कम्युनिटीज मिलकर इस तरह से रन करें कि कल्चरल भी प्रमोट हो और बात भी बन जाए. देखिए, स्मार्ट एजुकेशन और कंटिन्यूस लर्निंग के जरिए हम फ्यूचर के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किरदार भी है. दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करके एजुकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव, इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल बनाना. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल कंटेंट और पर्सनलाइज्ड लर्निंग इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्पीड और अपनी लर्निंग स्टाइल के मुताबिक सीख सकें. वहीं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये क्या है? देखिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है जिंदगी भर सीखते रहना. आज के इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में सिर्फ स्कूल या यूनिवर्सिटी की डिग्री काफी नहीं होती. लोगों को अपनी स्किल्स अपडेट करनी पड़ती है, नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करना है. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियर है और अगर कोई इंजीनियर AI कोर्स करता है या कोई डॉक्टर नए मेडिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में ट्रेनिंग लेता है, तो ये हुई लाइफ लॉन्ग लर्निंग. और अगर ये लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वर्चुअल क्लासरूम्स के जरिए, स्मार्ट एप्स के जरिए हो, तो ये हुआ स्मार्ट एजुकेशन. तो बस स्मार्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को आप मुस्तकबिल के वर्कफोर्स के लिए कितना अहम समझते हैं? वैसे मैं तो कहूंगी कि आज के इस डिजिटल एरा में एजुकेशन जो है वो सिर्फ क्लासरूम्स तक महदूद नहीं है. स्मार्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करने में एक बहुत अहम रोल जो है वो अदा कर रहे हैं और हमें और आपको इसकी इम्पोर्टेंस को समझना भी है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमें और आपको जो है वो तैयार करता है. इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से ज़्यादा है कि हम अपनी स्किल्स को अपडेटेड रखते हैं, नई टेक्नोलॉजीज और मार्केट ट्रेंड से कुछ सीखते हैं और कंट्रीब्यूट बेहतर

0: की और हमारी करियर ग्रोथ ये भी तो बढ़ती है. जो लोग कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं उनके लिए प्रमोशंस और नई अपॉर्चुनिटीज जॉब्स में भाई कितनी आसान हो जाती हैं. वहीं अडैप्टेबिलिटी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अडैप्टेबिलिटी चेंज को एक्सेप्ट करने और नए चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत भी पैदा करती है. और जब इतनी सारी स्किल्स आपके पास होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा? आपका कॉन्फिडेंस तो होगा ही होगा, तो आपके कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करते हैं. वहीं पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को भी सपोर्ट मिलता है क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग नए आइडियाज और बेटर सॉल्यूशंस पैदा करने में मदद करती है. तो मैं तो यही कहूंगी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग आज के एरा में बहुत अहम है क्योंकि नॉलेज और टेक्नोलॉजी हर रोज चेंज हो रहे हैं. मगर जो लोग कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं वो अपने स्किल्स को रेलेवेंट रखते हैं, करियर ग्रोथ हासिल करते हैं और फ्यूचर के चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला करते हैं. इसीलिए लर्निंग को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन तक महदूद ना रखिए, बल्कि जिंदगी भर का सफर बना लीजिए या समझिए. पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए और इस तरह से खुद को, सोसाइटी को मजबूत कीजिए. चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी. One step to 2030.
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Scam alert. यार आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं सोशल मीडिया पे, आपको अगर मैं ब्रांड लाकर दे दूं, वो ब्रांड के लिए आप वीडियो बना दें, आप मुझसे 10-20 हजार रियाल ले लीजिए, बस वीडियो बनाकर दे दीजिए, है ना ये अच्छा वाला पैसा। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे मैं हूं फजील और ये एक स्कैम हो सकता है दोस्तों। तो फ्रॉड अवेयरनेस का ये शो है और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर एजेंट स्कैम। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है, देखिए हम और आप आजकल सोशल मीडिया पे अच्छे खासे एक्टिव हैं, अपनी स्टोरीज, अपनी लाइफ,

अपने व्लॉग्स, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पे डालते हैं और ये एक स्कैम के लिए अच्छा रास्ता बन सकता है। एजेंट्स ऐसे ही काम करते हैं क्योंकि आपने अपने सोशल मीडिया पे सारी डिटेल डाली है तो आपके पास एक कॉल या ईमेल आए जिस ईमेल में कहा जाता है कि एक्चुअली आपको एक ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा और आपको एक कोलैबोरेशन के लिए चुना गया है जिसमें आपको एक वीडियो बनानी है और हमें सेंड करनी है क्योंकि आप बहुत नोन फेस हैं अपने मुल्क में, कतर में या यूएसए में या फिर रशिया में या फिर इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, कोई भी मुल्क का नाम जहां पर आप ज्यादा एक्टिव हैं। और फिर आपसे कहा जाता है कि आप एक फला ब्रांड का वीडियो बनाइए और हमें शेयर करिए और हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, मिसाल के तौर पे 10,000 रियाल 20,000 रियाल। और आपको लगता है कि हाँ यार मैं कंटेंट तो बनाता ही हूँ, एक वीडियो बनाकर देना ही तो है, कौन सा अपने पेज पर पोस्ट करना है। फिर जब बात आगे बढ़ती है सोशल मीडिया के इस डायरेक्ट मैसेज से या फिर ईमेल से या फोन से, फिर आपको एक फेक ऑफर किया जाता है पैसे का और फिर होता है बैंकिंग इंफॉर्मेशन का खेल। होता है कि आपसे कहा जाता है वीडियो बनाइए, आप वीडियो बनाते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, वो कैसी भी वीडियो है वो खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आपको आपके बैंक में पैसे मिल जाएंगे, आप अपनी

0: आए हैं। ये मैसेज एक्चुअली डायरेक्ट मोबाइल पे होता है जो कि फेक होता है कि फला फला फला अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10 रियाल या 10 रुपीज या फला रुपीज। तो वो कंफर्मेशन के लिए आपसे कहते हैं, आप कहते हैं हाँ हाँ 10 रुपए आ गए, मैसेज तो आया है मेरे पास। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बड़ा अमाउंट करने के लिए एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास OTP जाएगा, आप वो मुझे शेयर कर दें। ये अगेन एक खेल है। वो खुश हो जाते हैं आपकी वीडियो से, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ब्रांड का रिप्रेजेंटेशन आपने किया होता है अपने वीडियो में, और जैसे ही आप OTP शेयर करते हैं आपके साथ हो जाता है यहाँ पर खेल। और बैंकिंग डिटेल्स जैसे उनके पास जाती है OTP के जरिए आपके बैंक अकाउंट से अच्छे खासे पैसे निकाल लिए जाते हैं। वेल, कैसे बचा जा सकता है इस तरह के खेल से या फ्रॉड से, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। वेल, इन्फ्लुएंसर्स वाले स्कैम से बचने का एक आसान तरीका है कि इस काम में सबसे पहले 50% या फुल पेमेंट आपके पास आ जानी चाहिए। बैंक अकाउंट चेक करें, डिटेल चेक करें। अगर आपके डिटेल नॉर्मल डिटेल्स हैं जिसमें बैंक अकाउंट है, IFSC नंबर है या फिर स्विफ्ट कोड है, ये सारी डिटेल शेयर करने के बाद, नो OTP, नो CVV, सिर्फ अकाउंट, स्विफ्ट कोड, ये सारी चीजें शेयर करने के बाद अगर आपके अकाउंट में सच में पैसे आ गए तब आप इस तरह का काम करें, ब्रांड कोलैब करें, ब्रांड के साथ कोलैब करें। दूसरा तरीका है कि 50% पेमेंट ले लें, और तीसरा तरीका है कि 25% एडवांस में पेमेंट ले लें फिर वीडियो बनाएं। अब आता है दूसरा तरीका बचने का। देखिए, दूसरा तरीका तो यही है कि OTP ना शेयर की जाए, ये तो मैं बहुत वक्त से कहता आ रहा हूं और अब तक तो आप समझदार हो चुके हैं, इस पे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं। OTP शेयर नहीं करना है, CVV शेयर नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है, जब भी अनरियलिस्टिक ऑफर्स दिए जाएं तो ऐसे में आपको रेड फ्लैग क्या है ये समझना पड़ेगा। एक वीडियो के लिए अगर आपको कोई 20,000 रियाल दे रहा है तो आप इतने बड़े भी क्रिएटर नहीं हुए अभी नहीं, ये वाला नहीं, लेकिन हाँ कम से कम इतना तो समझे कि एक वीडियो के लिए कोई 20,000, 15,000, 10,000 रियाल नहीं देता। तीसरा एक और तरीका है, कोई अभी अगर आपसे ये कहे कि आपके साथ हमें कोलैब करना है, कोलैब का मतलब है सोशल मीडिया के थ्रू आपसे वीडियो बना के अपने पर्सनल मैसेज पे वो कह दे कि आप वीडियो बना के भेज दें, ये किसी तरह का कोलैब नहीं है। और अगर ये कोलैब है तो बड़े लेवल पे होता है, तब तो आपको सामने जाना पड़ेगा, अच्छे कैमरे से शूट करना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल से शूट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर आप गौर कर सकते हैं और इस तरह के बड़े स्कैम से बच सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। बचने का तरीका तो मैंने बता दिया है, लेकिन इसमें और भी लेयर्स हैं जो आपको खुद समझना पड़ेगा जब आपके पास कॉल, ईमेल्स या मैसेजेस आते हैं। तो सोचते रहें और समझदार बने रहें, सुनते रहें FM 107, क्योंकि FM 107 आपको बताता है नए जमाने के नए तरीके फ्रॉड से बचने के। बाकी सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। सिर्फ
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो मुश्किल लगता है लेकिन असल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और वो है शेयर्स और स्टॉक मार्केट के मसले।

0: प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर हैप्पी लिविंग। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत है। हैंडल हमारा इसी नाम से है, FM 107।
1: कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
0: तो आइए शुरू करते हैं। तो सामीन, हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी कुछ इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे जीडीपी के हवाले से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ। जब किसी मुल्क का जीडीपी यानी टोटल वैल्यू जो वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है बढ़ता है, तो कंपनीज आमतौर पर बेहतर परफॉर्म करती हैं। इस वजह से शेयर प्राइसेस बढ़ने लगती हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को ज्यादा मुनाफा एक्सपेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर पिछले कुछ सालों में कतर की इकॉनमी ने स्टडी ग्रोथ मेंटेन की है, जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से सपोर्ट होती रही। और जब इकॉनमी ग्रो करती है, स्टॉक मार्केट्स अक्सर उसे फॉलो करती हैं। नंबर दो पे जानिए डिविडेंड के हवाले से। डिविडेंड एक मुनाफे का हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक की प्राइस को डिविडेंड के बराबर कम कर देता है ताकि वोलेटिलिटी ना हो। मार्केट का कंट्रोल नहीं होता स्टॉक प्राइसेस पर जब एक्स डिविडेंड डेट पर ओपन होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो हायर ओपन होता है। और नंबर तीन पे जानेंगे प्रीमियम ऑन शेयर्स के हवाले से। तो प्रीमियम ऑन शेयर्स वो अमाउंट होता है जो किसी नए इशूड स्टॉक की सेलिंग प्राइस उसकी पर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होती है। ये एक्सेस अमाउंट, जैसे शेयर प्रीमियम या एडिशनल पेड इन कैपिटल भी कहते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर प्रीमियम अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ये रिप्रेजेंट करता है वो कैपिटल जो इन्वेस्टर्स ने बेसिक शेयर वैल्यू से ज्यादा कंट्रीब्यूट किए होते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट, सेंसेक्स, आईपीओ, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या है भाई? अक्सर हम सुनते हैं सेंसेक्स 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया और निफ्टी नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है भाई? इस एपिसोड में हम ये सब कंसेप्ट से इतनी आसानी से समझ लेंगे कि परेशानी नहीं होगी। अगर किसी ने पहली बार भी सुना हो तो वो समझ सकेंगे और बिना किसी मदद के ऑनलाइन जाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक पानीपुरी कॉर्नर है कहीं भी, एग्जाम्पल लक्ष्मी नगर दिल्ली में, और आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला है पानीपुरी बनाने का जो सबको बहुत पसंद आता है। जैसे ही आप स्टॉल लगाते हैं, सारी पानीपुरी एक घंटे में बिक जाती है और आप घर चले जाते हैं अपना मुनाफा लेकर। फिर एक दिन आप सोचते हैं, लोगों को इतना पसंद आ रहा है तो क्यों ना एक प्रॉपर शॉप खोलूं जिसमें ज्यादा लोग बैठ भी सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा लोग इज इक्वल्स टू ज्यादा बिक्री इज इक्वल्स टू ज्यादा मुनाफा। लेकिन शॉप खोलने के लिए पैसा चाहिए। अगर पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा दोस्तों या फिर फैमिली से। आप लोन लेते हैं, शॉप खोलते हैं और जब बिजनेस चल पड़ता है तो लोन वापस भी कर देते हैं। अब लोग और भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप सोचते हैं, अगर इतना पसंद आ रहा है तो क्यों ना पूरी दिल्ली में बेचूं, इसकी ब्रांचेस खोलूं वगैरह वगैरह, प्रॉफिट और भी ज्यादा होगा भाई। यही बेसिक आइडिया होता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का। जब एक कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो पब्लिक से पैसा लेती है शेयर्स के जरिए। अब वही बात करें अगर बिजनेस एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की, तो अब

इसी में मशहूर हो गए हैं मिसाल के तौर पर, और लोग आपकी पानी पूरी बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आपको पूरी दिल्ली में शॉप्स खोलनी है, लोगों को हायर करना है, तो बहुत पैसा चाहिए होगा। आपके दोस्तों या फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है, तो भाई आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है, और वो क्या है? बैंक लोन लेना। लेकिन बैंक लोन लेने में दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। पहला, लोन मिले या ना मिले, गारंटी तो नहीं है भाई। दूसरा, अगर लोन मिल गया तो 12-13% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ईएमआई अगले महीने से शुरू हो जाएगी। बिजनेस को टाइम लगता है ग्रो होने में, और ईएमआई का प्रेशर आपके सर पर होगा जब आप प्लान इम्प्लीमेंट कर ही रहे होंगे। हो सकता है कि प्रॉफिट बढ़ने के बजाय कम हो जाए। दूसरा ऑप्शन, एंगल इन्वेस्टर। इस केस में एक और ऑप्शन होता है, जैसा कि मैंने बताया, एंगल इन्वेस्टर के नाम से। एंगल इन्वेस्टर आपको पैसा लोन के तौर पर नहीं देते और आपको वापस भी नहीं करना होता, लेकिन वो आपके बिजनेस के शेयर्स लेते हैं, यानी पार्टनरशिप। भाई मिसाल के तौर पर अगर आपने डील की कि आपको 1 CR रुपए मिलेंगे 10% पार्टनरशिप के बदले, तो जितना भी आप कमाएंगे उसका 10% एंगल इन्वेस्टर को मिलेगा। एंगल इन्वेस्टर आपके साथ काम नहीं करते, वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और घर बैठे मुनाफा लेते हैं। और वहीं वेंचर कैपिटलिस्ट जब बिजनेस और बड़ा हो तो दिखाई देते हैं। अब आपका नाम दिल्ली के बाद और स्टेट्स में भी मशहूर हो गया है। आप सोच रहे हैं कि इंडिया के हर कोने में ब्रांचेस खोलनी चाहिए। इस लेवल पर पैसा और ज्यादा चाहिए, जो एंगल इन्वेस्टर के स्कोप से बाहर होता है। यहाँ आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। भाई वेंचर कैपिटलिस्ट वो कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप्स और बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, उनके शेयर्स खरीदती हैं और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती हैं। एंगल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट को कैसे ढूंढें? आपको चाहिए कि फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट बैंकर, वो आपके बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, रेवेन्यू डिटेल्स चेक करते हैं और आपको इन्वेस्टर्स के सामने ले जाते हैं। अगर आपका बिजनेस कैपेबल है तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। लेकिन याद रहे, ये इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा नहीं देते, आपका बिजनेस थॉरली इवेल्युएट भी करते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब, और वो है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। मिसाल के तौर पर आपने एंगल इन्वेस्टर से पैसा लिया 10% शेयर्स के बदले, वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लिया 10% शेयर्स के बदले, और अब भी डिमांड रुक नहीं रही, लोग और चाहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इंडिया के बाद इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करें? तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: अब आप सोच रहे हैं कि इंडिया के बाद इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करें, तो भाई आता है आईपीओ, जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है। अब आपका बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि एंगल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट भी उस लेवल का पैसा नहीं दे सकते

आप उसके शेयर मार्केट में खरीद सकते हैं। भाई आपने पानी पूरी बिजनेस अकेले शुरू किया था, लेकिन आपका प्रोडक्ट इतना पावरफुल था कि लोग उससे कमा रहे हैं। आपने उन्हें पार्टनरशिप दी और सब कमा रहे हैं।

एसईबी एसईबीआई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल लेना पड़ता है. एसईबीआई के अप्रूवल के बिना आईपीओ नहीं आ सकता. चौथा, स्टॉक एक्सचेंज पर एप्लीकेशन देनी होती है और आखिर में शेयर्स का प्राइस डिसाइड करना होता है. जैसे एक कंपनी एबीसी ने आईपीओ लॉन्च किया, एक शेयर की वैल्यू थी 2150 रुपए और उन्होंने 18300 करोड़ रुपए रेस किए. तो चलिए जी, अब जानते हैं कि आईपीओ का प्राइस कैसे डिसाइड करें. प्राइस आप डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर आप प्राइस बहुत हाई रखते हैं और लोग शेयर्स नहीं

इसलिए आईपीओ तब लॉन्च किया जाता है जब मार्केट ऊपर हो और लोगों की परचेजिंग पावर स्ट्रांग हो। भाई अगर आपको याद दिलाऊं तो कोविड के दौरान आईपीओस क्यों नहीं आए? कोविड के टाइम आईपीओस नहीं आए या डिले हो गए क्योंकि मार्केट्स डाउन थी और लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। कभी कभी कंपनीज 1 लाख शेयर्स लॉन्च करती हैं और बायर्स 5 लाख होते हैं, तो आईपीओ लॉटरी सिस्टम से मिलता है। वहीं आईपीओ

जाए या नीचे या कंपनी के शेयर से फ्लक्चुएट करें, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी को दोबारा पैसा चाहिए हो तो फिर से आईपीओ के जरिए ही मार्केट में आना पड़ता है।

लेकिन अगर वो दूसरी बार पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसे कहते हैं FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। वहीं शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन और कंपनी का रिएक्शन क्या होता है

कि भाई क्यों? देखिए कंपनी को डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर होता है। शेयर प्राइस कंपनी की रेपुटेशन का रिफ्लेक्शन होती है। अगर कंपनी मार्केट से पैसा लेना चाहती है लोन या इन्वेस्टमेंट तो करंट शेयर प्राइस एक बेस बन जाती है। चलिए भाई अब जानते हैं शेयर्स को बैंक में सिक्योरिटी के तौर पर रखना। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वो अपने शेयर्स को सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट करती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बैंक में 1,000 रुपए शेयर्स डिपॉजिट किए तो बैंक आपको 650-650 रुपए का लोन देगा। अगर किसी वजह से शेयर प्राइस गिर जाए तो बैंक कहेगा और शेयर्स दूं क्योंकि वैल्यू कम हो गई है। इस वजह से कंपनी के ओनर्स पैनिक करते हैं क्योंकि शेयर्स प्राइस गिरना उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ तो कहीं भी मत जाइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: भाई एफपीओ का रेट कैसे डिसाइड होता है? जब कंपनी एफपीओ लाती है तो वो शेयर का रेट खुद डिसाइड नहीं कर सकती। एफपीओ का बेस होता है उस वक्त का मार्केट रेट। आइए अब जानते हैं आईपीओ के बाद पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो वो पैसा रेज करके अपना काम शुरू करती है, लेकिन पब्लिक जो शेयर्स खरीदती है वो वेट करती है कि कंपनी मुनाफा कमाए ताकि उनको भी फायदा हो। भाई अगर आप आईपीओ के वक्त शेयर्स नहीं ले पाए तो आप उन लोगों से शेयर्स खरीद सकते हैं जिन्होंने आईपीओ के वक्त लिए थे। भाई ये बार्गेनिंग होती है और ये सब होता है स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां शेयर्स बाई और सेल होते हैं। जैसे बाजार में सामान बिकता है वैसे ही यहां शेयर्स बिकते हैं। चलिए दोस्तों, अब शेयर मार्केट का सफर आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। भाई 1875 में प्रेमचंद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया, जहां लोग पेपर के जरिए शेयर्स बाई सेल करते थे, और 1992 में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। कंप्यूटर

भी हैं, वैसे ही सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है बीएसई का, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है एनएसई का। ये मार्केट का मूड दिखाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका शेयर भी उसी डायरेक्शन में जाए। शेयर प्राइस किस वजह से बदलता है, तो तीन मेन प्लेयर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर, आम लोग जैसे कि हम, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, और तीसरा रेटिंग एजेंसीज जो इकोनॉमी और सेक्टर्स का फोरकास्ट करते हैं। इन्हीं के डिसीजन से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। तो भाई रिमाइंड करा दूं कि आईपीओ और एफपीओ क्या है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है, और एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी दोबारा शेयर्स बेचती है। आईपीओ के लिए एसईबीआई अप्रूवल, अंडरराइटर और प्राइसिंग प्रोसेस होता है। शेयर्स मार्केट में आने के बाद उनकी वैल्यू फ्लैक्चुएट करती है। कंपनी को डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेपुटेशन जरूर इफेक्ट होती है। अब इन्वेस्ट कैसे करें, तो सिर्फ मोबाइल फोन से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीन चीजें चाहिए, सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। एग्जांपल, वॉलेट सेविंग अकाउंट है, बैग डीमैट अकाउंट है, आपका एक्शन ट्रेडिंग अकाउंट है। आप इंस्टॉल करें, केवाईसी कंप्लीट करें और घर बैठे शेयर बाय सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें, इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग नहीं होती, ये है समझना, प्लानिंग करना और ग्रोथ में यकीन रखना। तो लो जी, आपका पहला सबक शेयर्स और स्टॉक मार्केट का कंप्लीट हुआ। मगर ये जानिए कि ये अमीर बनाने का शॉर्टकट नहीं है।

कर सकते हैं वो है खुद में. अगली दफा तक क्यूरियस रहिए, स्मार्ट रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए. और इसी के साथ सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ. तब तक अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: बस बहुत हो गया रूटीन. Need an escape. एक mind blowing adventure चाहिए तो lock हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है escape room. The ultimate mind workout as pure fun. यहाँ traffic नहीं, tricky wordplay है. Boring meetings नहीं, brain teasing riddles है. जहाँ contestants navigate करेंगे audio challenges around the clock. ये है आपका weekly escape into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio का unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, दोपहर 1:30 बजे से. Only on FM 107, Dil Se Desi.
4: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है. मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनर

0: मेंबरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मेतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मेतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

और ये काम होकर रहना है। मरियम को इस बच्चे का हमल रह गया और वो उस हमल को लिए हुए एक दूर के मकाम पर चली गई। फिर जचगी की तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। फरिश्ते ने पाइंती से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवां कर दिया है और तू जरा इस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर तरोताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर, फिर अगर कोई आदमी तुझे नजर आए तो उससे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, इसलिए मैं आज किसी से न बोलूंगी।